आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 अगस्त सन 2026 ईस्वी। प्रातः की 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन।
1: हम अहाँ ई बुझैत जे परमेश्वर सर्वव्यापी छथि, सर्वदर्शी छथि, सर्वशक्तिमान छथि, सर्वांतर्यामी छथि, कखनो कखनो भ्रांतिवश ई बुझि लै छी जे हम जे कऽ रहल छी वा जे सोचि रहल छी से क्यो नहि देख रहल अछि, क्यो नहि बुझि रहल अछि। संसारक अधिकांश पाप कर्म एहि मनस्थितिमे कयल जाइ छै। जँ मनुष्य सतत ईश्वरक सर्वव्यापकताक स्मरण राखय तऽ ओकरासँ पाप कर्म हेबे नहि करतैक। चीनमे क्यो उच्चाधिकारी छलाह, कोनो व्यक्तिकेँ हुनकासँ कोनो व्यक्तिगत कार्य साधन करक छलनि। काज बहुतो दिनसँ विचारणीय रहिक, विचाराधीन रहिक, निष्पादन नहि भऽ रहल रहिक। ओ व्यक्ति एहि लऽ कऽ बड़ चिन्तित छलाह। बहुत प्रतीक्षाक बादो जखन कार्य नहि भेलनि तऽ एक दिन ओ व्यक्ति ओहि उच्चाधिकारीक आवास पर पहुँचलाह आ निवेदन केलखिन, अपने जतेक धन कही हम दऽ दै छी, हमर काज कऽ देल जाउ। उच्चाधिकारी चुपचाप सुनि लेलनि, बजलाह किछु नहि। पुनः ओ व्यक्ति निवेदन केलखिन, अपने कोनो शंका नहि कयल जाउ, एकर खबर केकरो नहि हेतैक, हम धन दऽ कऽ काज लेबाक बात गुप्त राखब, ककरो कानो कान खबर नहि हेतैक, अपने निर्भय निसंकोच धन लऽ लेल जाउ। आब उच्चाधिकारीक मोन भंग भेलनि। ओ बजलाह, तीन गोटे तऽ बुझिए गेलाह, ई तीनों एखनेसँ एकरा प्रचारित करता आ संसार भरिकेँ खबरि भऽ जेतैक जे अमुक व्यक्ति घूस लऽ कऽ फल्लाँक काज केलखिन। ओ व्यक्ति बजला, एतऽ तऽ दुइये व्यक्ति छी, हम आ अहाँ। हम देनिहारे छी, अहाँ छी ननिहार। हम तऽ नहिए कतौ बजबै आ अहाँक बजबाक कोनो प्रश्ने नहि उठै छै, तेसर के अछि जे एकरा प्रचारित करत? उच्चाधिकारी बजलाह, तेसर छथि परमेश्वर। ओ सबकिछु देख रहल छथि, सबकिछु बुझि रहल छथि। ओ नहीं मानता, ओ एहि घटनाके प्रचारित कइए देता, तैं अहाँ जे करऽ चाहै छी से नहि करू। घूस देबाक घृणित विचार त्याग दिअ, रहल काजक बात तऽ से समय अनुसार हेबे करत। वर्तमान सन्दर्भमे हमरा अहाँके बीच एहि गप्पक प्रासंगिकता कहाँ तक छैक से कहबाक प्रयोजन नहि। आस्तिक हेबाक नाते कखनो नहि बिसरक चाही जे परमेश्वर समस्त विश्वक कार्य व्यापारकेँ देखि रहल छथि, बुझि रहल छथि। ई स्मरण रखने सबसँ पैघ लाभ हमरा अहाँकेँ इएह हैत जे कोनो अनुचित काज हमरा अहाँसँ नहि हैत।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज़ॉन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा के सभी कार्यक्रम।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज का विषय है फसल में पोषक तत्व का महत्व। जानकारी दे रहे हैं मिहिर कुमार झा।

0: किसान भाई लोग नमस्कार। आजुक कृषि चर्चा के संग हम मिहिर कुमार झा। आजुक कृषि चर्चा में अपना सब गप करब फसल में पोषक तत्वक महत्व पर। किसान भाई लोग पोषक के स्वास्थ्य के प्राय कही तो कोनो अतिशयोक्त नहीं। जतमान जीव जंतु से ल के मानवक शरीर हो वा गाछ वृक्षक वा फसल के गाछ सबके लेल पोषक तत्व परमावश्यक होइत अछि। पोषक तत्व के अभाव में जीव जंतु हो वा गाछ वृक्ष ओकर सर्वांगीण विकास संभव नहीं भ सकैत छै। कहबाक अभिप्राय जे किसान भाई अपना सब जे एतेक मेहनत से लगन से लगता लगा के खेती पथारी करै छी, खेत के नीक जकां जोत कोरि के खेतक माटि के एक रंग भुरभुरा करै छी, बिया बाउग करै छी, एहि तरह खेतक नीक जकां मेहनत आ लागत से फसल उगबैत छी, मुदा उपजा ओहि अनुरूप नहि होइत अछि तो मोन खिन आ आर्थिक बोझ सेहो बुझा जाइत अछि, बढ़ि जाइत अछि। एहि सब से बचबाक लेल अपना सबके फसल में पोषक तत्वक महत्व के बारे में अवश्य बुझक चाही। देखियो किसान भाई लोकनि, फसल के स्वस्थ विकास आ नीक उपजा अर्थात पैदावार के लेल मुख्यतया 17 गोट आवश्यक पोषक तत्व के आवश्यकता होइत छै। किसान भाई लोकनि, ई जे 17 आवश्यक पोषक तत्व होइ छै ओकरा मुख्य रूप से प्राथमिक, द्वितीयक आ सूक्ष्म पोषक तत्व ई तीन भाग में फसलक गाछ के जे भोजन, ऊर्जा आ रोग प्रतिरोधक क्षमता के लेल परमावश्यक कहल गेल छै। किसान भाई लोकनि, प्राथमिक पोषक तत्व में जेना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम ई प्रमुख पोषक तत्व अबैत अछि। नाइट्रोजन जे छै से फसलक पोषक तत्व में किसान भाई लोकनि, नाइट्रोजन जे छै से फसल के गाछ के पात आ ओकर तना के हरियर आ वृद्धि करबा में सहयोगी बनैत अछि, जाहिसँ फसलक गाछ के वृद्धि होइत छैक। ई क्लोरोफिल आ प्रोटीनक मुख्य भाग सेहो कहल जाइत छैक। एहि तरह किसान भाई, फास्फोरस फसलक गाछक जड़ि के विकास करैत अछि, संगे फसलक गाछ में फूल आ फल बनबै में सेहो सहयोगी होइत छै। फास्फोरस से फसलक गाछ में ऊर्जाक आदान प्रदान से होइते छै। ओकर बाद पोटासियम जे अबैत अछि, पोटासियम से किसान भाई फसलक गाछ में पानिक आवश्यकता के नियंत्रण करैत अछि। पोटासियम एतबे नहि, फसलक गाछ के रोग आ सुखबा से लड़बाक ताकत सेहो बढ़बैत अछि ई पोटासियम। किसान भाई लोकनि, द्वितीय पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम आ सल्फर आ गंधक अबैत अछि। कैल्शियम पोषक तत्व जे होइत अछि ओ किसान भाई लोकनि, फसलक गाछ के कोशिका के आवरण जकरा अपना से दीवार कहै छियै ओकरा मजबूती प्रदान करैत अछि, संगे फसलक गाछ के जड़िक बढ़ोतरी में सेहो सहायक होइत अछि कैल्शियम। तो आ मैग्नीशियम जे छै किसान भाई लोकनि, मैग्नीशियम क्लोरोफिल के मुख्य खनिजक हिस्सा कही तो कोनो हर्ज नहि, जे फसलक गाछ में प्रकाश संश्लेषण करबा में मदद से करैत अछि। किसान भाई लोकनि, फसलक पोषक तत्व में सल्फर के सेहो आवश्यकता कम नहि छै। ई फसलक गाछ के प्रोटीन आ अमीनो एसिड के निर्माण के लेल आवश्यक होइत अछि। एहि तरह किसान भाई लोकनि, फसलक सूक्ष्म पोषक तत्व में जिंक, आयरन, बोरॉन इत्यादि अबैत अछि। फसलक तत्व में जिंक के गप करब तो जिंक फसलक गाछ के एंजाइम एक्टिविटी आ शुरुआती विकास के नियंत्रण करैत अछि, जे फसलक गाछ के लेल परमावश्यक मानल जाइ छै। एहि सब तरह फसलक गाछक पोषण के लेल ई सब परमावश्यक अछि, जे अपना सबके बुझक रहक चाही जे फसल के पोषक तत्व तो जखने बढ़िया रहते तखने फसल नीक होयत, ओहिमे उपजा बढ़िया होयत। अपना
1: अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। अब हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत

के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप

0: उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूर में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत तौर विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम हार्वर्ड के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
3: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अलका। डॉक्टर अलका, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: हमारे श्रोताओं को सबसे पहले ये बताइए कि दांतों में जो कैविटी है, इसका मुख्य कारण क्या है? उससे पहले आप ये बताएं कि कैविटी क्या होती है।
4: सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो हमारा दांत है, शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है
3: जी,
4: फिर भी कभी कभी इसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं जिनको आप कैविटी कहते हैं या खोदर कहते हैं या कीड़ा लगना कहते हैं आम बोलचाल के भाषा में।
3: अच्छा, दांतों में छेद होना या उसका कीड़ा लगना, उसको कैविटी कहते हैं।
4: हाँ
3: ठीक है। इसके ये क्यों होता है ऐसा?
4: हमारे दांत में जो है

0: मिनरलाइजेशन और डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस निरंतर चलता रहता है। दांत जो हमारा है कई मिनरल से बना है, इसमें जो प्रोसेस चलते रहता है वो कंटिन्यू ऐसे चल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप खाना खा रहे हैं और उसके खाने के जो कण हैं आपके दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं, फिर वहाँ पर बैक्टीरिया पनपने लगता है। वो बैक्टीरिया और मुँह का जो एसिड होता है, अम्ल जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड, वो दोनों के कारण
1: दांतों में सड़न शुरू हो जाती है, मतलब एसिड की वजह से,
0: एसिड के कारण क्षरण शुरू हो जाता है। अच्छा, जो आपका इनर मेल है वो खत्म होने लगता है।
1: जी जी जी।
0: और इसके कारण वहाँ पे आपको छोटा सा छेद शुरू होता है जो फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अच्छा, अगर इसको कंट्रोल ना किया गया
1: तो उसी को कैविटी कहते हैं।
0: जी।
1: तो उसका कारण क्या है? उसका
0: आपके इनर मेल का डीमिनरलाइजेशन होना,
1: यानी कि खान पान की कमी की वजह से। कुछ लोग क्या खान पान की गड़बड़ी से होता है ये दांतों में?
0: नहीं, आपके मुंह में जब पीएच बैलेंस 5.5 से कम हो जाता है,
1: अच्छा,
0: तो वहाँ पे डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस रीमिनरलाइजेशन प्रोसेस से तेज हो जाता है।
1: तो ये जो आपने कहा पीएच वैल्यू 5 से कम हो जाता है, इसका कारण क्या? कुछ तो कारण होगा।
0: इसका कारण है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें एसिड ज्यादा है।
1: अच्छा, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है।
0: और मुंह में आपके जो गंदगी के कारण बैक्टीरिया पनप रहे हैं उसका कारण। इन दोनों के प्रोसेस से ही ये कैविटी का निर्माण शुरू हो जाता है।
1: तो किस प्रकार के खान पान की वजह से ये समस्याएं ज्यादा आती हैं?
0: मीठा खाना,
1: अच्छा,
0: तैलीय खाना, जैसे आपका कई कार्बोहाइड्रेट में सुक्रोज है, उससे जो लैक्टिक एसिड निकल रहा है वो सबसे मुख्य कारण है इसका।
1: जी, तो बहुत से लोग हैं जो जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ले या जलेबी, इस प्रकार की रस वाली चीज़ें खाते हैं, उसमें तो ज़्यादा शिकायतें होंगी, या मिठाई या फिर टॉफ़ी चॉकलेट्स।
0: शिकायत है, खाइए, लेकिन उसके बाद मुंह को अच्छे से साफ कीजिए।
1: तो ये फिर ज़्यादातर बच्चों में होता है कि या ज़्यादातर बड़ों में ही होता है?
0: ये बच्चों में ज़्यादा देखा गया है।
1: बच्चों में,
0: अच्छा, खासकर 14 साल तक के बच्चों में, उनमें हड़बड़ी भी रहती है स्कूल जाने का, जल्दी जल्दी ब्रश करते हैं, ठीक से ब्रश नहीं किए।
1: तो कैविटी से बचाव का क्या तरीका है?
0: आप चिपचिपे और मीठे पदार्थ कम खाइए।
1: अच्छा।
0: ब्रश कीजिए सुबह और शाम, फ्लोराइड युक्त पेस्ट का इस्तेमाल कीजिए।
1: जी।
0: और रात में आपको ये एक ग्लास नमक पानी से, गर्म पानी में नमक डालकर कुल्ला किया कीजिए रेगुलरली।
1: अच्छा।
0: और नियमित रूप से दांतों का चेकअप करवाइए।
1: ये भी कहा जाता है कि हमें ब्रशिंग जो है सिर्फ सुबह नहीं, रात को खाना खाने के बाद भी करना चाहिए, यानी कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल,
1: इससे ये शिकायत नहीं होगी।
0: हाँ, मतलब जिससे आपके जो खाने के जो कण फंसे हुए और निकल जाएंगे तो फिर बैक्टीरिया का ग्रोथ कम हो जाएगा।
1: और लोग कहते हैं कि रात को जो ब्रशिंग है वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दांतों का सड़ना जो है, एसिड बनना ज़्यादातर रात में ही होता है, ऐसा कुछ है क्या?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि रात में जो आपका खाना है उसमें आपका जो मुंह का लार है वो भी रीमिनरलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ावा देता है।
1: जी।
0: रात में आप खाने के कण रह जाते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया का एक्शन ज़्यादा हो जाता है।
1: जी जी, अच्छा अच्छा। अगर किसी को कैविटी हो गया उसके बाद फिर उसका क्या इलाज है?
0: उसके बाद हम कैविटी को सिर्फ फिलिंग, जिसको आप कह सकते हैं, डेंटिस्ट लोग फिलिंग कहते हैं, फिलिंग करवा के उसको ठीक कर सकते हैं। एक तरह से वहाँ कहिए कि छह को रोक सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं वहाँ, कैविटी अरेस्ट।
1: अच्छा।
0: उस जो आगे नहीं बढ़े।
1: अच्छा। और ज़्यादा सड़न हो गई तो फिर तो कुछ और भी उसका दूसरा भी इलाज?
0: अगर क्षरण सिर्फ कहिए आपके डेंटिन तक है तब तक सिर्फ फिलिंग से ठीक हो जाएगा, और अगर वही क्षरण आपके पल्प तक, सबसे भीतरी वाले पार्ट तक चला गया है, फिर उसके बाद हम लोग को RCT करवाना पड़ेगा।
1: यानी जब समस्या गंभीर हो जाएगी तो फिर RCT की नौबत,
0: वो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा।
1: ठीक, डॉक्टर साहब, आपने हमारे दांतों में कैविटी के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब सुनिए भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले ये देशगान।

संवेद स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये देश का। अब सुनिए भजन, स्वर है अनुराधा पौडवाल का।

आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा के सभी कार्यक्रम। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं जुबिन नौटियाल के स्वर में।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है KP सक्सेना का।

इसी भजन के साथ भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है रामचरितमानस का मुख्य स्वर है मन्ना डे और शोभा जोशी का।

व्याख्या करने के पार्वती के अनुरोध पर सुख स्वरूप भगवान शंकर ने श्री राम की लीलाओं का सांगोपांग वर्णन किया। बोले, जिनके नाम के उच्चारण के साथ काशी में मरते हुए प्राणी को मैं शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु जड़ चेतन के स्वामी और सबका अंतर्मन जानने वाले हैं। पार्वती का प्रश्न सहज था, तब उन्होंने किस कारण मनुष्य का शरीर धारण किया? उमापति ने तब निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमय कथा सुनाई जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है उसके बारे में ये नहीं कहा जा सका कि वो कारण बस यही है। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षसों का प्रकोप बढ़ जाता है, तब तब प्रभु विविध रूपों में शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं।

रामचरित मानस का अभी आप सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। जानकारी प्राप्त कीजिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला 7:05 पर।

0: उपयोगात् दूरं स्थातुं प्रेरयितुं तथा स्वसमाजेषु सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनस्य प्रवर्तकान् भवितुं प्रोत्साहयितुं च इत्यस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी विज्ञान प्रौद्योगिकी क्रीडा क्षेत्रेषु सफलतां प्राप्तवतां भारतीय यूनां प्रशंसाम् अकरोत्। सहैव तान् जलसंरक्षणे प्राकृतिक सम्पदः संवर्धने भारतीय कला वस्तूनां संरक्षणे च योगदानं दातुम् आहूतवान्। सः ह्यः मैसूरुनगरे स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक युवकेन्द्रस्य विवेकस्मारकस्य उद्घाटनानन्तरम् एतद् अवदत्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् स्वामी विवेकानन्दस्य विचाराः युवकानां सशक्तिकरणं राष्ट्रनिर्माणं च प्रोत्साहयन्ति। उज्बेकिस्तानस्य विदेशमन्त्री सईदोव बख्तियार ओदिलोविच इत्येषः अद्यारभ्य अस्य मासस्य पञ्चदिनाङ्कपर्यन्तं भारतस्य आधिकारिकयात्रायां भविष्यति। विदेशमन्त्रालयानुसारं स्वयात्रावधौ असौ राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह शिष्टाचारोपसंगमार्थं मेलिष्यति। सहैव विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सह अपि वार्तालापं करिष्यति। सः नवदिल्ल्याम् आयोजिते वाणिज्यमञ्चे अपि भागं ग्रहीष्यति। केन्द्रप्रशासनेन करविभागान्तर्गतम् अतिरिक्त अंशभागत्वेन राज्यसर्वकारेभ्यः 21.99 लक्षकोटिरूप्यकाणि वितरितानि। वित्तमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये प्रोक्तं यत् अस्य अतिरिक्तांशभागस्य उद्देश्यं राज्येभ्यः द्रव्यगतविकासव्ययं वर्धयितुम् अवसरं प्रदानम् इत्यस्ति। मन्त्रालयपक्षतः निस्सारितस्य राज्यक्रमस्य विवरणानुसारम् उत्तरप्रदेशः सर्वाधिकम् 28.91 लक्षकोटिरूप्यकाणि अलभत। तदनन्तरं बिहारराज्यं 45.88 लक्षकोटिरूप्यकाणि अथ च मध्यप्रदेशराज्यं 10.08 लक्षकोटिरूप्यकाणि प्राप्नोत्। पश्चिमबंगालराज्यं 66.87 लक्षकोटिरूप्यकाणि महाराष्ट्रराज्यं च 22.07 लक्षकोटिरूप्यकाणि अलभत। ग्लास्गोनगरे प्रवर्तमानासु राष्ट्रमण्डलक्रीडासु भारतम् 41 पदकैः सह पदकतालिकायां चतुर्थस्थानम् अधिगतवत्। भारतस्य पदकतालिकायाम् अधुना 13 स्वर्णपदकानि 17 रजतपदकानि 9 कांस्यपदकानि च सन्ति। भारतस्य नूतनपदकं 5000 मीटरमितायां धावनस्पर्धायां गुलवीरसिंहेन प्राप्तं कांस्यपदकम् अस्ति। मुष्टामुष्टिस्पर्धासु भारतेन उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतं, यत्र 7 स्वर्णपदकानि तथा 3 रजतपदकानि प्राप्तानि। पैरा एथलेटिक्स इत्येतस्मिन्नपि भारतेन ऐतिहासिकी उपलब्धिः सम्प्राप्ता। पुरुषाणां शॉटपुट F57 इत्येतस्यां स्पर्धायां सोमन राणा स्वर्णपदकं, शुभम जुयालः च रजतपदकं प्राप्तवान्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य कर्नाटक, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। तथैव दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु अपि अतिवृष्टिः व्यक्तीकृता इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन

0: आजादी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किश्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने

0: बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। पेरू में एक पर्यटक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 13 लोगों की मौत हो गई। विमान में सवार पर्यटक प्रसिद्ध नाजका लाइंस को देखने के लिए हवाई यात्रा कर रहे थे। ये प्राचीन भू आकृतियां हैं जिन्हें पेरू के मूल निवासियों ने सदियों पहले रेगिस्तान में बनाया था। ये विमान पेरू की एयरलाइन एरोडियाना द्वारा संचालित किया जा रहा था और इसने पास के शहर ईका से उड़ान भरी थी। फिलहाल हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगांस, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत के लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुष 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: ब्रह्मांड के सबटा शक्ति ठीके कहलो अहाँ जे पहले से अपना सबके अछि, मुदा अपने सब अपन आँखि पर हाथ राख लै छी। अपना सबके भीतर क्षमता, साहस आ समाधान मौजूद होइत अछि। कई एक बेर अपना सब अपन शंका, डर आ सीमित सोचे में रुकि जाइ छी और ई अपना सबके आगू बढ़े से रुकि दैए। जखन कि अपना सब वही मानसिक बाधा के हटबैत ताबत धरि आगू बढ़ सके छी जावत अपना सब ओहि में अवसर आ प्रकाश देखबे।
1: बहुत अच्छी बात कही आशुतोष जी आपने। और हम सभी जानते हैं कि स्वयं पर विश्वास रखने से हमारी ऊर्जा और हमारी क्षमता नित्य दिन बढ़ती है,
0: बढ़ जाए।
1: तो स्वयं पर विश्वास रखें और सदैव सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें।
0: निश्चित।
1: और अब आगे बढ़े कार्यक्रम में। आज है 2 अगस्त और हम अपने कार्यक्रम में हर दिन के इतिहास को शामिल करते हैं।
0: करी छी, ठीक है।
1: तो आज का ये जो इतिहास है 2 अगस्त का, वो क्यों है खास देश और दुनिया के लिए, इसके बारे में भी एक जानकारी लें एक कार्यक्रम
0: चर्चा को लिए।
1: आज ही के दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1858 का पारित होना और स्वामी विश्वनाथ आनंद का ऐतिहासिक शतरंज कीर्तिमान शामिल है।
0: ठीक है कहलो हाँ। संगे संग 1790 में अमेरिका में पहल बेल जनगणना से हो अही दिन कराओल गेल छल।
1: तो 1987 में भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथम आनंद ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतकर पहले एशियाई शतरंज विजेता बनने का गौरव हासिल किया था। 1990 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन की सेना ने कुवैत पर कब्जा किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम खाड़ी युद्ध की शुरुआत हुई। 1861 में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने, जिन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, का जन्म हुआ था। और अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे हम कि 1876 में पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का मूल डिजाइन तैयार किया था।
0: बहुत सुंदर जानकारी। और अपना सबका सदैव इतिहास यह सिखबैत अछि कि अपना सब नव और खास कह सकै छी, पुरान जे किछु गलती है ओकरा दोहराबी नहि, और सदैव जे अहाँ कहने छलहुँ जे सकारात्मक ऊर्जा के संग अपना सबके आगू बढ़बाक चाही।
1: और अभी आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में मैथिली सुगम संगीत की ओर। तो सुनते हैं ये मैथिली सुगम संगीत।
0: सुनल जाए।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला सुननिहार समस्त श्रोतागण का आशुतोष कुमार झा दे स्वागत और नमस्कार। संगही नमस्कार संगीता जी।
1: नमस्कार आशुतोष जी और सभी सुधी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज रविवार है और इस सुंदर से प्रातःकालीन बेला में हम उपस्थित हैं कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम में स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का इस सुविचार के साथ।
0: ठीक है गौलो।
1: और ये सुविचार है स्वामी विवेकानंद जी का। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं, लेकिन हम ही अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि अंधेरा है।
0: ठीक है कह लो।

0: बहुत सुंदर विभा सिन्हा का स्वर में ही महेश वाणी अपना सब सुन लो।
1: और हमें लग रहा है कि ये जो समय है उसमें अभी ये महेश वाणी सुनना हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा है,
0: बहुत नीक लागल है। ठीक है,
1: अब और इंतजार नहीं करवाएंगे अपने श्रोताओं को, क्योंकि हमारे श्रोता इंतजार करते हैं हाल चाल का। सुनते हैं आशुतोष जी से हाल चाल।
0: सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि का हलचल हालचालक संग होम छी आशुतोष कुमार झा। श्रोतागण, DMSSP श्रावणी मेला के लौक कुशेश्वर स्थान मंदिर का कैलाइन निरीक्षण। श्रद्धालु सभक सुरक्षा सुविधा और सुचारू व्यवस्था के लौक अधिकारी सबके दलाइन आवश्यक निर्देश। श्रावणी मेला के लौक जिलाधिकारी कौशल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी संयुक्त रूप से कुशेश्वर स्थान पहुँच कर तैयारी सभक व्यापक निरीक्षण कैलाइन। जिलाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक मंदिर परिसर संगे ही श्रावणी मेला के तैयारी का विस्तृत निरीक्षण कैलन। श्रद्धालु सभक सुविधा सुरक्षा यातायात व्यवस्था प्रवेश और निकास मार्ग भीड़ प्रबंधन संगे ही आन आवश्यक व्यवस्था सभक बारीकी से अवलोकन सेहो कैल गेल। जिलाधिकारी कौशल कुमार कहलन जे श्रावणी मेला के दौरान पैघ संख्या में श्रद्धालु बाबा कुशेश्वर स्थान के दर्शन और जलाभिषेक के लेल पहुँचे छथि। एहन में प्रशासन के प्राथमिकता अछि जे श्रद्धालु के कोनो प्रकारक असुविधा के सामना नहीं करो पड़न। ओ सबटा संबंधित अधिकारी सबके सबटा आवश्यक तैयारी पूरा करवाक निर्देश दलन। जिलाधिकारी वाहन पार्किंग के समुचित व्यवस्था, बैरिकेडिंग, भीड़ नियंत्रण, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, शौचालय, नियंत्रण कक्ष संगहि श्रद्धालु सबका सुगम और सुरक्षित करवाक निर्देश सेहो दलन। ओ कहलन जे सबटा विभाग आपसी समन्वय के संग काज करत और मेला के सफल आयोजन के सुनिश्चित करत। वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी सुरक्षा व्यवस्था के समीक्षा करत संबंधित पुलिस पदाधिकारी का आवश्यक निर्देश दलन।

0: ओ कहलनि जे मेला के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारी के प्रतिनियुक्ति कयल जाय, संवेदनशील स्थल पर विशेष निगरानी सेहो राखल जाय, संगहि भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन के लेल प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करबाक बात कहलनि, जाहि से कि श्रद्धालु सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा अर्चना कऽ सकैत। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त 2026 तक। विश्व स्तनपान सप्ताह प्रत्येक वर्ष अगस्त महीना के पहले सप्ताह के दौरान विश्व भर में मनाओल जाता है। एकर उद्देश्य स्तनपान के प्रति अभ जागरूकता बढ़ेनाय, संगहि स्तनपान के संरक्षण प्रोत्साहन और समर्थन के प्रयास का गति प्रदान केनाय है। विशेष रूप से जन्म के बाद पहले 6 महीना तक माता सब का सहयोग प्रदान केनाय अत्यंत आवश्यक है, जाहि से कि 6 महीना तक आयु के शिशु में केवल स्तनपान का दर में वृद्धि हो, संगहि शिशु और छोट बच्चा का पोषण संबंधी परिणामी में सुधार सुनिश्चित कयल जा सके। आपदा से मृत 3 व्यक्ति का आश्रित कर 4-4 लाख का अनुग्रह अनुदान चेक प्रदान कयल गेल। दरभंगा जिला का हायाघाट अंचल अंतर्गत आपदा में मृत 3 व्यक्ति का आश्रित का कल राज्य सरकार का आपदा राहत योजना के तहत 4-4 लाख का अनुग्रह अनुदान राशि के चेक पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री सह हायाघाट विधायक रामचंद्र प्रसाद और अंचल अधिकारी हायाघाट द्वारा प्रदान कयल गेल। ओ कहलनि जे आपदा से प्रभावित परिवार का त्वरित राहत उपलब्ध करौनाय सरकार का प्राथमिकता अछि। मंत्री के अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग के योजना सभक भेल समीक्षा बैसार। पंचायत सरकार भवन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप, सोलर स्ट्रीट लाइट और जिला परिषद योजना सभक भेल विस्तृत समीक्षा। समाहरणालय स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में मंत्री पंचायती राज विभाग बिहार सरकार दीपक प्रकाश के अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत संचालित योजना सभक जिला स्तरीय समीक्षा बैसार आयोजित कयल गेल। बैसार में पंचायत सरकार भवन निर्माण, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, जिला परिषद का योजना सब और मोक्षधाम निर्माण सहित विभिन्न योजना सभक विस्तृत समीक्षा कयल गेल। बैसार के प्रारंभ में जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार, मंत्री दीपक प्रकाश और विधायक दरभंगा ग्रामीण राजेश कुमार मंडल के पाग चादर आ पौध भेंट कर स्वागत कयलनि। समीक्षा के दौरान बताओल गेल जे दरभंगा जिला के कुल 308 पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कयल जेनाय अछि। महाविद्यालय कर्मचारी के गत 27 जुलाई से चल रहल हड़ताल वार्ताक उपरांत समाप्त भेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के अंगीभूत महाविद्यालय के कर्मचारी के गत 27 जुलाई से चल रहल हड़ताल विश्वविद्यालय प्रशासन से भेल वार्ता के आलोक में समाप्त हो गेल। वार्ता के दौरान कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, कुल सचिव डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा सहित विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी और कर्मचारी के प्रतिनिधि उपस्थित छलाह। कर्मचारी सभा के प्रोन्नति और आन मांग विश्वविद्यालय द्वारा मायने लेल गेल अछि। कुलाधिपति कार्यालय के पत्र के आलोक में विहित प्रक्रिया अपना कर कर्मचारी सब के प्रोन्नति विश्वविद्यालय द्वारा 15 सितंबर धरि पूरा क लेल जायत। श्रोतागण, एखन अपना सब सुन रहल छी आकाशवाणी दरभंगा से हाल चाल।
1: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
4: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का, 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: हाल चालक संघ होम छी आशुतोष कुमार झा प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता विश्वविद्यालय मैथिली विभाग के अध्यक्ष के रूप में संभालन अपन कार्यभार। कुल सचिव डॉक्टर दिव्यारानी हंसदा के समक्ष दलन अपन योगदान। विश्वविद्यालय मैथिली विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता कल

0: कुल सचिव कार्यालय में कुल सचिव डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा के समक्ष अपन कार्यभार ग्रहण कर लेलन। एहि अवसर पर कुल सचिव डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा संबोधित करैत कहलन जे प्रोफेसर मेहता एकटा अनुभवी शिक्षक और पदाधिकारी रहल छथि। हिनकर मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय मैथिली विभाग अकादमिक स्तर पर सुदृढ़ हैत और शोध के क्षेत्र में एकटा अलग पहचान कायम हैत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभाग और डॉक्टर प्रभादास फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता और द्वेषपूर्ण भाषण विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता के सफल आयोजन कयल गेल। कार्यक्रम का अध्यक्षता विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर पुनीता झा कयलनि। मुख्य अतिथि प्रोफेसर अशोक कुमार बच्चन अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के संग जिम्मेदारी और संवैधानिक मर्यादा का महत्व पर जोर दिलनि। प्रोफेसर पुनीता झा विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक संवाद और वैचारिक विमर्श का सशक्त मंच के रूप में रेखांकित कयलनि। कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर आर्यिका पाल विषय के समसामयिक प्रासंगिकता पर प्रकाश दिलनि। प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभाग, गणित विभाग, मनोविज्ञान विभाग, अर्थशास्त्र विभाग, राजनीति विभाग, वीमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MRM कॉलेज, CM कॉलेज, MLSM कॉलेज सहित विभिन्न महाविद्यालय के लगभग 40 छात्र छात्रा उत्साहपूर्वक भाग लेलनि। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के जयंती पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित। रसायन विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ैत भूमिका पर भेल सार्थक चर्चा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का विश्वविद्यालय रसायन विज्ञान विभाग द्वारा राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय रसायन विज्ञान के जनक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जयंती पैघ उत्साह और गरिमापूर्ण वातावरण में मनाओल गेल। एहि अवसर पर AI एंड केमिस्ट्री पार्टनरशिपिंग आवर फ्यूचर विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित कयल गेल, जाहि में छात्र छात्रा सब और शोधार्थी उत्साहपूर्वक भाग लैत रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्तमान और भावी भूमिका पर अपन विचार प्रस्तुत कयलनि। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग और प्रेमचंद जयंती समारोह समिति दरभंगा का संयुक्त तत्वाधान में प्रेमचंद जयंती का आयोजन कयल गेल, जकर अध्यक्षता प्रोफेसर उमेश कुमार कयलनि। एहि अवसर पर प्रेमचंद कथा साहित्य में ग्रामीण संस्कृति विषय पर परिचर्चा आयोजित कयल गेल। संगहि छात्र छात्रा के बीच प्रेमचंद के जीवन साहित्य पर आधारित क्विज प्रतियोगिता के सेहो आयोजन कयल गेल। कार्यक्रम का आरंभ नंद किशोर के सरस्वती वंदना से भेल। मंच संचालन मंजली खड़े कयलनि। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में आयोजित एहि अवसर पर अपन अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर कुमार कहलनि जे प्रेमचंद ग्रामीण संस्कृति के संवाहक रहथि। हुनकर कथा साहित्य में ग्रामीण संस्कृति से प्रभावित पात्र के जीवन शैली देखल जा सकैत अछि। 1 जुलाई 2026 के नवीन प्रवेश और पुनः पंजीकरण के अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ाओल गेल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू जुलाई 2026 प्रवेश सत्र के लिए नवीन प्रवेश और पुनः पंजीकरण यानी री रजिस्ट्रेशन का अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त धरि कऽ देलक अछि। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा का क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शालिनी बतौलनि जे विश्वविद्यालय के एहि निर्णय से ओहि अभ्यर्थी और शिक्षार्थी का अतिरिक्त अवसर प्राप्त हैत जे कोनो कारणवश निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन नहि कऽ सकल छलथि। श्रोतागण, अपना सब आकाशवाणी दरभंगा से सुनि रहल छलौं हालचाल।
1: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: और हालचाल के बाद अब प्रस्तुत है मौसम की एक संक्षिप्त जानकारी। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 से 5 अगस्त 2025 तक का जो मौसम पूर्वानुमान है उसमें उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना है, जबकि 2 से 4 अगस्त के बीच कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना है। वैशाली, मधुबनी, गोपालगंज, दरभंगा, सिवान, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है। शेष स्थानों पर पूर्वानुमानित अवधि में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वर्षा के समय आसमान में मध्यम से घने बादल छाए रहने की संभावना है एवं

0: आसमान में कहीं कहीं पर हल्के बादल भी देखे जा सकते हैं। इस पूर्वानुमानित अवधि में अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 से 27 सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है और सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 80% से दोपहर के समय 40 से 45% रहने की संभावना है। मुख्यतः पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी दिशा से 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। तो ये थी मौसम की
1: मौसम का जानकारी,
0: स्थानीय मौसम की एक जानकारी।
1: बहुत जरूरी है उनका समय में, क्योंकि अपना सब देख रहा है, अपना सब अक्सर चर्चा करे जे ग्लोबल वार्मिंग का ना, तो अपना सब का सचेत भ जेबाक आवश्यकता है।
0: और खासकर आपने इस बात की चर्चा की, तो अभी जो वर्तमान में हम देख रहे हैं बारिश से बहुत सारे चीज प्रभावित होने लगे। और अगर हम बात करें समुद्र की, तो समुद्र से जो जुड़ी हमारी विरासत है बेहद समृद्ध रही है।
1: बहुत।
0: और आरंभ काल से इसका मुख्य केंद्र गुजरात, जो बंदरगाह था वो रहा है। महाबलीपुरम तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित जो मंदिर है, और जिसे दक्षिण भारत के चोल राजाओं के द्वारा बनाया गया था, ये बहुत बड़ा नौसैन्य इतिहास का केंद्र रहा है।
1: ठीक है, गौलों है जो भारत का समुद्र से जुड़ल विरासत बहुत बेसी प्राचीन, समृद्ध और विश्वव्यापी रहा है। जना कि अपना सब का प्राचीन समुद्री व्यापार जो हुई छला, वो मने भारत का व्यापार हजारों वर्ष अरब, मिस्र, रोमन साम्राज्य, दक्षिणी पूर्व एशिया और पूर्वी अफ्रीका तक पसरल छला।
0: ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी और जो इराक की सभ्यता थी, उसके साथ हड़प्पा की सभ्यता में इस बंदरगाह के बीच का जो सेतु रहा है, और इस बंदरगाह ने बहुत बड़े सेतु का काम किया इस विरासत को जोड़ने में।
1: बहुत नीक अहाँ जो कहलहुँ हाँ। बंदरगाह लूथल विश्व का सबसे पुरान ज्ञात बंदरगाह में गानल जाता है। एकर अलावा मोजीरेस, कावेरी पट्टनम, सोपारा और ताम्र लिप्ति एहन बंदरगाह सब सेहो प्रसिद्ध छल। अपना सबके समुद्री संस्कृति के गप करी, तो भारतीय नाविक और व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति, भाषा, धर्म और कला का व्यापक प्रसार कलन, जना कि अपना सब देखते जे इंडोनेशिया, कम्बोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, ऐसा में कर प्रमाण सेहो भेटित है।
0: और आशुतोष जी, जहाँ तक देखा जाए तो ये जो बंदरगाह रहा है लोथल, इसने न केवल चोल राजवंश के काल में बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में भी ये नौसेना का प्रमुख केंद्र रहा।
1: बहुत नीक अहाँ मुन पड़ेल, छत्रपति शिवाजी महाराज एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण को भारत का समुद्री सुरक्षा का नव दिशा देने छलत, और संगे ही समुद्री जैव विविधता जे है, यानी कि भारत के लगभग 7500 किलोमीटर जे नमहर तटरेखा है, बहुतो रास द्वीप, मैंग्रोव वन, प्रवाल भित्ति और समृद्ध समुद्री जीव जंतु देश का प्राकृतिक धरोहर है।
0: और हम सभी जानते हैं कि जो तमिलनाडु का ये महाबलीपुरम मंदिर रहा है, ये पल्लव काल से लेकर चोल काल में भी वास्तुकला प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण रहा।
1: ठीक है कहलो हाँ, बहुत सुंदर। आजुक समय में भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पैघ हिस्सा जो है समुद्री मार्ग से होता है।
0: हाँ, और यहाँ से नाविक दूर दराज के देशों पर जाया करते थे, और समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है तमिलनाडु।
1: ठीक है कहलूँ हाँ, और भारत का समुद्री विरासत केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहल, बल्कि वो संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान, नौवहन, सुरक्षा और वैश्विक संपर्क से हो नव ऊंचाई दिलक। यह विरासत भारत का प्राचीन काल से एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करते हैं।
0: और देखिए आशुतोष जी, आज रविवार है, बातें बहुत सारी हैं, परंतु आज हमारे श्रोता घर पर होंगे
1: निश्चित,
0: और अभी फिलहाल इंतजार कर रहे होंगे कि हम कब गीत संगीत का आनंद उन्हें।
1: हाँ, गप शप के बीच में अगर गीत नाद हो जाए तो आनंद बढ़ जाए।
0: हम गीत संगीत का आनंद देते हैं अपने श्रोताओं को।

0: सावन का महीना आया है, बहुत सुंदर और ठीक है। अपना सब देख रहा है सावन का महीना आब गेल और बरखा के इंतजार,
1: बारिश नहीं हो रही थी तो अब बारिश भी
0: निश्चित निश्चित
1: होने लगी है और अपेक्षा है कि बारिश हो और जिससे सभी पशु पक्षी वनस्पति और हमारे किसान भाइयों को बहुत फायदा हो
0: और मुन हुनकर हर खेत भ जाए। और संग ही आब समय भ गेल जे गत सप्ताह के
1: प्रमुख गतिविधियों को हम शामिल करें
0: तो सुनल जाए।
1: प्रस्तुत है गत सप्ताह की प्रमुख गतिविधियां। गत सप्ताह एंटी पेपर लीक मामले पर सभा एवं लोकसभा में 8 घंटे की लंबी चर्चा के पश्चात 29 जुलाई यानी गत बुधवार को ये बिल पास हुआ और इसके अनुसार सार्वजनिक परीक्षा पेपर लीक निषेध कानून पारित हुआ दोनों सदनों के द्वारा। नव संशोधन के अनुसार पेपर लीक मामले में पाए जाने वाले दोषियों को कम से कम 10 साल तक की सजा होगी, जिससे कम से कम इस तरीके की पेपर लीक के मामले पर सुनवाई की जा सके और इसको कम से कम किया जा सके। गत शनिवार को छात्रों के भारी आंदोलन के दबाव में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के साथ ही इस कानून को त्वरित कार्रवाई के लिए नंदन नीले क्रेणी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पश्चात प्रहलाद जोशी बने शिक्षा मंत्री। गत सप्ताह मनाया गया कारगिल विजय दिवस। सरकार से बातचीत के पश्चात महाराष्ट्र बिहार और असम में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर मामले वापस लेने की प्रेस रिलीज दी गई। पीओके में 5 जून से शुरू हुए प्रदर्शनों और सैन्य कार्रवाई 54 दिन तक के प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ताजा हिंसा और तनाव अभी तक बना हुआ है, जो इस क्षेत्र में चिंता का एक बड़ा कारण है। 23 अगस्त से शुरू होगी दलीप ट्रॉफी की शुरुआत। इस ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन की टीम से 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को भी जगह मिली। टीम की कमान ईशान को सौंपी गई और उप कप्तान बनेंगे बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय खिलाड़ियों ने गुरुवार को ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों की

0: पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में अपनी जगह बना ली। क्वालिफिकेशन राउंड में शीर्ष 12 में रहकर नीरज के साथ रोहित यादव और यशवीर सिंह भी पदक दौर में पहुंच गए। फाइनल मुकाबला भारतीय समय अनुसार 11 बजे रात से शुरू होगा रविवार। सावन मास 2026 आरंभ हुआ 30 जुलाई से और इसके साथ ही कांवड़ियों की भीड़ आरंभ हुई जो अगले महीने की 28 अगस्त तक चलेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स 23 जुलाई से आरंभ हुआ और 2 अगस्त तक ये लगातार रहेगा यानी आज तक। इस खेल में भारत ने इस बार 8 सामान्य खेलों में जैसे एथलेटिक्स, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, लॉन बाउल्स, मुक्केबाजी, जूडो, तैराकी, ट्रैक, साइकिलिंग और वेट लिफ्टिंग शामिल किए। अब तक के प्राप्त शीर्ष पदक में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है जबकि भारत ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 34 से अधिक पदक प्राप्त किया गत शनिवार तक, जिसमें शामिल रहा स्वर्ण 13, रजत 17 और कांस्य 9। इसके साथ ही गत सप्ताह की प्रमुख गतिविधियां अब यही समाप्त हुई।
1: एक कार्यक्रम संबंधी सूचना है, श्रोतागण स्तनपान नवजात शिशु के लिए जरूरी है। स्तनपान करोना माता सभक लेल सेहो फायदेमंद है। स्तनपान के फायदे यह है, आकाशवाणी दरभंगा का फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी का अगला अंकक विखय विशेषज्ञ हेता डॉक्टर जमुरत परवीन। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़वाक लेल फोन नंबर है 0627222481। एक और फोन नंबर है 9430029353। समय मुन राखी रवि दिन 2 अगस्त दिन के 11 बजे।
0: बेहद बेहतर सूचना आपने दी और आशुतोष जी, हम इस बदलती दुनिया में लगातार संवाद कौशल पर महत्व दे रहे हैं। हालांकि हर युग में विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का एक जो माध्यम है वह मजबूती प्रदान करता है आपसी संबंध को, गलत फहमियों को दूर करता है और व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने की बुनियादी क्षमता का ये आधार रहा है,
1: ठीक है,
0: हमारा संवाद कौशल।
1: ठीक है कहलो। हाँ संगीता जी, आजुक युग जे अछि तेजी से बदलैत तकनीक, वैश्वीकरण और डिजिटल संसारक जे ई समय अछि, एहन समय में संवाद कौशल केवल एकटा गुण नहि बल्कि सफलता का एकटा अनिवार्य आवश्यकता बनि गेल। हाँ ठीक है, जे नीक संवाद आत्मविश्वास बढ़बैत अछि, गलत फहमी जे अछि ओकरो कम करैत अछि और काज स्थल शिक्षा संगहि सामाजिक जीवन में अपना सबके सफलता सेहो दियाबैत अछि।
0: आशुतोष जी, हम चाहे जितनी भी बातें करें परंतु जब हम विनम्र बातचीत करते हैं, चाहे वो अपने मित्रों के साथ करें या अपने बूढ़े बुजुर्गों के साथ करें अथवा एक बहुत छोटे से बच्चे से भी करें, तो वो जो हमारी विनम्र बातचीत है वो हमारे व्यक्तित्व को एक बहुत बड़ी मजबूती प्रदान करता है और विश्वास दिलाता है लोगों के बीच कि हम बातचीत करने में सक्षम हैं।
1: आजुक समय में संगीता जी अपना सब देखे छी जे नौकरी, व्यवसाय, नेतृत्व और टीम वर्क में वह व्यक्ति आगू बढ़े छथि जे अपन बात स्पष्ट, विनम्र और प्रभावी ढंग से राखे छथि।
0: और हम सभी जानते हैं कि प्रायः अगर बातचीत बेहतर नहीं होती है तो बहुत सारी गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं और लगभग हर मनमुटाव का कारण हमारी बातचीत का जो आधार है वह अगर कुशल नहीं हुआ, यानी हमारी संवादगी अगर कुशल नहीं है तो निश्चित रूप से ये मनमुटाव पैदा करता है, भ्रम की स्थिति पैदा करता है। तो हर भ्रम की स्थिति को टालने के लिए, मन मुटाव की स्थिति को हटाने के लिए और स्पष्ट बातचीत के लिए हम संवाद को महत्वपूर्ण मानते हैं।
1: और संगे संग इहो कहब जे अपना सब डिजिटल माध्यम पर जे गप करै छी ओहियो पर श्रेष्ठ, सटीक और जिम्मेदार संवाद का आवश्यकता पहले सब बेसी बढ़ गेलै हँ। नहि अखुनका बदलैत दुनिया का

0: चुनौती जे अछि ओकर सामना करबा और नव अवसर के लाभ उठेबाक लेल संवाद कौशल के विकास प्रत्येक व्यक्ति के लेल बहुत बेसी आवश्यक अछि। ई नहि केवल व्यक्तिगत विकास का आधार है बल्कि समाज और राष्ट्रक प्रगति में सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करित अछि।
1: बहुत सारी बातें आपने कह दी और आपकी हर बात को अगर गौर करें तो हम देखते हैं कि आज जितने सारे हमारे साइट्स हैं यानी जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है, तो अगर वहां पर अच्छी जानकारी नहीं है या विश्वस्त जानकारी नहीं है तो हमारा जो संवाद है वो बहुत स्पष्ट नहीं हो पाता
0: नहीं
1: है और वहाँ नहीं देनी चाहिए।
0: ठीक है कहलो हाँ, वो में सम्मिलित नहीं है बात चाहिए, जानकारी जकरा बारे में आ कर नहीं आए
1: क्योंकि वो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करता है, मनमुटाव की स्थिति पैदा करता है। तो हम उन्हीं संवादगी पर निर्भर रहें जो बिल्कुल सही हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और जिससे हमारी बात दूसरों तक अच्छी तरीके से पहुंचती है। और आपने टीम वर्क की बात की, निश्चित रूप से आज के समय में हर ऑफिस में प्रायः टीम मैनेजर उसी को बनाया जाता है जिसकी संवाद की बहुत स्पष्ट हो, सरल हो और जो सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखता हो।
0: प्रभावी संवाद जे व्यक्ति के छन अपन विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करवा, दोसर का बुझबो और बुझेवा संगे बेहतर संबंध स्थापित करवा में सेहो सहायक।
1: यानी आपने एक बात कही नेतृत्व क्षमता की कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी दफ्तर में साथियों के साथ सहयोगपूर्ण वातावरण के साथ तालमेल बिठाता है, संवादगी कायम करता है तो हम उसकी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और इसी को हम कहते हैं नेतृत्व
0: क्षमता,
1: जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमारी जो संवादगी है वो हमारे विवाद को टाल देता है। तो आधुनिक जीवन में जब हम इतने व्यस्त हैं, हमारे पास अनेकानेक समस्याएं हैं, नाना प्रकार के क्षेत्र हैं, तो सही समय पर सही चीज को पहुंचाने की जरूरत है और इसके लिए संवादगी स्पष्ट होना चाहिए ताकि घर परिवार समाज कार्य क्षेत्र में हम बहुत कुशलता के साथ अब आगे बढ़े
0: आगू बढ़ सके। बड़ा नहीं कहा कहलो जो सौ समय का प्रस्तुतिकरण है तो बहुत रास गपशप भ गए हैं, आप की विचार है?
1: एक गाने की प्रस्तुति अभी हमारे श्रोता बहुत इंतजार कर रहे होंगे, तो पहले हम गाना सुनवाए
0: सुनल जाए।

0: तो सावन का महीना चल रहा है और इस महीने का जो व्याख्यान है वो बहुत खास रहा
1: बहुत
0: है हर युग में। और अभी जो कांवरिये की भीड़ है वो लगातार कल से भीड़ बहुत बढ़ने वाली है।
1: हर एक स्थानीय मंदिरों पर अहां देखबे जे लगातार भीड़ बढ़त जा रहा है, मुदा जे स्थानीय प्रशासन छथि ओहो एकरा सुचारू ढंग से चलेबा लेल जे छै पूरा व्यवस्था केने छथिन।
0: तो हमेशा सतर्क रहें
1: निश्चित,
0: और भीड़ से थोड़ी बचाव जरूर करें
1: निश्चित, अपने बच्चा का और बुजुर्ग का।
0: हाँ।
1: खासकर अगर लौक जाए छियन
0: तो
1: सतर्कता
0: तो जरूर रखें,
1: रखवे के चाहिए।
0: तो अपने और अपनों का ख्याल रखें और हमें दे इजाजत कार्यक्रम से।
1: नमस्कार मिथिला।

0: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतै
2: आ मनुख लेल त बुझो अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खायब की
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: घर घर के रवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के रवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी। एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: अनन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए
2: है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी।

0: और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर। मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
1: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकथॉन

0: संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
1: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने

0: नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल। रिकॉर्ड शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, कॉकरोच जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा, किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरल में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today. Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Keralam. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across 6 districts in Gujarat today. US President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to 4th position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will launch the nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. More from our correspondent.
4: Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan. My Bharat volunteers, My Bharat National Service Scheme volunteers, youth clubs, schools, colleges, universities, NGOs, youth wings of industry associations, and more than 125 spiritual organizations will also join the program virtually. Under the campaign, weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. The activities will include

0: Silver. The athletics contingent added three more medals. In the men's triple jump, Praveen Chitravel won silver and Selva Prabhu Tirumaran took bronze, while long distance runner Gulveer Singh earned his second medal of the games by clinching bronze in the men's 5000 meter final. Judoka Unnati Sharma also added to the glory by bagging bronze medal in the women's 63 kg event. Rupesh Rathore for Akashwani News.
1: Ahmedabad will officially receive the Commonwealth Games flag and the host button during the closing ceremony at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have congratulated all the athletes for their outstanding performance in the Commonwealth Games. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
2: Thank you, Shagun. Modi credits youth with driving India's all-round progress, headlines Hindustan Times. The Pioneer quotes the Prime Minister saying, "Youth must power India's rise," also called on to support nation building to service, education and discipline. The Times of India reports, "Monsoon hope as World Meteorological Organization sees an El Nino counter," adding the risk of overall monsoon rainfall being below normal continues to loom over India due to a strengthening El Nino. Manhunt in Valley as terror attack claims too. TRP link being probed leads the Indian Express. Railway line through Key Tiger Corridor gets in-principle approval with a rider informs the Indian Express. And finally, the Financial Express writes, Indian holidays taking the trail less travelled, trekking. Hiking fast turning into mainstream travel, what was once a niche pursuit for seasoned mountaineers, is fast becoming a mainstream travel segment. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today. Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Kerala. Weather department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across six districts in Gujarat today. US President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to fourth position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शमीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए मुल्क गिर नशा मुक्त युवा मुहिम का आगाज करेंगे। मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 इम्तिहान की तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने उम्मीदवारों से जोर देकर कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। तेलंगाना पुलिस ने बच्चा मजदूरी और ट्रैफिकिंग के खात्मे की गरज से शुरू की गई एक महीने तक जारी मुहिम के बाद 6,000 से ज़्यादा बच्चों को बचा लिया है। गुजरात, उड़ीसा और केरलम में सैलाब की सूरत हाल अब भी तश्वीशनाक है। महकमे मौसमियात ने आज गुजरात के 6 ज़िलों में तेज़ और इंतहाई तेज़ बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शिद्दत इख्तियार करने की धमकी दी है। ईरान ने अहम अमरीकी और इसराइली तवानाई के बुनियादी ढांचों पर जवाबी हमले से खबरदार किया है। और ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारत चौथे मकाम पर आ गया है। एक ही दिन में मुक्केबाजों ने रिकॉर्ड सोने के 7 तमगे जीते हैं, जिससे तमगों की तादाद बढ़कर 39 हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का आगाज करेंगे। इसके साथ ही मनुष्यात के इस्तेमाल के खिलाफ 100 हफ्तों पर मुश्तमिल ملک گیر جن بھاگیداری مہم شروع ہو جائے گی۔ اس پروگرام میں ملک بھر کے 10,000 سے زیادہ مقامات سے نوجوان حصہ لیں گے۔ اس کے علاوہ مائی بھارت کے رضاکار، نیشنل سروس اسکیم کے رضاکار، نوجوانوں کے کلب، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، غیر سرکاری تنظیمیں، صنعتی انجمنوں کے نوجوانوں کے شعبے اور 125 سے زیادہ شراکت دار روحانی تنظیمیں بھی ورچوئل طور پر اس پروگرام میں شامل ہوں گی۔

0: मुक्केबाजों में प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघल ने सोने के तमगे जीते। जादूमणि सिंह, लवलीना बोरगोहेन और नरेंद्र बेरवाल ने अपने मुतालिका जुमरों में चांदी के तमगे हासिल किए। भारत ने पैरा एथलेटिक्स में तारीख साज कारनामा अंजाम दिया। मर्दों के शॉटपुट F57 मुकाबले में सुमन राणा ने सोने का तमगा जीता, जबकि शुभम जोयल ने चांदी का तमगा हासिल किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन में ख्वातीन के सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में कल सुबह भारत की तन्वी शर्मा का मुकाबला वियतनाम की आलमी नंबर 21 खिलाड़ी थुई लिन से होगा। तन्वी सेमीफाइनल में चीनी ताइपी की खिलाड़ी हुआंग यू हुस्न को 21-17, 21-11 से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची हैं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया शमीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने आंध्र प्रदेश में वजीर आजम के हाथों मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के इफ्तिताह की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब लिखता है, वजीर आजम मोदी ने आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, वजीर आजम आज नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का आगाज करेंगे। पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल को सदर जमहूरिया के जरिए मंजूरी दिए जाने की खबर को अखबारात ने नुमाया तौर पर शाया किया है। इसके अलावा अखबारात ने कमर्शल सिलेंडर की कीमत में कमी की खबर को भी अहमियत दी है। अखबार इंकलाब की एक और अहम सुर्खी है, मशरक़ वस्ती के हालात संगीन, अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी इनखला के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए आज मूसलाधार बारिश की महकमे मौसमियात की वार्निंग की खबर भी बेशतर अखबारों में नुमाया है।
0: और अब खबरनामे की खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए मुल्क गिर नशा मुक्त युवा मुहिम का आगाज करेंगे। मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने नीट PG 2026 इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीदवारों से जोर देकर कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। तेलंगाना पुलिस ने बच्चा मजदूरी और ट्रैफिकिंग के खात्मे की गरज से शुरू की गई एक महीने तक जारी मुहिम के बाद 6,000 से ज्यादा बच्चों को बचा लिया है। गुजरात, उड़ीसा और केरलम में सैलाब की सूरत हाल अब भी तश्वीशनाक है। महकमा मौसमियात ने आज गुजरात के 6 जिलों में तेज और इंतहाई तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशन धारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अपनी पेंशन बिना रुकावट के पाने हेतु यथाशीघ्र जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं। पंचायत या प्रखंड स्तर पर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या या लाभार्थी संख्या लेकर जाएं एवं निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अतिवृद्ध एवं दिव्यांग पेंशन धारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
1: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जन

0: में जारी।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
2: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। राज्य के सभी जिलों में भी होगा आयोजन। केंद्र सरकार ने कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में बिहार को 10,845 करोड़ रुपए जारी किए। पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का मास्टर प्लान जारी। टाउनशिप क्षेत्र में भूमि की खरीद बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक भी हटाई गई। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, मधुबनी और सुपौल जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा जुड़ेंगे।
1: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इधर प्रदेश के सभी जिलों में अभियान के तहत युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया जाएगा और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अनुसार इस कार्यक्रम में संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी राज्यवार विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 19,208 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद बिहार को 10,845 करोड़ और मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अग्रिम भुगतान का उद्देश्य राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। नगर विकास और आवास विभाग ने पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का मास्टर प्लान जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने

0: बिहार में कुल 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई है। विकास योजना 2047 के प्रारूप पर आम लोगों से 60 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार के बाद योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही टाउनशिप क्षेत्र में भूमि की खरीद बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटा ली गई है। अब इस क्षेत्र में जमीन का क्रय विक्रय और हस्तांतरण किया जा सकेगा। पटना जिले के 9 नगर निकायों और 9 प्रखंडों के 273 गांव टाउनशिप में शामिल हैं। प्रदेश के सभी पंचायतों में पानी की गुणवत्ता जांच के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने एक फिटनेट किट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। विभाग की ओर से हर पंचायत में एक किट उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 2000 से अधिक पंचायतों को फिटनेट किट उपलब्ध कराया जा चुका है। इस किट से पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, कठोरता, गंदापन और मैलापन की जांच की जा सकेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार संबंधित क्षेत्र में पेयजल की गुणवत्ता में सुधार करने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करेगी। विभाग के अनुसार प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक परिवारों तक शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश के नगर निकायों में सफाई कर्मियों और चालकों की हड़ताल के कारण साफ सफाई प्रभावित है। हड़ताल के चौथे दिन आज भी विभिन्न स्थानों पर कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी है। राजधानी पटना में नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल से कूड़ा उठाव और उसका निस्तारण का काम ठप पड़ा है। गली मोहल्लों में कचरे का अंबार लग गया है, इससे संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। हालांकि साफ सफाई की वैकल्पिक व्यवस्था का दावा किया जा रहा है। पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा ने हड़ताली कर्मियों से काम पर लौटने की अपील की है।
1: बेसिकली जो अभी का जो स्ट्राइक है उसमें जो 3 मांगे हैं, इसके आलोक में विभाग के जो सचिव सर हैं उनके साथ जो यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे बिहार भर के उनके साथ भी विभाग स्तर पे भी बैठक की गई है। विभाग के स्तर पे भी जो उच्च पदाधिकारी हैं वो लोग भी उसमें मौजूद हैं। उसके बाद माननीय मंत्री जी के द्वारा भी सभी जो यूनियन को जो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे बिहार को उन लोगों के साथ ही उनकी समस्याओं को सुना गया, क्योंकि ये नीतिगत निर्णय है। किसी भी यूएलबी के स्तर से ये नहीं होना है, ये बेसिकली एक नीतिगत निर्णय लेने की इसमें बात आती।
0: मुंगेर से हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि कर्मियों ने मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का संकल्प दोहराया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल होगी। पटना के एएन कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। मतगणना केंद्र और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी राजनीतिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। वहीं इस दौरान बोरिंग रोड चौराहे से एएन कॉलेज की ओर वाहनों के परिचालन पर भी रोक रहेगी। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जनसुराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। आज सुबह राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज अररिया, किशनगंज, मधुबनी और सुपौल जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना है।
1: राज्य के अररिया, किशनगंज, मधुबनी एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों दरभंगा, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी एवं वैशाली जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर राज्य में मॉनसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से 43% कम बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट बारिश हुई। इस अवधि में किशनगंज जिले के तैयबपुर में सबसे अधिक 74.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नेपाल के सुनसरी समेत तराई क्षेत्र के विभिन्न भागों में तनाव के हालात के मद्देनजर बिहार के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मधुबनी जिला पुलिस ने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि जयनगर, लौकहा, हल्लाखी, मधवापुर सहित जिले के सभी प्रमुख और वैकल्पिक सीमा मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीमा क्षेत्र में सघन वाहन जांच, गश्त और निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी ने सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना निकटतम थाना या डायल 112 पर तुरंत दें। राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने नाइजीरियाई मूल की एक विदेशी महिला को पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन से 3 किलो नशीले पदार्थ मेथाक्वालोन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 29 लाख रुपए बताई जाती है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। मुक्केबाजी में सबसे अधिक 10 पदक मिले हैं। बिहार के 2 खिलाड़ियों ने ग्लासगो में तिरंगे की शान बढ़ाई है। एक रिपोर्ट।
2: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में बिहार के खिलाड़ियों का देश के लिए पदक जीतने का सिलसिला जारी है। गयाजी के रहने वाले भारतीय सेना के सूबेदार सुमन राणा ने पैराशूट शॉट पुट इवेंट की F57 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। राणा ने बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड अपने नाम किया है। सुमन राणा साल 2006 में जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों द्वारा बिछाए गए लैंडमाइंस ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे में अपना दाहिना पैर गंवाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और सेना के सहयोग से खेल में कदम रखकर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले नालंदा के झंडू कुमार ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के लिए पहला पदक जीता। समाचार कक्ष से अमरनाथ प्रसाद।
0: मधुबनी की मानसी ने राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रांची में खेले गए सीबीएसई क्लस्टर 3 टेबल टेनिस टूर्नामेंट के अंडर 19 बालिका वर्ग में मानसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उप विजेता का खिताब जीता। दरभंगा में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पटना, वैशाली और भागलपुर की टीमों ने जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में संपन्न राष्ट्रीय मास्टर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पटना की सुधा कुमारी ने 63 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। सुधा ने बेंच प्रेस स्पर्धा में 117.5 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। रेलवे ने श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज से गया मधुपुर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन गया से मानपुर, तिलैया, नवादा, वारिसलीगंज, शेखपुरा, क्यूल, जमुई, झाझा और जैसीडी होते हुए मधुपुर जाएगी। अररिया जिले के बैरगाछी और आरएस थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मौके से एक टेम्पो और एक टोटो भी जब्त किया गया। मधुबनी जिले के नरहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चतरापट्टी में छापेमारी कर पुलिस ने आपराधिक घटना को अंजाम देने की

योजना बना रहे दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद किया गया है। सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सोनपुर श्रावणी मेला संचालन स्थल, पहलेजा घाट, हरिहरनाथ मंदिर, आमी मंदिर और आमी घाट का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने मेला स्थल समेत कांवड़िया पथ पर सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, आर्म्स एक्ट मामले में पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति को 7-7 वर्ष की सजा। दैनिक जागरण लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, घर खरीदारों के हितों को मिले सर्वोच्च प्राथमिकता। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, मॉडल स्कूलों में होगा शिक्षकों का ट्रांसफर। अखबार लिखता है, म्यूचुअल पोस्टिंग। प्रभात खबर ने कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, स्वर्णिम शनिवार, 8 गोल्ड से दम का भारत।

0: दैनिक जागरण लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, घर खरीदारों के हितों को मिले सर्वोच्च प्राथमिकता। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, मॉडल स्कूलों में होगा शिक्षकों का ट्रांसफर। अखबार लिखता है, म्यूचुअल पोस्टिंग। प्रभात खबर ने कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, स्वर्णिम शनिवार, 8 गोल्ड से दमका भारत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। राज्य के सभी जिलों में भी होगा आयोजन। केंद्र सरकार ने कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में बिहार को 10,845 करोड़ रूपये जारी किए। पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप का मास्टर प्लान जारी। टाउनशिप क्षेत्र में भूमि की खरीद बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक भी हटाई गई। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, मधुबनी और सुपौल जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।
1: स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आसमान में बिजली के चमकने गरजने कड़कने के समय यदि आप खुले में हो तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें। जहां हैं वहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी प्लास्टिक बोरा या सूखे पत्ते रख लें। ऊंचे पेड़ के नीचे न खड़े हों, बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें, समूह में न खड़े हों, रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर।

साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल हमालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच।
2: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।
3: उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

के तहत आप चंद गजलों से लुत्फ़ानंदोज होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं निदा फाजली के इस कलाम के साथ। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की।

हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। खूबसूरत कलाम आप सुन रहे थे निदा फासली का, लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जंगे आजादी के मजबूत सुतून मेजर जनरल शाहनवाज खान के बारे में। मेजर जनरल शाहनवाज खान एक मारूफ अस्करी रहनुमा और हिंदुस्तानी सियासतदान और आज़ादी हिंद फौज थे। दूसरी जंग अजीम के अख्ताम ने हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में ड्रामाई तब्दीली देखी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आज़ादी तक हिंदुस्तानी

0: है जो घर में है, एलोवेरा क्रीम, बर्न्स क्रीम, उस क्रीम को आप लगा
1: सर
0: दें।
1: कुछ चीज़ें आजकल जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें जो आ रही हैं वो ऐसा लगता है कि कुछ को वो मिसगाइड भी करते हैं कई चीज़ों के लिए, तो ये सही
0: ये सही,
1: तरीका
0: ये
1: इलाज
0: सही।
1: है जलने के मामले में। जब ये कई बार होता है कि जो गंभीर रूप से कुछ लोग जल जाते हैं, कुछ ज़्यादा जल जाते हैं, कहीं आग लग गई उसमें फंस गया कोई आदमी, तो वो दरख्त का जला हो तो उसको किस तरह से फर्स्ट एड दिया जा सकता है।
0: देखिए, अगर गंभीर रूप से जला हुआ तो नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल से
1: जी
0: वहां पर आप लेकर के जाइए, और
1: जी
0: गंभीर रूप से जले हुए को आप क्या कर, फर्स्ट एड आप नहीं दे पाइएगा।
1: नहीं, कई लोग
0: हाँ,
1: जैसे होता है कि कंबल से उसको ढक दें
0: नहीं,
1: ऐसे।
0: आग बुझाने के लिए कंबल से हम आग पे, आग का फैलाव ना हो, आग का फैलाव नहीं, अगर जले हुए हिस्से पे अगर आप कंबल डाल दीजिएगा, स्किन टच होगा तो वो,
1: वो
0: और तो
1: तो
0: स्किन में प्रॉब्लम होगा।
1: हाँ, चूंकि अक्सर ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है, कई बार कई लोगों का हमने देखा है कि कोई जला हुआ आदमी आया तो उसको पहले कंबल से ढक के तब कहीं ले जा रहे हैं
0: नहीं
1: हॉस्पिटल
0: नहीं
1: और कुछ ही।
0: कम्बल से ढकने का कंसेप्ट ये है कि अगर उसका जिस्म जला हुआ है, उसके उसके कपड़े में आग लग गई है, तब हम कम्बल से उसको ढक देंगे कि उसको आग बुझ
1: जी
0: जाए।
1: वहां तक
0: आग,
1: सही
0: हाँ,
1: है
0: आग बुझाने के लिए हम कम्बल यूज
1: लेकिन
0: कर रहे हैं।
1: जी
0: अगर वो जल गया है, जलने के लिए फर्स्ट एड के लिए हम कम्बल लगाए उस पर डाल रहे हैं, नहीं ये सही नहीं,
1: कई जगह ऐसे ऐसा
0: नहीं
1: भी
0: ये सही
1: करते हैं
0: नहीं।
1: लोग।
0: और ये देखिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर अगर अभी देखिए जो बर्न्स होता है, जल जाता है किसी भी जगह, आज मगर सेहत में हम फर्स्ट एड पे बात कर रहे हैं, तो ये भी आप देखिए कि जो जल रहा है, यानी जलता है दो तरीके से, अगर कोई घर जल गया है या कोई बाहर में कुछ जल रहा है, तो आप उसका धुआं को देखिए, वो धुआं किस तरीके का है। धुआं दो तरीके से होता है, एक काला उठता है और एक उजला उठता है। अगर काला धुआं उठ रहा है तब वहां पर आप बालू डाल दीजिए, तो जल्दी वो आग पे काबू कर लेगा, और उजला अगर धुआं उठ रहा है तो आप वहां पर पानी का फोर्स, सबसे पहले तो आप आग को बुझाइए, आग बुझ
1: सही
0: जाएगा
1: सही,
0: तभी तो आप
1: तभी
0: इंसान
1: फिर
0: का,
1: रेस्क्यू
0: इंसान
1: करेंगे आप
0: आप
1: उसको आप।
0: रिस्क्यू करेगा, इंसान को लाइएगा पहले, अब वहां पर ला करके के देखना है उसका जिस्म जला है वो किस तरह का जला। अगर हल्का फुल्का जला है तो आप फर्स्ट एड खुद कर लीजिए, अगर ज्यादा जला है तो इमरजेंसी हालात में आप जल्द से जल्द उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहां आप लेकर के जाइए।
1: ये सही तरीका है। और एक जहाँ आग लगती है, लोग आग में फंस जाते हैं, कई लोग दम घुटने से बेहोश हो जाते हैं, तो उनको किस तरह से आप बचाए।
0: ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, एक कि धुएं की वजह
1: जी
0: से दम
1: जी
0: घुट, तो उस इंसान को सबसे पहले आप, मैंने वहां से बाहर लाइए और खुली जगह पे लाइए,
1: अच्छा
0: ला करके उसको लेटाइए, लेटा दीजिए, और लेटाने के बाद आप उसका पल्स देखिए, उसका पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पल्स
1: सही
0: देखने के बाद अगर उसके बॉडी को हिलाइए, अगर उसका आप नाम जानते हो उसके नाम से उसको आवाज दीजिए कि वो उठ रहा है कि नहीं, फिर भी अगर नहीं उठ रहा है तो वहां पर हम CPR देंगे उसे।
1: अच्छा। अब तो ये हो गई जलने की बात। कई बार होता है कि एक्सीडेंट हो गया, बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, कहीं गिर गए ऊपर से, तो अक्सर लोग जख्मी हो जाते हैं, हड्डी टूट जाती है, उनकी कट्स लग जाते हैं, तो उसके लिए किस तरह का फर्स्ट एड दिया जाना चाहिए।
0: अगर एक्सीडेंट हो गया है, रोड पे चल रहे हैं, गाड़ी से गिर गए हैं, आप जा रहे हैं, आपने देखा वो बंदा गाड़ी से गिर गया है, तो गिरने के बाद सबसे पहले आप उसको उठाएं, उठा कर करके एक क्रॉट से हटाएं, वो कि जब एक्सीडेंट जब होता है तो वहां पर लोग आने हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए कम होते हैं, नज़ारा देखने के लिए ज़्यादा
1: ज्यादा
0: होते
1: सही
0: हैं,
1: बात है।
0: तो आप सबसे पहले उस इंसान को एक, यानी खुली जगह पे लेकर के आइए, और खुली जगह पर लेके आने के बाद उसका देखिए कि उसको चोट कहाँ पर लगा है,
1: पहले
0: चोट
1: पता
0: आखिर
1: करना।
0: लगा क्या है, उसको फ्रैक्चर हुआ है या क्रॉच आया है या हल्का फुल्का कुछ भी है। अगर यह क्रॉच आ गया है तो वहां पर तो पॉसिबल नहीं है कि आप रोड पे कुछ कर सकते हो, घर में अगर है तो चलिए घर में आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है, आप फर्स्ट एड बॉक्स से
1: कुछ
0: आप कुछ भी कर, हाँ कुछ भी
1: वगैरह लगा
0: वाइटमिंट वगैरह कुछ भी आप लगा दीजिए,
1: सकते
0: कर दीजिए, मगर वहां पर आपके पास कुछ है नहीं तो इमिडिएटली कोशिश कीजिए कि जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल्स है या नियरेस्ट डॉक्टर्स हैं वहां पर आप उसको लेकर के जाइए। हाँ, अगर इन केस फ्रैक्चर हो गया है तो फ्रैक्चर में क्या हो रहा था कि हड्डी टूटने की जगह क्या होता है कि सूजन आ जाता है, यानी स्विलिंग आ जाता
1: फूलना
0: है,
1: शुरू हो
0: फूलना
1: जाता
0: शुरू हो
1: है।
0: जाता है, मीन्स इस समझ में ये आ रहा है कि जिस बंदे को चोट लगा है उसको फ्रैक्चर हो गया है, क्योंकि उसका स्विलिंग बढ़ रहा है, तो स्विलिंग बढ़
1: अक्सर
0: रहा है, उस केस में क्या करना है कि आस पास
1: ले
0: की
1: लेते
0: दवा
1: हैं
0: की
1: तो
0: दुकान से कुछ अगर ऐसे क्रेप बैंडेज वगैरह अगर आपको मिल जाता है तो क्रेप बैंडेज वगैरह बांध कर करके, क्योंकि क्रेप बैंडेज बांधने से थोड़ा सा स्विलिंग कम रहता है, ज्यादा नहीं होता। मैं जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है आसपास
1: वहां
0: पास
1: तक
0: वहां तक उसको आप
1: पहुंचाने के
0: रेस्क्यू
1: लायक
0: करें,
1: आप बना
0: हाँ
1: सकते हैं
0: वहां तक उसको ले जाए। हाँ, ये देखें कि जहां पर उसका फ्रैक्चर हुआ, जहां पर स्विलिंग हुआ, वहां पर उसका बॉडी मूवमेंट ज्यादा ना हो।
1: अच्छा, उसको
0: हाँ, बॉडी
1: उठा
0: मूवमेंट,
1: के ले
0: हाँ
1: जाए या
0: ऐसे
1: उसको
0: उठा
1: सहारा
0: करके
1: देके
0: ले,
1: ले
0: सहारा
1: जाए।
0: से ले जाए कि उसका बॉडी, हो सकता है कि बॉडी मूवमेंट होगा, उसका जो

0: में वो और बढ़ सकता है, उसका फ्रैक्चर और बढ़ सकता है,
1: ये इस
0: तो
1: पे
0: वो,
1: ध्यान
0: हाँ
1: रखना
0: उस पर
1: पड़ेगा।
0: ध्यान देना है।
1: हड्डी टूटने के बारे में आपने ये सारी बातें बताई कि किस तरह से हम फर्स्ट एड दें,
0: हाँ
1: अक्सर दम घुटने पे या फिर हार्ट पेशेंट को कई बार वो फेंट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इनके लिए फर्स्ट एड का क्या तरीका है?
0: ने दम घुटने के बारे में बताया, और हार्ट का पेशेंट है या हार्ट का पेशेंट नहीं भी है, रास्ते में चल रहा है वो गिर गया, बेहोश की हालत में है, तो सबसे पहला काम उसको हम CPR देंगे। क्या होता है CPR? कहते हैं कार्डियो पल्मरी रिसुसिटेशन। ये एक तरह का फर्स्ट एड है। सबसे पहले हम उसका रिस्पॉन्स देखेंगे। अगर आप उसका नाम जान रहे हैं तो उसके नाम से आप उसको बुलाएं,
1: तेज आवाज में,
0: तेज आवाज में आप उसको कॉल करें। अगर फिर भी वो नहीं उठ रहा है तो इमिडिएटली आप उसका पल्स देखें। पल्स जो देख रहे हैं, पल्स लेफ्ट हैंड साइड का गर्दन या कलाई पे आप देखें, पल्स उसका चल रहा है कि नहीं। 10 सेकंड 15 सेकंड में कम से कम 10 से 12 बार पल्स होना चाहिए। अगर नहीं पल्स चल रहा है, पल्स कम हो तब लगेगा हार्ट अटैक आया है, तब मरीज को सीधा करके गर्दन सीधा करना है और सीधा लेटा देना है खुले जगह पर, और वहां पर भीड़ भाड़ नहीं हो, दोनों हवा आनी चाहिए, दोनों हथेलियों को उंगली को आपस में फंसाकर हाथ को सीधा रखना है, यानी जो दोनों हथेलियां है हमारा, इसको उंगली को आपस में फंसाकर हाथ को सीधा रखना है और हार्ट पर रखकर दबाव देना है, यानी हार्ट पर रखकर के आपको दबाव देना है, और अपने जो ये हमारा जिस्म है, जिस्म का पूरा वजन अपने कंधे पर देना है।
1: अच्छा।
0: और अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है और लंग्स से निचली हड्डी से 4 उंगली ऊपर
1: ऊपर। अच्छा।
0: हाँ, लंग्स जो हमारा हमारा जो लंग्स जो छाती जिसको बोलते हैं, छाती, हमारे छाती से निचली हड्डी से 4 उंगली ऊपर या 4थी उंगली जहां खत्म होती हो,
1: अच्छा,
0: दोनों चेश के बीच में प्रेस करना है, यानी दबाव डालना है, जल्दी जल्दी करना है, और इसको यानी 1 मिनट में 30 बार प्रेस करना है, और 1 मिनट में फास्ट करना है, 30 बार प्रेस करेंगे और 2 बार मुंह से फूकेंगे।
1: अच्छा, उसको
0: हाँ, जैसे उसको फास्ट फास्ट यानी हाथ से दबाव हम दे रहे हैं, इस तरह से दबाव कर रहे हैं, आवाज कर रहा है वो, यानी आवाज हो रहा है, और उसके बाद 30 टाइम्स अगर 30 बार हमने दिया तो 2 बार उसको मुंह से हम सांस देंगे, अपने मुंह से उसके मुंह में फूकें, इस तरीके से फूकेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक वो होश में ना आ जाए।
1: तो ये हुआ CPR, CPR का तरीका है।
0: हाँ जी,
1: जिसको हर आदमी को जानना चाहिए।
0: हाँ,
1: क्योंकि इसमें हम बहुत सारी जान बचा सकते हैं इसके।
0: जी जी।
1: और एक चीज ये भी है कि जैसे अक्सर बरसात के मौसम में या कभी भी ऐसा होता है गांव में ज्यादातर के लोगों को सांप या बिच्छू काट लेता है, तो सांप या बिच्छू काट लेने पे किस तरह से फर्स्ट एड दिया जा सकता है और कैसे लोगों की जान बचाई जाए?
0: हमारे यहाँ लगभग हर साल 20,000 लोग मर जाते हैं सिर्फ सांप काटने से, और ये जहरीले सांप है, और इंडिया में 200 तरह का सांप होता है, और ये सांप, कुछ सांप तो बहुत जहरीले होते हैं जैसे कोबरा हो गया, ये सब जहरीले सांप होते हैं, और गांव में खास करके कि अभी भी वहां पर लोग इलाज नहीं कराते हैं, वहां पर टोटका लोग करते हैं, झाड़ फूक करते हैं, यानी सांप काट लिया चलो भाई झाड़ फूक करा लें या चाहे टोटका करा लें, नहीं ये एकदम गलत है।
1: एक चीज और ये भी है कि अक्सर बहुत सारे 75% लगभग जो सांप है वो जहरीले नहीं होते हैं।
0: जी,
1: किसी को सांप ने काटा तो वो अगर झाड़ फूक वाले के पास चला जाता है, वो जो जहरीला नहीं है वो ठीक हो गया,
0: हाँ,
1: तो
0: हाँ,
1: उनको लगता है कि भाई उस टोटका करने वाले ने, झाड़ फूक
0: हाँ,
1: वाले ने
0: जी,
1: सही
0: जी,
1: कर दिया।
0: जी जी,
1: जबकि ऐसा होता नहीं,
0: ऐसा
1: है,
0: नहीं होता है।
1: ये जहरीला सांप जब भी काटता है तो वो आप कुछ भी कर लें, ये आपको बचा नहीं सकते।
0: नहीं, और देखिए अगर
1: ये एक अक्सर ऐसा देखने में आया है तो उसके लिए कैसे ये करें कि सबसे पहला कदम क्या हो?
0: जहरीला सांप हो या जहरीला सांप नहीं हो, आप उसे फर्स्ट एड दें।
1: जी,
0: सबसे पहले आप जहां पर सांप ने डसा है उस घर में जो भी साबुन है उस साबुन से अच्छी तरीके से उसको आप क्लीन कर ले, एकदम धो दें, और धोने के बाद कटे हुए जगह से 2 से 3 इंच ऊपर बैंडेज लगा दें ताकि वो जो जहर है उस जहर का फैलाव ना हो,
1: वो खूब टाइट करके,
0: हाँ टाइट कर करके,
1: ये
0: हाँ टाइट करके बांध ले, 1 घंटा से कम वक्फे तक ही उसको बांधे, ऐसा नहीं है उसको बांध दिए 2 दिन 3 दिन, ऐसा नहीं करना है। है, यानी एक घंटे से कहीं 45 मिनट तक बांधे, उसके बाद फिर
1: इसको बांध के आप तुरंत किसी भी हॉस्पिटल या इसमें रश कर जाएं,
0: यानी जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल वहां पर जाएं, क्योंकि जहर का जो फैलाव है वो आगे नहीं बढ़े।

0: मतलब आधा घंटे ही टाइम मिलता है
1: आधा घंटा, आधा घंटे के एक घंटा टाइम आपके मिल जाए, एक घंटा
0: तो
1: आपको
0: ये सब कर देने पे आपके पास आधे घंटे और मिलने का चांस होता है।
1: जी जी, उसमें क्या होगा, जहर का जो फैलाव है जो वो नहीं होगा। ओके, अक्सर लोग क्या होता है गांव में गए नहीं हुआ, चलो भाई टोटका करवा ली, वो झाड़ फूक करवा ली, ठीक हो, नहीं। सबसे पहले अगर जहरीला सांप हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, आप पहले उसको क्लीन करें और धोने के बाद 2-3 इंच ऊपर आप उसको बैंडेज से, जो अगर बैंडेज नहीं है तो घर में कपड़ा होगा आपके पास, जो कपड़ा है उस कपड़े से टाइट से बांध ले, और बांधने के बाद इमीडिएटली आप जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल से आप वहां पर जाए।
0: तो ये हो गया सांप से के काटने पे, बिच्छू के काटने भी
1: हाँ, सांप और बिच्छू
0: यही कोई भी जहरीला उस तरह का ये है। तो अच्छा, एक चीज और, ये जैसे कुत्ते ने अगर काटा है तो उसका क्या ये है?
1: नहीं, कुत्ते ने भी जो काटा है, कुत्ते में भी सेम है, वहां पर भी आपको कटे हुए जगह को पानी या साबुन से साफ कर लेना है, जहां पर कुत्ते ने काटा है उसको भी साबुन
0: या कोई भी
1: क्योंकि कटे हुए जगह के आसपास साफ कर ले। काटते समय कुत्ते का जो लार है वो उसके आसपास लग जाता है, क्योंकि सांप जब काटता है तो डसता है, मगर कुत्ता जो काटता है तो उसका स्लाइवा जो रहता है जिसको लार बोलते हैं वो लार चारों तरफ लग जाता है। तो इमिडिएटली उसको क्लीन कर ले, और वहां पर खून निकल रहा है तो उस जगह को दबा करके खून को रोकें, रोके चोट की जगह पे कुछ एंटीसेप्टिक, ताकि जर्म से जो है जो कीटाणु है वो फैलाव ना हो। और उसके बाद फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल वगैरह चले जाइए, वहां जाकर के डॉक्टर के सलाह पे रेबीज का इंजेक्शन वगैरह अगर है वो बताते हैं, एडवाइस करते हैं, वो देख लेंगे।
0: ये जरूरी है,
1: जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। अक्सर लोग नहीं लगाते हैं, टेडवेट का इंजेक्शन लगा करके छोड़ देते हैं। नहीं, टेडवेट के इंजेक्शन से ज्यादा बेहतर है कि आप नियरेस्ट डॉक्टर हॉस्पिटल के पास जाइए, और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है।
0: अच्छा, रेबीज का इंजेक्शन और सांप का भी जो
1: ये जो भी इंजेक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेबल नहीं है, आपको सिर्फ जाना है।
0: बस इतनी ही तकलीफ करते
1: हैं। हाँ, अक्सर लोग जाते नहीं नहीं क्यों जाए, और वो और इसका असर अभी नहीं होता, इसका असर बाद में असर पड़ता है।
0: कई लोगों को बहुत 5-5 साल बाद रेबीज का असर हुआ। और
1: आपने फर्स्ट एड कर दिया, आपने फर्स्ट एड कर दिया है, तो आप फर्स्ट एड करने के बाद इमीडिएटली 1-2 घंटे के बाद नियरेस्टली जो भी डॉक्टर्स है, जो भी हॉस्पिटल पे जैसा वो बोलते हैं वैसा करना है।
0: डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि हर घर में फर्स्ट एड किट होना जरूरी होता है, तो फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए, क्या रखें इसमें?
1: ये आपने बहुत अहम सवाल किया। हर घर में खाने के लिए तो बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बनता है, वो यानी जितना भी जंक फूड है सब अपने घर में वो रखते हैं और लाके खाते हैं, मगर फर्स्ट एड के नाम पे उनके घर में कुछ भी नहीं रहता है। और जब कोई हादसा हो जाता है तब वो परेशान हो जाते हैं, और परेशान होकर के इधर उधर भटकते हैं, और उसी हालात में और कुछ अनहोनी हो जाता है। तो इसलिए फर्स्ट एड बॉक्स हर घर में होना चाहिए। और फर्स्ट एड बॉक्स में क्या हो, जैसे बैंडेज, तो बैंडेज 6 इंच का भी आता है, चौड़ा आता है, 8 इंच, जो भी एक बैंडेज वो रखें, कॉटन जिसको आपने रुई बताया, क्रेप बैंडेज। क्रेप बैंडेज इसलिए कि कभी मोश आ गया, मोश आने पे आप क्रेप बैंडेज से बांध दिए, बांधने के बाद यानी क्रेप बैंडेज से बांध दिए तो अगर हल्का फुल्का मोश आ जाता है तो वो क्रेप बैंडेज बांधने से ही वो ठीक हो जाता है, आपको डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हैंडी प्लाश, किचन में लेडी काम कर रही हैं, कट गया तो आप डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, उसके लिए आपके पास हैंडी प्लाश है, हैंडी प्लाश को अपने फिंगर में उसको क्लीन कर लीजिए, कॉटन से क्लीन कर लीजिए, और क्लीन करने के बाद हैंडी प्लाश लगा दीजिए तो वो आपका वो सही हो जाएगा। हैंड सैनिटाइजर का इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी फर्स्ट एड देने से पहले अपना हाथ को पहले क्लीन कर लीजिए, और देने के बाद या फिर हैंड सैनिटाइजर नहीं है तो साफ पानी से अपने हाथों को धो लें, और धोने के बाद तभी वो फर्स्ट एड दें। मैक्रोपोर टेप्स, स्प्रिट, ग्लव्स, टिश्यू पेपर इसलिए कि आपने फर्स्ट एड दे दिया, फर्स्ट एड देने के बाद आपने अपने हाथ को क्लीन किया, टॉवल हो सकता है आपके पास नहीं है तो आप टिश्यू पेपर से ही हाथ को क्लीन कर लीजिए। फेस मास्क, आइस पैक इसलिए किसी का खून बहुत तेजी से बह रहा है, कट गया, छट गया, तो उसमें क्या होता है, हम आइस पैक लगाएंगे तो आइस पैक लगाने से क्या होगा, वो खून का जो बहाव है वो रुक जाता है, मगर जलने के केस में हमको आइस पैक यूज नहीं करना है, इसका ध्यान देना है। बेटाडीन या आयोडीन सॉल्यूशन, थर्मामीटर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में थर्मामीटर है ही नहीं, जो थर्मामीटर बहुत जरूरी है, आस पास के पड़ोसी से मांगते हैं, खासकर जहाँ छोटे बच्चे यानी बच्चे हैं वहां तो थर्मामीटर बहुत जरूरी है, क्योंकि बुखार आप कैसे टेम्परेचर को अपना पे, फीवर कितना है, कभी कभी ऐसा होता 104-105 फीवर हो जाता है,

0: लोगों को लगता नहीं फीवर है, तेज फीवर है, और उसी 104-105 फीवर में बच्चे को कन्वर्जन आ जाता है।
1: सही, अक्सर ऐसा होता
0: जी, छोटा कैंची, साबुन, बीपी मशीन, ब्लड प्रेशर मशीन, ब्लड प्रेशर मशीन, अगर आप आपके घर में कोई बीपी का दवा ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो बीपी मशीन रखना बहुत जरूरी है। कम से कम आप उनको, कभी अगर उनका बीपी बढ़ जाता है तो आपको पता नहीं है, हैं, सिर्फ आप बोले उनको सर में चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, नहीं, चक्कर आने का कारण क्या है,
1: जैसे इसे कोई सिम्टम ऐसा हो तो तुरंत ब्लड प्रेशर,
0: ऑटोमेटिक बीपी मशीन है, किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं, किसी को कंपाउंडर को बुलानी है, ऑटोमेटिक बीपी मशीन है, शुगर मशीन है, कभी देखिए शुगर बहुत ज्यादा शुगर बढ़ जाता है, शुगर कम हो जाता है, शुगर मशीन वाइज स्ट्रीट से हम चेक कर लिए, नेबुलाइजर, कभी देखिए बहुत सारे ऐसे, हाँ, बहुत ऐसे घर के लोग घर में हैं जिनको दम्मा की बीमारी है, यानी सांस लेने का दिक्कत है, हैं, तो वहां पर क्या है, नेबुलाइजर अगर मशीन अगर आपके पास है तो आप उसको नेबुलाइज कर सकते हैं, आप फर्स्ट एड दे दी
1: इमरजेंसी के लिए,
0: इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड दे, टॉर्च, टॉर्च का रखने का ये कारण ये हो जाता है कि खास करके इस मौसम में, बरसात के मौसम में कीड़ा मकौड़ा कान में चला जाता है, और कीड़ा मकौड़ा जाने के बाद बच्चा परेशान से बड़ा परेशान हो जाता है, उस साल में टॉर्च से हम देख सकते हैं कीड़ा गया है या कुछ और गया, अगर कीड़ा गया है तो हमको इमिडिएटली क्या करना है, उसमें नारियल तेल या कड़वा तेल, सुसुम,
1: अच्छा
0: सुसुम नारियल तेल या कड़वा तेल हल्का डालेंगे तो जो कीड़ा अंदर गया है वो कीड़ा बाहर आ जाएगा, या टॉर्च की रोशनी से, आपको बड़ा टॉर्च नहीं रखना है, पेंसिल टॉर्च रखना है, अच्छा। तो पेंसिल टॉर्च से रखिएगा तब तो वो आपको एयर में वो जाएगा, बड़ा टॉर्च रखिएगा तो वो तो जाएगा नहीं, रोशनी तो जाएगा, पेंसिल टॉर्च की रोशनी से जैसे आप कान में डालिएगा अगर कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर गया है तो वो बाहर आ जाएगा, तो फर्स्ट एड किट में रखें, और फर्स्ट एड किट में रखने के साथ कुछ मेडिसिन भी रखना बहुत जरूरी है, जो आपको, हाँ जो कब, हाँ जैसे कभी ऐसा होता है बहुत ज्यादा आप खा लिए तो गैस बहुत ज्यादा बन जाता है, इसलिए कुछ गैस की दवा, या बहुत तेज बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल का टैबलेट, हाँ, या कभी ऐसा होता है कि आपने दवा लिया और दवा रिएक्शन कर गया, तो दवा रिएक्शन का, दवा रिएक्शन बहुत खराब होता है, और उस अगर आपके पास वक्त नहीं रहता उस इंसान को बचाने के लिए, तो उस कंडीशन में आप गोली जो आती है, गोली आप रख सकते हैं, अगर रिएक्शन ORS, कभी ऐसा होता है रात भी, रात में बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, लैटिंग हो रहा है, और उससे क्या जिस्म का पानी निकल जाता है, अब पानी निकल जाने का आप डॉक्टर के यहाँ जाते जाते तो और पानी निकल जाएगा ना, तो आप उसको क्या कीजिएगा, पानी निकल तो ORS पिलाते चले जाइए, ताकि उसका बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो, ठीक है। पेन रिलीफ बाम, कभी चोट लग गया, कट लग गया, दर्द हो रहा है तो पेन रिलीफ बाम, पेन रिलीफ जेल आता है उसको लेके लगा दीजिए, जैसे मैंने जलने पे बताया क्रीम मैंने बताया, या कटने पे हो गया टी बैग क्रीम, इस तरीके से कुछ मेडिसिन, कुछ ऑइंटमेंट भी फर्स्ट एड बॉक्स में रहना चाहिए। हाँ, सबसे अहम जो जरूरी बात यह है कि आप जो फर्स्ट एड बॉक्स में जो मेडिसिन रख रहे हैं उसका सबका हर 3 मंथ पे या 6 मंथ पे आप उसका एक्सपायरी चेक करें। ऐसा नहीं है कि आप दवा लाएं और दवा ला करके रख दिए और जब दवा यूज कर रहे हैं तो पता हुआ ये तो एक्सपायर कर गया। और हमेशा ये ख्याल रखें, दवा अगर आप स्ट्रिप को काट रहे हैं तो जहां पर एक्सपायरी लिखा रहता है उस हिस्से को ना काटें, उसकी आगे वाले हिस्से को काटें, ताकि उस दवा का एक्सपायरी उसमें लिखा रहे, और देने से पहले आप उसको चेक कर लीजिए कि एक्सपायरी डेट तो नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, ये फर्स्ट एड के बारे में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, एक सवाल या और है कि फर्स्ट एड से रिलेटेड कहीं बिहार में क्या कोई कोर्सेज वगैरह होते हैं, कहाँ होते हैं, इसके बारे में आप हमारे सामने इनको बताएं कि कहाँ कहाँ इसकी पढ़ाई होती है या इसके बारे में बताया जाता है।
0: देखिए, आपने बहुत अहम सवाल आपने किया फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के बारे में। फर्स्ट एड का ट्रेनिंग के लिए आपको किसी हायर एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 क्लास पास आउट हैं, अगर 10 क्लास पास आउट नहीं भी हैं तब भी आप फर्स्ट एड का ट्रेनिंग ले सकते हैं, और बिहार में ये कोर्स होता है, और ये हर डिस्ट्रिक्ट में इसका कोर्स है, फर्स्ट एड का कोर्स है, और इसका कोर्स का फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1000 रुपया कोर्स फ़ी है, और 7 to 8 days का है।
1: अच्छा।
0: उस 7 से 8 दिन का ये कोर्स है, उस कोर्स में मैंने जितना अभी यहाँ पर आपसे बात किया ये सारे टॉपिक को वहाँ पर कवर किया जाता है, और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी बताया जाता है, प्रैक्टिकल करके बताया जाता है। और सपोज मान लीजिए आपने फर्स्ट एड कोर्स अभी किया 2025 में किया, तो इसको फिर आपको every 3 years पे जाकर के आपको रिन्यूअल कराना है, रिन्यूअल मतलब कि दोबारा फिर करना है, क्योंकि आपने फर्स्ट एड का कोर्स कर लिया और अल्लाह ना करे कि कोई घटना आपके यहाँ घटे, जब घटा नहीं तो आपने प्रैक्टिकली किया नहीं, तो हो सकता है कि आप भूल गए, तो इसलिए आप हर 3 साल पे जाकर के फिर उसको रीट्रेनिंग

0: कर लिया कीजिए, री
1: हाँ
0: ट्रेनिंग कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो फर्स्ट सेक्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं उसका आपको सर्टिफिकेट मिलवा है,
1: अच्छा
0: वो सर्टिफिकेट आप बता सकते हैं कि हमने फर्स्ट सेक्टर ट्रेनिंग किया। तो इसीलिए
1: तो कई जगह जैसे वॉलेंटियर्स कई बार कहीं जाते हैं किसी भी इस तरह के हादसात वगैरह में, तो इसमें इन ये लोग भी काफी मददगार साबित हो सकते हैं। आप अपने इलाके में आपकी पहचान अच्छी बन सकती है अगर आप ट्रेनिंग किए हुए हो, बहुत सारे लोगों की आप मदद कर लेते हैं, तो अंदर से भी आपको
0: हाँ, एक
1: काफी
0: हैप्पी खुशनेस
1: सेटिस्फेक्शन
0: में
1: होता है, खुशी मिलती है।
0: अगर
1: डॉक्टर साहब, आज फर्स्ट एड के बारे में आपने बताया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया आपको भी, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और आज बहुत अच्छा गुफ्तगू फर्स्ट एड पे हमने आपने किया।
2: A healthy lifestyle, a youthful attitude, and yes, even good posture can take you far. यानी सेहतमंद तर्ज जिंदगी, जवानी जैसा रवैया, और हाँ, यहाँ तक कि जिस्म की दुरुस्त साख्त भी आपको बहुत आगे ले जा सकती है। आप सुन रहे थे सेहतनामा, फर्स्ट एड की अहमियत और जरूरत, सैयद मुमताज करीम से इजाज हुसैन की गुफ्तगू। आइए सुनते हैं मौसिकी के तहत चंद कलाम। सबसे पहले सुनते हैं गुलजार का ये कलाम आबिदा परवीन की बेहद बेहद बेहद खूबसूरत आवाज में।

मन लाग्यो यार फकीरी में। आप सुन रहे थे गुलजार का ये कलाम आबिदा परवीन की आवाज में। आइए सुनते हैं अगला कलाम हजरत शाह हुसैन का, आवाज है आबिदा परवीन की।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म क्रिएचर्स 3D से। गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह, गीत टॉनी कक्कर का है और इस गीत को संगीत से संवारा है टॉनी कक्कर ने ही।

आया सावन झूमके, इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, स्तनपान नवजात शिशु के लिए जरूरी तो है ही, स्तनपान कराना माता के लिए भी फायदेमंद है। स्तनपान के फायदे, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर जमूरत परवीन। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 0627222481। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 0627222481। मोबाइल नंबर होगा 9430029353। मोबाइल नंबर भी एक बार फिर से सुन लें, 9430029353। समय याद रखें, रविवार 2 अगस्त 2026, यानी आज दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई।

गीत हम आपको सुनवाते हैं प्यासा सावन से, सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की युगल स्वरों में। गीत संतोष आनंद का है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।

आया सावन झूमके, इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बिन बुलाए बराती से, शान और गोरिशा की आवाजों में ये गीत। गीत और संगीत है आनंद राज आनंद का।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: इस विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुनिए नन्हे मुन्ने बच्चों पर आधारित कार्यक्रम फुलवारी। सूत्रधार हैं रजनी कुमारी और प्रस्तुतकर्ता हैं असद दाऊद।

0: जय हिंद प्यारे बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
2: आप सभी का अपना साप्ताहिक कार्यक्रम फुलवारी में हार्दिक स्वागत है। फूलों की खुशबू, तितलियों की रंगत और बच्चों की प्यारी मुस्कान के साथ मैं रजनी दीदी आपके प्रिय कार्यक्रम फुलवारी में उपस्थित हूँ। ज्ञान, मनोरंजन और नई नई जानकारियों से सजी इस रंग बिरंगी दुनिया में हम लेकर आए हैं आपके लिए कई रोचक बातें। तो आइए हंसी खुशी, कहानियों और सामान्य ज्ञान के इस सुंदर सफर की शुरुआत करते हैं। तो बस कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए मेरे साथ और चुपचाप शांति से सुनिए अपना प्रिय कार्यक्रम फुलवारी। बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और शरारत थोड़ी कम कर रहे होंगे, है ना? पढ़ाई पर खूब ध्यान दे रहे होंगे, है ना?
0: बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और वो है सड़क सुरक्षा पर। आज मैं आपको कुछ बातों की तुलना करके समझाऊंगी कि कौन सा तरीका सुरक्षित है और कौन सा नहीं। सोचिए, एक बच्चा सड़क पार करने से पहले दाएं बाएं देखता है, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करता है और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करता है। अब दूसरे बच्चे को देखिए जो बिना देखे दौड़कर सड़क पार कर देता है। पहले बच्चे की सावधानी उसे सुरक्षित रखती है, जबकि दूसरे बच्चे की जल्दबाजी उसे खतरे में डाल सकती है। कार की सीट बेल्ट लगाना और मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहनना सुरक्षा की पहचान है। सीट बेल्ट और हेलमेट हमें चोट से बचाते हैं, है ना? जबकि इन्हें ना पहनना दुर्घटना

0: के समय बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुर्घटना से बचने के लिए ये सब पहनना जरूरी होता है ना बच्चों? अब एक और तुलना कीजिए, एक बच्चा सड़क पर चलते समय मोबाइल फोन से दूर रहता है और पूरा ध्यान रास्ते पर रहता है, और दूसरा बच्चा मोबाइल पर बात करते हुए चलता है, तो वह खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए सड़क पर चलते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए, है ना प्यारे बच्चों? सड़क सुरक्षा का अर्थ है सड़क पर चलते समय ऐसे नियमों का पालन करना जिससे हम स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रखें। आज सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इसमें से अधिकांश दुर्घटनाएं लापरवाही और यातायात के नियमों को अनदेखी के कारण होती है। बच्चों, आपको भी सड़क सुरक्षा के नियम सीखनी चाहिए। सड़क पार करते समय पहले दाएं, फिर बाएं और फिर दोबारा दाएं देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। जहां जेब्रा क्रॉसिंग या पैदल पार पथ हो, वहीं से सड़क पार करनी चाहिए, यानी नियमों को मानना चाहिए। यह हमारी ही सुरक्षा के लिए बने हैं, है ना बच्चों? याद रखें, हमेशा हमें अवश्य ही ट्रैफिक सिग्नल पार करना चाहिए, लाल बत्ती पर रुकना और पीली बत्ती पर सावधान रहना, और हरी बत्ती पर भी आगे बढ़ना चाहिए। साइकिल चलाते समय बाईं ओर चलना चाहिए, तेज गति से बचना चाहिए, है ना? समझ गए ना प्यारे बच्चों? ऐसा ही करोगे ना आप लोग?
1: हाँ दीदी।
0: बच्चों, कभी भी सड़क पर नहीं खेलें। खेलने के लिए पार्क या मैदान सबसे सुरक्षित जगह है, वहीं खेलना चाहिए। और खेलने का मजा भी तो पार्क में ही या मैदान में ही आता है ना प्यारे बच्चों? सड़क सुरक्षा नियम का पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदार नागरिक बनने की पहचान है। दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, तो इस तरह अनेक दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। बच्चों, हमें याद रखना चाहिए कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सतर्क रहना चाहिए, जागरूक नागरिक बनना चाहिए, है ना? तो आप लोग भी सतर्क रहोगे, जागरूक नागरिक बनोगे ना? बातें अभी और भी होगी। फिलहाल छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बच्चों की प्रस्तुति पर आधारित सुनते हैं बच्चे मन के सच्चे।
2: जय हिंद प्यारे बच्चों।
3: जय हिंद दीदी।
2: कैसे हो आप लोग?
3: हम अच्छे हैं दीदी।
2: पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं?
3: जी दीदी।
2: और मस्ती?
3: जी दीदी।
2: खेल कूद करते हो कि नहीं?
3: जी दीदी।
2: खेल कूद करने में भी मजा आता है ना?
3: जी दीदी।
2: बारिश में भी बाहर जाते हो खेलने के लिए?
3: जी दीदी।
2: बारिश में नहीं जाना है, बारिश के समय में घर में ही खेलना है, है ना?
3: जी दीदी।
2: बारिश अगर पड़ जाए, ज्यादा लग जाए, तो आप बीमार पड़ सकते हो, है ना?
3: जी दीदी।
2: तो बचोगे ना बारिश से?
3: जी दीदी।
2: और स्कूल जाते हो तो छतरी ले जाते हो कि नहीं?
3: जी दीदी।
2: रेनकोट, छतरी, ये सब ले जाना चाहिए कि बारिश का सीजन है और कभी भी बारिश हो सकती है।
3: जी दीदी।
2: कुछ सुनाने वाले हो आप लोग?
3: जी दीदी।
2: मुस्कुरा रहे हो?
3: हाँ बस आप
2: जी। पहले अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम वैभवी है।
2: और क्या सुनाने वाली है आप, और कौन से कक्षा में पढ़ रही है आप?
3: मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती
2: हूँ। क्या सुनाइएगा आज?
3: आपको एक संगीत सुनाने जा रही हूँ।
2: सुनाइए।
3: हो आज गली गली हवन सजाएंगे, आज पग

0: जाएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे, जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे, 14 साल जोड़ों के वो आंसू अब बहाएंगे, पवन में राम आएंगे ना पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छी आवाज में आपने गाई ये गाना।
2: नमस्ते दीदी।
3: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम आकृति चौधरी है।
3: और किस कक्षा में पढ़ती हैं आप?
2: मैं 9th में पढ़ती हूँ।
3: और कुछ सुनाना चाहती हैं?
2: मैं आज एक कहानी सुनाऊंगी।
3: सुनाइए।
2: कहानी का नाम है सच्ची मित्रता की जीत। एक

0: बाग था जिसका नाम था आनंद। गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों, पेड़ों और एक छोटी नदी से घिरा हुआ था। उसी गांव में दो मित्र रहते थे, सोनू और अमन। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वे साथ साथ स्कूल जाते थे, साथ खेलते थे, पढ़ाई करते थे और हर काम एक दूसरे की मदद करते थे। पूरे गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती। सोनू मेहनती और शांत स्वभाव का था, जबकि अमन चंचल, हसमुख और साहसी था। दोनों के स्वभाव अलग थे, लेकिन उनकी मित्रता बहुत गहरी थी। वे हमेशा कहते थे, सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में साथ दे। एक दिन उनके स्कूल में घोषणा हुई कि अगले महीने विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित होगी। जो छात्र सबसे अच्छा मॉडल बनाएगा उसे जिले स्तर की प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। सोनू और अमन ने मिलकर वर्षा जल संचयन का मॉडल बनाने का निश्चय किया। दोनों रोज स्कूल के बाद मेहनत करते, कभी कार्डबोर्ड काटते, कभी रंग भरते और कभी नई जानकारी जुटाते। यह देखकर कुछ बच्चों को ईर्ष्या होने लगी। उनमें से एक लड़का राकेश चाहता था कि वही प्रतियोगिता जीते। उसने एक रात चुपके से दोनों का मॉडल तोड़ दिया। अगले दिन जब सोनू और अमन स्कूल पहुंचे तो उन्होंने अपना मॉडल टूटा हुआ देखा। सोनू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जब हम अब प्रतियोगिता कैसे जीतेंगे? अमन ने उसके कंधे पर थपथपाया और बोला, रोने से कुछ नहीं होगा, अभी समय है, हम फिर से बनाएंगे। हार मानना हमारी दोस्ती को शोभा नहीं देता। दोनों ने पूरे दिन और रात मेहनत की। गांव के बड़े चाचा ने उन्हें लकड़ी के छोटे टुकड़े दिए, अध्यापिका ने रंग और चार्ट पेपर दिए, उनके माता पिता ने भी उनका हौसला बढ़ाया। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने पहले से भी सुंदर मॉडल तैयार कर लिया। प्रतियोगिता का दिन आया जब दोनों ने मंच पर अपने मॉडल के माध्यम से वर्षा जल संरक्षण का महत्व समझाया तो सभी शिक्षक अतिथि बहुत प्रभावित हुए। परिणाम घोषित हुए तो प्रथम पुरस्कार सोनू और अमन को मिला। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती है। कुछ दिन बाद स्कूल से लौटते समय अचानक तेज बारिश होने लगी, नदी का पानी बढ़ गया। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा फिसलकर पानी के तेज बहाव में फंस गया। अमन बिना देर के पास की एक लंबी बांस की लकड़ी लेकर दौड़ा। सोनू ने गांव वालों को आवाज लगाई और रस्सी लेकर आया। दोनों ने मिलकर समझदारी और साहस से उस बच्चे की जान बचा ली।
1: अरे वाह,
0: पूरा गांव उनकी बहादुरी देखकर गर्व से भर गया। स्कूल में विशेष सभा आयोजित हुए। प्रधानाचार्य ने कहा, बच्चों, पुरस्कार जीतना बड़ी बात है, लेकिन किसी की जान बचाना उससे भी बड़ी कार्य है। सोनू और अमन ने साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता केवल साथ खेलने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे का साहस बनकर खड़े रहने का नाम है। राकेश, जिसने उनका मॉडल तोड़ा था, अपनी गलती पर शर्मिंदा हुआ और दोनों के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने ईर्ष्या में आकर बहुत गलत काम किया। सोनू और अमन मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गलती हर किसी से हो सकती है, सबसे बड़ी बात है उसे स्वीकार करना और दोबारा ना दोहराना। उस दिन से राकेश भी उनका अच्छा मित्र बन गया। तीनों मिलकर पढ़ने लगे, खेलने लगे और गांव के छोटे बच्चों की मदद भी करने लगे। उनकी मित्रता पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई।
1: इस कहानी से क्या सीख मिलती है?
0: इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, सच्ची मित्रता विश्वास, सहयोग, त्याग और क्षमा पर आधारित होती है। जो मित्र कठिन समय में आपका साथ निभाए वही सच्चा मित्र कहलाता है।
1: वाह, बिल्कुल सही बात कही आपने। और इतनी अच्छी कहानी सुनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: नमस्ते दीदी, मेरा नाम वेदिका है।
3: हाँ।
2: मैं 3 क्लास में पढ़ती हूँ। आज मैं एक पोयम सुनाने वाली हूँ।
3: अरे वाह, सुनाइए।
2: आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर के झोपड़ी में सो रहे थे।
3: हाँ।
2: बंदर ने लात मारा, रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे। पापा ने पैसे दिए, नाच रहे थे। भैया ने लड्डू दिए, खा रहे थे।
3: बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने।
4: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम कायनात है।
1: और किस कक्षा में पढ़ती हैं आप?
4: मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ।
1: अरे, एक कविता सुनाइएगा।
4: हाँ जरूर,
1: सुनाइए।
4: इस कविता का नाम है वतन के रखवाले।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल।
4: हम भारत के बच्चे हैं, सच्चे और अच्छे हैं, देश की शान बढ़ाएंगे, नया इतिहास बनाएंगे। हिमालय सा ऊंचा मन होगा, सागर जैसा धन होगा, मेहनत को होशियार बनाए भारत का।

0: मान बढ़ाए। वीरों ने जब बलिदान दिया हमने उनका मान किया, उनके सपनों को वीरों ने जब बलिदान दिया हमने उनका मान किया, उनके सपनों को सच करके देश को आगे ले जाए। तिरंगा ऊंचा लहराएगा, विश्व नाम चमकाएगा, मिलकर सब यह प्रण करे, भारत माँ की सेवा करे। जय हिंद।
1: बच्चों, अभी आप सुन रहे थे छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बच्चों की प्रस्तुति आधारित ये अंक बच्चे मन के सच्चे। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं समय के सदुपयोग के बारे में। समय हमारे जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है। एक बार बीत जाने के बाद समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसका सही उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। विशेषकर बच्चों, आपके लिए समय का सही उपयोग आपके उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा। बच्चों को बचपन से ही समय का मूल्य समझना चाहिए। यदि आप अपने समय का सही ढंग से उपयोग करते हैं तो आप पढ़ाई, खेल और अन्य गतिविधियों में भी संतुलन बना सकते हैं। अगर आप समय का सही उपयोग करिएगा तो सभी काम अपने समय के अनुसार हो जाएगा। समय का महत्व समझेंगे तो आप में समझदारी आएगी, अनुशासन, जिम्मेदारी और आत्मविश्वास जैसे गुणों का आप में समावेश होगा। बच्चों, बड़े होकर आप अच्छे इंसान बनेंगे, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। तो आप भी अपने समय पर सभी काम करिए और समय के अनुसार ही चलिए। समय का महत्व को समझिए। इसके विपरीत जो बच्चे समय को व्यर्थ कार्यों में गवाते हैं, जैसे मोबाइल स्क्रॉल करना या टीवी पर अधिक समय बिताना, इससे आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हो। इसीलिए आवश्यक है कि आप अपना एक दैनिक समय सारणी बनाएं, जिसको हम रूटीन भी बोलते हैं। आप लोग बनाते हो ना? रचनात्मक कार्य और परिवार के साथ समय बिताना भी शामिल है। यह बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जरूरी है। इसलिए हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए और समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। जो बच्चे समय का सम्मान करते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं और वे अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। तो बच्चों, आज से ही समय के महत्व को समझिए और उसका सही उपयोग कीजिए। याद रखिए, समय ही सफलता की चाबी है। समय का सही उपयोग करिए, समय पर सभी काम करिए और खुश रहिए। बच्चों, अब रजनी दीदी आप सभी को एक प्यारी सी छोटी सी कहानी सुनाने वाली है। तो आप लोग शांति से बैठ जाइए और रेडियो सेट के और भी करीब आइए। और कहानी का शीर्षक है चोर और खाली संदूक। गोनू झा की चतुराई पर आधारित है। बच्चों, मिथिलांचल में गोनू झा अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके किस्से सुनने आते थे। कहते थे कि वे बिना लड़ाई झगड़े के अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी समस्या का समाधान करते थे। एक बार की बात है, गांव में लगातार चोरियां हो रही थी। एक रात एक चोर ने सोचा, गोनू झा बड़े बुद्धिमान है, उनके घर में अवश्य बहुत धन होगा, आज वही चोरी करूंगा। रात घड़ी होने पर चोर चुपके से गोनू झा के घर में घुस गया। लेकिन गोनू झा की नींद बहुत हल्की थी, उन्हें आहट मिल गई थी। उन्होंने समझ लिया कि घर में कोई चोर आया है। वे तुरंत उठे और उन्होंने एक युक्ति सोची। युक्ति में कोई बात उनके दिमाग में आ गया। उन्होंने अपनी पत्नी से जोर से कहा, सुनो, आजकल गांव में बहुत चोरियां हो रही है, अच्छा हुआ कि मैंने अपना सारा धन उस पुरानी खाली संदूक में छिपा दिया है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब चोर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, बस अब तो काम और भी आसान हो गया, और मन ही मन बहुत खुश हुआ। गोनू झा और उनकी पत्नी सोने का नाटक करने लगे। चोर धीरे धीरे से उस बड़े संदूक के पास पहुंचा। संदूक बहुत भारी था। उसने बड़े मुश्किल से उसे उठाया और घर से बाहर ले गया। वह उसे जंगल

किनारे ले जाकर खोलने लगा, लेकिन जैसे ही संदूक खुला उसके होश उड़ गए। उसने उसमें देखा कि धन दौलत नहीं बल्कि पत्थर ईंटें और मिट्टी भरी हुई थी। उसी समय पीछे से गोनू झा और गांव वालों के साथ वहां पहुंच गए। वे मुस्कुराकर बोले, अरे भाई, हमारे घर का बेकार सामान इतना दूर लाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। गांव वाले चोर को पकड़कर हंसने लगे। चोर अपनी गलती पर शर्मिंदा हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, गोनू झा, आपकी बुद्धि के आगे मेरी चालाकी हार गई। गोनू झा बोले, याद रखो, मेहनत से कमाया हुआ धन ही सुख देता है, चोरी का धन कभी भी सुख नहीं देता। चोर ने उसी दिन से चोरी छोड़ने की कसम खाई और मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से जीवन बिताने लगा। तब से गांव में लोग बच्चों को यह कहानी सुनाकर समझाने लगे कि बुद्धिमानी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो बच्चों, इससे यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और चतुराई से बिना हिंसा के भी बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ईमानदारी का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। तो बच्चों, ये थी गोनू झा की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, है ना? आइए इस कहानी के बाद आपकी खुशी को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गाना।

प्यारे बच्चों, अच्छा लगा ना ये गाना। प्यारे बच्चों, अब सामान्य ज्ञान की बातें करेंगे, है ना? प्यारे बच्चों, आज हम समान ज्ञान में एक महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर राष्ट्रभक्त और समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। वे बचपन से ही बहुत ही मेधावी, निडर और देशभक्त थे। उन्हें पढ़ना लिखना बहुत पसंद था और वे हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि लोग उन्हें लोकमान्य क्यों कहते थे? क्योंकि जनता उन्हें अपना सच्चा नेता मानती थी। उन्होंने हमेशा देश और समाज के हित में काम किया और लोगों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। आप लोग भी समाज के लिए काम करोगे ना, और अच्छे और सच्चे नागरिक बनोगे ना, उनके दिखाए पथ पर चलोगे ना। तिलक जी ने अंग्रेजों के अन्याय का डटकर विरोध किया। उन्होंने लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगाई और देश को एकजुट होने का संदेश दिया। उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। यह नारा आज भी हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा देता है। प्यारे बच्चों, तिलक जी केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि एक महान शिक्षक और पत्रकार भी थे। उन्होंने केसरी और मराठा नामक समाचार पत्र शुरू किए जिनके माध्यम से लोगों को देश की स्थिति और स्वतंत्रता आंदोलन की जानकारी मिलती थी। उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती को भी लोकप्रिय बनाया। इन आयोजनों के माध्यम से वे लोगों में एकता, भाईचारा और देशभक्ति की भावना जगाना चाहते थे। तिलक जी का मानना था कि शिक्षा से ही समाज और देश का विकास संभव है, इसलिए वे बच्चों और युवाओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने तथा अपने देश से प्रेम करने की प्रेरणा देते थे। प्यारे बच्चों, हमें भी लोकमान्य तिलक जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए, माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, देश से प्रेम करना चाहिए और हमेशा सत्य और न्याय का साथ देना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने देश से प्रेम करेंगे, हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, हम सच्चाई और ईमानदारी

0: का साथ देंगे और एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, है ना बच्चों? याद रखिए, देश प्रेम, शिक्षा और साहस ही महान व्यक्तित्व का पहचान है।
1: बच्चों, अभी सामान्य ज्ञान अंक में आप स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज सामान्य ज्ञान अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में इसी समय। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रजनी दीदी को प्रस्तुतकर्ता असद दाऊद के साथ दीजिए इजाजत। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, खेलते कूदते रहिए और प्रकृति संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहिए। जय हिंद।

हम आकाशवाणी की दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बज चुके हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी।

मातृत्व की पहचान है, मातृत्व की पहचान है, शिशु के लिए वरदान है, छुपे हैं औषधीय गुण इसमें, ये माँ का दूध अमृत समान है। हृष्ट पुष्ट रखता बच्चे को, पाचन तंत्र करे मजबूत, 6 माह स्तनपान कराओ, शिशु रहे बीमारी से दूर। शिशु के संरक्षण और संवर्धन का कर्ता काम है, ये माँ का दूध अमृत समान है। 9 महीने की गर्भावस्था और प्रसव की पीड़ा से गुजरती हुई सृष्टि को नई संतति देती हुई माँ के हाथों में जब बेहद कोमल गुलाबी नवजात का पहला क्रंदन होता है, तो दर्द की अतिरेक से गुजरी माँ के होठों पर ममता की मीठी मुस्कान फैल जाती है, वातावरण खुशगवार और उत्सवी हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मातृत्व सुख की अनुभूतियों में डूबी माँ का एक नया अध्याय भी शुरू हो जाता है, बच्चे की संपूर्ण देखभाल का अध्याय। और इस अध्याय की शुरुआत स्तनपान से ही होती है। नवजात शिशु के रोने कुनमुनाने हिचकी जंभाई उबकाई पर चौकसी के बीच उसके सही पोषण को लेकर माँ के लिए स्तनपान की चुनौती भी कम नहीं होती। मसलन प्रसव के बाद स्तन में दूध के उतरने न उतरने, स्तनपान कब शुरू कर दें, कब तक कराने और स्तनपान कैसे कराने को लेकर जितने सवाल होते हैं, स्तनपान से जुड़ी भ्रांतियों को लेकर दुविधाएं भी कम नहीं होती। इन दिनों 1 अगस्त से 7 अगस्त तक स्तनपान जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, लिहाजा स्तनपान से जुड़े इन्हीं बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों पर केंद्रित है आज का हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है हेलो जिंदगी। श्रोताओं नमस्कार, संजय की तरफ से स्तनपान के फायदे, यही है आज की हेलो जिंदगी का विषय। और इस बेहद ज़रूरी विषय पर आप श्रोताओं को, खासकर हमारी श्रोता बहनों को उचित जानकारी और परामर्श देने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं, उपस्थित हैं जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जमुरत परवीन। श्रोताओं स्तनपान को लेकर किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा हो तो इसी वक्त आप हमें फ़ोन करें, डॉक्टर जमुरत परवीन आपकी जिज्ञासा भरे प्रश्नों का उत्तर देंगी, सही जानकारी देंगी और उचित परामर्श भी। कार्यक्रम के दौरान संपर्क के लिए हमारे फ़ोन नंबर

प्रकार हैं 9430029353, 9430029353। दूसरा नंबर है 0627222481, 0627222481। ये दोनों नंबर खुले हुए हैं। एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दें, आज की हेलो जिंदगी का विषय स्तनपान के फायदे, विशेषज्ञ डॉक्टर जमूरत परवीन, जानी मानी प्रसूति एवं स्त्री

0: फिर से अपने श्रोताओं को बता दें आज की हेलो जिंदगी का विषय स्तनपान के फायदे, विशेषज्ञ डॉक्टर जमूरत परवीन, जानी मानी प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जमूरत आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में कार्यक्रम हेलो जिंदगी में एक बार फिर से स्वागत आपका। नमस्कार, कैसी हैं?
1: नमस्कार, बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे।
0: बिल्कुल, अभी स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है और इसके पीछे स्तनपान को लेकर जितनी भी जागरूकता की बातें हैं वो होनी भी चाहिए और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी वही है, तो बहुत सारी बातें होंगी, हमारे श्रोता भी जुड़ेंगे और श्रोता बहनों से विशेष तौर से आग्रह होगा कि आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। कई बार हमारी बहनें जो है ना वो संकोचवश खुलकर सामने नहीं आती हैं, सवाल नहीं करती हैं, कई बार इस वजह से भी कि नाम पता की वजह से शायद कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो जाए, तो आज ये कार्यक्रम एकदम खुला हुआ है। हमारी कोई भी बहन चाहें तो अपना नाम न भी बताएं लेकिन अपने अपनी समस्या ज़रूर बताएं, है ना? अच्छा होगा जो लोग पहली बार डॉक्टर जमूरत परवीन को सुन रही हैं या सुन रहे हैं उनके पास तो जिज्ञासा है कि डॉक्टर जमूरत परवीन कहाँ से आती हैं, कहाँ की रहने वाली हैं और अब तक स्वास्थ्य सेवा में जहाँ तक आप पहुँची हैं ये सफ़र कैसा रहा, संक्षेप में बता दें कहाँ की रहने वाली हैं?
1: दरभंगा के रहने वाले हैं और अभी हम सीतामढ़ी में पोस्टेड हैं और बहुत अच्छा ये सफ़र रहा, माँ बाप का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट, बहुत आगे तक आए हैं और उम्मीद है आगे तक जाएंगे और आप लोग का हेल्प करेंगे और इसी तरह आएंगे और आप लोग को जानकारी ज़रूर देते रहेंगे।
0: पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई?
1: मेरी पढ़ाई लिखाई दरभंगा ही से हुई है।
0: अच्छा अच्छा, तो पहला सवाल जो होगा ना वो यही होगा कि ये जो स्तनपान की जो बात कहते हैं तो पहला सवाल ये होता है कि ये दूध जो पहले माँ बन चुकी हैं उनके पास तो ये जिज्ञासा की बात तो उन्हें पता ही है, लेकिन जो पहली बार माँ बनने वाली हैं तो उनके पास तो ये जिज्ञासा होगी कि आखिर स्तन में दूध उतरता कैसे है और आगे हम ये भी बात करेंगे कि नवजात शिशु के जन्म के बाद जो गाढ़ा पीला दूध होता है उसको लेकर आप लोग बहुत जागरूक करती हैं लोगों को बहुत ज़्यादा, जबकि पहले की भ्रांति ये थी डॉक्टर जमूरत कि ये जो पीला गाढ़ा दूध है ना वो वेस्टेज है, मतलब खराब है, ये गंदा है, सफ़ेद नहीं है तो गंदा है। तो लोग उसे हटा देते थे, तब
1: उसको विच मिल्क कहा जाता था, वो लोग विच मिल्क बोलते थे कि ये जहरीला है, ये चुड़ैल का उसका ये दूध है।
0: तो ये सारी बातें होंगी लेकिन स्तनपान की जो बात है तो ये कि स्तन में दूध उतरने की जो प्रक्रिया है वो क्या है?
1: जी देखिए,
0: अगर सरल शब्दों में बताएं तो ज्यादा बढ़िया।
1: सरल शब्दों में यही बताऊंगी कि जो इम्पोर्टेंस है दूध का वो बच्चे के लिए, तो सिग्नल भी बच्चा ही देता है। जितना बार आप अपने बच्चे को छाती से लगाइएगा वहां से सिग्नल जाएगा। एक हार्मोन होता है जो आसान में प्रोलैक्टिन बोलते हैं, वो दूध बनाता है लेकिन निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। तो जब बच्चा का माँ से कॉन्टैक्ट होता है तो सिग्नल जाता है, जो दूध बना हुआ है वो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से निकलता है। और जितना बार बच्चा करेगा, मतलब सक का मतलब जितना बार बच्चा खींचेगा चूसेगा तो क्या होगा, वो सिग्नल और ज्यादा जाएगा और ज्यादा दूध उतरेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि जितना बार आप अपने बच्चे को छाती में लगाइएगा उतना ज्यादा दूध बनेगा, जितना कम लगाइएगा दूध का अमाउंट उतना कम हो जाएगा क्योंकि सिग्नल ही नहीं जाएगा।
0: अब तो बच्चे के जन्म के बाद
1: जी
0: रिकमेंड किया जाता है कि जैसे ही बच्चे का जन्म हो
1: जी,
0: बच्चे को माँ के छाती से लगाने जी, की प्रक्रिया उसे उस पर रख देते, मतलब बगैर साफ किए हुए।
1: पहले
0: सफाई करते थे बच्चे की तब सौंपते थे माँ के हाथों में, लेकिन अब कहा जा रहा है, विशेषज्ञ बताते हैं कि स्किन टच तुरंत कराना है
1: जी। उसमें है कि पुरैन लगा हुआ ही है तभी, चाहे नॉर्मल हो चाहे ऑपरेशन, पुरैन लगे हुए बच्चे को आप माँ के सीने पर डालिए और अगर पॉसिबल हो, अगर नर्स कोई फीड करा सकती है तो उस टाइम भी आप फीड करा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस की वजह से ये उतना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे हम लोग बताते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में मतलब जितना जल्दी माँ बैठ के कम्फर्टेबल हो, नहीं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे में ज़रूर मतलब वो दूध पिलाएंगी। और अगर ऑपरेशन है तो आराम से आप 5 से 6 घंटे के अंदर में आप साइड से एक आदमी के सपोर्ट से दूध पिलाइए, और अगर कोई फीमेल कंफर्टेबल है तो वो 2 घंटे में भी सीएस के बाद दूध पिला सकती है जी।
0: ये सवाल अभी आगे बढ़ते रहेंगे और श्रोता एक जुड़ गए हैं तो पहले उनसे बात कर लें। जी जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: नमस्कार सर
0: जी,
2: मोहन पासवान बोल रहा हूँ।
0: जी

0: मोहन पासवान जी, बताइए क्या जिज्ञासा है।
1: जिज्ञासा पहले सर कि आपके रेडियो द्वारा प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी पटना से कि आपकी आवाज आपके साथ, इसे जुड़ने के लिए तो किस प्रकार से जुड़ा जाए
0: नहीं, इसके लिए हमारे यहाँ से जो प्रोमो ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा, उसमें ईमेल एड्रेस है ना, तो उस ईमेल पर आप मेल करेंगे तो सारी जानकारी आ जाएगी और इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। आप सुनिएगा तो हमारे केंद्र के प्रसारण या आकाशवाणी के किसी भी पटना, दरभंगा, भागलपुर, सासाराम, पूर्णिया, किसी भी केंद्र का प्रसारण सुनेंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बहरहाल स्तनपान के फायदे, इसको लेकर के कार्यक्रम है आज की हेलो जिंदगी। बताइए क्या जिज्ञासा है मोहन पासवान जी।
1: जी जी सर, धन्यवाद सर। आपकी आवाज आपके साथ के साथ में है, कुछ कहना चाह रहा हूँ कि चीनी मिल खोलने के साथ साथ
0: मोहन पासवान जी आज आपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी में फोन किया है। मोहन पासवान जी, आपने हेलो जिंदगी में फोन किया है, हमें लगता है कि थोड़ा विषयांतर हो रहा है। मोहन पासवान जी जी बताइए जी।
1: मैडम जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि रक्तदान से बच्चों का पोषण, शरीर का विकास और चेतना का विकास होता है, तो माताओं को क्या सब फायदे होते हैं मैम जी?
0: जी
1: दूसरा है कि मैडम जी, बच्चे रहते हैं, माताएं स्तनपान कराने लगती है, माताएं कैसे समझे कि मैं अपने बच्चों को 24 घंटे में सही मात्रा में दूध पिला रही हूँ जिससे शरीर का विकास सही तरह से हो सके। तीसरा है कि वर्तमान समय में बच्चे अधिक मोटापे का शिकार हो रहे हैं, बच्चे काफी दुबला पतला हो जाते हैं मैम जी, इससे बचने के लिए कितने समय माताएं अपने बच्चों को स्तनपान
0: कराएं
1: और कितनी मात्रा में?
0: जी सर,
1: स्तनपान के दौरान सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए जाने वाले पोषण आहार के बारे में लोग जानना चाहते हैं सर।
0: ठीक है
1: जी, से जानना चाहते
0: हैं। ओके हाँ जी, मुख्य रूप से बहुत सारे सवाल आ गए हैं, सुनिएगा मोहन पासवान जी रेडियो पर, एक एक कर सारी चर्चा हम करेंगे कार्यक्रम में, है ना
1: जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मोहन पासवान जी एक सवाल नहीं करते हैं, जब करते हैं तीन चार सवाल करते हैं। पहला सवाल ये था कि स्तनपान से बच्चे को तो फायदा है ही, ये तो तय है, माँ को क्या फायदा है। दूसरा सवाल था कि कब कब दूध पिलाना है। तीसरा सवाल था कि कोई बच्चा मोटा हो जाता है, कोई दुबला रह जाता है स्तनपान के दौरान, तो उसको लेकर के और पोषण आहार को लेकर सरकारी रूप से क्या दिशा निर्देश हैं या क्या सुविधाएं हैं, इसके बारे में ये सवाल है, एक एक कर चर्चा करेंगे। एक और श्रोता का जुड़ाव हो गया है, उनके सवाल को भी ले लेते हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: नाम शाहबुद्दीन सर, हम नाम उंदला से बोल रहे हैं।
0: हाँ शाहबुद्दीन जी, बताइए क्या जिज्ञासा है स्तनपान को लेकर?
2: क्या कहेंगे सर, यही कहेंगे अच्छा खाना खाना चाहिए, सब्जी खाना चाहिए।
0: नहीं, आपने लगता है कि ठीक से विषय को समझा नहीं है।
2: प्रोग्राम नहीं सुने
0: है। स्तनपान के फायदे को लेकर कार्यक्रम है, तो स्तनपान से जुड़े हुए सवाल हो, खानपान के लिए हम डाइटिशियन को बुलाते हैं कार्यक्रम में अक्सर, और खानपान के बारे में भी अक्सर करते हैं, तो अगर खानपान के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे कार्यक्रम का इंतजार करें, उस कार्यक्रम का जिसमें हम आहार और खानपान के बारे में चर्चा करेंगे। शाहबुद्दीन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कई बार लोग तैयार नहीं रहते हैं सवाल को लेकर के, और खानपान के लिए तो बात नहीं, स्तनपान के। हाँ खानपान की चर्चा होगी जरूर, लेकिन वो तब होगी जब कब जा करके पूरक आहार की जरूरत पड़ती है बच्चे को। स्तनपान के लिए 6 महीना रिकमेंडेशन है, 6 महीने अपना ही ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए
3: जी, जी।
0: लेकिन सवाल ये होता है कि पूरक आहार वो कब से शुरू करने की जरूरत है और किसके लिए है, और कहाँ पर आकर के स्तनपान को लेकर के बहुत सारी जो चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी दिक्कतें, पूरे कार्यक्रम में उसकी हम चर्चा करेंगे। सवाल ये आया था कि स्तनपान का जो महत्व है, और हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि ये अमृत है
3: जी,
0: दूध, माँ का दूध अमृत है, कैसे है ये समझाइए थोड़ा।
3: अमृत मतलब ऐसा चीज़ जो उसको डेवलपमेंट कराए, ऐसा चीज़ जिससे इंसान का ग्रोथ हो, है ना। तो जो बच्चे के लिए मतलब उसमें हर चीज़ है, सब भगवान उस दूध को बनाए हैं कि जो बच्चा को चाहिए एग्जैक्ट।

0: वही है, जितना प्रोटीन चाहिए, जितना फैट चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जैसे विटामिन्स चाहिए। एक हम हमेशा पेशेंट लोग को ये चीज़ समझाते हैं कि गाय का दूध गाय के बच्चा के लिए, माय का दूध माय के बच्चा के लिए। मतलब कि 6 महीना के अंदर आपको बच्चे को गाय का दूध नहीं देना है। क्यों? क्योंकि गाय का बच्चा बड़ा होता है, उसका प्रोटीन, उसका कार्बोहाइड्रेट, उसका फैट का रिक्वायरमेंट अलग है, वो उसके हिसाब से बन रहा है। और जो बच्चा रहता है, माँ का बच्चा रहता है, वो क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग, अमृत इसीलिए है कि उस बच्चे के अकॉर्डिंग है, उसमें उतना विटामिन है उतना।
1: जमूरत
0: जी,
1: आमतौर पे जैसा आप बोलें कि माय का दूध बच्चे के लिए और गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, लेकिन लोगों की मान्यता है कि गाय और माय दोनों बराबर ही है।
0: 6 महीना के बाद आप हाँ। दे सकते हैं, लेकिन 6 महीना के पहले तो बिल्कुल नहीं देना। 6 महीने के बाद एक्चुअली रिकमेंडेशन है 1 साल के बाद आपको बच्चे को गाय का दूध देना है, लेकिन बहुत सारे लोग डाइल्यूट करके देते हैं, लेकिन बेहतर नहीं है वो देना।
1: बकरी का दूध
0: दे सकते हैं, लेकिन 6 मंथ से पहले कुछ नहीं, सिर्फ माँ का दूध
1: है ना,
0: सिर्फ माँ का दूध।
1: यानी ये एकदम से मन में बिठा लेना है
0: सिर्फ माँ का
1: कि जो माता स्तनपान करा रही हैं उसके बच्चे के लिए उसके दूध से ज़्यादा बढ़िया विकल्प, मतलब दूध के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं।
0: जी, कोई विकल्प नहीं है ना। पानी, जैसे पहले वो गर्मी का मौसम रहता है तो बहुत सारे पेशेंट ये पूछते हैं कि बहुत गर्मी है, बच्चा को मिल रहा होगा, एकदम मिल रहा होगा, उसमें वाटर का अमाउंट 97-99% रहता है, उस बच्चे को एकदम से पानी मिलेगा। आप देखिए ना, कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा को दूध पिलाते हो उसका मुँह सूखा हुआ हो? कभी नहीं होगा, क्योंकि उसको पानी का जरूरत नहीं है, उसको उतना रिक्वायरमेंट मिल जा रहा है।
1: अपने सुनने वालों को बता दें कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो जिंदगी। हेलो जिंदगी में आज का विषय है स्तनपान के फायदे, ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे क्या है। और बतौर विशेषज्ञ डॉक्टर जमूरत परवीन जानी मानी प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी है, बिहार सरकार की स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवा दे रही है। आज श्रोताओं, हमारी जो बहनें हैं, खास तौर से जो माँ बनने वाली हैं या जो माँ बन चुकी हैं पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार, और उनके पास स्तनपान को लेकर किसी भी तरह की कोई तकलीफ है या कोई जिज्ञासा है, तो आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकती हैं। अगर आप चाहें तो अपना नाम न बताएं, हमारी आदत हो गई है नाम पूछने की, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कोई श्रोता हमसे जुड़ते हैं तो हम पहले उनका नाम पूछ लेते हैं, लेकिन अगर आपको नाम ना बताने की ज़रूरत हो, अगर कोई समस्या है
0: जी,
1: तो अब तो हम समझते हैं महिलाएं, हमारी बहनें इतनी जागरूक हो गई हैं कि अब इन सब बातों से कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर भी कहीं कहीं मान्यताएँ हैं, है ना, तो उसको लेकर के अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो वो अपना नाम ना भी बताएं तब भी चलेगा। एक और श्रोता जुड़ गए, उनसे हम बात करें। जी नमस्कार, हेलो हेलो हेलो, जी नमस्कार, अपना नाम, हेलो, लगता है हमारी आवाज़ उन तक नहीं जा रही है
0: जी।
1: चाहेंगे दोबारा से कॉल लगा लें और जुड़ जाए हमसे। डॉक्टर जमूरत, अमृत की बात हमने कही
0: जी
1: और गाढ़े पीले दूध की बात
0: अभी करना है।
1: हाँ
0: जी,
1: इसके फायदे क्या हैं, यानी बच्चे के जन्म के ठीक बाद जो पहला गाढ़ा दूध है उसे मिस नहीं करना है,
0: एकदम नहीं मिस।
1: चाहे आपने कहा था ना कि चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो या फिर चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन एकदम से बच्चे को जरूरत होती है उसकी। एक सवाल जो मेरे मन में है
0: जी, जी।
1: वो ये है कि गर्भनाल का रिश्ता होता है बच्चे का पेट में,
0: एकदम
1: उस समय उसका खाना जो है 9 महीने तक
0: जी
1: गर्भनाल के माध्यम से ही जाता है,
0: जी जी,
1: सीधी सी बात है,
0: सीधी सी बात है।
1: लेकिन बच्चा के पैदा होने के बाद, जन्म के बाद वो मुंह से दूध ग्रहण करे, ये जो प्रक्रिया, उसमें दिक्कत आती होगी कभी कभी?
0: एकदम आती है,
1: है ना, क्योंकि
0: बच्चा को तो नहीं पता है कि उसको मुंह से सक करना है, उसको सिखाना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: आप उसको दूध जब दीजिएगा मुंह से तो उसको लगेगा अच्छा। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भगवान उसको रिफ्लेक्स दे के आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि साइड में मुंह के आप रखिएगा ना, तो वो सकलिंग रिफ्लेक्स उसको बोलते हैं कि सकल करेगा, वो चूसेगा, वो रिफ्लेक्स भगवान 7 मंथ पे ही दे देते, क्योंकि कोई 7वां बच्चा होता है या 8 महीने का, तो उसको भी आता है दूध चूसने, 7 मंथ पे ही गॉड उसको सकलिंग रिफ्लेक्स दे देते हैं।
1: एक श्रोता जुड़ गए हैं, जी नमस्कार, हेलो,
2: नमस्कार सर
1: जी, अपना नाम बताएं।
2: महाकाल सिंह हनुमानगढ़ से बोल रहा हूँ सर,
1: राजस्थान से
2: जी। सर
1: महाकाल सिंह जी, जिज्ञासा क्या है आज हेलो जिंदगी में, बताइए।
2: आज का विषय बहुत अच्छा है सर,

0: स्तनपान बच्चों के लिए तो जरूरी है ही, माताएं के लिए भी बहुत जरूरी है। स्तनपान कराने से बहुत बीमारी माताओं को नहीं लगता है।
1: अच्छा,
0: लेकिन इस फैशन के दौर में स्तनपान कराना बहुत कम महिला ही चाहती है।
1: अच्छा, ये बताइए, आप तो शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं?
0: जी, मैं नाना बना हुआ हूँ सर।
1: नाना भी बन गए, चलिए बधाई आपको। आपने अब तक जो अनुभव किया है उसके आधार पर आप ये बात बता रहे हैं है ना?
0: ये आप 10 साल से जो देख रहे हैं सर।
1: जी, 10 साल से।
0: अच्छा, 10 साल से पहले ये बीमारी नहीं थी। अब महिलाएं अपनी सुंदरता पर ज्यादा ध्यान देती हैं बच्चे के स्वास्थ्य के बजाय।
1: जी,
2: तो आज हम आपको
1: मैडम बता रही हैं आपको।
2: जी, आप सुनिए, आप जो भी अगर माताएं इनको लग रहा है कि अगर वो फैशन कर रही हैं, तो मैं बता दूं कि आजकल जो इतना ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है, तो अगर आप फुल ब्रेस्ट फीड कराएंगी तो उसका रिस्क बहुत घट जाएगा। दूसरा, ये चीज़ देखा गया है कि जो माएँ ब्रेस्ट फीड कराती हैं अपने बच्चों को, वो जल्दी पतली हो जाती हैं। जैसे डिलीवरी के टाइम में पेट निकल जाता है, पेट ढीला हो जाता है, वज़न बहुत ज़्यादा 10 किलो के अराउंड बढ़ता है, 10 से 12 किलो। अगर वो फीड कराएंगी अपने बच्चे को तो उनका वेट लॉस जल्दी होगा और वो शेप में जल्दी आ जाएंगी। तो आप काइंडली जो भी आपकी माँ, मतलब जो भी आपके घर के बच्चे हैं, आप तो नाना बन गए, आपके बच्चियाँ होंगी, आपकी बहू होंगी, उनको ये चीज़ ज़रूर बताइए कि आप अपने बच्चे को तो जो फ़ायदा दे रही हैं उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा। आपको डायबिटीज़ का रिस्क कम होगा, आपको हाइपरटेंशन का रिस्क कम होगा, आप पतली हो जाइएगा, आप हेल्दी रहिएगा, आपके मतलब क्या रिकवरी में फ़ायदा है। जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो ये करता है, वो हार्मोन आपके यूट्रस को भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब बच्चेदानी को भी जल्दी छोटा करता है और हर बॉडी का हर पार्ट का रिकवरी जल्दी करा के आपको जल्दी ठीक कर देगा।
1: लेकिन महाकांत सिंह जी की चिंता ये है ना कि आजकल माताएं ये सोचती हैं कि उनके स्तन का आकार बिगड़ जाएगा। असल बात वही है जहां हम कह रहे हैं।
2: जी जी,
1: जो ब्रेन में बात आती है, आपने इतने सारे फायदे गिना दिए है ना, मोटापा कम हो जाता है, समस्याएं कम हो जाती हैं, ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम हो जाता है, ये सारी चीजें अपनी जगह पर। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जो स्तन का जो आकार है वो बिगड़ जाएगा, इसको लेकर के अगर महिलाएं बच्चे को फीड नहीं कराती हैं, सवाल ये है मैडम।
2: जी, तो जी। उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि आजकल तो ज़माना इतना बढ़ गया है, आजकल इतने सारे तरह तरह के आपको सपोर्टिव ब्राज आ रहे हैं जिसकी वजह से आपका बिल्कुल शेप नहीं गड़बड़ाएगा अगर आप उसको ठीक से यूज़ कीजिए।
1: कार्यक्रम में महाकांत सिंह जी, कार्यक्रम में हम आगे चर्चा करेंगे कि अगर बच्चे को ठीक से
2: जी
1: उसके माथे पर ठीक से अगर हाथ रख करके और सही पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाए तो प्रकृति का दिया हुआ कोई भी अंग खराब नहीं होता है।
0: सर, पहले दूध उतरने का दवाई खिलाया जाता है, आजकल दूध बंद करने के दवाई लेते हैं। मैंने
1: बहुत सही फरमा रहे हैं आप महाकांत सिंह जी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। चर्चा करते हैं आज इस पूरे कार्यक्रम में, जुड़ने के लिए, कार्यक्रम सुनने के लिए महाकांत सिंह जी बहुत
0: निवेदन करूंगा सर, वॉल्यूम बहुत कम हो गया है 20-25 दिन से दरभंगा रेडियो स्टेशन का, आवाज कम हो गया है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, भागलपुर पटना के बजाय सर, इस पर ध्यान दीजिए।
1: अच्छा, हमने समझ लिया आपकी बात। ऐप पर, न्यूज ऑन AIR ऐप पर हमारी आवाज आपको कम मिल रही है, उसकी वॉल्यूम कम मिल रही है, यही शिकायत कर रहे हैं ना?
0: चलिए ठीक है, एक महीना से ये शिकायत आई है, पहले बहुत
1: जरूर ठीक है। ठीक है महाकांत सिंह जी, ये आवाज़ आप तक सही ढंग से जाए इसके लिए हमारे जो इंजीनियरिंग के विंग है, विंग के लोग हैं, वो भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो आवाज़ जाएगी आपके पास अच्छे से महाकांत सिंह जी। ठीक है,
0: जोर के निवेदन है सर, दरभंगा के अलावा मैं दूसरा सुनता नहीं बिहार का, और मुझे बहुत परेशानी होती है।
1: हमारा आग्रह भी है कि आप ऐसे ही सुनते रहिए, आवाज़ की क्वालिटी अच्छी मिलेगी आपको, हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। स्तनपान को लेकर उन्होंने एक बड़ी दीगर बात कही है महाकांत सिंह जी ने, उन्होंने कही है कि देखिए लोग दवा जो है ना, दूध आने के लिए नहीं, दूध बंद करने के लिए डॉक्टर से लोग सलाह मांगते हैं कि भाई
2: दवा
1: दे दीजिए कोई। एक और श्रोता का जुड़ाव हो रहा है। जी नमस्कार, हेलो, जी नमस्कार, बताएं।
3: मतलब मैम से पूछना था कि जैसे बच्चे हो गए, बड़े हो गए,
1: अच्छा,
3: उसके बाद मतलब जैसे जैसे मिल्क डिस्चार्ज हो,
2: जी जी जी,
3: कभी कभी उसका मतलब क्या,
1: अच्छा,
3: उससे कोई खतरा या कुछ?
1: कितने बच्चे हैं और आपका सबसे

0: जो छोटा बच्चा है वो कितने साल का है?
1: छोटा बच्चा 11 साल का है।
0: 11 साल का। आपने समस्या जो बताई है, कभी कभी रिसाव दूध का होता है आपके
2: जी जी
0: ब्रेस्ट
2: जी
0: से, सो यही ना सवाल
1: जी
0: है?
1: जी जी
0: नाम बताना चाहें तो बता सकती है, अन्यथा हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
1: बस
0: ठीक,
1: सवाल करना
0: बस
1: था।
0: सवाल करना था। लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और सवाल करने के लिए, बहुत बढ़िया सवाल है।
2: जी
0: ये पूछ रही हैं कि 10-11 साल का
2: जी
0: बच्चा हो गया है, फिर भी कभी कभी दूध
2: जी
0: का रिसाव के स्तन से
2: जी
0: होता
2: जी
0: है, ये क्या है? क्या
2: ये
0: ये
2: एक
0: गुड मतलब बैड साइन तो नहीं है? इनके मन में यही बात होती है।
2: बहुत बैड साइन नहीं है, लेकिन आपको इसमें इलाज की ज़रूरत है। एक हार्मोन, जैसे मैंने बताया, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से आपको दूध बन रहा है और दूध रिस रहा है। तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और उसका दवा लीजिए। बहुत
0: अच्छा,
2: बार
0: एक
2: हाँ
0: एक और सवाल।
1: वो खुद अपने आप बंद भी हो जाता है कभी
2: हाँ
1: कभी
0: हाँ
1: कभी कभी
0: लेकिन
1: फिर
0: एक एक जो बात है इसमें,
2: जी
0: क्या गर्भ निरोध का कौन सा उपाय आप कर रहे हैं? कभी कभी कुछ दवाओं की वजह से
2: जी
0: भी होता है, कौन सा उपाय कर रही हैं? अगर आप गर्भ निरोध का कोई उपाय कर रही हैं तो थोड़ा मैडम को बता दें, ताकि सही सलाह आपको पहुंच जाए। जी बताइए, क्या आप कोई टैबलेट खा रही हैं गर्भ निरोध के लिए, या इंजेक्शन ले रही हैं?
1: नहीं,
0: या इंजेक्शन ले रही हैं?
1: इंजेक्शन
0: इंजेक्शन ले रही थी क्या?
2: जी
0: इंजेक्शन की वजह से भी ऐसा हो
2: होता
0: सकता
2: है, हार्मोनल इम्बैलेंस है एक तरह का।
0: है?
2: लेकिन मैं हमको ये सजेस्ट करूंगी, एक बार ज़रूर डॉक्टर से मिलिए, ब्लड का जांच करवाइए, एक बार ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराइए, क्योंकि बहुत बार डक्टलेक्टेजिया वगैरह में भी ये चीज़ होता है। एक बीमारी होती है जिसमें, मतलब जो नली रहती है, जिस नली से दूध आता है, उसका इन्फेक्शन की वजह से भी डिस्चार्ज आता है। तो अगर वो चीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है।
0: अच्छा, कोई और साइन जिस समय ये रिसाव होता है, क्या उस समय आपको हल्का बुखार या कुछ समस्या
2: हाँ,
0: होती
2: ब्रेस्ट
0: है?
2: टाइटनेस
0: नहीं,
1: वगैरह
0: नहीं।
1: ऐसा कुछ नहीं
0: अच्छा,
1: होता।
0: जो दूध का जो रंग है वो नॉर्मल रंग है या कोई और रंग है, ये भी बताइए।
1: नॉर्मल ही
0: नॉर्मल
1: है।
0: है,
2: तो
0: ठीक है।
2: हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया ही आपको होगा मोस्ट प्रोबेबली। आप प्लीज अपने डॉक्टर से एक बार जरूर, जब आपको दूध आए, ऐसे नहीं अगर अभी नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन जब दूध आए तो जरूर आप अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ ना, मतलब बोले कि बड़ा चीज़ भी बन सकता है। कभी
0: हाँ,
2: कभी 100 लोग में एक लोग, अब वो एक लोग कौन है कोई नहीं जानता है।
0: सही बात है। एक बार अपने अपनी डॉक्टर से मिलिए, गायनेकोलॉजिस्ट से
2: जी
0: जो, और उनसे राय लीजिए, लेकिन तब लीजिए जब ऐसी
2: हाँ
0: समस्या हो तो ज़्यादा
2: हाँ
0: सहूलियत हो
2: जी
0: जाती
2: जी
0: है
2: जी
0: उस
2: जी
0: समय।
2: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम सुनने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चर्चा हो रही थी। अब एक बात तो है कि महाकांत सिंह जी ने कहा कि माता के लिए बहुत फ़ायदे हैं,
2: जी
0: और मोहन पासवान जी भी चाह रहे थे ये जानना कि माता को क्या फ़ायदा है भाई।
2: जी
0: बच्चे को तो फ़ायदा है क्योंकि
2: जी जी
0: उन्हें दूध मिल रहा है, उनका पोषण है, आहार
2: जी
0: है,
2: जी
0: लेकिन माँ को क्या फ़ायदा है? आपने दो
2: जी
0: तीन चीज़ें बताई,
2: जी जी
0: और हम समझते हैं कि मोहन पासवान जी और ये शहाबुद्दीन जी भी स्तनपान को लेकर सवाल करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पाए। तो एक एक बार फिर से हम बता दें कि आज हेलो ज़िंदगी का विषय है स्तनपान के फ़ायदे, बतौर विशेषज्ञ डॉक्टर जमूरत परवीन, जानी मानी प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी हैं, बिहार की स्वास्थ्य विभाग में पदस्थापित हैं। और श्रोताओं, अगर हमारी बहनें जुड़ेंगी कार्यक्रम में तो ज़्यादा बढ़िया होगा। स्तनपान को लेकर किसी भी तरह की कोई भी समस्या है या किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा है, कोई सवाल है, तो डॉक्टर जमूरत परवीन आज हेलो ज़िंदगी में बतौर विशेषज्ञ आमंत्रित हैं, उपस्थित हैं। जो नंबर आप हमें फ़ोन करके, जिस नंबर पर आप फ़ोन करके डॉक्टर जमूरत से अपने सवाल कर सकती हैं, वो नंबर है 9430029353, 9430029353। आपकी सहायता के लिए दूसरा नंबर भी है 0627222481, 0627222241। ये दोनों नंबर खुले हुए हैं, कार्यक्रम का समय 12 बजे तक का है। तो अब तक तो हमने बहुत सारी चर्चा कर ली
2: जी
0: गाढ़े पीले दूध के बारे में, हमने चर्चा कर ली कि भाई जो ब्यूटी है
2: जी
0: वो, उसको लेकर के आज हमारी बहनें बहुत ज़्यादा चिंतित
2: जी
0: रहती
2: जी
0: हैं
2: जी
0: कि शेप एंड साइज जो है बिगड़ जाएगा।
2: जी
0: लेकिन देखना ये होगा कि आपने एक संतति को जन्म दिया है
2: जी
0: और माँ को सृष्टि का आधार माना गया है,
2: जी
0: क्योंकि दुनिया उसी से बची है, हम बचे हैं और हमारी संख्या है,
2: जी
0: पुरुष हो या स्त्री हो, तो माँ के माध्यम से ही है। तो एक बहुत बड़ा फर्ज होता है बच्चे का पालन पोषण,
2: जी
0: और माँ जितना बेहतर समझती है उतना बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए हर माँ को ये समझना होगा कि उनके सामने प्राथमिकता क्या है,
2: जी
0: बच्चा या कुछ और।
2: जी
0: और अगर बच्चा है तो बाकी चीज़ें भी हैं ध्यान देने की, लेकिन थोड़ा सा उसको गुरेज भी करे तो काम चलेगा। हम

0: ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक के बारे में आज कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, जिसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। आमतौर पर माताएं क्या करती हैं, सोई हुई हैं। अब बच्चे का क्या है ना, एक सवाल आया था बहुत इम्पोर्टेंट मोहन पासवान जी की तरफ से, 24 घंटे का समय होता है, कब दूध पिलाएं बच्चे को
1: जी?
0: क्या जब रोएगा तब पिलाएंगे, या फिर कोई टाइम टेबल है जो 2-3 घंटे में हम पिला दें? कुछ बच्चे 5-6 घंटा तक बगैर दूध पिए आराम से रह जाते हैं, 3-4 घंटे तक भी, और कोई कोई बच्चा तो इतना, अब तो उसके माताएं कहती हैं बहुत शैतान है।
1: जी, जी,
0: हम
1: जी.
0: नहीं कहेंगे, क्योंकि बच्चे की रिक्वायरमेंट है। अगर 1 घंटे के बाद भी उसको दूध की जरूरत है तो माता को देना पड़ता
1: जी,
0: है,
1: जी, है ना
0: है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है अब तो सरकारी सेवा हो चाहे कोई भी सेवा हो, जहाँ कामकाजी महिलाएं बाहर काम करती, उन्हें बहुत लंबा समय दिया हुआ है मैटरनिटी के तौर पर,
1: वो
0: इस्तेमाल 6 महीने तक, इसीलिए शायद दिया गया होगा कि 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग एकदम कंपलसरी है, तो उन्हें इसकी सुविधा मिलनी चाहिए, है ना। तो टेक्निक क्या है बच्चियों को दूध पिलाने की, ये सवाल है। लेकिन एक बात और भी है कि हम समझें कैसे कि बच्चा भूखा है, ये भी बात है।
1: देखिए, तरीका तो ये है कि हर 2 घंटे पे आपको बच्चे को फीड कराना है। अगर 2 घंटे से पहले आपका बच्चा रो रहा है तो आप उसको ज़रूर दूध पिलाइए, लेकिन हर 2 घंटे पे कोशिश कीजिए। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आपका बच्चा सोया हुआ है तो उठा के अगर 2 घंटा हो गया तो नहीं दूध पिलाना है, वो खुद उठेगा, खुद रोएगा, तो वो आपको उसको दूध पिलाना है।
0: एक बात और भी है ना कि जन्म के साथ जो बच्चे का जो सोना है
1: सोना
0: वो लंबा होता है
1: जी, 18 घंटा तक बच्चा बोलते हैं कि सो सकता है।
0: तो जो बच्चा 24 घंटे में 18 घंटा सोएगा, तो माँ व्यथित रहती है थोड़ी
1: जी,
0: कि अब इतना सोया सो रहा है, इतना देर तक सोया हुआ है, बच्चा मेरा भूखा होगा?
1: नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। भूख लगेगा, बच्चा उठेगा ही।
0: अच्छा,
1: कितना देर वो सोएगा? नहीं सोएगा, वो सोता है 18 घंटा, लेकिन वो क्या बोले, स्लीप साइकिल कंप्लीट करके उठता है, दूध पीता है, फिर सोता है।
0: लेकिन एक स्थिति और भी आती है डॉक्टर जमूरत परवीन, जब माताओं को एक कशमकश हो जाती है कि दूध इतना उतर गया स्तन में कि नहीं पिलाएं तो काम नहीं चलेगा
1: जी,
0: अब उस समय क्या करें?
1: देखिए, अगर आपको लग रहा है कि बच्चा दूध पी लिया, उसके बाद भी आपको दूध बच रहा है, तो उसको आप एक्सप्रेस कर लीजिए। आप ब्रेस्ट पंप यूज़ कर सकती हैं, आजकल इतने सारे मार्केट में आ गए, ब्रेस्ट पंप को निकाल करके आप उस दूध को स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में। कम से कम 8 से 12 घंटा आपका वो दूध ठीक रहेगा, फिर आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर करके उसको आप बच्चे को पिला सकती हैं। लेकिन एक्स्ट्रा दूध छाती में नहीं रहने देना है। क्यों? क्योंकि आप एक्स्ट्रा दूध छाती में रखेंगी, मिल्क क्या है, एक तरह का अच्छा चीज़ है, कल्चर मीडिया है, बैक्टीरिया आएगा उसको, आपके छाती में दूध भरा हुआ है उस पर बैक्टीरिया आएगा, और वो जो मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम, छाती लाल हो जाना, दर्द होना, ये सब चीज़ हो सकता है। तो छाती में एक्स्ट्रा मिल्क नहीं रहने देना, उसको इधर फेंक देना है। अगर आप स्टोर करना चाहें तो स्टोर कर सकती हैं, लेकिन उसको नहीं रहने देना है। कभी कभी उसमें पस भी बन सकता है और चीरा भी लगाने का जरूरत।
0: डॉक्टर जमूरत, थोड़ा और पीछे चलते हैं, बच्चे के जन्म के साथ दूध उतरने की जो प्रक्रिया है कभी कभी बड़ी लंबी हो जाती है
1: जी,
0: तो वहाँ तो दिक्कत होती है, वहाँ क्या करती हैं आप?
1: वही करते हैं, हर 2 घंटे पे माँ को बोलते हैं कि दूध में लगाइए, चाहे बच्चा खींचे चाहे नहीं खींचे।
0: हाँ।
1: क्योंकि उसको आता नहीं ना है दूध खींचना, उसको पता नहीं है कि वहाँ से दूध आता है, तो आपको क्या करना। हाँ, इसमें क्या माँ गलती करती है कि पहले डब्बा का दूध पिला देती है फिर अपने छाती में लगाती है, तो वो क्यों खींचेगा? कोई भी बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता। दूध पीना एक बहुत, क्या बोले, बच्चे के लिए बहुत हार्ड प्रोसेस है। वो पूरा पैलेट को ऊपर करके सक करता है, अच्छा खासा उसको प्रेशर लगता है। जब उसको पैसिवली दूध मिल रहा है तो वो क्यों छाती से खींचेगा? तो पहले आपको अपने छाती का पिलाना है, छाती का पिलाने के बाद लग रहा है कि बच्चा रो रहा है तब फिर ऊपर का दूध देना, ये वाला चीज़ इम्पोर्टेंट है।
0: तो ये बड़ी बात है कि ज़्यादा। अच्छा, एक सवाल और भी है
1: जी,
0: किसी के 2 बच्चे हुए,
1: ठीक है,
0: डिलीवरी हुई
1: जी,
0: सीजेरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, 2 बच्चे में दूध तो उतरा अच्छे से, तीसरे में मिसिंग, क्यों और उस समय क्या करें?
1: सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस की वजह से माँ को दिक्कत होता है। सबसे पहले आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं करना है, 2 बच्चा
0: पहले स्ट्रेस तो ये हो गया ना डॉक्टर जमूरत कि तीसरा बच्चा आ गया
1: जी,
0: है ना। अब 2 बच्चे की प्लानिंग में पहले से लगे हैं,
1: और तो उसमें फैमिली सपोर्ट इम्पोर्टेंट है, आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट करें।
0: दुर्भाग्य से अगर तीसरा बच्चा लड़की
1: हो गई तब तो ओटी टेबल या क्या कहिए, डिलीवरी टेबल से ही पेशेंट रोना शुरू कर देती
0: है।
1: हम लोग डर से बताते नहीं है कि लड़की पैदा हुई है,
0: ये बड़ी दुरुस्त
1: जी है। जी,
0: समाज में माताओं को और पिता को
1: जी
0: समझना चाहिए कि लड़का हो या लड़की हो
1: जी,
0: ये हमारे जीवन के हिस्से हैं
1: जी,
0: और

0: सृष्टि के लिए जरूरी है।
1: अगर लड़की तो ही नहीं रहेगी तो कहाँ से?
0: लड़की की संख्या कम हो गई है
1: जी, जी।
0: 1000 पे 100 से ज्यादा एक्यूरेट हर स्टेट में अलग अलग है
1: जी, जी।
0: एक 1000 में 100 से ज्यादा
1: मतलब लड़कियां कम है,
0: कम पड़ गई हैं,
1: कम पड़ गई हैं।
0: अब तो शादी के लिए उल्टी उल्टी बातें
1: हो रही हैं जी जी।
0: पहले लड़का खोजा जाता था लड़की के लिए, अब लड़कियां खोजी जा रही हैं कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए
1: जी जी।
0: और ये दिक्कत है समाज में, असंतुलन। इसलिए अगर तीसरी बेटी भी है, दूसरी बेटी भी है, तो उसका जो ये डिप्रेशन जो है ना
1: जी जी,
0: तनाव
1: जी,
0: टेंशन, वो माताओं को नहीं लेना है,
1: नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना।
0: वो कोई भी बन सकती हैं। अभी देखिए राष्ट्रमंडल खेलों में हमारी महिला मुक्केबाजों ने और महिला खिलाड़ियों ने कितना दमखम दिखाया है,
1: सही बात है
0: ना। तो कहीं भी पहुंच सकती है, अंतरिक्ष की, अंतरिक्ष
1: से लेकर। भाई अच्छा, नहीं है हमको, और तीनों बहन हम लोग अच्छे पोस्ट पे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पापा बहुत खुश हैं कि मेरे बेटा ही, बेटी ही मेरा बेटा है, हम ही लोग पापा का सपोर्ट कर रहे हैं।
0: हम तो ये कहते हैं डॉक्टर जमुरद
1: जी
0: कि बेटी ही बेटा क्यों, अरे बेटी बेटी ही बहुत है
1: जी जी, सही बात
0: है ना। उसे बेटा से तुलना करने की जरूरत क्या होती है भाई। बेटी हमेशा जब तक वो होती है, कहीं भी होती है, माँ बाप की जितनी चिंता, जितनी फिक्र और उनकी सेवा जितनी बेटी करती है,
1: बेटा नहीं करता,
0: वो अद्वितीय है, उसके आगे कुछ है नहीं। तो आज ये समझने की बात है, अगर अगर लड़की हो रही है तो उसके बाद आप टेंशन में ना आए, जितनी भी माताएं हैं, और टेंशन में नहीं आएंगी तो दूध उतरेगा
1: जी,
0: ये भी बात है,
1: दूध उतरेगा
0: है ना।
1: और बहुत सारे जैसे घरेलू उपचार हैं जो सासू माँ लोग रहती थी पहले, वो केमिकल उसको क्या जड़ी बूटी का बना करके देती थी, उससे दूध उतरता था। ऐसे आप अश्वगंधा ले सकती हैं, सतावरी ले सकती हैं, ये सबसे भी दूध उतरता है। आप दाल का अच्छा अमाउंट लीजिए, प्रोटीन का अच्छा अमाउंट लीजिए, खुद दूध पीजिए,
0: मसूर का दाल
1: जी, मसूर का दाल जी, अच्छा बना करके ये सबसे। और स्लीप आप अच्छे से सोइए, जिस वक्त आपका बच्चा सो रहा है आप भी सो जाइए, हो सकता है रात में आपको नहीं सोने दे रहा है, तो दिन में जब बच्चा आपका सो रहा है उस टाइम सो जाइए।
0: अब आते हैं फीडिंग पोस्चर को लेकर
1: जी,
0: सही तरीका क्या है बच्चे को दूध पिलाने का?
1: सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहले माँ खुद कंफर्टेबल हो जाए। जो आजकल इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है बैक पेन का, क्यों हो रहा है? माँ को सही पोजीशन नहीं पता, टेढ़ा कुबरा बैठ करके दूध पिलाती, उस वजह से उसको बैक पेन होता है। तो सबसे पहले खुद कंफर्टेबल होना है, पीछे कुछ सपोर्ट रखिए, चाहे आप अगर घर में है तो दीवार है या सोफे पर बैठ के पैर के नीचे आराम से सपोर्ट करके, जिस तरफ के आप छाती से दूध पिला रही हैं उसके पैर के नीचे तकिया रखिए। बच्चा का सर हमेशा ऊपर रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बच्चा सरक सकता है और ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, सांस की नली में जा सकता है, उठाना है। उसके बाद क्या है, वो जो काला एरिया जो निपल के अराउंड का रहता है जिसको एरियोला बोलते हैं, वो पूरा बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। मुंह जो है पूरा खुला होना चाहिए और चिन जो है वो सटा होना चाहिए, जो बच्चे की ठुड्डी है वो छाती में सटी होनी चाहिए। अगर आप ऐसे एकदम कम्फर्टेबल उसको पिलाएंगे तो ज़रूर आपका बच्चा छाती से पकड़ेगा। थोड़ा सा आप निपल प्रेस करके थोड़ा दूध निकालिए ताकि बच्चे को पता चले कि यहाँ से दूध आएगा, वो खुद सक करेगा, उसको सकलिंग रिफ्लेक्स है, उसको भगवान दे करके भेजें कि तुमको सक करना है, दूध पीना।
0: सबसे बढ़िया पोस्चर कौन है? क्या नीचे बैठकर गोद में रखकर बच्चे को दूध पिलाना
1: सबसे बेहतर है कि आपका पोजीशन ठीक रहना चाहिए। अगर आप अच्छे घर से हैं, आपके घर में सोफा है, तो मैं कहूंगी सोफे पर बैठ के, नहीं सोफा है तो आप जमीन पर भी बैठ के पिलाइए, लेकिन पीठ पर सपोर्ट एकदम से रहना चाहिए। जैसे आप सोचिए ना, आप खुद अगर सो के खाइएगा तो कैसे आपको सरक जाएगा, उसी तरह आपका बच्चा भी अगर सिंपल सोया रहेगा उसको सरकेगा, तो सर हमेशा उठा हुआ रहना चाहिए बच्चे का, ये एकदम से ध्यान देना है बात को।
0: और जो माताएं रात में लेटी हुई हैं, सोई हुई हैं, और बच्चा दूध के लिए रोता है
1: जी,
0: तो सीधे फीड कराना शुरू कर देती हैं, उसके बाद बच्चा भी सो जाता है, माँ भी सो जाती है,
1: और इसी में बच्चा कभी कभी सोया रह जाता है। मेरी एक दो पेशेंट है जिसका बच्चा ऐसी तरह रात में सुला दी माँ और सुबह में बच्चा नहीं था,
0: क्योंकि
1: सरक गया उस बच्चे को।
0: अच्छा,
1: आप तरीका है कि आप दूध पिलाइए, बच्चे को ढकार दिलाइए, कम से कम 15 मिनट कंधे पे रख के। अब जरूरी नहीं है बच्चा ढकार करेगा उसका आवाज आ ही नहीं, आपको 15 मिनट कम से कम कंधे पे रखना है। अगर बहुत ज्यादा आपको दिक्कत है तो आप दूध पिला के किसी बगल में दे दीजिए, वो उसको 10 मिनट अपराइट खड़ा करके रखेंगे, नहीं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा चांस रहता है 6 महीने तक बच्चे को दूध सरकने का। तो इस चीज का ध्यान देना, अगर आप लिटा के बहुत मजबूरी में पिला भी रही है तो ये चीज ध्यान रखना, बच्चा का सर हमेशा ऊपर रहे। और अगर आप बच्चा को सुला रही है बिना कराए तो हमेशा करवट में सुलाना है, पीछे तकिया डाल देना ताकि बच्चा।
0: माताएं कई बार जो है ना वो बच्चे को दूध पिलाते पिलाते सो जाती है या बातचीत में लग जाती है, उनका अटेंशन बच्चे पर नहीं होता है, और कभी कभी दूध का स्राव जो है ना वो बच्चे के कान तक में चला जाता है,
1: क्योंकि वहाँ आपका कनेक्शन है ना कान का, और जो नेजोफेरिंग से कान का कनेक्शन हो जाता है, और इसी वजह से आजकल आप बहुत सुनिएगा कि

0: कंप्लेन करती है बच्चे को हमेशा सर्दी रहता है, ठीक नहीं होता, क्यों? इसी वजह से, वो जो दूध उसके कान में जाता है, नाक के रास्ते से कान देखिएगा, बच्चा नोचेगा, हमेशा सर्दी रहेगा, यही इसका कारण है और कोई कारण, क्योंकि माँ ठीक से बच्चे को दूध नहीं पिला रही है।
1: बहुत अहम विषय है ये
0: जी, बहुत
1: ठीक से दूध पिलाना, सिर्फ दूध उतरना ही काफी नहीं है, बच्चे को दूध 6 महीने तक मिलना ही जरूरी नहीं है, बच्चा सही ढंग से दूध पिए
0: जी
1: इसकी भी जरूरत माँ को ही है कि बच्चा उसका स्वस्थ भी रहे 6 महीने तक। अच्छा डॉक्टर जबूरत, ये बताइए कि 6 महीने तक आपने रिकमेंड किया, सारी जो WHO है वो भी और जो स्वास्थ्य महकमा से जुड़ी हुई बातें हैं, सब के सब रिकमेंड करते हैं कि 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध
0: जी।
1: क्या माँ के दूध में इतने मिनरल है ना, इतने पौष्टिकता वाले आहार होते हैं कि वो 6 महीने तक उनका पोषण सही ढंग से कर सके?
0: एकदम, इसीलिए तो अमृत कहा गया है, एकदम से उसमें उतना अमाउंट ऑफ वाटर रहता है, विटामिन्स रहता है, प्रोटीन्स तक रहता है जितना बच्चे को चाहिए, उसके अलावा एंटीबॉडीज रहता है, क्योंकि 6 महीना तक बच्चे का खुद इम्यूनिटी नहीं डेवलप रहता है कि अपने लिए एंटीबॉडी बनाए, मतलब बीमारी से बचे।
1: एक बात जो छूट गई
0: जी,
1: वो जो गाढ़ा पीला दूध जो बच्चे
0: जी, जी,
1: को मिलता है जन्म के ठीक बाद
0: जी,
1: उसमें रोग से लड़ने
0: जी,
1: की
0: एकदम उसमें भी जी IgG IgM होता है उसमें, आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं।
1: अच्छा,
0: जो कि बच्चे को बीमारी से बचाते हैं, जो एंटीबॉडीज हम लोग बोलते हैं वो होते हैं।
1: ये बहुत बड़ी बात है
0: जी, और वो थोड़ा ही अमाउंट है क्योंकि बच्चा तो छोटा सा, उसका उतना बड़ा पेटी है, उसको एक
1: यानी प्रकृति ने एक तरह से रोग से लड़ने के लिए एकदम से नन्हा कोमल गुलाबी जो शिशु है उसके लिए एक व्यवस्था भी
0: कर दी है जी,
1: कि आपको मतलब एकदम से उसको इम्यूनाइज करने के लिए,
0: कर दिया,
1: नेचुरल इम्यूनाइजेशन जो है
0: एकदम।
1: वो गाढ़ा पीला दूध जो पहला दूध आता है बच्चे के जन्म के बाद, उसको मिस नहीं करना है। एक श्रोता है जी, नमस्कार, हेलो,
2: नाम संजय बाबू
1: जी, प्रणाम, अपना नाम बताएं।
2: हम बरवारा से बोल रहे हैं, राम बालक महतो।
1: राम बालक महतो जी, हेलो, जिंदगी में स्तनपान से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो बताइए।
2: मेरा एक पोती है, वो लगभग 2 साल के है
1: जी,
2: जब कमजोर होती है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो और कोई ताकत के दवाई नहीं देते हैं और कहते हैं तो दाल भात की सब खिलाओ, दूध नहीं पीने से आती है अलग से।
1: अच्छा,
2: और माँ का दूध तो होता नहीं है, क्या दोबारा पैसेज है?
1: एक बात बता दीजिए, आपकी पोती का जब जन्म हुआ था तो क्या 6 महीने तक वो दूध पी थी अपनी माँ का?
2: हाँ,
1: पी थी। अच्छा, ठीक है,
2: अलग से दूध पीने से आते ही नहीं है।
1: अच्छा,
2: तो हमने एक बात सोचे है, पहले पुरानी वाली बात
1: जी,
2: हम लोग को माँ बुल्लर का दूध पिलाती थी बच्चे को कमजोर पड़ने पर।
1: किसका दूध?
2: गुल्लर का
1: दूध। अच्छा,
2: उसमें दूध निकलता है, कि कुत्ते से मारने से निकलता है, एक आध चम्मच। वो पिलाते थी कमजोर बच्चे को।
1: देखिए, हमें लगता है डॉक्टर जमुरत सही बताएंगे आपको बढ़िया से, कि 2 साल की बच्ची के लिए है ना
0: जी,
1: सिर्फ दूध विकल्प नहीं है।
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, वो 6 महीना के बाद उसको हर चीज का जरूरत है। आप उसको, जैसे आपको कमजोरी लगता है तो आप क्या खाते हैं? आप भी भात दाल सब्जी खाते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा में जूस पी लिए, ये किए, तो उसी तरह आपके छोटे जो 2 साल की बच्ची है, अब उसको हर चीज का जरूरत है, दूध का अब उसको बहुत जरूरत नहीं है। हाँ, दूध का ऑब्वियसली सबको एक बार रात में और एक सुबह में जरूरत है, लेकिन उसके अलावा उसको आप ग्रीन वेजिटेबल्स दीजिए, हरी सब्जियां दीजिए, साग दीजिए
1: जी,
0: थोड़ा तो उसको आप आदत, जैसे आप जितना बार खाते हैं, अपनी पोती को अपने साथ बैठाइए, आप अपने साथ उसको खिलाइए, आप जो जो खाइएगा सब वो खाएगी, उसको वैसे ही ताकत मिल जाएगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम सुनने के लिए। थोड़ा सा एज जो है आगे चला गया है कार्यक्रम से, इतर हो गया थोड़ा सा अलग, अगर खान पान पर जब कार्यक्रम करेंगे ना तो उस कार्यक्रम में आप फोन लगाइएगा और उसमें सही ढंग से बताया जाएगा आपको कि बढ़ते हुए बच्चे का जो पोषण है वो कैसे होना चाहिए, और सिर्फ बच्चे का ही नहीं बड़े का भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोग छोटे बच्चे होते हैं तो उसको लेकर के ज़्यादा चिंतित होते हैं। एक सवाल ये भी आया था डॉक्टर जबूरत, वो ये कि 6 महीने स्तनपान के दौरान कुछ बच्चे हिस्ट पुष्ट हो जाते हैं
0: जी,
1: बड़े अच्छे लगते हैं
0: जी,
1: और कुछ बच्चे दुबले रह जाते हैं।
0: हाँ,
1: ये क्या है भाई? आप तो कोई अलग से आहार की जरूरत तो है नहीं, बच्चा जब डिमांड करता है उसे दूध मिल जाता है।
0: हाँ,
1: और कुछ बच्चे उसी दूध में बड़े अच्छे लगते हैं, कुछ बच्चे मतलब दुबले रह जाते हैं। अब माताएं चिंता में पड़ जाती हैं, अगर अड़ोस पड़ोस में कोई

0: अच्छी उम्र का बच्चा हुआ
1: जी जी,
0: तो उसे देखकर छाती जो है ना एकदम से अजीब हो जाती है। आपको कहती होंगी आकर के, मैडम आप ही के यहाँ हमारे ही साथ जो बच्चे हुए थे हमारे पड़ोस के, वो तो देखिए कितना बढ़िया है, वो भी दूध ही पी रहा है, हम भी दूध ही पिलाते हैं, क्या हो गया इसको।
1: बहुत कुछ जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। अगर माँ बाप पतले हैं तो बच्चा कैसे मोटा होगा, आप ये चीज़ सोचिए, क्योंकि बराबर सबको न्यूट्रिशन मिल रहा है। और आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे दूध पी करके, माँ का दूध का बात कर रही हूँ मैं, मोटे होते हैं 6 महीना, आप खुद देखिएगा 8-9 महीने का फिर से वो शेप में आ जाते हैं, क्योंकि वो जो रहता है ना वो कुछ दिनों का ही रहता है। हाँ, लेकिन अगर आप डब्बे का दूध पिला रहे तो वो बच्चा तो पक्का मोटा रहेगा, और वो मोटा रह जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा शुगर्स रहते हैं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। तो आप देखिएगा डब्बे के दूध वाला बच्चा ज्यादा मोटा रहता है और वो नॉर्मल नहीं होगा, वो मोटा ही रह जाएगा, और बाद में उसको ओबेसिटी का, मोटापा का, डायबिटीज का चांस बढ़ जाएगा।
0: एक सवाल, 6 महीने तक अगर दूध सही ढंग से न हो, कम होता जाए, कम पड़ जाए, तो क्या करें पूरा आहार के तौर पर?
1: आप डब्बे का दूध दे सकते हैं, जो कि बच्चे के, वो जो डब्बे का दूध रहता है उसमें प्रोवन जो रहता है वो उसी के बच्चे के हिसाब से रहता है। मोस्टली गाय के दूध से बेटर है कि आप वो डब्बे का दूध दें, लेकिन मैं ये रेकमेंड करूँगी कि माँ खुद से अपना आहार बढ़ाए। बहुत सारे अब तो ऐसे जड़ी बूटी के अलावा बहुत सारे टैबलेट्स आ गए हैं, पाउडर्स आ गए, जो खाने से दूध एकदम से आपको 1 से 2 दिन में बहुत अच्छा आने लगेगा। तो आप वो डॉक्टर से आप वो दवा लीजिए, वो खाइए, और कोशिश कीजिए कि आप अपना ही दूध पिलाएं।
0: हमारे घरों में पुराने समय से जो दादी माँ, नानी माँ हुआ करती थी
1: जी,
0: उनके पास बहुत सारी विधियाँ होती थी
1: जी जी,
0: है ना
1: जी,
0: वो बताती थी ये दाल खिलाओ, ये दाल का पानी पिलाओ,
1: जी, जी,
0: ये
1: जी,
0: ये खाना खिलाओ। वो सिर्फ उस समय नहीं जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद ही नहीं
1: जी,
0: बल्कि गर्भधारण के समय से लेकर के
1: जी
0: और बच्चे के जन्म के बाद तक जो हमारी दादी और नानी के नुस्खे के तौर पर जो लोग कहते हैं वो बड़ा सजग रहती थी।
1: बहुत एकदम वही साइंटिफिकली एक्चुअली वो सब रहता था, बोलने के लिए ये है पुराने जमाने का, लेकिन वो बहुत साइंटिफिक होता है, वही चीज का तो अब टैबलेट बन रहा है।
0: बल्कि वो तो कहती थी कि बहू के बारे में कि भाई वो नाश्ता की, खाना खाई, वो 2 जान है, ऐसा हाँ, बोलती थी, वो अकेली नहीं है,
1: 2 जान
0: उसके अंदर एक बच्चा भी पल रहा है, उसका भी खुराक उसे चाहिए।
1: जी जी,
0: आज एकल परिवार हो गया
1: जी,
0: संयुक्त परिवार अब रह नहीं गया,
1: रहा नहीं।
0: ज्वाइंट फैमिली में क्या होता था कि ऐसे लोग मिल जाते थे सलाह देने वाले, उसके लिए काम करने वाले लोग भी,
1: और उससे होता था कि माँ का प्रेशर भी कम हो जाता था। अब न्यूक्लियर फैमिली में बहुत दिक्कत हो रहा है, फीड, स्ट्रेस, सब कुछ मैनेज करना, इस वजह से भी दूध कम हो रहा है। माँ वर्किंग है, नहीं वर्किंग है तो अकेले हैं, स्ट्रेस है, हस्बैंड चला जा रहा है, तो स्ट्रेस की वजह से भी दूध कम हो रहा है। बच्चे को, कोई ऐसे बच्चे रहते थे घर में, दादी नानी रहती थी, बच्चे को कंट्रोल कर लेती थी, अब वो भी नहीं है,
0: दिक्कत है
1: जी, दिक्कत है।
0: तो इस दिक्कत का क्या निदान है भाई?
1: मैं तो यही बोलूंगी कि ज्वाइंट फैमिली अच्छी होती है, आप उसका फायदा उठाइए।
0: 6 महीने जो छुट्टी मिलती है ना,
1: हाँ, मम्मी के पास चले जाए, सासू माँ के पास चले जाए,
0: तो 6 महीने बस हाँ, वहाँ बिताए तो ज्यादा बेहतर,
1: ज्यादा बेहतर,
0: ज्यादा
1: जी,
0: ज्यादा बढ़िया
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: एक बात कि स्तनपान करते समय कुछ समस्याएं होती है डॉक्टर?
1: जी जी जी, जैसे क्रैक निपल, रिट्रैक्टेड निपल, जी जी,
0: पेन का होना,
1: पेन का होना,
0: सूजन हो जाना,
1: जी जी,
0: तो कड़ापन, और कभी कभी मुश्किल से दूध उतरना
1: जी,
0: जब उतरना शुरू होता है तब ठीक रहता
1: जी,
0: है, लेकिन
1: जी,
0: उतरने तक बहुत कठिनाई होती
1: जी,
0: है, ये सब समस्याएं क्या है?
1: जैसे कि अगर आपको क्रैक निपल होता क्यों है, बच्चा को अगर आप ठीक से लैचिंग नहीं कराएगा, ठीक से दूध नहीं पिलाएगा, वो तो टेढ़ा पकड़ेगा निपल को, उसमें ही वो चीज़ कटता है। अगर आपको कट गया है तो अब ये नहीं है कि उससे दूध नहीं पिलाना, आपको उसमें दूध पिलाना है, आपके डॉक्टर आपको एक मलहम देंगे, उस मलहम को लगाना है और उससे वो हील हो जाएगा। और सबसे अच्छा क्या बोलते हैं ना हम लोग कि जो दूध है, दूध ही उसको हील करता है, तो उसको आपको मलहम लगाना है, फिर बच्चे को दूध पिलाना। दूध बिल्कुल नहीं रोकना है कि मुझे घाव हो गया है तो बच्चा को मैं लगाती हूँ तो मुझे दर्द करता है, उससे करने से आपको और दिक्कत हो सकता है, क्यों, क्योंकि दूध जमा होगा छाती में और उससे मेस्टाइटिस हो सकता है, ब्रेस्ट एब्सेस हो सकता है, और हो सकता है कि वो एब्सेस बनने का आपको चीरा लगाना पड़े, तो ये बहुत छोटा चीज़ बड़ा बन जाएगा। तो आपको डॉक्टर से मिलना है, मलहम का यूज़ करना और बच्चे को दूध पिलाते रहना है। बहुत बार रिट्रैक्टेड निपल होता है, मतलब निपल अंदर की तरफ घुसा हुआ रहता है, बच्चा उसको पकड़ नहीं पाता है, तो बहुत सारे नए टेक्निक्स भी है, बहुत सारे पुराने टेक्निक्स भी है, जिसको सिरिंज को उल्टा करके हम लोग निपल रिट्रैक्ट करना सिखाते हैं, तो उससे भी बच्चा का निपल रिट्रैक्ट हो जाता है, वो ठीक हो जाता है रिट्रैक्ट होके, और फिर बच्चा पकड़ लेता है दूध को। तो ये सब प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर से मिलना है, नहीं तो आप घर पे भी गर्म पानी से सेक और ये करके आप क्लीनलेस रख के उसको ठीक कर सकते हैं।
0: जिन माताओं का जो दूध है ना
1: जी,
0: वो 6 महीना के बाद भी आता रहे
1: हाँ,

0: मतलब उनका स्राव होता रहे
1: जी,
0: तो एक सवाल होता है कि अब बच्चा 9 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया, आखिर कब तक वो दूध पिलाएं?
1: आप 2 साल तक दूध पिला सकती हैं
0: अगर आ रहा है दूध तो।
1: जी 2 साल तक आप पिला सकती हैं, और क्योंकि उसको आप भात दाल खिला रही हैं, सब चीज खा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा दूध चाहिए, उतना दूध तो आ ही जाता
0: है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है ना
1: जी,
0: तो दौड़ के आता है और सीधे डिमांड करता
1: जी,
0: है।
1: जी जी, थोड़ा एम्बैरेसिंग होता है माँ के लिए, लेकिन आप ये सोचिए कि उससे आपका बच्चा का अटैचमेंट भी तो बढ़ रहा है। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, 6 साल 7 साल का हो जाएगा, तो आपके पास नहीं ना आएगा, इसी बहाने आपके पास आ रहा है बच्चा, तो ये सोचिए, खुश हो जाइए जी।
0: और लेकिन दूसरी बात ये कि वो जो समय है 2 साल तक का
1: जी,
0: है ना, उसमें दिक्कतें हो सकती हैं कई
1: जी,
0: बार
1: जी, जी।
0: कई बार जो है एक और दिक्कत
1: जी,
0: वो दिक्कत क्या है ना कि छोटे बच्चे का जब दांत आना शुरू होता
1: जी,
0: है
1: जी जी जी, तब माँ को सच में ऐसे ही माँ को मतलब उतना बड़ा ओहदा नहीं दिया गया, माँ का बहुत त्याग रहता है, और वो जो प्यार रहता है ना वो सब कुछ भुला देता है।
0: जब वो दांत आने का समय होता है तो लोग बताते हैं कि उसमें एक तरह की मतलब
1: बिस आता है बच्चे का, हाँ,
0: और उसमें वो बच्चा जो है ना सो वो कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर
1: जी जी उसको मसलता है
0: जी, अपने खिलौने को भी मुंह में ले
1: जी,
0: लेता है
1: जी,
0: और
1: जी,
0: उससे उसको अच्छा फील होता है। वही काम वो जब नादान है बच्चा है, हाँ, छोटा है, वही काम जब वो बच्चा स्तनपान के दौरान करता है तो कितनी दिक्कत होती होगी उस समय, वो कैसे हैंडल करे माँ
1: उस समय? क्या बोले, हर आदमी का अपना पर्सनल होता है, बस ये है बच्चे को कैसे मैनेज करना, हर बच्चे का अलग अलग होता है। दूध पिला के फिर आप उसको समझाइए, या दूध दांत काट रहा है तो आप उसको ऐसे करके कीजिए कि उसको लगे कि माँ को दिक्कत हो रहा है और वो ऐसे नहीं करे, यही कर सकते हैं आप। उतने छोटे बच्चे को समझा नहीं सकते हैं ना, 9 महीने से ही किसी बच्चे को दांत आ जाता है तो आप उसको क्या समझाइएगा?
0: नहीं, कई बार तो बच्चों की जो समझ है,
1: हाँ,
0: वो अपने समय से आगे की होती है
1: जी, आजकल तो जेंजी बच्चे हैं
0: बिल्कुल, और जब बच्चा जब ऐसा करता है ना तो एक बार अपनी माँ के चेहरे की तरफ भी देखता है
1: जी, जी।
0: जब वो खींच लेती है और
1: हाँ,
0: नहीं देती
1: हाँ,
0: है
1: हाँ।
0: तब उन्हें लगने लगता है कि कुछ तो हो गया,
1: कुछ हो गया जी जी, कुछ गड़बड़ हुआ है।
0: तो बच्चा से जो जुड़ाव माँ का होता है, ऐसा जुड़ाव किसी से नहीं होता है,
1: नहीं, सही
0: ये मतलब प्राकृतिक है, ये प्रकृति प्रदत्त है
1: जी।
0: और उसमें माँ और बच्चे का जो संवाद है ना, शब्द नहीं समझता हो बच्चा, अलग बात है, भाव समझता है
1: जी,
0: ये
1: जी,
0: भी बात है
1: जी जी,
0: है ना?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, झल्लाती है माँ तो बच्चा शांत भी हो जाता है
1: जी,
0: इतना छोटा बच्चा
1: समझ रहा है।
0: अब हमने बहुत सारी चर्चा की, हमने ये कहा कि स्तनपान कब तक कराना है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है बच्चे
1: जी,
0: को दूध
1: जी, जी, जी।
0: ये करने का, ज्यादा दूध उतरे तो क्या करें
1: जी, जी।
0: आपने बताया कि पंप के माध्यम से निकाल के उसको स्टोर करके रख सकते
1: जी,
0: हैं फिर उसको, लेकिन दूध का बोतल,
1: हाँ,
0: ये अगर हम चर्चा इस कार्यक्रम में ना करें तो अधूरा रह जाएगा
1: जी, जी।
0: दूध का बोतल पकड़ा दो
1: हाँ,
0: और माँ अपना काम कर रही है, ये क्या है?
1: नहीं, ये भी गलत तरीका है, क्योंकि बहुत बार बच्चा उसको सरका सकता है, दूध को आपको पता भी नहीं चलेगा, सरक जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। और कोशिश करना है कि आपका दूध पिए, बॉटल नहीं दिलाइए बॉटल से। और देखिए, जो स्टील के बॉटल्स होते हैं वो थोड़े महंगे आते हैं, हर आदमी उसके अफोर्ड नहीं कर पाता है, आप प्लास्टिक का बॉटल दीजिएगा, और प्लास्टिक कितना नुकसानदायक चीज़ है, उसमें से माइक्रो प्लास्टिक्स आपके बच्चे के दूध में जा रहा है, हो सकता है फुल स्टरलाइज वो नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, निप्पल
0: की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है बोतल की,
1: एकदम होगा,
0: ये भी हो सकता है,
1: बहुत दिक्कत होता है,
0: माँ को ये समझना चाहिए।
1: उस वजह से आप ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे बॉटल फीड करते हैं उनका पेट ज्यादा खराब रहेगा, वो बोलेंगे कि पतला पैखाना हो रहा है, ग्रीन पैखाना हो रहा है, येलो पैखाना हो रहा है, बार बार बच्चा हर 1 घंटे पे 15 मिनट पे कर दे रहा है, लेकिन माँ के दूध के साथ ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसे बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है, जो प्रोबायोटिक बोलते हैं ना, जो लोग दही खाते हैं जिसमें वो माँ के दूध में होता है प्रोबायोटिक, ताकि बच्चे को गट के अच्छा रखे, लेकिन डब्बे के दूध में तो हर चीज नहीं हो सकता है ना।
0: एक बार फिर से बता दें अपने सुनने वालों को कि आज की हेलो जिंदगी का विषय है स्तनपान के फायदे। डॉक्टर जमुरत परवीन, जानी मानी प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, आज बतौर विशेषज्ञ हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, उपस्थित हैं। समय कार्यक्रम का 12 बजे तक का है, बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, कार्यक्रम का समापन होने वाला है, अभी भी मौका है। हमारी श्रोता बहन अगर स्तनपान को लेकर किसी भी तरह का कोई भी सवाल करना चाहें तो 9430029353 इस नंबर पर फ़ोन लगा सकती हैं, हमसे जुड़ सकती हैं। एक और नंबर है 0627222481, 0627222241, ये दोनों नंबर काम कर रहे हैं। इस समय हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं जी, नमस्कार।

0: हेलो हेलो हेलो हेलो, लगता है हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। दोबारा से करें, लेकिन समय अब कम है। अब तो कॉल भी हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि चलते चलते आपसे कुछ टिप्स लेना चाहेंगे कार्यक्रम के आखिर में। ये बताइए कि स्तनपान सप्ताह चल रहा है, उसको
1: जी
0: लेकर के संदेश आपका क्या होगा? वो तो होगा ही,
1: जी
0: लेकिन कुछ ऐसी टिप्स जो माताएं स्तनपान करा रही हैं या स्तनपान कराने की नौबत आने वाली है, यानी बच्चे का जन्म होने वाला है,
1: जी
0: उन माताओं के लिए क्या कहेंगे आप?
1: सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लैचिंग का नॉलेज रखिए कि आपको बच्चे को कैसे दूध पिलाना है, आपको निपल का कैसे क्लियर मतलब केयर करना है, अगर आपको क्रैक निपल है तो क्या करना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि दूध, बहुत सारी माएँ ये सोचती है कि हर बार दूध पिलाने से पहले छाती को धोना है, ऐसा नहीं है। जो ब्रेस्ट के जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें से खुद ब खुद ऐसा सब्सटेंस निकलते रहता है जो उसको क्लियर करते रहता है, तो हर बार छाती को धोने की ज़रूरत नहीं है। और माएँ हमेशा ये सोचती रहती है कि 6 महीना तक आखिर क्यों सिर्फ दूध पिलाना है, क्यों? क्योंकि बच्चा जो रहता है ना, उसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहता है वो इमेच्योर रहता है, वो आपके जो खाना दीजिएगा उसको पचा नहीं पाएगा। दूसरा चीज़ है कि जो बाहर का खाना है, जैसे पहले लोग शहद खिला देते थे या फिर वो जमनम घुट्टी और मिश्री का पानी, ये सब से इन्फेक्शन हो सकते हैं बच्चे को, और बहुत बार बच्चा वेंटिलेटर तक पहुँच सकता है। तो इसलिए 6 महीने तक बच्चे को दूध नहीं पिलाना। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें आपको दूध नहीं पिलाना, ये भी चीज़ है। जैसे HIV का एक्टिव इन्फेक्शन है, तो उसमें ये चीज़ होता है कि आपको फॉर्मूला फीड कराना है या ब्रेस्ट फीड कराना है, दोनों में से कोई एक चुन लेना है और एक ही चीज़ कराना है। और अगर आपको ब्रेस्ट फीड कराना है तो जो बच्चे को इंजेक्शन पड़ जाए, दवा पड़ जाए, उसके बाद आप उनको दूध पिलाइएगा। और जैसे बहुत सारे, यहाँ तो बहुत कॉमन नहीं है लेकिन बहुत सारे जगह है, माँ नशा करती हैं, कुछ वैसी दवाएँ खाती हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से पूछ के दूध पिलाइएगा, नहीं तो बच्चे को भी नुकसान हो सकता है।
0: कुछ दवाओं को लेकर के,
1: जी,
0: या फिर कुछ व्यसन जैसे अल्कोहल की मात्रा
1: जी
0: लेना,
1: जी ओपियॉइड, जी जी
0: सिगरेट पीना।
1: सिगरेट से एज सच बहुत नहीं होता है, जैसे नशा की जो वो ओपियॉइड जैसे कुछ लोग स्निफ करते हैं या कुछ वैसा, तो उससे बच्चा को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है ओपियॉइड वगैरह की वजह से, तो वो सब चीज़ को अवॉइड करना है।
0: स्तनपान कराते समय
1: जी
0: जो दिक्कतें होती हैं उसको लेकर के थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है,
1: जी जी
0: इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों ज़रूरी है।
1: जी जी
0: अच्छा, एक चीज़ जो छूट गई हमें
1: जी
0: लगता है कि आपने बहुत सारे फ़ायदे बताए कि माता को स्तनपान कराने से क्या क्या फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा जो कि कंट्रासेप्टिव के तौर पर भी
1: हाँ
0: विशेषज्ञ बताते
1: जी
0: हैं कि
1: जी
0: जो
1: जी
0: माताएं 6 महीने तक लगातार दूध
1: जी
0: पिलाती हैं उनमें अगले बच्चे की तत्काल संभावना थोड़ी कम
1: कम
0: हो
1: हो जाती
0: जाती
1: है।
0: है, ये
1: जी
0: क्या
1: जी
0: है?
1: इसको हम लोग लैक्टेशनल अमिनोरिया कहते हैं, मतलब जब माँ बच्चे को फीड कराती हैं तो क्या होता है ना, हार्मोन सप्रेस हो जाता है, मतलब अंडा नहीं बनता है, तो अंडा नहीं बनता है तो बच्चा नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ है, इस तरह उसको खुद का बॉडी को रिकवरी का टाइम मिल जाएगा, तो इसलिए ये भी फायदा होता है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि रात में माँ जितना बार बच्चे को दूध पिलाएंगी वो उतना अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है।
0: अच्छा, ज़्यादा जो काम में व्यस्त रहना, ज़्यादा काम करना, ज़्यादा चिंता करना, क्या उससे भी असर पड़ता है?
1: एकदम स्ट्रेस
0: आराम आराम
1: हार्मोन
0: की कितनी ज़रूरत है? बच्चा तो आराम से 18 घंटे
1: जी,
0: सोता है अभी, इसमें तो
1: हाँ
0: कोई दो मत
1: कोई
0: नहीं
1: दुआ
0: है,
1: है,
0: लेकिन माता को कितना सोना चाहिए, उसे
1: एटलीस्ट
0: कितना?
1: 6 से 8 घंटा सोना चाहिए। मैंने ये पहले भी बताया कि अगर आप रात में नहीं सो पा रही हैं तो आप काइंडली, बच्चा जब दिन में सो रहा है तो आप ज़रूर अपना नींद कंप्लीट करने पाई, नहीं तो आपको चिड़चिड़ाहट, बहुत सारी माएँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो ये चीज़ नहीं करना है। थोड़ा फैमिली को सपोर्ट करना है और उसको ये चीज़ करना है कि दिन में वो सो जाए, ये चीज़ का इम्पोर्टेंट। एक चीज़ मैं बताना चाह रही थी
0: जरूर।
1: अपने श्रोताओं को कि आप बस कैलकुलेट करके देखिए कि अगर आप दूध बच्चे को पिला रही हैं डब्बे का, मान लीजिए एक डब्बा 450 का आता है, एक मतलब हफ्ते में आप क्या 900 का हो गया दूध, और एक महीने में 3,500 का, और अगर आप साल का जोड़िएगा तो वो अप्रोक्स आपको आ जाएगा, हमको लगता है 43,200 रुपीज़। तो सोचिए आप साल भर में अपना 43,000 रुपीज़ बचा रही हैं अगर आप अपना दूध पिला रही हैं, तो आप ये सोचिए। और इसमें मैं एक चीज़ उनके हस्बैंड को बोलूँगी कि काइंडली उनको कुछ गिफ्ट दे दीजिए, इतना का वो दूध पिला रही हैं, तो जी
0: काइंडली नहीं,
1: हाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते
0: नहीं,
1: गिफ्ट के
0: आराम
1: लिए।
0: से उनको देना भी चाहिए,
1: जी
0: बगैर
1: जी
0: मांगे हुए दे तो बेहतर है।
1: बेहतर है, उसको अच्छा
0: और
1: लगेगा।
0: अगर जितने भी पिता बनने वाले हैं या
1: जी
0: जो पिता बने हैं
1: हाँ
0: उनके लिए भी मैसेज डॉक्टर
1: जी
0: जमूरत दे रही हैं कि
1: जी
0: भाई अगर

0: लगता आपके बच्चे का इतना पालन पोषण बढ़िया से कर रही है, स्तनपान करा रही है, तो उनको भी थोड़ा हौसला देना चाहिए। एक बात और भी ना कि बोतल जो है ना बार बार उबालना उसे, है ना, स्टरलाइज करना, यूज करने के बाद जो बचा हुआ दूध होता है वो भी फेंकना पड़ता है, उसे दोबारा के लिए यूज नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। ये पैसे भी तो बचते हैं ना,
1: बहुत पैसे बचते हैं, और रात का नींद भी खराब नहीं होता। अगर आप छाती से दूध पिला रही हैं, बच्चा रो रहा है, पिलाइए, सो जाइए, नहीं तो उठिए, डब्बा धोइए, दूध बनाइए, तब तक अपना भी नींद खराब और बर्बादी।
0: तो प्रकृति ने एक रेडीमेड उपाय बना के भेजा हुआ है। तो चलते चलते क्या संदेश देंगी जो लोग स्तनपान सप्ताह को लेकर के कार्य कर रहे हैं
1: जी,
0: उनके लिए क्या कहेंगे?
1: यही संदेश दूंगी कि काइंडली आप अपने बच्चे को दूध जरूर पिलाएं, आपके लिए भी अच्छा है, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है, आपके पॉकेट के लिए भी अच्छा है। और ये जो नेचर दिया है जो चीज़, वो खराबी नहीं करेगा आपको, आप इस बात को एकदम से गांठ बांध लीजिए।
0: तो ये बताते हुए हम हेलो जिंदगी के आज के अंक से विदा लेते हैं कि आज का विषय था स्तनपान के फायदे। बतौर विशेषज्ञ जानी मानी प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जमरुद्ध परवीन साहिबा, आपने अपना समय हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए निकाला, आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं स्तनपान सप्ताह के लिए आपको भी।
1: जी,
0: तो श्रोताओं मिलेंगे अगले रविवार को इसी कार्यक्रम में दिन में 11 बजे। तब तक के लिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा के साथ मुझे संजय को अनुमति दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

ये था हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी। इस समय आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

0: अगला कार्यक्रम सखी बहन।
1: सखी बहन,
2: नमस्कार।

अगला कार्यक्रम सखी बहन। नमस्कार, कार्यक्रम सखी बहिनक संग हम छी माला झा। जेना साउन मासक आनंद बरखा से लै छी, गीत गुनगुना के फुहारक आनंद लै छी, स्वागत करै छी, ओहिना सब रवि के हम सब स्वागत करै छी अपने सब गोटे के, जाई में फुहारक संग आनंद लेब कजरी के, हवा बसातक संग सुनब फिल्म संगीत आ स्वास्थ्य रक्षाक गपक संग एकटा कन्याक मोनक गप सुनब आ कतबो गप चर्चा मनोरंजन करब भानस भातक बिना अपन सभक गप्पे अधूरे। तें अखन से 12:30 बजे धरि सब केओ जुड़ल रही हमर संग कार्यक्रम सखी बहिनक संग। साउन मासक स्वागत जतः मोन के रमनगर करैत अछि ओतहि शरीर के शीतल। स्वागत में धरती हरियर श्रृंगार केने रहैत अछि, ओहिना सखी बहिन अपन परिधान में हरियर रंगक प्रधानता दैत छथि। हरियर साड़ी, हरियर चूड़ी, साज श्रृंगार कतेक नीक लगैत अछि। एहि सभक संग सब सखी बहिन एक दूसरा के सनेस सेहो दैत छथि, जाहि में एक दूसराक सुखी जीवनक मंगल कामना निहित रहैत छनि। एतेक अपनापन संबंधक महत्व मात्र अपने सब ओहिठामक संस्कृति में परिलक्षित होइत अछि। हाँ, कखनो काल केओ सखी बहिन रोइस फूल जाइत हेती, मुदा फेर से नव विहान तऽ सभक जिंदगी में अबितै अछि न। तैं जखन अवसर लागे एक दूसरा ओहिठाम कनियो काल जाय के प्रयास करी, एक दूसरा के संदेश दी, मोन बहटारल भऽ जायत, जाहिसँ आनंदित रहब। आब जेना बरखाक बेर अछि, कतेक गोटा पहिने झूला झूलैत छलथि, ननद भौजाई के हँसी ठिठोली होइत छल, एहि सबसँ शारीरिक थकान दूर भऽ जाइत छल। मनोरंजनक संग जीवन जीवा में आनंद सेहो असीम भेटैत छल। तऽ हमहुँ साउन मास में मोन के रंजित करय वाला एकटा गीत सुनाबी विभा सिन्हा के स्वर में।

0: गीत सुन मन में व्याकुलता बढ़ल कि नहीं सखी कहब। व्याकुलता त बढ़ले हैत किएक त सावन मास श्रृंगारक मास होइत अछि। संगे संग भगवान महादेव अखन खूब सक्रिय रहै छथि। मानी त पृथ्वी पर भगवान शिव के भक्ति के विभिन्न रूप बड विलक्षण लेने भेटत। एहन भक्ति जना साक्षात शिव विराजमान हेता। वास्तव में भगवान शिव के भक्ति के कोनो सीमा नहीं। जतेक शिवालय अछि ओतो के श्रृंगार ओतो के वातावरण शिवमय भ गुंजायमान अछि। सखी बहिन जतो शिवालयक श्रृंगार दर्शनीय होइत अछि ओहिना अपन मिथिला आ मिथिलाक लोक देश विदेश जतो कतौ रहि रहल छथि हुनक उत्साह चरम पर देखल जाइत अछि। आ घर में सावन मासक मुख्य पावनि मधुश्रावणी मोना पंचमीक ओरियान चरम पर अछि। मोना पंचमी मिथिलाक प्राय सब घर में कोनो न कोनो रूप में होइत अछि। बुझल अछि न सावन मासक कृष्ण पक्षक पंचमी के सांपक माय विषहरा मनसा देवी के जन्मक उपलक्ष में मनाओल जाइत अछि। मानब अछि जे एहि पूजा सँ सापक भय समाप्त भ जाइत अछि। सावन मास में बरखा में बियर में जल प्रवेश कऽ गेला से सांप के विवश भ बाहर आबऽ पड़ै छन। तैं कतो न कतो अपना सब के नाग देवता के प्रत्यक्ष दर्शन भइए जाइत अछि। अपना सब जो पावन के पाछा वैज्ञानिक कारण ताकि तसेहो भेट जात। पर्यावरण रक्षा जीव जंतु के रक्षा जैव विविधता जेहन विषय आ चर्चा से त सब परिचित छी न। यह अछि पावनिक पाछा प्रकृति प्रेम जेहन उद्देश्य रहल हैत तैं फूल पात मेना पात समेत बहुतो प्रकारक फूल पात के पूजा सामग्री के रूप में रखै छी। आहा जतो नव विवाहिता कन्या रहै छथि ओतो विवाहक पहिल बरख मधुश्रावणी ओही दिन से माने मोना पंचमी दिन से बड विधि विधान से हेबाक ओरियान भ रहल अछि। एहि मध्य सखी सहेलीक मध्य फूल पात तोड़नाय से लो गौरी गीत महेशवाणी गणेश गीत बटगमनी जेहन और आनंददायक गीत सबसे साँझ होते ही गुंजायमान रहत संपूर्ण मिथिलांचल समेत देश विदेशक भक्तक आलय आ शिवालय। मौसम एहन जे कतेको गोटा के काव्य आ गीत रचना लेल मोहित कऽ दैत छन। आई एहने सन एकटा कन्या से सुनब किछु मोनक विचार जाहि संगे करती अपन प्रतिभा में निखार आजुक कन्या।
1: नमस्कार, हमर नाम प्रतिभा स्मृति अछि। हम दरभंगा में रहै छी। भाषा के शिक्षिका छी हम, तैं भाषा के प्रति अनुराग स्वाभाविक अछि। पढ़नाय में आ पढ़ेनाय में त हमरा बहुत छोट सा मोन लागैत रहल अछि, मुदा

आठ कक्षा में छलहुँ तहियासँ हमरा अनुभव अछि जे हमरा लिखैमे सेहो मोन लागै छल। केना हमरा ई बातक एहसास भेल जे पढ़ैमे आ पढ़ाबैमे मोन लागै छल बच्चेसँ, तऽ कहै छै घरमे सब जे हमरासँ 2 साल जेठ बहिन रहथिन हुनका जे केओ पढ़बै छलखिन तऽ हुनकर कक्षाके सबटा हम पढ़ि लै छलियै। आ ई पढ़ैमे हमरा मोन लागैके गप भेल आ पढ़ाबैमे मोन लागैके गप जहिया मॉनिटरके दै छलखिन मास्टर साहब हमरा भार, तऽ हमरा ओहि दिन बहुत खुशी भेटै छल जे पूरे कक्षामे जोर जोरसँ आवाज लगा लगा कऽ पढ़ेलहुँ आ सब पाछा पाछा ओकरा से नकल केलक, तऽ हमरा ईमे मोन लागै छल। मुदा आठम कक्षामे जखन हम गेलहुँ तऽ हमरा लिखैके प्रति सेहो बहुत ज्यादा उत्सुकता जगल। तऽ एहि क्रममे से 30टासँ बेसी हमर साझा संग्रह निकलि गेल एखन तकमे। दिमागमे आयल जे किया नहि एकल संग्रह दिस सेहो ध्यान देल जाय, तऽ एकटा हिन्दीके काव्य संग्रह आ एकटा मैथिलीके एकल काव्य संग्रह ई हम अलगसँ से हमर निकलल अछि। तऽ एहि क्रममे से चूँकि सावन चलि रहल छै तऽ एकटा झलक सावनके कजरीके अपने लोकनिके हम सुना रहल छी। वर सारानिया बिगेलखिन

बीतल जेठ बीतल आषाढ़ बीतल चैत बीतल बैसाख बीतल जेठ बीतल आषाढ़ बीतल।

ना सजन मा नहीं है लेकिन ना वर्षा रानिया।

गीत सुनि मोन में व्याकुलता बढ़ल कि नहीं सखी कहब। व्याकुलता त बढ़ले हैत, किएक त सावन मास श्रृंगारक मास होइत अछि। संगे संग भगवान महादेव अखन खूब सक्रिय रहै छथि। मानी त पृथ्वी पर भगवान शिव के भक्ति के विभिन्न रूप बड विलक्षण लेने भेटत। एहन भक्ति जना साक्षात शिव विराजमान।

0: हेता। वास्तव में भगवान शिव के भक्ति के कोनो सीमा नहीं। जतेक शिवालय अछि ओतो के श्रृंगार ओतो के वातावरण शिवमय भ गुंजायमान अछि। सखी बहिन, जतो शिवालयक श्रृंगार दर्शनीय होइत अछि ओहिना अपन मिथिला आ मिथिलाक लोक देश विदेश जतो कतौ रहि रहल छथि हुनक उत्साह चरम पर देखल जाइत अछि। आ घर में सावन मासक मुख्य पावनि मधुश्रावणी मोना पंचमीक ओरियान चरम पर अछि। मोना पंचमी मिथिलाक प्राय सब घर में कोनो न कोनो रूप में होइत अछि। बुझल अछि न सावन मासक कृष्ण पक्षक पंचमी के सांपक माय विषहरा मनसा देवी के जन्मक उपलक्ष्य में मनाओल जाइत अछि। मानब अछि जे एहि पूजा सँ सापक भय समाप्त भ जाइत अछि। सावन मास में बरखा में बियर में जल प्रवेश कऽ गेला से सांप के विवश भ बाहर आबऽ पड़ैत छन्हि। तैं कतौ न कतौ अपना सब के नाग देवता के प्रत्यक्ष दर्शन भइए जाइत अछि। अपना सब जो पावन के पाछा वैज्ञानिक कारण ताकि सेहो भेट जात। पर्यावरण रक्षा, जीव जंतु के रक्षा, जैव विविधता जेहन विषय आ चर्चा से त सब परिचित छी न। यह अछि पावनिक पाछा प्रकृति प्रेम जेहन उद्देश्य रहल हैत। तैं फूल पात मेना पात समेत बहुतो प्रकारक फूल पात के पूजा सामग्री के रूप में रखै छी। आहा जतो नव विवाहिता कन्या रहै छथि ओतो विवाहक पहिल बरख मधुश्रावणी ओही दिन से माने मोना पंचमी दिन से बड विधि विधान से हेबाक ओरियान भ रहल अछि। एहि मध्य सखी सहेलीक मध्य फूल पात तोड़नाई से लो गौरी गीत महेशवाणी गणेश गीत बटगमनी जेहन और आनंददायक गीत सब से साँझ होते ही गुंजायमान रहत संपूर्ण मिथिलांचल समेत देश विदेशक भक्तक आलय आ शिवालय। मौसम एहन जे कतेको गोटा के काव्य आ गीत रचना लेल मोहित कऽ दैत छन। आई एहने सन एकटा कन्या से सुनब किछु मोनक विचार जाहि संगे करती अपन प्रतिभा में निखार आजुक कन्या।
1: नमस्कार, हमर नाम प्रतिभा स्मृति अछि। हम दरभंगा में रहै छी, भाषा के शिक्षिका छी हम। तैं भाषा के प्रति अनुराग स्वाभाविक अछि। पढ़नाइ मे आ पढ़ेनाइ मे तऽ हमरा बहुत छोट सा मोन लागैत रहल अछि, मुदा 8 कक्षा में छलहुँ तहिया से हमरा अनुभव अछि जे हमरा लिखै मे सेहो मोन लागै छल। केना हमरा ई बातक एहसास भेल जे पढ़ै मे आ पढ़ाबै मे मोन लागै छल बच्चे से, तऽ कहै छै घर मे सब जे हमरा से 2 साल जेठ बहिन रहथिन हुनका जे केओ पढ़बै छलखिन तऽ हुनकर कक्षा के सबटा हम पढ़ि लै छलिए। आ ई पढ़ै मे हमरा मोन लागै के गप भेल आ पढ़ाबै मे मोन लागै के गप जहिया मॉनिटर के दै छलखिन मास्टर साहब हमरा भार, तऽ हमरा ओहि दिन बहुत खुशी भेटै छल जे पूरे कक्षा मे जोर जोर सँ आवाज लगा लगा कऽ पढ़ेलहुँ आ सब पाछा पाछा ओकरा से नकल केलक, तऽ हमरा ई मे मोन लागै छल। मुदा 8 कक्षा मे जखन हम गेलहुँ तऽ हमरा लिखै के प्रति सेहो बहुत ज्यादा उत्सुकता जगल। तऽ एहि क्रम मे से 30 टा सँ बेसी हमर साझा संग्रह निकलि गेल एखन तक मे। दिमाग में आयल जे किया ने एकल संग्रह दिस सेहो ध्यान देल जा, तो एकटा हिंदी के काव्य संग्रह आ एकटा मैथिली के एकल काव्य संग्रह ई हम अलग से हमर निकलल अछि। तो अही क्रम में से चूंकि सावन चल रहल छे तो एकटा झलक सावन के कजरी के अपने लोकन के हम सुना रहल छी। वर सारानिया बिगेलखिन

बीतल जेठ बीतल आषाढ़ बीतल चैत बीतल बैसाख बीतल जेठ बीतल आषाढ़ बीतल सजन।

रुसल, गाछ रुसल छी झूला रुसल, हृदयक पीर कियो नहीं बूझल। गाछ रुसल छी झूला रुसल, हृदयक पीर कियो नहीं बूझल। जहरै नूर नयन मबल मुआ नहीं लखिन ना।

0: महे भौजी तार भेजू ना, अपन विचार भेजू ना। धन्यवाद।
1: त सुन रहल छलहुँ आजुक कन्या से बरखाक फुहारक संग कविता। धन्यवाद आजुक कन्या जे सबटा काज करितो अपन प्रतिभा के नहीं बिसरलो। सखी बहिन, सब रवि के दिन के 12 बजे से 12:30 बजे धर प्रसारित हुआ वाला ई कार्यक्रम पूर्णतः समर्पित अछि अपने सब गोटे लेल। तें जो अपनो सब लेल कार्यक्रम संबंधी कोनो सुझाव हुए वा अपन कोनो प्रतिभा के निखार करबाक कोनो एहन गप हुए, खिस्सा पिहानी, काव्य रचना वा घरेलू कोनो गप हुए जेकर समाधान चाही, तो अवश्य पत्र लिखी। पता लिख लेल जाओ, कार्यक्रम सखी बहिन द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड 8460004, वा मेल करी akashwanidarbhanga@gmail.com पर। अपन सबक मन में कखनो के बड गप अबैत अछि कि समाधान के नहि हैत, मुदा एक बेर अपन समस्या हमरा सब धर पहुँचाबी पत्रक माध्यमे तो हम सब किछ प्रयास अवश्य करब। तें पत्र सने मोबाइल नंबर अवश्य लिखी जाहिसँ हम पहुँचब अहाँ धर फोनक माध्यमे। सखी बहिन, आप चर्चा के आगा बढ़ाबी। अपन सबक संस्कृति में पावनि तिहार के प्रकृति से जोड़ के राखल गेल अछि। घर अंगना हुए, ओकर साफ सफाई के गप हुए, विषहरा की दूध लाबा चीनी संदेश देत अछि जे अपन विवेक के परिचय देत जीव जंतु के रक्षा करी। जा धरि अहाँ जीव के कष्ट नहीं पहुँचायब, ओहो अहाँ के कष्ट नहीं पहुँचाओत। तैं प्रकृति आ प्रकृतिक अनुपम उपहार, गाछ वृक्ष, जीव जंतु, नदी पोखर सभक हित लेल काज करी। देखब जे स्वस्थ हवा बसात भेटत आ मोन हैत जे किछ गुनगुनाई, किछ प्रकृतिक बिहारक आनंद उठाबी, जेना एहि फिल्म संगीत में अपने लोकनि अनुभव करब।

तो सुन रहल छलों अपने लोकन ई फिल्म संगीत। सखी बहन, गीत संगीत सुने से मोन नहीं भरत तें मौसम के अनुरूप गीत अवश्य सुनी। कखनो बरखा में भीजा चाही त भीजी, मुदा अपन शरीर पर सेहो ध्यान राखब। बेसी काल देह नहीं भीजल रहे से ध्यान राखब, किएक त स्वस्थ रहब तखने कोनो पावन तिहार वा कोनो मौसम के आनंद उठा सकब। त कार्यक्रम में आगा चर्चा करब मानसून में स्वास्थ्य रक्षा पर। बहिन लोकन, पानि बुनी तो बड निक लगते, वातावरण में हरियरी अनेत, मन में हरियरी अनेत, गाछ वृक्ष बड सुहावन लगते। एहन बेर में मौसमक आनंद उठेबाक लेल, बरखा आ फुहारक आनंद उठेबाक लेल मन आ शरीर के स्वस्थ रहनाई बड आवश्यक है, किएक त संक्रमण, पेट से जुड़ल समस्या, त्वचा में एलर्जी जेहन और कतेको तरहक समस्या देखबा में आबि रहल अछि एहि बीच, किएक त मौसम में आयल परिवर्तन के शरीर बड सहजता से स्वीकार नहीं करते। तें मौसम के अनुकूल अपन दिनचर्या राखी, आहार विहार राखी, संगई त्वचा के विशेष रक्षा करी। स्नानक बाद साफ आ सुख्याल तौलिया से देह पोछी, देह भीजल नहीं रहे आ भीजल देह कपड़ा नहीं पहरी। खूब निक जगह सुखेलाक बादे कपड़ा पहरी। जखन अपना सब बच्चों से परिचित ध्यान रखे छी कि हुनका नहलाक कनिकाल बाद जना देह में अपना सब पाउडर लगा दे छियन, देह सुखेलाक बाद ओकर बाद कपड़ा पहरबियन, तो ध्यान रखिए कि ई मास में छोट बच्चा पर सेहो खूब ध्यान रखबाक अछि, किएक त देह में नोचनी भ जाय छन हुनका, एहन बेर में फुंसी भ जाय छन, चकता सब सेहो भ जाय छन। तो ई सबटा चीज के अपना सबके ध्यान रखबाक अछि, किएक त बच्चा तो बाजत नहीं, चिचिया लागत। तें विशेष साफ सफाई घर अंगना बहरी दलान सब ठाम रहबाक चाही स्वास्थ्य रक्षा लेल। दोसर, जे एहन बेर में मच्छर के प्रकोप और बेसी भ जायत अछि ते मच्छरदानी के प्रयोग अवश्य करी। सफाई लेल ब्लीचिंग पाउडर से घरक लग पास नाला में छिड़काव करी। कूड़ा कचरा के ढेर कखनो नहीं कतो बनो दी, उचित ठाम फेंकी। बहिन लोकन, उचित दिनचर्या व जीवन शैली के जो अपना ले छी त स्वस्थ आहार से उचित पोषण पाइब सकब, किएक त स्वस्थ आहार आ उचित जीवन शैली से शरीर आ मन दुरुस्त रह सकत। एकटा गप और, अखन कतेको गली मोहल्ला में नालाक पानि घरों में आबि गेल हैत, जतो बेसी पानि भेल हैत, थाल सबसे मन खिन भ जायत हैत। कतौ से एलाक बाद तुरंत सुसुम पानि में नून कनी शैम्पू दौ के प्यार 10 मिनट धरि दौ के राखी,

0: बाद प्यारे नेक से पूछ ली। एना केला से थकान दूर भ जात आ प्यार से हो खूब नीक लागत। साँझ में खेत खलिहान आ बाग बगिया देश जाए तो हाथ में टॉर्च अवश्य राखी, क्या त सहसा पानि व ठनका खसला सो बिजली संकट किछ काल धर उत्पन्न भ सकैत अछि, तें सचर रही सजग रही। सखी बहिन, बरखाक बेर में घर बाहर कीड़ा व और तरहक जीव के सक्रिय रहबाक बेर भ जाइत अछि, जीव के कखनो बाधा नहीं पहुँचाबी। हमरा जनित कोनो जीव जंतु अहाँ के ताधर कष्ट नहीं पहुँचात जा धर ओकरा अहाँ कोनो तरह कष्ट नहीं देबे। जँ अहाँक व्यवहार से जीव के कष्ट हैत तखने अहाँ पर हमला कऽ सकैत अछि, तैं खूब सोच विचार के अपन डेग बढ़ाबी। सखी बहिन, घरनी लोकन के घर बाहर दुनू ठाम समावेश करो पड़ैत अछि आ भानस भात त सबके करहे पड़ैत अछि, किएक त मोनक द्वार पेट से जुड़ल होइत अछि। जो अपना सब घर में खनाई बनबै छी त खाद्य पदार्थक ज्ञान बढ़ैत अछि आ ओकर भांत भांत के विध पर शोध सेहो अपना सब कऽ लै छी, किएक त भानस भात केनाई कला के संग संग मोन के स्वास्थ्य दुरुस्त रखबाक माध्यम अछि। भानस भात से सामाजिक आ पारिवारिक संबंध बढ़ैत अछि, किएक त जखन सब गोटे एक सने बैस जलखै वा भोजन करै छी त संबंध में मधुरता अबैत अछि। तैं सखी बहिन, अपनो सब छुट्टी दिन किछु सुनगर मिठगर त कखनो चहटगर व्यंजन बनाबी आ आपसी संबंध के मजबूत बनाबी। त आइ हम जलखै वा बेरहट लेल बनायब मकई के कटलेट। एहि लेल सामग्री में चाही मकई के दाना 2 कप, उसनल अल्लू आधा कप, पनीर दऽ सकै छी वा चीज 2 चम्मच, कटल हरियर मिर्चाई 2 टा, कटल आद, गोलमरीच पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, नून स्वाद अनुसार आ तेल तरबाक लेल। मकई के दाना के सबसे पहिने दरदरा पीस ली। आब एक ठाम सबटा सामग्री जेकर चर्चा केने रही ओकरा मिश्रण जका बना ली। जो स्वीट कॉर्न छोटकी मकई हुए तो ओकरा पिसवाक कोनो काज नहीं। मिश्रण के हाथ से गुलिया जका बना के कटलेट के आकार देबाक अछि। आब नॉनस्टिक तब वा लोहाक लोहिया में मध्यम आँच पर सोन सोन लागा धेर तैर ली। धन्नी पातक चटनी सना खाई बड नीक लागत, चहटगर लागत, विशेष कर अखुनका बेर में। अपनो सब जे कोनो प्रयोग करे छी त अवश्य करब आ हमरो कहब। ताई संगे कोनो रचना, खिस्सा पिहानी वा कोनो और कला जे आकाशवाणी दरभंगा आ कार्यक्रम सखी बहिनक माध्यमे बाकी सब श्रोता लोकन धर पहुँचाब चाही त पत्र द्वारा अवश्य जानकारी दी। अपन मोबाइल नंबर सेहो देब, किएक त फोनक माध्यमे हम पहुँचब अहाँ धर आ सुनब मोनक सबटा गप। पता लिख लेल जाओ। कार्यक्रम सखी बहिन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड 8460004 व मेल करी akashwanidarbhanga@gmail.com पर। ताधर प्रस्तुतकर्ता असद दाऊद, ताई संगे हमरा माला झा के आगे दिल जाओ। नमस्कार।
1: सखी बहिन।
2: सखी बहिन कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। लीजिए सुनिए मैथिली नाटक गुरुआइन। इसके लेखक हैं फूल चंद्र झा।

0: भरि दिन पूजा पूजा पूजा
1: की भेल?

0: भी छोरा के कोना करनी लग गेलिए से नहीं जाए भर दिन बफाई काटत रहिया। अब बाप केहन छथिन जे एको बेर
1: हाय रे बाप एकरा किया के एना ठुनकबै छिए
0: हे हम अहाँ के गोर लगै छी की करू फाट के मर जाओ की एक भोर जे उठलो से दस बजे राति धरि फिरिसान भेल रह यौ एको बेर मुँह गेनहाइत अछि जे लाओ कोनो काज कऽ दै छी।
1: अरे पुरुषक जे काज हेतै सह न हम कह देब आ कि स्त्रीगण वाला काज हम ही कह दी।
0: देखियो रे जा का अपना अगल बगल में केहन केहन बड़का हाकिम सब छथिन जे रोटी बेलस से लऽ कऽ आ नुआ धरि खींच दै छथिन आ एकटा अहाँ छी एह होइ छनि जेना अमले ओछ भऽ जेतनि ई तऽ हमर कपारक दुख।
1: हे राति दिन ई रामा खटोला हमरा नीक नहि लगैए आइए अखन कोन बड़का बात भेलैए जे अहाँ एना नेप चुआबऽ लगलहुँ।

0: हे हम बेर बेर अहाँ के कहे छी जे हमरा से मुँह जिन लगाओ आ हे एने कर लियो अपन जन्मल के अकर उगनी मेरा
1: एहन तो लोक नहीं देखलो महान चंडाल नीक पाला पड़ गेल छी मुदा करब की दोसर तो कोनो उपायो नहीं अछि लक्ष्मी लक्ष्मी अहा सरपो हमर भाग्य लक्ष्मी छी
0: अंगोरा छी धधकल छी चूल्हा के छाव छी जाओ जाओ हम कतौ से एलौ भाग्य लक्ष्मी से रहितो हमर यह दुर्दशा रहित
1: हे देखु बच्चा सुत रहल एकरा अपना लग सुता लिना आ बाजू ने जे अहाँ के की कष्ट है हम सबटा दूर कर दे
0: लो जाओ अपन बच्चा के आ लुट्टी पसाही लागो अहाँ के कमाई में हमरा ऐसे कौन लेना देना नहीं जैन कौन जन्मक अदला कर्म के ने छलो जे अहाँ सन लोग सियुत छुलक
1: आखिर कोनो गप फरछा का बाजा तखन ने बुझबे हम तो सोझ लोग छी आ सोझ बात बुझे छी
0: अतरी तो 72 हाथक अहाँके तो हम ही तो चिन्हे छी दोसर के चिन्हब अहाँ सन चंडाल कसाय आ निर्दय लोग ए दुनिया में कतौ नहीं छे
1: अहाँ के की कष्ट है से बुझब तखन ने
0: हमर कष्ट बुझब
1: हैं हाँ हाँ बाजू ने
0: अच्छा ऐ मासक दरमाहा जे उठेलिए से की केलिए
1: ओ आप बुझलिए तकरे ई सब नाटक भ रहल छै ने
0: ए यो सब त पर गाम पठा देलिए आ कहे छिए जे तकरे ई नाटक हे नाटक तखन शुरू भेले
1: हे अच्छा है नहीं भूख लागी रुपया तो ओहिना रखले छे अरे क्यो गाम जाय वाला हेते तखन ओकरा द्वारा पठेबे
0: ऐ मास में गाम रुपया नहीं जेते
1: हैं से कोना हेते गाम पर माँ बाबूजी कतो से की करथिन
0: से अपन जत से जे करथुन मुदा कह देलो है गाम रुपया नहीं जेते नहीं जेते
1: अहाक माथा ठीक है कि नहीं हैं कहू तो ओ बुढ़वा बुढ़िया ककरा लग जा का हाथ पसारते
0: बर मैं बाप भला भला है कहल के जी लोग सब शहर में जमीन की नहीं है घर बन भैया अहिन का गांव में भागल जाए छे हमरा घर में एकटा टीवी ने फ्रिज ने जो लोग जे डेरा पर आवे है तो लाजे काठ भ जाए छी
1: लक्ष्मी अखन देर अहाँ के भगवान ज्ञान नहीं देलन लोग धिया पुताक लेल रने वने बौआत कारण जे बुढ़ारीक लाठी बनत ताहि धिया पुताक ई काज जे अपने सब परिवार इलवाइश करे आ माँ बाप कष्ट भोगे
0: तब जाओ ने जे फुराई ऐसे करू हमरा तो बुझले अछि हमरा लेल ए घर में क्यों ने
1: अहाँ तो हमरा माथा खराब कर के राख दे अरे लोग सुनत तो की कहत जे केहन लोग सब हमरा ए मोहल्ला में चल आयल है जे कखनो शांति नहीं रही है तकर सबक कोनो विचार नहीं
0: हे कहत नहीं अपना तो कोनो विचारे नहीं छन आ
1: चुप एक बेर जब मुंह से आवाज निकालना हो तो बहुत बेजाय बात भ जाए बुझलिए हे लियो रुपया आप जे मन फराय से कहो

0: दिन में तो कोनहुना पार लागल। नवादा वाली कनिया थोड़ेक मरवा देने रहथिन, मुदा आब की करबैक?
1: देखियो ने केहन समय साल खराब भ गेलै है, जे जमीनो नहि केओ भरना लेबो चाहै छैक, आ जँ ककरो एक अति मोनो डोले छै तऽ चासक जे सबसे नीक जमीन सैह मंगैत अछि।
0: तऽ की करबैक, आश्रमी खेत तऽ नहि भरना लगा, किछु 7 करोड़क खेत बेच लिया, यह ने छोटका छोरा बिलेट जेते, ओहि बाबू के की लगतन, कमाए छथि मौज करै छथि।
1: आश्चर्य दुनिया अछि, ये हमरा नहि आशा छल जे मनोज सन बेटा एहन भ जायत। कुन धरा निये ओकरा पढ़ेलहुँ लिखेलहुँ, मन में छल जे कमायत खटायत तऽ सब दुख दूर भ जायत, पर हाय रे विधाताक विटम्बना, सब कल्पनाक शीश महल समयक झंझावात में चकना चूर भ गेल।
0: हाँ, एहिमे ओकर कोनो दुख नहि छै, सबटा अहींक कयल अछि। हम कहने रही ने, ओहि छोट लोक सभक ओहिठाम बेटाक विवाह नहि करू, मुदा हमर की सुनैये, टाका देलक एक ढाकी आ लोभे कऽ
1: लेलहुँ। ई गप अहाँ सत्ते कहै छी, जावा तुकर विवाह नहि भेल रहे 7 दिन पर, नहि तऽ 15 दिन पर अवश्य गाम अबै छलै। गाम घरक सब लोक से गप सप रखै छलै, हे दरमाहा जे किछु भेटो, मुदा हमरा लोकनिक खर्च जोगर टाका तऽ अवश्य पठा दै छल। परंच जहिया
0: हम कहैत रही ने, ओहि गाम विवाह नहि करब, ताहू में ओहि सब घरक बेटी छिया छिया।
1: हाँ, ये गप तऽ सबटा ठीके कहै छी, मुदा लोक की ई सब जानै छलै, विवाहो जन्म मरणश्च यदा यत्र भविष्यति।
0: हम ई सब नहि बुझै छियै, सबटा अहाँ अगर जीत जेकाँ केलहुँ तकरे ई फल अछि।
1: तैं ने हमरे सबटा भोगऽ पड़ि रहल है, नहि तऽ जकर बेटा कमौआ रहतै से बाप एहि अवस्थामे 2 सेर अन्न आ 2 टा टाकाक लेल दरबज्जे दरबज्जे भटकैत रहतै।
0: देखू, हम ई आहे माहे नहि सुनऽ चाहैत छी, ओ अपन निमेरा तऽ करिए कि ने, हमरे सब लेल ने ओकरा पाइ छैक, ई सम्पत्ति तऽ ओकर अर्जनो ठीक अछि। अहाँ जमीन बेच कऽ कन्यादान कऽ लिअ, कारण समर्थ बेटी मातृक ओगर नहि अछि, घरक खर्ची सेहो चलाउ, तखन कनिये छोटका छौरा लए होइए जे ई कोना पढ़तै लिखतै, समयो साल एहने छैक, कतो नौकरियो चाकरी हेतै कि नहि हेतै।
1: अरे अहाँ तऽ कन्यादान नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखाई गप करऽ लगलहुँ, आ घर में मुसरी डंड खींचैये से ध्यान नहि।
0: तैं ने कहै छी, कोनो उपाय तऽ अहीं ने करबैक, हम जे मौगी भऽ कऽ ककरो कहऽ जेबै सेहो तऽ अहीं सभक प्रतिष्ठा पर पड़त, ई काज सब तऽ पुरखे पात्रक छियै कि नहि।
2: माँ
0: की बौआ,
2: फरवरी बीत रहल अछि, किताब नहि कीन लेबे?
0: हाँ हाँ, पायक जोगार करै छियैक, किया नहि कीन देब? अपना बौआ के किताब नहि कीन देब तऽ ककरा कीन देबै?
2: तू फुसिये कहैत छा, सब दिन पाइये के जोगार करै छथिन, क्लास में सब कत्तौ सँ कत्तौ आगू बढ़ि गेल। अहम
1: सरोज एम्हर आउ, बौआ अहाँ चिंता जुन करी, काल्हि चौक पर से आन देब।
2: ठीक छै, काल्हि नहि आन देब तखन ने?
1: हाँ हाँ, आन देब, अवश्य आन देब, जाउ पढ़ू गे।
0: तऽ की सोचै छियै?
1: सोचै छी जे ककरा लग जाए जे किछु टाकाक बंदोबस्त कऽ दिए।
0: एकटा

0: अने चाह बनाओ। मंशी कका आयला है।
1: हम अखन कतौ नहीं जाए। यौ हे देखियो ने, देखियो देखियो टीवी में कतेक सुंदर डांस दऽ रहल छै।
0: एको बिसिया ज्ञान नहीं अछि।
1: मार बाहिन धक कतौ कहां से के आबि कऽ माथ पर बैठा जाइए। ए यौ रैकियो में अही ठम रहथिन की?
0: ई बात सब पूछऽ वाला छै। एतेक अबेर कऽ एलखिन है तऽ फेर कतौ जेथिन?
1: हे भगवान, आब एतेक गोटाक भानस कोना करब हम। मरि जायब हम एहि घर में। भगवान और तो कतेक टा दऽ देलनि हैं हमरा से नहीं चाहिए।
0: अच्छा अच्छा भेल भेल, चाह बनाओ आ भ जाए तो कने कहब। कका, गाम घरक हाल चाल सबटा ठीक छै ने?
2: तो अपन हाल चाल कह। गाम घरक कोन हाल चाल? सब ठीके छै।
0: हाँ, अहाँ लोकनिक आशीर्वाद से सब ठीक ठाक छै। मुदा गाम पर सब निके नाच छै ने?
2: हाँ, सब ठीके अछि।
0: एना किया बजलो?
2: कोना बाजू, कहलिया तऽ सब ठीके अछि।
0: लिया चाह पी लिया। अरे गप।

0: बात हेवे करते। अहिबेर उपजा बारी द सुनलिए जे
1: हाँ हो एहन त कहियो देखने ने रही लोक अन्न अन्न के मर जाए।
0: हाँ सह सुनलिए बाबूजी कोनो समादो कहलन।
1: हो समाद तो एक ढाकी कहलथुन मुदा ओ जे कहथुन से तो की नहीं जने छ।
0: हाँ से तो जनते छे मुदा की करिए अहाँ तो जनते छी हमर सभक हालत सुखैल दरमाहा पर की करू। ताहू में अई मास में एकटा टीवी आ फ्रिज लो लेलिए तैं रुपया नहीं पठा सकलिए। दिक्कत तो हेवे करते कहबन जे कोना कहके कोनो तरह समय काट लेता। कका अगला फसिल नीक छै कि नहीं?
1: हाँ अखन तो छै मुदा लोक अगला फसिल तक बाँचत तखन कि नहीं?
0: से तो ठीक है बड़ अघोर काल बीत रहल छे। सोचने रही जे कम से कम 50 टाका पैंच लऽ कऽ पठा देतियन मुदा आइ काल्हि तक क्यो ककरो नहीं पैंच दै छे।
1: हाँ से गप तो छै के मुदा हो जखन तोरा सब सन कमौआ सब के क्यो एकटा पाई देनिहार नहीं छ तखन गृहस्थ के की हालत हेतै एक से सोचला हक।
0: अच्छा काका अहाँ के जो परमेश्वरा वाला केस छल तकर की भेले?
1: ओकरे आई तारीख छली है अखन की हेतै कोर्ट कचहरी के बात बुझल नहीं छ तखन देखक तक की होइ छै।
0: बाबूजी कोनो खास समादो कहलन है?
1: हो बाबूजी के समाद आब हम की सुनेब तोरा तो अपने समाद ततेक सुना दल
0: से कि
1: नहीं किछ सह कहलिया हमरा जे बुझवाक छल से बुझलो आप बुझवा में कोनो भांगट थोड़बे एछ।
0: नहीं नहीं स्पष्ट कहू ने।
1: स्पष्ट की कहू ककरा कहू? हो लेकिन बहुत बेसी कष्ट में छथि साझक साझ बीत रहल छन। संध्या काल हमरा कह आयल छला जे अहाँ दरभंगा जायब तो मनोज से निश्चित रूप से भेट कर ओकरा एहिठामक सब गप कहबैक मुदा हाय रे ईश्वर जखन गाम पर से निकल गेल रही भोर में तो मरना कहलक जे हुनका हार्ट अटैक भ गेलन। घबरेबाक बात नहीं अखन तो ठीके छै दवाई दारू चल रहल छन।
0: तेसर बेर हार्ट अटैक तखन तो एक मिनट काका अबै छी। लक्ष्मी लक्ष्मी अंत्याय भ गेल।
2: की भेल?
0: बाबूजी के तेसर बेर हार्ट अटैक भ गेलन।
2: तेसर बेर हार्ट
0: लक्ष्मी तुरंत गाम चलो जल्दी करू
2: मुदा एना धरफड़ में कोना की करबे।
0: लक्ष्मी जब बाबूजी के किछ भ गेलन तो
2: एते कतो लोग आउते ये बूढ़ छलखिन हुनका सब लेल कतो एते के।
0: लक्ष्मी ई गप अहाँ बाजि रहल छी? कका हम सब अखने गाम जेबाक तैयारी कऽ रहल छी। की विचार?
1: उत्तम विचार बस तो आब निकल गेल हत मुदा ट्रेन छै
0: तो हमरा सबके तैयार भ जेबाक चाही ने।
1: हाँ हाँ विलम्ब करबाक काज नहीं।

0: डॉक्टर साहब की हालत छन?
1: बेसी चिंता करवा काज नहीं, परंच तेसर अटैक छन ते किछ कहब कठिन। ओना हम ई दवाई लिख दे छी, जब तुरंत ही पड़ जाए तो ठीक भ जेबाक चाही।
0: कतेक ई दवाई हेतै?
1: दवाई तो थोड़े महग छै, लगभग 500 टाका तो चाही।
0: 500? हे भगवान, आब कोन उपाय करबै, ककरा कहबै?
1: बेसी चिंतित होबाक काज नहीं छै, चौक पर ककरो पठाइयौ। छोटू बाबू के हमर नाम कहतै, ओ दवाई दे देथिन। मुदा हे कने जल्दी में।
0: सरोज, हाँ मैं ककरो से साइकिल मांग कर फूर्ति में दवाई लेने आबुआ।
2: अच्छा जाई छी।
0: हिनका एना किया भ गेलनि डॉक्टर साहब?
3: नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
0: कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल रहे। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि अन्य 8 लापता हैं। प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों में फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदियों के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के चलते मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के समुद्री क्षेत्रों में न जाने की सलाह भी दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दुरैस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आपसी मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है तो पहले उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले के विरोध में इस्लामाबाद में हाल में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। एक लेख में श्री क्वात्रा ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान के एक पूर्व विदेश मंत्री की आलोचना की। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत को दोषी ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को अपनी जल उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम

श्रोताओं, अब जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। पत्रों पर आधारित फार्मेसी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर सुना जा सकता है दिन में 1:15 से।

प्रादेशिक समाचार दिन के 2 बजे और 2:05 पर इलाकाई खबरें। पर आप प्रतिदिन सुना करते हैं रोजगार सूचना। दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से दिन के 2:15 पर।

दिन के 2:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। समय याद रखें आज दिन के 2:30 पर। अपराहन 3 बजे हम आप तक पहुंचाएंगे विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। तो ये थे पहली सभा के शेष कार्यक्रम। एक नजर हम डालते हैं अपनी दूसरी सभा के ऊपर। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत शाम 5 बजे। सभा के आरंभ में आप आनंद ले सकते हैं गजलों का।

विद्यापति गीत सुना जा सकता है शाम 6:20 पर। शाम 6:30 कार्यक्रम गाम घर। इसी कार्यक्रम के तहत हम आप तक पहुंचाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6:45 पर ममता का आंचल। गाम घर शाम 7:00। क्रीड़ा जगत खेल गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:15 पर। समाचार संध्या का समय है रात 8:45 पर। न्यूज एट 9 रात 9:00 और उर्दू में खबरें आप सुन सकते हैं रात 9:15 पर। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 9:30 पर और रात 10:00 सुनिएगा रवि बासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ये दोनों कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे अपने दिल्ली केंद्र से रिले करके। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी दरभंगा है। अगला कार्यक्रम देशभक्ति गीत।

समवेत स्वर में ये देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे। हमारा अगला कार्यक्रम पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर बस थोड़ी ही देर में।

सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं को रंजू का सस्नेह नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, आप कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित भी होंगे। आप भला हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरह से आपको इंतज़ार रहता है इस दिन का, उसी तरह हमें भी। भले ही हम खातों के जरिए ही रूबरू होते हैं, लेकिन ये बेकरारी अब हुई ख़त्म। और जैसा कि जानते हैं, आज का दिन कुछ खास है, और वो खास तो आप भी जानते हैं, क्योंकि किसी भी रिश्ते का आधार होता है विश्वास, और जहाँ विश्वास होता है वहीं रिश्ते बनते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। उसी रिश्ते में एक रिश्ता होता है दोस्ती का, जो कि इस धरा पर सबसे अद्भुत, अलौकिक और अनमोल है, और जिसे वो मिल जाता है तो उसी का नाम दोस्ती कहा जाता है, और वह दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता है जिसे सच्ची दोस्ती मिलती है, सच्चा दोस्त मिलता है। तो आज का ये दिन सच्ची दोस्ती के नाम। और अब बगैर देर करते हुए हम करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत दोस्ती फिल्म के इस गीत के साथ। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, और कुछ खत मेरे पास ऐसे आए हैं जिन्होंने इस गीत की फरमाइश की है, और वो हैं जयपुर राजस्थान से, रेडियो मार्केट मकान नंबर 1809, और सुनने वाले हमारे श्रोता हैं सना कुरैशी, जुबैर कुरैशी, अफसाना कुरैशी, भुरिया कुरैशी, सबा सानिया और साहिन कुरैशी, पूरा कुरैशी परिवार के सभी लोग। तो लीजिए आप सबों के फरमाइश पर हम दोस्ती फिल्म का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसी गीत को एक और खत आया है जो है कि ग्राम झांसी मध्य प्रदेश से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। हांसी शहर से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बबू। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश एक और आई है कुशेश्वर स्थान सलमगढ़ जिला दरभंगा बिहार से। आप हैं मोहम्मद ईशा, सबीना नाज, मोहम्मद इरफान आजाद, मुस्तफा नवासी, सना आफरीन नवासी, सादिया नूर नवासा, आरिस बाबू, शमा प्रवीण, साहिन प्रवीण, नेमत प्रवीण, रौनक प्रवीण और सुनैया फातिमा जी। तो लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा और इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं पत्रों पर आधारित फार्मेसी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। तो मैं देख रही हूँ अगला अनुरोध कहाँ से आया है। तो आप हैं जिला किशनगंज बिहार से, वह रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और मेघा राशि जी। गोविंदपुर धनबाद से आप हैं शराफत हुसैन अंसारी, बेगम रेहाना, परवेज अशरफ, हसन इमाम और आपके सारे दोस्त। शाह सुपन लहरियासराय जिला दरभंगा बिहार से आप हैं जैद अहमद, फैज अहमद, ताबिंदा बेगम और आपके घर के सभी लोग। ये खत आया है बेरडी से, आप हैं राजेश

सोनी कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सब्बा सेरे जी। करमगंज लहरियासराय जिला दरभंगा बिहार से आप हैं गीता देवी, अखिलेश कुमार सिंह, सरिता देवी, पिंकी देवी, मिथिलेश कुमार सिंह और आपके सारे दोस्त। पाकुड़ झारखंड से ये खत आया है उत्तम कुमार भगत का। आप हैं श्वेता भगत, किशु, तासु, अर्नब आनंद, सत्यम आनंद और आपके माता पिता। अनुपुर मध्य प्रदेश से आप हैं जयमंत्री केबट, कृष्णा केबट, रुद्रानी केबट और अंजलि केबट जी। तो लीजिए अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में है, जिसे लिया गया है फिल्म इंतकाम से।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा था आनंद बक्सी ने, आवाजें थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की। फिल्म का नाम था प्यासा सावन और इस गीत को सुनने की फरमाइश आई थी। हमारे श्रोता थे पूना से पंकज बरोद, आर्या प्रियंका जरूर बरोद, बाबा साहब बरोद, मीनाक्षी चरणे, रजनी कानेरे, कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप थे मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता जी। बोडुसरा नैला से आप थे प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू जी। इसी गीत को सुनने की फरमाइश आई थी आप थे शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव जी। अमरपुर पैंडरा छत्तीसगढ़ से आप थे दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशी लाल यादव, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लब श्रीवास्तव। सुंदरखंड राजमाता नगर बुल्डाना महाराष्ट्र से आप थे नरेंद्र नरवारे, ज्योति नरवारे, आकांक्षा नरवारे, आकाश कुमार और प्रदीप अंचल वाडेकर जी। आप इस समय सुन रहे हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। जो हमारे पुराने श्रोता हैं उनको तो हमारा पता मालूम ही है, जो नए जुड़ना चाहते हैं तो पत्रों के द्वारा यदि आप सूचित करना चाहते हैं और अपनी फरमाइश को यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं तो लिखिए। हमारा पता कार्यक्रम आपके अनुरोध पर द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। और जो अभी अभी नए श्रोता अपने स्मार्टफोन से जुड़ना चाहते हैं तो न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड कीजिए और आनंद उठाइए अभी से दिन के 2 बजे तक। और बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले अनुरोध की तरफ। तो मैं देख रही हूँ आप हैं नाहर मंटोला, जिला दरभंगा, बिहार से भाई कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जावीर अली, मोहम्मद अरमान और मोहम्मद सलमान जी। गांव चोहलदा बागपत से आप हैं संजय ढिंगिया, नमन, मुस्कान, कुणाल और आपके सारे दोस्त। रंगोली लिस्नर्स क्लब राजनगर, जिला मधुबनी, बिहार से आप हैं नवीन सिंह, ज्योति सिंह, सुशांत, चुलबुल रानी और सागर बाबू। हनुमानगढ़ राजस्थान से आप हैं महाकांत सिंह।

और सिंह परिवार के सभी लोग। ये खत आया है महाराष्ट्र बीड शहर से। आप हैं प्रकाश पागरिया, पराग पागरिया, प्रदीप पागरिया, केशव पटेल, रामनिवास अग्रवाल और आपके सारे दोस्त। पिपरापारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से आप हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर जी। तो लीजिए, आप सबों ने सुनना चाहा है अभिजीत की आवाज़ में। गीत के बोल और संगीत दोनों जावेद अख्तर का है। फिल्म का नाम है राजा को रानी से प्यार हो गया। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत, पसंद आप सबकी है।

आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।

लव इन टोक्यो। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे इस गीत को। आप सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा जिला समस्तीपुर बिहार से भयकारी रायकारी श्रीमती मीनाकारी पुंज राज आर्यन आरती पुंज आकर्षण पुंज जयश्री पिंकी रिंकी और आपके घर के सभी लोग दौलतबाग मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आप थे जाफर हुसैन नायमा बेगम कासिम अली नदीम अली और जुनैद अब्बासी। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से आप थे अकरम हुसैन प्रिंस बेगम इशरत अकरम बहुरुबीना वसीम बाबू आरिज वसीम ममता रानी शर्मा पूनम कुमारी शर्मा नवासा अरहान बाबू नवासा हामजा बाबू मुजम्मिल बाबू हुमैरा नाज सुमैरा नाज अबीहा नाज साजिया शाहिन नाज नाजिया नूरी नाज बच्चू शेख और चीना शेख जी। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से आप थे राष्ट्रपाल गजाभिये राधिका गजाभिये बेबी अनिस्का और तन्मय गजाभिये जी। श्रोताओं इस समय आप सुन रहे हैं पत्रों पर आधारित फार्मेसी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। कार्यक्रम भी अब अंतिम पड़ाव पर है और कुछ खत मेरे हाथ में बचे हुए हैं तो मैं देख रही हूँ। ये चिट्ठी आई है झंझारपुर लंगरा चौक जिला मधुबनी बिहार से। आप हैं हरे राम पासवान जय शंकर पासवान काजल कुमारी रानी कुमारी और आपके माता पिता। पित्रामल बोरखेरा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से आप हैं विनोद भूपत नेहा जैन दीपक मयंक भूपत चेतन नाहटा दीक्षा कुश भूपत दिलीप सिंह पवार और आपके सारे दोस्त। ग्राम खरारी जिला दरभंगा बिहार से आप हैं गोपाल बाबू मुखिया छोटका बउआ और आपके सारे दोस्त। आप हैं नरहन स्टेट जिला समस्तीपुर बिहार से उदयकांत ठाकुर अमन पराशर बेबी आराध्या और नूतन भाभी जी और ललन मिश्रा जी। और ये खत जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ये आया है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से। आप हैं राजेश कुमार धनजय राहुल कुमार धनजय विशाल कुमार धनजय शीला धनजय और गायत्री धनजय जी। खुर्दी रोड मानपुर से आप हैं विजय वैद्य रानी वैद्य महिमा वैद्य और नीतू वैद्य जी। और अगला ये अनुरोध है लालमाता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से। आप हैं हर्षिता रामेश्वर कान्हा सफलता कपिल मीनाक्षी सत्यनारायण बाय मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी। इनामटोला भगवतीपुर पंचायत जिला दरभंगा बिहार से आप हैं नूतन सहनी कंचन सहनी बबीता कोमल नव्या विभा सुधा ज्योति पार्वती सहनी रासो देवी रिंकू देवी रुचि कुमारी और

एस के सहनी जी। तो लीजिए आप सबो के फरमाइश पर पेश है कार्यक्रम की आखिरी ये पेशकश है फिल्म दोस्ती से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और मन्ना डे। तो आइए सुनते हैं ये आखिरी पेशकश।

श्रोताओं, अब घड़ी हमें इशारा कर रही है कार्यक्रम से विदा लेने के लिए। तो चलते चलते आप सबों से गुजारिश है, आप खुश रहेंगे, अपनों के बीच खुशियां बरकरार रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ अगले अंक तक के लिए इस कार्यक्रम से अब रंजू को दीजिए विदा। नमस्कार।

पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, उसके बाद इलाकाई खबरें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए

0: पर शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। इधर प्रदेश के सभी जिलों में भी इस अभियान के तहत युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल होगी। पटना के एन कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। मतगणना केंद्र और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी राजनीतिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। वहीं इस दौरान बोरिंग रोड चौराहे से एएन कॉलेज की ओर वाहनों के परिचालन पर भी रोक रहेगी। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जनसुराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के सभी पंचायतों में पानी की गुणवत्ता जांच के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने एक फिटनेट किट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। विभाग की ओर से हर पंचायत में एक एक किट उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 2000 से अधिक पंचायतों को फिटनेट किट उपलब्ध कराया जा चुका है। इस किट से पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, कठोरता और गंदगी की जांच की जा सकेगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने मुक्केबाजी में सबसे अधिक 10 पदक जीते हैं। इधर खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के प्रदर्शन पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार पदक जीत रहा है, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई है। आज सुबह राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। जिले में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज और सिवान जिले में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं सारण, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने भागलपुर के जमालपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में बन रहे सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित कर्मियों को तय सीमा में काम को पूरा करने का निर्देश दिया। अररिया जिले के घूरना थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 147 बोतल शराब बरामद की है। इधर मधुबनी में एसएसबी की टीम ने पुतगाह गांव के पास जांच के दौरान 19 ग्राम मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा से पाक मुहिम की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल के तवसुत से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए नौजवान

वोटों की गिनती कल होगी। पटना के एन कॉलेज में सुबह 8 बजे से वोट शुमारी शुरू हो जाएगी। पोलिंग मराकज और आसपास के हिस्से में तहफ्फुज के वसी इंतजाम किए गए हैं। जिला इलेक्शन अफसर कम जिला मजिस्ट्रेट कुंदन कुमार ने बताया कि वोट शुमारी की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। उन्होंने बताया कि पोलिंग मरकज के 200 मीटर के दायरे में किसी सियासी सरगर्मी की इजाजत नहीं होगी। वहीं इस दौरान बोरिंग रोड चौराहे से एन कॉलेज की जानिब गाड़ियों की आमद और रफ्त मसदूद रहेगी। गौरतलब है कि बीजेपी के सदर नितिन नवीन के इस्तीफा के सबब इस सीट पर जिमनी इंतखाब कराया गया। इस सीट पर अहम मुकाबला बीजेपी के नीरज कुमार, प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। रियासत की सभी पंचायतों में पानी की क्वालिटी की जांच के लिए महकमा अवामी सेहत इंजीनियरिंग ने एक फिटनेट किट मुहैया कराने का फैसला लिया है। महकमा की तरफ से हर पंचायत में एक एक किट मुहैया कराया जा रहा है। अब तक 2000 से ज्यादा पंचायतों को फिटनेट किट दस्तयाब कराया जा चुका है। इस किट से पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, खारेपन और गंदगी की जाँच की जा सकेगी। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत 39 मेडल के साथ चौथे मुकाम पर पहुंच गया है। इनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत ने मुक्केबाजी में सबसे ज्यादा 10 तमगे हासिल किए हैं। इधर वजीर खेल श्रेयसी सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के मुजाहरे पर मसर्रत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार मेडल जीत रहा है, जो पूरे मुल्क के लिए फख्र की बात है। रियासत में मॉनसून की सरगर्मियों से बारिश की कैफियत बनी हुई है। आज सुबह राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। जिले में 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा भी चली है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज और सीवान जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं सारण और मगरबी चंपारण जिले में तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान है। तामीरात सड़क के वजीर कुमार शैलेंद्र ने भागलपुर की जमालपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में तामीर हो रहे कम्युनिटी हॉल का मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिका मुलाजमीन को मुकर्रा मुद्दत में काम की तकमील की हिदायत की। अररिया जिले के घूरनाथ थाना इलाके में पुलिस ने छापामारी करके 147 बोतल शराब बरामद की है। इधर मधुबनी में एसएसबी की टीम ने पुदगाह गांव के नजदीक जांच के दौरान 19 ग्राम नशीली अशिया के साथ एक स्मगलर को गिरफ्तार किया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ज पर।

इन पर जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक और सूचना पंजाब नेशनल बैंक के लिए है। कुल पदों की संख्या है 545, आवेदन 20/7/2026 से शुरू है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9/8/2026 है। अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र सीमा है 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। विशेष जानकारी के लिए आप pnb.bank.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आकाशवाणी दरभंगा से अब सुनिए रोजगार सूचना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आवेदन शुरू होने की तिथि 21/7/2026 से ही है, अंतिम तिथि है इसके लिए 10/8/2026। कुल पदों की संख्या है 395, न्यूनतम उम्र सीमा है 25 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष। विशेष जानकारी के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डॉट बैंक डॉट

इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च यानी कि IGCAR, कुल पदों की संख्या है 200, आवेदन 20/7/2026 से आरंभ है, आवेदन देने की अंतिम तिथि है 19/8/2026, न्यूनतम उम्र सीमा है इसके लिए 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 24 वर्ष। विशेष जानकारी के लिए www.igcar.gov.in पर जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए आवेदन आमंत्रित है, कुल पदों की संख्या 163, आवेदन 22/7/2026 से ही आरंभ है, आवेदन की अंतिम तिथि है 10/8/2026, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है इसके लिए और अधिकतम उम्र 40 वर्ष। ऑफिशियल वेबसाइट heraj.nic.in पर जाकर विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ रोजगार सूचना अब समाप्त हुई।

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने ही वाले हैं। अब थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाए नहीं।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं। जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए, ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
0: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है।

0: कियाटन ने लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
2: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए गए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के

0: दिन आज जूडो में तीन भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
1: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
0: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहु खेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन। भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।

रेडियो घर में रखा एक उपकरण नहीं, एक भावना भी है। यह सिर्फ सूचनाओं के संचार का माध्यम नहीं, बल्कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मूल मंत्र लिए भारतीय संस्कृति और भारत के अभिन्न ग्राम्य सभ्यता का एक परिचायक भी है। आकाशवाणी दरभंगा

0: पिछले 50 वर्षों से आपके दिनचर्या का अहम अंग रहा है। सुबह वंदे मातरम से रात के जय हिंद तक हम आपका और आप हमारा साथ निभाते रहे हैं। हमारे इसी संबंध को बयां करता है हमारा यह कार्यक्रम जिसका नाम है रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। नमस्कार, मैं हूं मितेश कुमार मिश्रा। स्वागत है आपका आप ही के कार्यक्रम रेडियो की बात श्रोताओं के साथ में। चलते हैं श्रोताओं से जुड़ने के लिए, लेते हैं आज का पहला कॉल।
1: नमस्कार सर।
0: फट्टन झा जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ जी, बहुत बढ़िया है सर। और ये आप जो प्रयास है जो रेडियो का बात बात मतलब से जुड़ने के लिए, ये प्रयास बहुत बढ़िया है
0: जी, जी।
1: आज मैं फोन इसलिए आपको किया हूँ कि मिथिला नमस्कार का जो मिथिला नमस्कार जो है उसका प्रसारण जो है से बहुत पसंद आ रहा है। फिलहाल अभी कुछ दिन से जो संस्कृति सभ्यता इतिहास ये सब जो बताते हैं वो बहुत सुंदर लगता है सुनने में
0: जी।
1: और मैं ब्लाइंड हूँ और सब दिन रेडियो से जुड़ा हुआ, रेडियो से सब दिन जुड़ा हुआ हूँ, अभी फिलहाल मोबाइल से सुन रहा।
0: कब से रेडियो के प्रति मतलब आपका लगाव?
1: सर रेडियो 90 से सुन रहा हूँ, 87 से सुन रहा हूँ।
0: अच्छा, काफी दिनों से रेडियो सुन रहे हैं इसका मतलब आप?
1: हाँ, दिन से रेडियो सुन रहा हूँ। और मतलब
0: तो आकाशवाणी दरभंगा से कौन कौन से कार्यक्रम ऐसे हैं जो आपको काफी पसंद आ रहे हैं?
1: मतलब ये मिथिला नमस्कार था, पहले लोकगीत आता था डेढ़ बजे में लोकगीत आता था जो बहुत पसंद आता है। ये लोग किसान लोगों के लिए आता है, घर आंगन जो कार्रवाई है ये मिथिला, एक तो हेलो मिथिला आता है रात को आता था, एक तो फरमाइशी गाना हेलो आकाशवाणी।
0: हेलो आकाशवाणी अभी भी हमारे यहाँ से
1: नहीं, अभी हम जुड़ नहीं पाते हैं उससे क्योंकि रेडियो से है नहीं और लड़का मोबाइल पर महावी रहता है, लड़का का मोबाइल है, मोबाइल पर वो जब देता है तभी सुन पाते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: अच्छा हाँ, उससे जुड़े रहते हैं ये प्रोग्राम। खास करके अभी मिथिला नमस्कार जो है बहुत अच्छा मतलब
0: नमस्कार मिथिला ये हमारा कार्यक्रम है जो प्रतिदिन 7:05 से 7:55 तक जाता है।
1: अच्छा है, उस संस्कृति सभ्यता रीत रिवाज अनुशासन शिष्टाचार मतलब जो हमारे मिथिला का महत्व है, जो हमारे मिथिला का पहचान है, उसे वो बहुत अच्छे से प्रयास, उसके लिए मैं उनको खास करके धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके द्वारा।
0: हम चाहते हैं कि आप हमारे और भी कार्यक्रम को सुने और बाकी कार्यक्रमों के बारे में अपना फीडबैक जो है आप हमें लिख भी सकते हैं पत्र के द्वारा। और ठीक है, हमारा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले और भी जो कार्यक्रम हैं उनको भी सुने आप, ठीक है?
1: प्रयास बहुत अच्छा है, प्रयास प्रायः देखा गया है कि प्रयास बहुत अच्छा है
0: जी। लेकिन
1: कभी कभी कभी सम्मेलन जो होता है कभी का प्रसारण आज तक मत लीजिए, एक मांग करूंगा कि कभी का जो प्रसारण है कविता का
0: जी जी नहीं,
1: उसका प्रसारण एक ऐसा समय पर लिया जाए जैसे सिंघार है, सिंघार हम प्रायः सुनते हैं रात को,
0: सिंगर हार है कार्यक्रम हमारा।
1: हाँ,
0: इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक कार्यक्रम होता है विविधा के नाम से, तो वो आप सुन सकते हैं। और उसमें मैंने हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में ही जो है एक कवि गोष्ठी हमारे यहाँ आयोजन हुआ था, तो वो भी बहुत हाल फिलहाल में ही प्रसारित हुआ है यूट्यूब पे, अभी वो मौजूद है, आप चाहें तो यूट्यूब पे इसको सुन भी सकते हैं।
1: प्रयास है बहुत अच्छा बढ़िया है, जो मिथिला का स्थान है ये जो आकाशवाणी जो है वो मिथिला का पहचान है, मिथिला में आकाशवाणी दरभंगा से ही मिथिला को इतना मैथिली को इतना पहुंच मिला है।
2: जाजी हम लोग बस प्रसारण कर सकते हैं, हम लोग बस कार्यक्रम बना सकते हैं, लेकिन जो शान हमारी होती है वो श्रोताओं से होती है। आप इसे सुनते हैं सराहते हैं तो हम सफल होते हैं
1: जी, तो यही तो बात है ना। लेकिन इसी के मतलब आपका मतलब मनोबल को बढ़ाने के लिए मैंने ये फोन लगाया कि नहीं, ये बोलना चाहिए कि बिल्कुल ये मतलब दरभंगा ये यदि आकाशवाणी दरभंगा नहीं होता तो हम लोग का खास करके ये मिथिला जो है
2: जी
1: मिथिला का इतने पहचान मतलब इतने पहचान नहीं होता या मैथिली का इतने प्रसारण नहीं होता, ये तो समझ नहीं पाता क्योंकि हम मिथिला में एक मतलब मैथिली में देख रहे हैं, बिहार को बोलिए संस्कृति ये अपने संस्कृति के बारे में इतने जागरूक नहीं है, अपने पूर्वजों के मतलब प्रोत्साहन देने में या उनको मतलब आगे बढ़ाने में या बूढ़ बुजुर्गों का जो सम्मान मिलना चाहिए जैसे विद्यापति हैं, जैसे माँ जगजननी सीता है, जैसे कालिदास जी हैं, इन लोगों को जो मतलब सम्मान मिलना चाहिए हम लोगों के द्वारा वो हम उनको नहीं दे पाए।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी पूरा प्रयासरत रहता है क्षेत्रीय चैनलों का विस्तार करने का, यह जो हमारा कार्य था वो इसीलिए था कि जो क्षेत्रीय हमारी चीजें हैं हम उनको विस्तारित कर सके, अपने क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा दे सके, सभ्यता को बढ़ावा दे सके। और हमें लगता है कि आकाशवाणी दरभंगा इस क्षेत्र में कार्य करके आपको संतुष्ट कर रहा होगा।
1: जी जी जी संतुष्ट बहुत देता है और खास करके एक बार लास्ट में यही मतलब

0: मैं रंजीत जी का बहुत बड़ा, मणिकांत जी भी रहते हैं, मणिकांत जी भी रहते हैं, बहन जी भी कितने आते हैं
1: जी,
0: नाम सबका मतलब उतना क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन मणिकांत जी भी आते हैं, बहुत अच्छा से देते हैं
1: जी जी।
0: बहुत सुंदर लगता है सुनने में, और बहुत बहुत मतलब धन्यवाद, ऐसे ही मतलब और कीजिए। और ये मिथिला नमस्कार में किसी एक दिन मतलब 10 मिनट मतलब कविता के लिए निकालिए, किसी कवि को निकालिए, जो मतलब ऐसे बहुत सारे कवि हैं हम लोगों का।
2: नहीं जाजी, ऐसा है कि
0: कविता मिथिला मैथिली कविता का मतलब प्रोत्साहन मिले,
2: ऐसा है जाजी कि हर कार्यक्रम का अलग अलग चंक है हमारे यहाँ। आप जो कवि गोष्ठी की बात कर रहे हैं वो हमारे दूसरे अलग अलग जो कार्यक्रम है उसमें वो प्रसारित हम लोग करते हैं, अगर आप लगातार सुनिएगा तो आपको वो भी चंक मिलेगा। वैसे यूट्यूब पे, हाँ हाँ हाँ, और वैसे यूट्यूब पे जो है आपका जो है ये हमारा कवि गोष्ठी हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में अपलोड किया है, तो आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि इसी तरह आप आकाशवाणी दरभंगा को सुने और हमसे जुड़े रहें।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
2: ठीक है।
0: आपका टेक्निकल प्रॉब्लम, जो टेक्निकल प्रॉब्लम उसे तो आप कुछ नहीं कर पाएगा, तो आपको साफ भाषा में बोली दी है कि उसको उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और रेडियो अवेलेबल नहीं हो पाया, कुछ रेडियो ले लीजिए जो 2-4 साल भी नहीं टिका ले, एक रेडियो लिए थे तो कम से कम 15 साल बजाए थे ये फिलिप्स का, वो अभी मिल नहीं रहा।
3: हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ही रेडियो कंपनी से रिक्वेस्ट कर देते हैं सर कि वो ऐसी रेडियो बनाए जो सालों साल टिके, जैसे हमारे श्रोता बन के आप टिके हुए हैं। आपने हमें कॉल किया रेडियो की बात श्रोताओं के साथ में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद
3: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
2: हेलो
4: हेलो,
2: हाँ कौन श्रोता हमारे बोल रहे हैं? नाम बताए अपना।
4: धर्मदेव ठाकुर, मधुबनी बिहार, मधेपुर थाना।
2: जी जी,
4: बाकी गाँव।
3: बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रेडियो की बात श्रोताओं के साथ में। कहिए सर, अभी आजकल क्या कर रहे हैं आप?
4: आजकल साहब घर में बैठे हैं, 18 वर्ष तक समझिए जो हम पेपर बेचे हैं, अब तो पेपर को समझिए मोबाइल खा दिया, अब घर में बैठे हैं मगर रेडियो सुनते हैं।
3: मोबाइल ने कुछ चीजों को खाया जरूर है, मगर मोबाइल के माध्यम से रेडियो भी आपके पास तक पहुंच रही है, तो मोबाइल का शुक्रिया भी कभी कभी कहना चाहिए हमें।
4: साहब बड़ा वाला मोबाइल जो है वो हम चला ही नहीं पाते हैं, और टीवी घर में भी है उसको नहीं देखते हैं, क्योंकि हमको जो रेडियो से मिला है चीज जानकारी हर चीज, वो हम न टीवी न मोबाइल को देखते
2: हैं। कौन कौन से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं धर्मदेव जी? आप
4: क्या कहें अब आपको, हम कौन कौन से सुनते हैं, सुबह से जो 5:45 बजे से समझिए होता है
2: जी जी,
4: प्रोग्राम वो लेकर के और दिन के 3:30 बजे तक वो सुनते रहते हैं।
2: अच्छा,
4: आपको एक एक चीज कहें वो तो रेडियो ही कह दिए मुख्य जर, जो हमें रेडियो से इतना लगाव है, अब आप लोग को हम क्या सुनाए, गाना है जो गुजर रही है मुझ पर उसे कैसे मैं बताऊँ, वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से।
3: हम जानना चाहेंगे सर कि आपकी जिंदगी में रेडियो पहली बार कब आया?
4: हम तो साहब रेडियो को अपना जीवन समझे अभी 68 वर्ष को, और कोई गम या कुछ आता है तो समझिए रेडियो को खोल के उसमें ऐसे ऐसे बात आप लोग द्वारा मिलता है जो हमें उससे आत्मा में शांति मिलती है
3: जी। तो कितने साल हो गए आपको सुनते हुए
4: रेडियो? हम सन 1978-77 में खरीदे थे, तब से हम रामलीला पार्टी में रहते थे उत्तर प्रदेश में, उस समय तो रेडियो में समझिए तो बहुत कुछ ही, उधर उत्तर प्रदेश में रहते थे तो सिवा का ये सब जितना आप लोग को बताए हम रेडियो का ही नकल करके समझिए, रामलीला पार्टी में हम जोकरी भी करते थे, गाना भी गाते थे, तो साहब हम बहुत कुछ सीखे हैं, और हम क्या आप लोग को बताए, रेडियो को हम अपना भगवान मानते हैं।
2: धर्मदेव जी,
4: हाँ,
2: कि रेडियो से जुड़े हुए आपके कुछ रोचक किस्से जो आप से हम लोगों से साझा करना चाहें हमारे श्रोताओं से, कुछ ऐसी बातें जो रोचक हों जो आपको अचानक से आज याद आ गई हो कि हमको बताना चाहिए सभी लोगों को।
4: साहब रोचक क्या कहें, हम तो गम के मारे को, रेडियो से क्या आपको बताए रोचक दार बात क्या, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हम तो ये कहिए लग गया 3 बार लगाए हैं, तब लगा है तब आप लोग से बात हो रही है, खुशी हुई है जो आप लोग कम से कम हमारी पुकार को हमारे दिल की धड़कनों को थाम लिए।
3: बहुजन हिताय बहुजन सुखाए, ये हमारा माध्यम है रेडियो का और हम आपके साथ जुड़े रहते हैं, बस इस बात का गम मत कीजिए कि 3 बार में आपका कॉल लगा है, कुछ लोगों का कॉल अभी तक लगा भी नहीं है, वो ज़्यादा गमगीन है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए, और आप चूंकि खुद आर्टिस्ट हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने रेडियो को एक माध्यम बनाया अपने आर्ट

0: में उसको जोड़ा है, हमें बहुत खुशी है।
1: हाँ साहब, हम तो इतने खुश हैं जिसका कोई जवाब नहीं। अब आप लोग जो कहते हैं बोलते हैं तो होता है कि सुनते, हम तो ये बात कर लिए हैं, हो सकता है अब नहीं भी करें आप लोगों से,
2: ऐसा क्यों?
1: लेकिन हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों ने ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम दे दिए हैं। अब तो जो है प्रेमी वही आपको कुछ कहेगा, लेकिन हम अपने विषय में यही कहेंगे कि रेडियो मेरे लिए एक समझिए जिंदगी दवा सब कुछ, उसको मैं समझता हूँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप रेडियो को इतना चाहते हैं, इतना प्यार देते हैं। आपकी चाहत और आपके प्यार के बलबूते ही आकाशवाणी दरभंगा अपना 50 साल पूरा कर पाया है और बेहतरीन कार्यक्रमों को लेके आपके साथ बना हुआ है। उम्मीद करते हैं हमारा आपका साथ
1: आप
0: लगातार
1: तो
0: बना
1: समय
0: रहेगा।
1: भी कम मिलता है ना, किसी के समय को देंगे नहीं 10 मिनट या 20 मिनट। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है,
0: आपका
1: बड़ों
0: बहुत
1: को
0: बहुत
1: मेरा
0: शुक्रिया।
1: प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, और वालों को नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्मदेव जी।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
3: मैं सतीश चंद्र मिश्र, अवकाश प्राप्त शिक्षक, ग्राम हाजिर भगवान, बेनीपुर दरभंगा से बोल रहा हूँ।
2: जी सतीश जी, कैसे हैं आप?
3: कृपा है प्रभु की और आप लोगों का, दैनिक कार्यक्रम जो सुनते हैं वो एक नव जीवन का संचार दे रहा है, तो उसी के माध्यम से एक संजीवनी मिल रहा है आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से जी रहे हैं। और एक मेरा जैसे मेरी जीवन संजीवनी कहती है, बार बार कहा करती है कि है रेडियो तो आप दूसरा जीवन संजीव ला दिए।
2: तो ये आपके रिटायरमेंट के बाद का जो जीवन शैली है उसमें रेडियो का अहम योगदान है जैसा आपकी बातचीत से लग रहा है हमें। कौन कौन से कार्यक्रम ऐसे हैं जो सुन रहे हैं आप अभी आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित होने वालों में?
3: अभी अभी मैं सुबह में जो वंदना कार्यक्रम होता हूँ,
2: जी जी,
3: तो जब जब रेडियो ऑन करता हूँ तो जैसे घर का प्रांगण जो है वह गूंजने लगता है। और उसके बाद तुरंत रामायण रामचरित मानस आ जाता है, तो ये तो अध्यात्म का शुरुआत हो जाता है और जीवन दैन नंदिनी में एक नया जीवन आ जाता है, समझा
2: जी।
3: तो शुरुआत उसी से, उसके बाद अपना चाय उलिए और अपना घर गृहस्थी में लग जाए, गाय है उसकी सेवा में लग जाए। लेकिन और कार्यक्रम जो है, जो फिल्म संगीत होता है 1:15 से
2: जी,
3: मैं उसके बाद समाचार, फिर समाचार और फिर संगीत, बस 3 बजे तक मैं इसे चिपका रहता हूँ।
0: सतीश जी, ये तो आज की दिनचर्या हो गई जब सतीश जी रिटायर हो चुके हैं और एक उम्र में पहुंच चुके हैं। हम जानना चाहते हैं कि सतीश जी ने सबसे पहली बार रेडियो कब ट्यून किया था और कौन सा कार्यक्रम सुना था?
3: हाँ, मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय अमृतांत मिश्र
0: जी,
3: तो उस समय रेडियो नहीं था, वो ट्रांजिस्टर छोटा सा था जिसमें एक एरियल लगा होता था, तो मैं 67 ईस्वी से मेरे मन में विचार आया जब एरियल लगा हुआ है तो एक नंगा तार जो उनका क्वार्टर था उसमें नंगा तार लगा के एरियल उसमें बांध देते थे तो आवाज और तो
0: बहुत बड़ी तकनीक हुआ करती थी एक जमाने में ये, उसके एरियल में तार लगाना है ना।
3: बाबू जी एक वही था कि उस समय पोस्ट ऑफिस में जमा करना पड़ता था फीस, बाबू जी पंक्चुअल थे, 20 रुपया या कुछ समथिंग देते थे और जाके वो स्टम्प से पोस्ट ऑफिस में, तब बाबू जी सांत्वना उनके हृदय में होता था। बाबू जी जब शाम में होते थे तो अपना रेडियो सुनते थे, तो हम भी जब नहीं थे तो चुपके से अपना खोल लिया, लेकिन नहीं कुछ बोलते थे।
2: सतीश जी, जैसा कि आपकी बातों से हमें पता चला है कि आप 1967 से लेकर के अब तक रेडियो सुन रहे हैं।

0: तो जानना चाहेंगे कि इस अवधि में, ये बहुत लंबी अवधि होती है, लगभग मुझे लगता है 55 वर्षों के आसपास से आप लगातार रेडियो सुन रहे हैं, तो इन हाँ इस लंबी अवधि में ऐसा कोई समय या ऐसा कोई पल आपको याद आ रहा है जो बहुत ही रोचक रहा है, और रेडियो के माध्यम से आपके जीवन में थोड़ा सा वो क्या ऐसा पल आया है जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से?
1: उस समय पटना से पहले कार्यक्रम होता था तो चौपाल लगता था,
0: जी
1: तो खुरखुर भाई और लोहा सिंह लोग थे, इन लोग अपना जो देते थे तो बड़ी मस्त प्रोग्राम हुआ करता था, और एक भाषा का जैसे वहाँ समन्वय होता था विभिन्न भोजपुरी मैथिली हिंदी ये हो, और तो मेरे मन में भी जिज्ञासा गया कि मैं भी संस्कृत पढ़ूं और हम भी हिंदी पढ़ूं इंग्लिश ये वो, तो हुआ। इस बीच में एक कार्यक्रम होता था जिसे आप लोगों ने शायद इग्नोर कर दिया है, रद्दी की टोकरी में रख डाला है, वो था भदवा में कदवा।
0: ये बहुत पहले की बात कह रहे हैं आप, लेकिन आपका सुझाव हम अपने वरीय पदाधिकारी तक जरूर पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ जो कार्यक्रम की रूपरेखा जब भी तय हो तो इसमें आपके सुझाव को हम वहाँ तक पहुँचा करके कार्यक्रम से इस नए फॉर्मेट को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे।
2: अब देखिए सतीश जी, वक्त भी बदल गया, जहाँ तहाँ जो है वो कंक्रीट की सड़क बन गई, तो अब भदवा में कदवा होना बंद हो गया, तो हम लोग भी उससे थोड़े दूर हो गए हैं। तो सतीश जी, वैसे चेष्टा करेंगे कि पुरानी चीजों को फिर से लाने की कोशिश करें आप जैसे श्रोताओं के लिए।
1: तो उसमें होता है क्या, ये जो रविवार में
0: जी
1: 12:30 से प्रोग्राम होता है नाटक का, ये एकांकी का, जिसमें बस रिपीट हुआ करता है वही दहेज वाला प्रोफेसर साहब, इंजीनियर साहब, वो घसल अठन्नी बाज उठल हाँ कतो जाओ अवलंब पाओ, तो ये सब तो है, लेकिन आखिर इसमें तो होना चाहिए विभिन्न भाषाओं का निम्न बलता जो भदवा में कदवा था, हमर बाव मनमनी में जो बिलाई रखने रहती तकर कुछ भी रहे।
2: सतीश जी, सतीश जी, हमारे पास अभी भी आकाशवाणी के पास बहुत सारे संचित नाटक हैं और हम पूरी चेष्टा कर रहे हैं कि उनको नए तकनीक में ढालने की कोशिश करें। दरअसल वो पुराने फॉर्मेट में रिकॉर्डेड हैं और हम उन्हें नए तकनीक में ढाल के आप तक लाएंगे।
1: अभिलाषा पूरी होगी
2: जी, बिल्कुल।
1: और एक जो है अर्थ, समय का अर्थ जो देने वाला ये माध्यम है, आप जो साथी है, पहले समय बताता था ये रेडियो माध्यम था, लेकिन अब तो समय को अर्थ देने वाला ये साथी बन चुके हैं आप, तो एक साथी के साथ मैंने सुना दुहरा रहा हूँ, मेरी जीवन संगिनी जो है धर्मपत्नी वो कह रही है कि अलग साथी बना रहे हैं, ना भाई तू तो ये हो।
2: हम कामना करते हैं सतीश जी कि आप और आपकी जीवन संगिनी दोनों मिलकर के इस रेडियो का आनंद लीजिए, ये आपका तीसरा साथी बनकर आपके साथ रहे।
0: आकाशवाणी दरभंगा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। हेलो,
3: हाँ नमस्कार सर।
0: हाँ जीवेश जी नमस्कार।
3: हमारे ओर से समस्त आकाशवाणी परिवार को 50 वर्ष पूरे होने पर शुभकामना, और सारे रेडियो के श्रोतागण, सुजी श्रोतागण, सुजी श्रोतागण सबको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामना।
0: धन्यवाद जीवेश जी आपका। कब से रेडियो सुन रहे हैं जीवेश जी आप?
3: हम सर लगभग 74-75 से सुन रहे हैं।
0: 74-75 का लगभग, ये तो 52 साल के आसपास का ये समय हो गया, तो
3: लगभग
0: 52 सालों में रेडियो के तब का और अब का जो कार्यक्रम है, इसमें ये जो बदलाव का जो चला है ये दौर, ये कैसा लग रहा है आपको अभी?
3: जमीन आसमान का अंतर है।
0: मतलब अच्छा है या बुरा है ये?
3: क्योंकि हम रेडियो स्टेशन के अंदर जाकर के
0: जी
3: हमारे पिताजी वहीं पर जो हवाई के पश्चिम बजे 100 मेगावाट का सेंटर है
0: जी जी जी,
3: उसी में कार्य करते स्वर्गीय छत्रनाथ मिश्रा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
3: ताराचरण जी थे, सीताराम शर्मा जी थे।
2: बिल्कुल, ये वो दौर था

0: जब हराही पश्चिम का वो किनारा बहुत गुलजार रहा करता था कलाकारों से, है ना?
1: जी, हमारे पिताजी सर।
2: कौन कौन से कार्यक्रम हमारे केंद्र के ऐसे हैं जो सुनते हैं जिवेशी आप अभी? तो एक आध कार्यक्रम जिनसे जुड़े हुए कुछ रोचक कुछ बातें बताएं हम लोगों से साझा करें जी।
1: रात 9 बजे के बाद नहीं सुनते हैं।
0: जिवेश जी, कोई ऐसा खास कार्यक्रम जो आपको बहुत पसंद आता हो?
1: सबसे ज्यादा हमको पसंद आता है आपको ये नमस्कार मिश्रा
0: जी,
1: और उसके बाद समाज सेवा से विद्यापति
0: जी जी,
1: घर आंगन
2: जी जी, ये गांव घर के अंतर्गत है।
1: हाँ, गांव घर नैना गुटका
2: जी जी,
1: शुक्रवार जो आज के दिन में जो होती है
2: जी जी जी,
1: और सबसे अच्छा लगता है इतवार को जो आपका ये नाटक का कार्यक्रम होता है
2: जी, 12:30 बजे के आसपास ये कार्यक्रम होता है,
1: 12:30 बजे के आसपास 1 बजे तक
2: जी।
1: वो मैंने चौक से सुनते हैं क्योंकि हम शिक्षक है पेशे से
2: जी,
1: और एक कलाकार भी है, नाटक वगैरह मंचन हम बहुत सारे ढंग से करते हैं
2: जी जी,
1: तो कुछ परिप्रेक्ष्य में सुनना बहुत सुंदर लगता है
2: जी। आकाशवाणी से जुड़े हुए कुछ अपने रोचक अनुभव कुछ आप हमसे साझा करना चाहते हो इस कार्यक्रम के माध्यम से?
1: हाँ, तो ऐसा कि हम तीसरी चौथी क्लास में पढ़ रहे थे
2: जी,
1: तो हम जो भाई बहन थे, हम और विभा जी थे, जो भी आती है हमारी छोटी बहन
2: जी,
1: दोनों हमारे पिताजी साथ लेके गए थे कपड़ा खरीदने के लिए दरभंगा
2: जी जी,
1: तो उसमें जो है हमको ले जाया गया था अंदर, जब रिकॉर्डिंग हो रही थी
2: जी
1: उस रूम में, लेकिन हिदायत दिया गया था कि कुछ बोलना नहीं
2: जी। हाँ, वो रिकॉर्डिंग
1: साथ लोग देखते रहोगे, कुछ बोलना नहीं
2: जी जी,
1: तो उसमें जो नजारा देखे थे जब रिकॉर्डिंग हो रही थी,
2: हाँ
1: नजारा जो देखे थे हम बजाते हुए
2: जी,
1: वो नजारा हमको अभी भी याद है उसी रूप में।
2: तो ये तो कार्यक्रम निर्माण का की चर्चा आप कर रहे हैं, कार्यक्रम को रेडियो सेट पे सुनने का जो अनुभव आपका रहा है अब तक का, उससे जुड़े हुए कुछ रोचक कुछ ऐसे वाकयात आपके साथ में कुछ हमसे साझा करना चाहते हो जो आप?
1: हाँ बिल्कुल सर, उसमें हेलो डॉक्टर जो होता है
2: जी, हाँ हेलो जिंदगी,
1: हेलो जिंदगी डॉक्टर कार्यक्रम इतवार को होती है
2: जी जी,
1: वो सुनते हैं क्या वो हमसे संदर्भित हो
2: जी,
1: या सुन करके किसी दूसरे को मैंने सतर्क का जागरूक करना हो
2: जी जी,
1: वो हम चौ से सुनते हैं
2: जी बिल्कुल। आपके माध्यम से हम अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आकाशवाणी दरभंगा के सभी कार्यक्रम से हम ये उम्मीद करते हैं कि श्रोताओं को कुछ नई नई रोचक जानकारियां उन तक हम साझा कर सकें और उनका साथ में मनोरंजन भी कर सकें। जी हाँ जी हाँ, कहिए जी वैसे
1: को जो नाटक के बारे में जिक्र किया हूँ
2: जी जी जी,
1: हाँ वो आपको नाटक है जैन विसारी पर आधारित
2: जी,
1: वो आज से 6 महीना पहले बराबर आता था
2: जी जी,
1: जमर अमर करके
2: अच्छा,
1: वो जैन विसारी पर था जो बच्चा गया था रसाम के खाने के लिए, और उसको माँ मना कर दी कि वो जैन है उनके घर का सामान मत खाओ
2: जी,
1: जैन गोविंद के प्रसाद पर जो खेत लगता है
2: जी,
1: आज के मैंने विकसित युग में वो नाटक को कहीं कभार मैंने प्रसारित किया जाए।
2: ठीक है, आपकी बात जो है सो हम लोग ध्यान में रखेंगे और बहुत जल्द आपको वो नाटक जो है दोबारा फिर से सुनने को मिल सकता है।
1: और एक बात और आपको कहना चाहेंगे सर
2: जी,
1: ये कार्यक्रम तो मैंने कितना प्रचारित प्रसारित लोकप्रिय है ये तो कहना मुश्किल है।
2: जिवेश जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये उद्देश्य है, आकाशवाणी दरभंगा का ये उद्देश्य है कि हम श्रोताओं के मन की बात जो कार्यक्रम में बदलाव को लेकर के अच्छी या बुरी जो भी है उसमें हम सुधार करने की प्रक्रिया में उसको हम अमल कर सकें। तो कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यही है कि आपसे जुड़ें, आपसे आपकी बातों को हम सुने और जो कुछ भी बदलाव हम कर सकते हैं यथासंभव उसको करें और कार्यक्रम को और रोचक और मनोरंजक बना सके आप लोग।

0: के लिए।
1: इतना दिन से ध्यान क्यों हो गया, बहुत अंतराल हो गया, इतने दूसरे कार्यक्रम में अंतराल बहुत हो गया, आज बार बार करिए ना।
0: जी हाँ, बीच में दो एपिसोड का गैप हुआ था, लेकिन अब ये कार्यक्रम लगातार रेगुलर जो है आपको सुनने को मिलेगा। नहीं नहीं, बंद नहीं हुआ था, नहीं जी नहीं, बंद नहीं हुआ था, ये तकनीकी कारणों से बंद था, लेकिन अब ये लगातार आपको सुनने को मिलेगा। हर एक प्रत्येक महीने की पहली रविवार को दिन के 2:30 बजे से 3 बजे के बीच। कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद जिवेश जी।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार। श्रोताओं, 2 महीने के लंबे अंतराल के बाद आज हमें आपके ढेर सारे कॉल प्राप्त हुए हैं, आपसे बातें भी हुई, कुछ श्रोताओं की हमसे बात नहीं हो पाई, जिसका हमें बहुत दुख है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले अंक में आपसे निश्चित ही बात होगी। इसी तरह आप सभी श्रोता अपना प्यार आकाशवाणी दरभंगा पर बनाए रहे।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो की बात श्रोताओं के साथ, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जा रहा था।

आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है अब विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। पहले हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं काशीनाथ झा किरण का गाया हुआ ये गीत।

इस गीत के साथ ही विद्यापति गीतों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। जिन कलाकारों का को अभी आप सुन रहे थे वो थे काशीनाथ झा किरण, राम कुमार मल्लिक और विनय कुमार झा। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:20 हो चुके हैं। आज की पहली सभा यहीं समाप्त होती है। दूसरी सभा इसी मीटर पर संध्या 5 आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: बात का फैसला बेटे।
1: हम दादी जान से बार बार कहते हैं
0: क्या
1: कि हमें चांदनी चौक हवाखोरी के लिए भेजिए, मगर वो सुनती ही नहीं है।
0: अभी तो शब है बेटे, और रात के वक्त सैर को नहीं जाया करते।
1: लीजिए, दादी जान भी आ गई।
2: मेरे सरताज, इसे किसी तरह से समझाइए।
0: कह तो रहा हूँ मेरे बेटे, हम सुबह सैर करने चलेंगे और फिर
1: आगे फरमाइए ना, खामोश क्यों हो गए आप?
0: हम क्या कह रहे थे?
1: हम जानते थे।

0: यही होगा, आप बहुत सी बातें भूल जाते हैं। दादा जान, क्या रात भर हम यही रहेंगे?
1: हाँ बेटे, हम यही रहेंगे।
0: हमारी सारी कनीजें कहाँ गईं?
1: अपने अपने घर।
0: मगर क्यों?
1: अल्लाह का ऐसा ही हुक्म है बेटे।
0: अल्लाह ऐसा हुक्म क्यों देते हैं? हमें यहाँ गर्मी लगती है, कोई हमें पंखा झलने वाला भी नहीं है।
1: कोई बात नहीं, आपकी दादी जान आपको पंखा झल देंगी।
0: हमें कपड़े कौन पहनाएगा?
1: दादी जान।
0: खाना कौन खिलाएगा?
1: दादी जान।
0: दादा जान।
1: हाँ।
0: दादी जान, क्या कोई फरिश्ता है जो सारे के सारे काम अंजाम फरमाएंगे?
1: चलो थोड़े बहुत आपके काम हम भी कर देंगे बेटे।
0: आप? दादा जान।
1: हाँ।
0: आप?
1: क्यों, हम नहीं कर सकते क्या?
0: दादा जान।
1: हाँ।
0: आपको तो हुक्के के लिए, खासदान के लिए, उगालदान के लिए, पापोश पिन्हाने के लिए अलग अलग खादिम चाहिए, और आप?
1: बेटे रुखसाना, ये वक्त बड़ी जालिम शय होता है, ये किसी से कुछ भी करवा लेता है बेटा।
0: खैर दादा जान, इस सिलसिले को यही खत्म करें। हाँ। और फिलहाल हमें कोई किस्सा सुनाएं।
1: बहुत खूब बहुत खूब, हम आपको किस्सा सुनाते हैं। एक था बादशाह, घोड़े पे सवार, हाथ में चमकती हुई तलवार। वो
0: जिधर से गुजरता था जलजला सा आ जाता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया। दादा जान, ये किस्सा इतनी बार आपने सुनाया है कि बिल्कुल हिफ्ज हो गया है। दादा जान, ये घिसे पिटे किस्से आप अपने पास ही रहने दें, मैं अम्मी जान के पास जा रही हूँ।
1: लेकिन लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि जलजला तो रुक गया, लेकिन एक खौफनाक तूफान बपा हुआ, खतरनाक खूंखार तूफान। सियाह आंधियों के थपेड़ों ने सब कुछ तितर बितर कर दिया।
2: मेरे सरताज, किस्सा आप किसे सुना रहे हैं?
1: हाँ?
2: रुखसाना तो कब की यहाँ से जा चुकी है।
1: रुखसाना चली गई? मलिका, आपकी आवाज इस कदर गमजदा क्यों हो रही है?
2: यूं महसूस होने लगा है जैसे कुदरत की सारी नियामतें वीरान हुई जा रही हों। चमना का पानी बदरंग और सियाह लगने लगा है।
1: मलिका आलिया, कभी चमना के बारे में ऐसे अल्फाज भूल से भी अपने लब पे न लाएं। पानी तो दुनिया के हर दरिया में बहता है, लेकिन दरियाए गंगा और जमुना में आबे हयात बहता है। जमुना कभी भी बदरंग और बदमजा नहीं हो सकती।
2: संग तराशों के फन को शाही रुतबे ताज खलक से नवाजने वाले सल्तनत मुगलिया के चश्म चराग शहंशाह शाहजहां ने इसी जमुना के रास्ते लाल किले में अपने कदम रंजा फरमाए थे।
1: हाँ मलिका आलिया, हम उन्हें शहंशाह शाहजहां के वारिस हैं, जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े आलिमों और हुनरमंदों को एक झां कर लाल किला तामीर करवाया और जमुना के रास्ते किले में तशरीफ लाए। और एक ये बदनसीब जफर, रात के अंधेरे में उसी लाल किले को दुश्मनों के नरगे में उनके रहमो करम पे छोड़ के पीछे के दरवाजे से उसी जमुना के रास्ते से भागकर इस वीरान अंधेरे मकबरे में पनाह ले रहा है।
2: मेरे सरताज, ये मकबरा उन्हीं खुशबख्त शहंशाह हुमायूं का है जो अपने दुश्मनों से शिकस्त खाने के बाद दोबारा सल्तनत हासिल करके तख्त नशीन हुए थे।
1: हाँ मलिका आलिया, पत्थर की इन दीवारों से जब कभी हाथ मस हो जाता है तो सारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूं महसूस होता है जैसे कोई बुजुर्ग पुरुष थपथपा के कह रहा हो, हमने हिंदुस्तान में रहकर ऐसी ऐसी नायाब चीजें हासिल की जो शायद फरिश्तों को भी नहीं मयसर। उन्हीं में से बेशकीमत चीज है जज्बा-ए-हुब।

0: कौन? लौट आए बख्त खां?
1: जी नहीं, इलाही बख्श आली जहां की खिदमत में कोर्निश बजा लाता है।
0: अरे कहां की बादशाह, कहां के आली जा, मकबरे में पनाह लेने वाला आली जा कैसे हो सकता है?
1: ऐसा ना फरमाए, सरकार तो आज भी हिंदुस्तान के शहंशाह हैं।
0: हाँ, एक ज़ईफ बेकसो लाचार शिकस्त खुर्दा शाह जो अपने अज्जा के महलों से रात की तारीकी में भाग निकला और अब जंग

0: पागल बियाबानों में भटकने जा रहा है।
1: ये क्या फरमा रहे हैं मेरे सरकार?
0: हाँ इलाही बख्श, बख्त खान ने सारा बंदोबस्त कर लिया है। हम भेष बदल कर निकल रहे हैं, अब हमारा कयाम यहां मुनासिब नहीं। सुना है लाल किले पर फिरंगी कब्जा कर चुके हैं।
1: बजा फरमाया, मैं आपको तलाश करता हुआ कुछ अर्ज करने हाजिर हुआ हूं। आप हमारे शाह ही नहीं अजीज भी हैं, और ये मेरा फर्ज है कि सही वक्त पर सही सलाह देना।
0: क्या सलाह देना चाहते हैं आप?
1: आप भागने के बजाय गोरों की फतह कबूल फरमा लें।
0: इलाही बख्श, आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं?
1: अच्छी तरह से आलीजा, चमकते सूरज को सूरज कहना गुना नहीं है। फिरंगी फतह याब हुए हैं और हमारे हिस्से में शिकस्त आई है, हमें कबूल कर लेना चाहिए।
0: आप चाहते हैं हिंदुस्तान के ताज तख्त को फिरंगियों के कदमों के सुपुर्द कर दूं?
1: फिरंगी आपके इंतजार में नहीं बैठे हैं, उन्होंने अपनी अक्ल और शुजात से हिंदुस्तान का ताज तख्त हासिल कर लिया है। हमारी अक्लमंदी इसी में है कि गोरों की मातहती कबूल कर लें और ठाट से पेंशन लेकर चैन की जिंदगी गुजारें।
0: ऐ पाक परवरदिगार, तमाम आलम में अपना इकबाल बुलंद रखने वाला सल्तनत मुगलिया का शाह जफर फिरंगियों के दिए हुए रद्द मजालिम खैरात पर बाकी की उम्र गुजारेगा।
1: अस्ताखी माफ हो आलीजा, आप भाग कर जाएंगे भी किधर? मुल्क पर गोरों का कब्जा हो चुका है, अपने बेकसूर बच्चों और मलिकाए आलिया के बारे में तो तसव्वुर फरमाए।
0: क्या फिरंगी हमें इज्जत बख्शेंगे?
2: आलिजा, क्या सुन रहे हैं मेरे कान? तशरीफ ले चले, सवारी तैयार है।
3: बख्त खां, आलिजा ने बियाबानों पहाड़ों में भटकने के बजाय फिरंगी की हुकूमत कबूल फरमाई है। इनकी जानो माल और इज्जत की जिम्मेदारी मैंने ली है।
2: मक्कार गद्दार फरेबी इलाही बख्श, तुम यहां तक गिरोगे मैंने सोचा भी ना था।
3: बख्त खां, जबान को लगाम दो।
2: तलवार म्यान में रहने दो, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वरना इसके पानी से तारुफ करा देता। आलीजा, लम्हा भर भी यहां ठहरना हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
0: बख्त खां, हम बहुत थक गए हैं, टूट चुके हैं। हमारे अज्जा ने फिरंगी का लोहा मान लिया है। एक अकेला बख्त खां और ये जईफ बादशाह जफर।
2: सरकार, देर न फरमाए, तशरीफ ले चले।
3: बख्त खां, बादशाह तनहा नहीं है, अहलो आयाल के बारे में भी सोचना हमारा फर्ज है।
2: मेरे सरकार, एक एक लम्हा कीमती है।
0: बख्त खां, हमें मलिकाए आलिया और अपने फर्जंदगान से मशवरा कर लेने दो।
2: सरकार, क्या ये आखिरी फैसला है?
3: बख्त खां, तुम सिर्फ एक सिपहसालार हो, हदें तोड़ने की कोशिश ना करो।
2: आप खामोश हैं आलीजा। इलाही बख्श, तुम जीत गए। तारीख का मौर्रिख लिखेगा सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार की हार फरेबी मक्का रिश्तेदार के हाथों हुई है। तो आस्तीन का सांप निकला, इलाही बख्श, थूकता हूं तुझ पर। मैं जमुना में नाव पर आलीजा आपकी राह देख रहा हूं।
0: अक्ल काम नहीं कर रही, लगता है रेतीले मैदान में हम खोए जा रहे हैं।
1: नहीं नहीं आलीजा, हम सही रास्ते पर हैं।
0: ये कैसा सूर है? ये कैसा शोर है इलाही बख्श?
3: वो आ गए।
0: तुम हंस रहे हो, कौन आ गए?
1: फिरंगी, मैं देखता हूं।
0: मलिकाए आलिया,

0: तोहफा, अभी आपने ये नाटक सुना। मूल कहानी मधुकर गंगाधर की थी और रूपांतर जोहरा मिर्जा का। नाटक निर्माण में सहायिका थीं चित्रलेखा जैन। तकनीकी सहायता विनायक तडवलकर ने प्रदान की। निर्देशक थे लोकेंद्र शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम भूमिकाओं सहित इस प्रकार हैं: बेगम जीनत महल, बिरजिस दोस्त, रुखसाना शहनाज अख्तरी, इलाही बख्श कमल शर्मा, बख्त खां क्यू एन कश्मीरी, हडसन किशोर कपूर और बहादुर शाह जफर विनोद शर्मा। नाटक तोहफा विविध भारती के मुंबई स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लग गए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
4: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
4: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वो कॉमिक क्रिएटर है।
5: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
5: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
5: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की दूसरी कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का तीसरा भाग।
1: ये तो स्पर्श की बातें हुई, हालांकि स्पर्श के बारे में इतनी सारी बातें हैं और वो आपने अपनी आत्मकथा में बहुत विस्तार से लिखी हैं, पर इंटरव्यू में हम चूंकि संक्षिप्त बात कर रहे हैं तो हमने स्पर्श की तमाम बातों को स्पर्श किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहा है एक छोटी सी चीज और करते हैं, फिर चश्मे बद्दूर की तरफ बढ़ते हैं।
2: ओके,
1: स्पर्श का स्मिता कनेक्शन, थोड़ी सी बुरी बात
2: फिर है। मायूस किस्सा है, बताती हूँ
1: जी,
2: बताती हूँ। ये जब मैं दिल्ली छोड़कर और अपनी नौकरी छोड़कर और अपनी क्या कहते हैं

0: मेरी जिंदगी छोड़कर मैं एक स्ट्रगलर के रूप में बंबई में हाजिर हो गई। हाँ,
1: जी
0: फिल्म, क्योंकि फिल्म बनानी थी, अब नजरों के सामने वही था और फिल्म की राजधानी बंबई, तो बंबई आना लाजमी था। तो बंबई पहुंच गई और इत्तफाकन मुझे बहुत अच्छा ये मिला, वहाँ दामू जवेरी नाम के बहुत बड़े गुजराती थिएटर के जाने माने वंडरफुल पर्सन, तो दामू भाई ने मुझे बिकट वाट वही वाट ये म्यूजिकल नाटक डायरेक्ट करने का ये सौंपा मुझ पर। हाँ, दैट वाज फिडलर ऑन द रूफ का वेंकटेश माडगुलकर ने किया मराठी अनुवाद। तो एनीवे वो मैं कर रही थी, लेकिन उसके पहले बंबई पहुंचते ही अब नाटक तो करना ही था, नाटककार थे तो, और तब स्मिता मिल गई और ओमपुरी मिल गया।
1: वाह।
0: और ओमपुरी तो बहुत ही स्ट्रगलर था उन दिनों, मतलब कुछ भी डेला भी उसने नहीं कुछ तब तक किया था, और स्मिता का नाम जरा जरा हो रहा था क्योंकि टेलीविजन में वो निवेदिका थी वगैरह वगैरह, और शायद शाम के साथ एक आध फिल्म शुरू हुई, लेकिन स्मिता का जरा सा नाम हो रहा था, ओमपुरी का नहीं था, मेरा भी नहीं था बंबई में। हम तीनों ने मिलकर सोचा कि कुछ थिएटर किया जाए, और मेरे पास महेश एलकुंचवार का बहुत बेहतरीन नाटक था वासना कांड, जो मैंने दिल्ली में खेला था, कुसुम हैदर ने रोल किया था उसमें, लाजवाब रोल किया था बहुत, और वो प्रोडक्शन भी खुद नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन हुआ हमारा, और लोग दंग रह गए, बहुत बहुत ही जिसे कहते हैं कि निस्तब्ध हो गए शो देखने के बाद, ऐसा सन्नाटा सा हुआ ऐसे, इट वॉज अ फैबुलस एक्सपीरियंस। तो एनीवे मैंने कहा कि बम्बई में ये करते हैं, और एनसीपीए के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में हमने ये नाटक किया। अब मेरे इतने साल हो गए इन तीनों चारों फील्ड्स में काम करते, टेलीविजन, स्टेज, थिएटर, फिल्म, रेडियो, लेकिन व्यवहार किस चीज सिखाते हैं ये अभी तक मुझे नहीं समझ में आया
1: जी।
0: इसको भी मैं मेरे नाना को और मेरी माँ को मैं दोष देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुझ पर इतना वो किया कि ये बहुत पैसे के बारे में सोचना बहुत बुरी बात है, तुम अपना काम करो, काम में आनंद लो, काम में मजा लो, लोगों को देखो, लोगों को समझो, लोगों से प्यार करो वगैरह, पैसा क्या चीज है। और कभी उन्होंने मेरी तनख्वाह कितनी है उनको नहीं मालूम था आखिर तक, कितना माँ ने पूछा ना नाना ने कभी भी पूछा कि कितने पैसे, मतलब पैसों की बात ही नहीं होती थी, और मैं अनाड़ी के अनाड़ी रह गई। तो मुझे लगता था काम चलाने लायक कुछ मिले तो ठीक है, गुजारा हो जाएगा, लेकिन इस नाटक के लिए पैसा तो चाहिए ना स्टेज करने के लिए, तो वो कुछ ढेला भी नहीं था किसी के भी पास, ओम तो स्ट्रगलर, स्मिता बिचारी नहीं नहीं आई हुई, फिर हमने किसी तरह इधर उधर जुगाड़ करके पता नहीं कैसे किया, लेकिन वो नाटक हमने किया। और उस दरमियान मेरी स्मिता से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई, और उसकी एक वजह ये थी कि हम दोनों को बिल्लियां बेहद पसंद, स्मिता अपनी बिल्लियों के बारे में बताए, मैं अपनी बिल्लियों के बारे में, और ओम सुनता रहा सुनता रहे, तो हम बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए। फिर मैंने स्मिता को बताया, और ये तो मेरे पास था ही पटकथा इसकी थी, मैंने कहा स्मिता ऐसे ऐसे कहानी है मैंने लिखी हुई, एंड देयर इज अ लवली रोल फॉर यू, एंड आई वुड लव यू टू रीड दैट पटकथा। तो स्मिता ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, पढ़ूंगी ना। हाँ, और बात वहां तक रह गई। फिर चार पांच दिन बाद मैंने फिर कहा स्मिता तुम पढ़ोगी ना, हाँ हाँ पढ़ूंगी, और फिर मुझे ऐसे लगा कि ये आउट ऑफ पोलाइटनेस ये हाँ हाँ कर रही है, उसको कोई सचमुच की दिलचस्पी नहीं है इसमें, और वो बेचारी इतनी शरीफ है कि वो मुझे नहीं कहना चाहती कि तू क्या लिखेगी, मुझे नहीं पढ़नी तुम्हारी कहानी वगैरह, तो ये तो कहेगी नहीं, और थी वो थोड़ी सी अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि शायद ये ऐसा तो नहीं समझ रही कि हमारी दोस्ती का मैं नाजायज फायदा उठा रही हूँ, क्योंकि हमारी दोस्ती है मैं अपनी फिल्म के लिए उसको मैं गले में डाल रही हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई हैड माय ओन सेल्फ रिस्पेक्ट नेचुरली, मैंने कहा उसको ये नहीं लगना चाहिए, ये गलत होगा। फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं, लेट्स वेट, उसको अब पूछने दो, दो तीन बार तो मैंने जिक्र किया है, अब उसको पूछने दो कि सही अगर है कहां कमबख्त तेरी फिल्म पढ़ने तो दो।

0: नाटक है, उसमें से एक उन्होंने 20 मिनट का सीन भी किया स्टेज पे, तो
1: अद्भुत।
0: मैं भी दंग रह गई। दीप्ति ने ये मुझे दिया अवार्ड, और दीप्ति ने कहा कि

0: है तब हम कोयल डालेंगे बैकग्राउंड पे।
1: गजब।
0: क्यों, कैसे रहा? मैंने कहा ओह गजब। मैंने कहा कैसे रहा? फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया मंगेश जी, क्या बात है। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। फिर काम हमारा चालू हो गया और वाकई में उन्होंने कौवे ढूंढे, फिर कोयल ढूंढी और वो साउंड ट्रैक पे आया, इतना मजे का लगा। और फिर करते करते जब हम सुन रहे थे, एकदम से उन्होंने रोक दिया रिकॉर्डिंग प्लेबैक। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहते हैं सही, हम दोनों इतने खुश हैं, लेकिन शायद किसी के समझ में भी आएगा कि नहीं, क्या पता। क्या कि शायद ही किसी के, जो बहुत ही समझदार कलाकार किस्म का आदमी हो, उसके समझ में आए, लेकिन आम आदमी के समझ में आएगा कि नहीं, क्या पता। कोई बात नहीं, तुम और मैं, हम तो खुश हैं ना। इसी को कहते हैं कला का आनंद। हमने तो यह आनंद खूब लिया, कोयल कौवा ये वो, बहुत खुश रहे हम। तो दिस इज इट, वर्थ इट। तो यू नो इट वॉज ब्यूटिफुल लाइक दिस। और दूसरी एक छोटी सी बात, उन्होंने कहा कि वो दोनों बंदे जो दोस्त उसके, रवि एंड राकेश बेदी, वो ये करते हैं बेचारे हीरो को, अपने फारूक को, कि वो लड़की बेकार है और वो हमारे साथ भी घूमी है, किया वो क्या, उसको बहुत ही वो करते हैं। फिर वो इतना मायूस हो जाता है सिद्धार्थ, कि वो फिर उसके साथ झगड़ा करके वो उनकी बातचीत बंद हो जाती है वगैरह वगैरह। और फिर ये दोनों, क्योंकि है तो बेचारे अच्छे, वो बुरे थोड़ी ना है, तो वो उनको फिर बहुत अफसोस होता है कि अपना दोस्त बेचारा किस कदर बुरी हालत में है। तो अब क्या करें, वो दोनों बहुत मायूस है। और वो मद्रासी कैफे में है, डोसा वोसा इडली कुछ खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, और रेडियो पे गाना चल रहा है। तो मंगेश जी ने कहा कि ये रेडियो पे गाना तो हम लगा रहे हैं उस सीन को, लेकिन इसमें अनाउंसमेंट भी होगी तो क्या मजा आएगा।
1: वो
0: ये होता है ना कि आपकी पसंद वाला
1: जी।
0: मैंने कहा हाँ, वेरी गुड आइडिया, ये जरूर जरूर। कहते फिर तुम ऐसे करो कि अच्छी डबर को बुलाओ और उससे अपन अनाउंसमेंट करवा लेंगे। वो बोलो, वो खास तरीका होता है उनका। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है, मैंने रेडियो में काम किया है, मुझे मालूम है। वो ओके, फिर दोपहर के बाद करेंगे, लंच के बाद। फिर लंच हो गया, उन्होंने कहा अच्छा आई तुम्हारी डबर? मैंने कहा हाँ आई। कहाँ है? तो मैंने कहा नहीं, वो मंगेश जी मैं खुद ही करके देखती हूँ। तो उनका चेहरा इतना सा हो गया और मैं साफ साफ पढ़ पाई कि ये डायरेक्टर लोग ना समझते हैं कि सब कुछ वो कर सकते हैं, ये वो ये सब उनके जरूर दिमाग से गुजर गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं क्या है, वो एक तरीका होता है, उसका एक खास ये होता है वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं मंगेश जी, ऐसा करो कि आप देख लो, नहीं है तो बिल्कुल आप कह दो कि ये नहीं बात बनी नहीं, और फिर मैं कल सबसे पहले बुलाती हूँ, डोंट वरी। मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगी कि नहीं नहीं मुझे ही ले लो। अच्छा चलो। फिर बड़ा बेमन से फिर मुझे स्टूडियो में धकेला उन्होंने, फिर मैं हेडफोन लगाए किया और फिर मैंने वो पढ़ा और बड़े नटखट ढंग से

0: पढ़ा, बल्कि बीच में गलत भी किया और माफ कीजिए वगैरह ये भी कह के आगे गई,
1: जी
0: और फिर वो सारा झुमरी तलैया वर्रे ये सब
1: सब
0: सब
1: नाम
0: डाला
1: लिए।
0: और पूरी तरह

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बज चुके हैं। आरंभ होती है आज की हमारी दूसरी सभा। सभा के आरंभ में लीजिए पेश है गैर फिल्मी गजल।

0: अभी आप मिताली सिंह की आवाज में गजल सुन रहे थे। गैर फिल्मी गजल आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे हैं।
1: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: आइए अब सुनते हैं रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की आवाजों में ये गजल।
3: मेरे मालिक ने मेरे हक में ये एहसान किया, खाकी नाचीज था मैं, सो मुझे इंसान किया। मुझको शायर न कहो मीर कि साहब मैंने, दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया।

0: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप मंजूर खान की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे, आइए अब सुनते हैं उज्जवल कुमार की आवाज़ में ये गज़ल।

अगर तलाश करो तो कोई मिल जाएगा। उज्ज्वल कुमार की आवाज़ में ये गज़ल सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं मंजूर खां की आवाज़ में एक और गज़ल।

0: मंजूर खान की गाई इस गज़ल के साथ ही गैर फिल्मी गज़ल का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अब आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गज़ल इस छोटे से अंतराल पर।
1: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
0: लीजिए अब पेश है यह फिल्मी गजल। ये पहली गजल फिल्म एतवार से आवाजें आशा भोसले एवं भूपेंद्र की है।

यह वजह थी भूपेंद्र और आशा भोसले की फिल्म एतवार में। आइए अब सुनते हैं गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल।

फिल्म निकाह से ली गई ये गज़ल गुलाम अली की आवाज़ में थी। अब आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म अर्थ से लिया गया ये गज़ल।

0: यह गजल थी जगजीत सिंह की आवाज में फिल्म अर्थ से। इसके साथ ही फिल्मी गजलों का ये हमारा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजने ही वाले हैं। अब कुछ ही क्षणों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले ना छिपाएं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल SE.census.gov

0: आईएन पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। इस सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध के बाद ये फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप ने कहा कि संभावित समझौते में हॉर्मुज जल डमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक शामिल है। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। केरल में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राज्य भर में कल से अब तक वर्षा संबंधित घटनाओं में 8 लोगों की मौत हुई है। 5,700 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई हैं। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट से पूरी तरह उबर ना पाने के कारण श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला से बाहर रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले इस सभा और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। इस सभा में आप सुनेंगे अभी से थोड़ी देर बाद संध्या 6:10 पर विद्यापति गीत, संध्या 6:30 पर ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गांव घर के अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम गुनगुनायत मन, किसान श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी संध्या 7:00 और संध्या 7:52 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, क्रीड़ा जगत खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 पर और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे रूपों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिल्ली केंद्र से रिले रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण होगा रात्रि 10:00। ये था इस सभा के शेष कार्यक्रमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी। अब एक नज़र कल यानी सोमवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल सुबह 5:50 पर आप सुनेंगे चिंतन, कृषि चर्चा 5:55 सुबह में, सुबह के 6:05 पर स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम होगा और भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे संध्या क्षमा करेंगे सुबह 6:10 पर। सुबह 6:40 पर रामचरितमानस गान का प्रसारण होगा और कार्यक्रम नमस्कार मिथिला आप सुनेंगे सुबह 7:05 पर। सुबह 10:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा और विद्यापति गीत आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा दिन के 11:00। दिन के 11:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दिन के 12:00। दिन के 12:30 पर आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार। दोपहर 1:10 पर हम आपको सुनवाएंगे देशभक्ति गीत और फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप पुनः एक बार सुनेंगे दोपहर 1:15 पर और दोपहर 2:30 पर। लोकगीत का कार्यक्रम होगा दोपहर 3:00 और संध्या

यह 5 बजे आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम तरुण कुसुम। संध्या 6:10 पर विद्यापति गीत, संध्या 6:30 पर गाम घर कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम अनुभव के चश्मा सा। खेती गृहस्थी का कार्यक्रम होगा संध्या 7 बजे और रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे मैथिली साहित्य की कार्यक्रम सिंगरहार। इसे एक बार फिर से सुनिए, रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे मैथिली साहित्य कार्यक्रम सिंगरहार। पब्लिक स्पीक दिल्ली केंद्र से रिले हमारा यह कार्यक्रम होगा रात्रि 9:30 पर। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। इसे एक बार फिर से सुन लें, संसद में चल रहे

0: खेती गृहस्थी का कार्यक्रम होगा संध्या 7 बजे और रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे मैथिली साहित्य की कार्यक्रम सिंगरहार। इसे एक बार फिर से सुनिए, रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे मैथिली साहित्यिक कार्यक्रम सिंगरहार। पब्लिक स्पीक दिल्ली केंद्र से रिले हमारा यह कार्यक्रम होगा रात्रि 9:30 पर। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। इसे एक बार फिर से सुन ले, संसद में चल रहे प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। यह था कल यानी सोमवार के कार्यक्रमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले इस सभा और कल यानी सोमवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
1: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी आपकी आवाज आपके साथ।
0: आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से लीजिए अब प्रस्तुत है विद्यापति गीत।

अभी आप गौतम मिश्र के गाए विद्यापति की रचना सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं काशीनाथ झा किरण के स्वर में विद्यापति की ये रचना।

0: शारदा सिन्हा के गाए विद्यापति के इस गीत के साथ ही विद्यापति गीतों का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मैथिली संवाद हमारे पटना केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सा प्रस्तुत एच संवाद, संवादक संग होम छी प्रियंका कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आई विकसित भारतक लेल नशा मुक्त युवा संकल्प अभियानक नई दिल्ली में शुरुआत कयलनि। वर्चुअल माध्यम से ओ कहलनि जे विकसित भारतक लेल युवाक शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत आ आत्मविश्वास से भरपूर होयब आवश्यक अछि। श्री मोदी कहलनि जे युवा सबके नशा से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनेबाक चाही। प्रधानमंत्री कहलनि जे नशा मुक्तिक लेल 100 सप्ताहक जन भागीदारी अभियान शुरू कयल जायत आ देश भरि में सब रवि दिन साप्ताहिक कार्यक्रम होयत। ओ स्कूल, कॉलेज आ विश्वविद्यालयक शिक्षक सबसँ सेहो अपील कयलनि जे ओ मादक पदार्थक सेवनक खतरा पर नियमित रूपसँ विद्यार्थी सभक संग चर्चा करैत। एहि कार्यक्रम मे बिहारक राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन आ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित सब राज्यक मुख्यमंत्री भाग लेलनि। एम्हर राज्यक सब जिला में सेहो ई अभियानक तहत युवा सबके नशा मुक्तिक प्रति जागरूक करबा लेल विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कयल जा रहल अछि। बांकीपुर विधानसभा उपचुनावक मतगणना काल्हि होयत। पटनाक AN कॉलेज में भोरे 8 बजे से मतगणना शुरू कयल जायत। मतगणना केंद्र आ लग पासक क्षेत्र में सुरक्षाक व्यापक इंतजाम कयल गेल अछि। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुंदन कुमार कहलनि जे मतगणनाक तैयारी पूरा कऽ लेल गेल अछि। ओ कहलनि जे मतगणना केंद्रक 200 मीटर के दायरा में कोनो राजनीतिक गतिविधिक अनुमति नहि होयत। ओतहि एहि दरमियान बोरिंग रोड चौराहा सँ AN कॉलेज दिस वाहन सभक परिचालन पर सेहो रोक रहत। ध्यातव्य अछि जे भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा के कारणे एहि सीट पर उपचुनाव कराओल गेल। एहि सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपाक नीरज कुमार, जन सुराजक प्रशांत किशोर आ राष्ट्रीय जनता दलक रेखा कुमारीक बीच मानल जा रहल अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरीक कार्यकालक 100 दिन पूर्ण भेला पर पटनाक श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल मे अखिल भारतीय कानू हलवाई मंच दिस सँ अभिनंदन समारोहक आयोजन कयल गेल। एहि अवसर पर मुख्यमंत्री कहलनि जे हुनकर सरकार मे जनताक समस्या सबके सर्वोच्च प्राथमिकता देल जा रहल अछि। राष्ट्रमंडल खेल सब में भारत 39 पदक संग 4म स्थान पर पहुंच गेल अछि। एहि मे 13 स्वर्ण, 17 रजत आ 9 कांस्य पदक सम्मिलित अछि। भारत द्वारा मुक्केबाजी में सबसँ बेसी 10 पदक जीतल गेल। एम्हर खेल मंत्री श्रेयसी सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतक प्रदर्शन पर हर्ष जतौलनि अछि। ओ कहलनि जे भारत लगातार

0: पदक जीत रहल अछि जे पूरा देशक लेल गर्वक बात अछि। प्रदेशक सब पंचायत में पानिक गुणवत्ता जांचक लेल लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा एक फिटनेट किट उपलब्ध कराओल जा रहल अछि। एखन धरि 2000 सँ बेसी पंचायत सबके फिटनेट किट उपलब्ध कराओल जा चुकल अछि। एहि किट सँ पानि मे आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन आ गंदा के जांच कयल जा सकत। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश कहलनि जे पंचायत सबके सशक्त बनाबे लेल सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाओल जा रहल अछि। श्री प्रकाश शिवहर में पत्रकार सबके संबोधित करैत कहलनि जे जिला में सोलर लाइट योजना में 100% लक्ष्य हासिल कऽ लेल गेल अछि। ओ कहलनि जे जिला में चल रहल विभिन्न विकास आ जन कल्याणकारी योजना सबसँ गाम घरक लोक सबके जोड़ल जा रहल अछि। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहलनि जे राज्य में 4 चरणक शिक्षक नियुक्ति जल्दीए शुरू कयल जायत। ओ बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षाक कार्यक्रम जल्दीए जारी करबा लेल कहलनि। राज्य में मॉनसूनक सक्रियता सँ बरखाक परिस्थिति बनल अछि। मौसम विभाग अगला 24 घंटाक दरमियान गोपालगंज आ सिवान जिला में अत्यधिक वर्षाक ऑरेंज अलर्ट जारी कयलक अछि। ओतहि सारण, पूर्वी आ पश्चिमी चंपारण जिला में तेज हवाक संग वर्षा भऽ सकैत अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गाम घर के अंतर्गत कार्यक्रम गुनगुनायत मन।

0: कार्यक्रम गाम घर सुनबला सब स्नेही श्रोता लोकन के सत्तू भाई के दिशा नमस्कार संगे गोपी भाई अहू के नमस्कार
1: नमस्कार सत्तू भाई संगे संग गाम घरक श्रोता लोकन के सेहो नमस्कार आ देखियो सत्तू भाई आजुक दिन 2 तारीख अछि रवि अछि आ आइ हम सब मनपसंद लोकगीत कार्यक्रम सुनै छी संगे संग कोनो दोहा पर चर्चा सेहो करै छी आ आजुक दिन अहाँक 2 अगस्त अछि तऽ आइ सम्पूर्ण भारतमे मित्रता दिवस मनायल जा रहल अछि। देखियो मित्रता जे होइया ओ बड़ अनमोल होइया, आन जे रिश्ता होइया ओ तऽ अहाँक खून पर आधारित होइत अछि बुझलहुँ, मुदा रिश्ता अहाँक मित्रता दिवस जे अछि जे मित्रताक रिश्ता यऽ ओ अहाँक खून पर आधारित नहि होइया। एहिमे हम जकर अहाँक विचार संस्कार सोच मिलै छै ओ ओकरा आपस में दोस्ती भऽ जाइ छै।
0: हरेक बरक अहाँके अगस्त के पहिल रविवार जे होइत अछि ओहि दिन ई मनायल जाइत अछि आ एहि दिन एक दोसर के हमरा लोकनि उपहार मिलल जाइ छी, संगे बहुत रंग के उपहार बाँटै छी, तऽ एहिसँ मित्रता जे अछि से बेसी दिन धरि बनल रहैत अछि आ मित्र वएह छथि जे अहाँके विपत्ति के समय मे हमरा लोकनि के काज देत, कियाकि देखै छियै जे मित्रता जे अछि से अहाँके जखन ओ भेट जाइ छथि मित्र तऽ सब चीज हमरा लोकनि बिसरि जाइ छी आ खुशी के ठिकाना नहि रहैत अछि।
1: देखियो तुलसीदास जी कहने छथि धीरज धर्म आ मित्र अरुणारी आपद काल परखिए चारी, माने आपद काल में अहाँ के धैर्य या कि नहीं या एकर परख भ जाए छे। आपद काल में कते आदमी धर्म के रास्ता पर चलने छोड़ दिए तो धर्मो के परख भ जाए छे कि वो वास्तव में वहाँ के धर्म पर चले वाला व्यक्ति अछि या नहीं। आ मित्रता के परख सेहो भ जाए छे, किया तो कहल गेल अछि कि अपना लोक के साथ मान अपना के साथ मित्र के संगे समय के पता नहीं चलेगा, समय के संगे अपना के पता चल जाइए।

0: जे विपत्ति में साथ दिया जे अहाँ के उचित रास्ता देखावे बुझलो कि नहीं वहाँ अहाँ के मित्र है
1: चाहिए। आ भारत सहित कतेको देश में आए अहाँ के अगस्त के पहिल रविवार का उत्साह के संग मित्रता दिवस मनायल जा रहा है। आ आई दिन हमरा लोकन एक दोसर से मिले छी, संगे अहाँ के ग्रीटिंग भ गेल, कार्ड भ गेल, उपहार भ गेल, संदेश भेजे छी, एक दोसर के संग अहाँ के समय बितबे छी आ एक दोसर के शुभकामना सेहो दे छी।
0: हाँ हाँ, देखियो मित्रता अहाँ के एहन रिश्ता है जे जाति रंग धर्म
1: हाँ,
0: या आर्थिक स्थिति कोनो चीज के परवाह नहीं करे, केकरो से दोस्ती भ सके, जकरा से हृदय मिला, जकरा से विचार मिला, जकरा से संस्कार मिला हाँ, वह अहा के दोस्त है। अहा के विश्व मैत्री अभियान एक एहन संगठन है जे जाति रंग धर्म के परवाह केने बिना सब मनुष्य के बीच मित्रता और भाईचारा के बढ़ावा देत है। तो 2 जुलाई के हम सब छे से अहा के मित्रता दिवस भारत में मनाबे छी। आ मित्रता दिवस मनाने के अहा के एकर जो उद्देश्य है मनाबे के कि आपस में लोग के प्रेम सहयोग सद्भाव और भाईचारा के भाव बढ़े।
1: अच्छा,
0: क्या देखो लोकतांत्रिको मूल्य से आज बुझलो कि नहीं, लोकतंत्र के जो अहा के बुनियादी जो चीज है कि स्वतंत्रता समानता और मित्रता के भावना भाईचारा के
1: भावना
0: ये आपस में परस्पर सहयोग परस्पर विश्वास और परस्पर तालमेल के बढ़ावा देते आ ये लोकतंत्र के लिए अहा उचित है। ऐसे अहा के सामाजिक एकता राष्ट्रीय एकता सेहो बढ़े
1: आ सच्चा दोस्त वह छे जे तनाव कम कर सके।
0: हाँ,
1: संगे अहा के जखन हमरा लोकन मिली तो खुशी उनका मुंह पर झलकत रहन, कठिन समय में अहा के हिम्मत दैत वह तो असल मित्र छे की।
0: हाँ, देखियो कृष्ण सुदामा के मित्रता देखियो।
1: हाँ, हाँ,
0: सुदामा के कृष्ण एना मदद केलखिन, एना सहायता केलखिन कि सुदामा के पतो नहीं चलले आ हुनकर आवश्यकता के पूर्ति भ गेल। कृष्ण कोनो प्रकार के नहीं छे से माने अहंकार के प्रदर्शन केलखिन कि अहाँ के हम मदद कर रहल छी। तो देखियो मित्रता इहा छे, बिना कहने जना एक हाथ मदद करा तो दोसर हाथ के पता नहीं चले बुझलो कि नहीं, तो वो एहन रूप से मित्र एक दोसर के मदद करे छे कि वो मित्र के स्वाभिमानो पर ओकर प्रभाव नहीं पड़े छे आ ओकरा सहायतो भ जाय छे,
1: काजो भ जाय छे। हाँ,
0: आब कहबे केलो कि रिश्ता तो एहन नहीं छे जे में अहाँ के खूनक महत्व नहीं बुझल जाइए बुझलो कि नहीं, हम सब खुद अहाँ का अपन विकल्प चुने छी, अपन दोस्ती मित्रता जे मित्र खुद चुने छी बुझलो कि नहीं। तो जे जीवन भर साथ दिया, जे सुख दुख सब किछ में साथ दिया वह मित्र है। आ मित्रता जे या वो सामाजिक बंधन का पारिवारिक बंधन को मजबूत करिए, समाज में एकता का प्रसार करिए।
1: आ संगे आजुका दिन हमरा लोकन दोहा से सुने छी, तो दोहा के जे अथी है वो है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब।
0: बहुरी करोगे, देखियो समय के महत्व में कहल गेल है। वास्तव में समय जे या वो बड़ बलवान या बोलो मनुष्य बलि नहीं होता है, समय हो तो
1: बलवान।
0: तब समय के महत्व के बुझबा के चाहिए। देखियो सफल और असफल व्यक्ति के बीच में कोनो बेसी फर्क नहीं हुई है।
1: चाहिए, चाहिए।
0: सफल व्यक्ति वह है जे अहाँ का समय के उचित प्रबंधन को ली, और असफल व्यक्ति या ओ या जे समय के उचित प्रबंधन नहीं कर पावे। तो समय देखियो कतेक महत्वपूर्ण छे कि जो एकर उचित प्रबंधन कर लेलो तो अहाँ के जीवन सफल भ जाइए, आ जीवन के सब क्षेत्र में सफल भ जाए। आ समय के जो उचित प्रबंधन नहीं कर पेलो तो अहाँ के सफलता संदिग्ध भ जाइए बुझलो कि नहीं।
1: तो आप हमर विचार जे फिर गप सप करब, पहिने किस संदेश सुन ले।
0: हाँ हाँ, सुनल जाए।
2: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
3: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
3: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: हाँ, छोटछिन विरामक उपरांत उपस्थित छी हम गोपी भाई, संग में छी सत्तू भाई। तो सत्तू भाई, आजुक दिन जे अछि ओ श्रोता लोकन छे से अहाँ के बाट देखत रहत छथि कि कखन अपन मनपसिन लोकगीतक प्रसारण शुरू है। हाँ, तो हमरा लग अहाँ के चिट्ठी अछि, बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 से संतोष कुमार मुखिया, रानी अनिता राज, गरिमा राज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार, अमरेंद्र।

0: वंश प्रसाद ई सब अहाँ के पसंद के लेना कुमकुम झा का गाओल ई गीत अहाँ के पास
1: हमरा हाथ में जे चिट्ठी आयल अछि ओ आयल अछि अहाँ के इनामत टोला भगवतीपुर बिहार से नूतन सहनी कंचन सहनी बबीता सहनी कोमल सहनी नव्या सहनी सुधा सहनी विभा सहनी ज्योति सहनी पार्वती सहनी त्रिपुरारी सहनी संतोष कुमार सहनी रासो देवी रिंकू देवी रुचि कुमारी निशु कुमारी एस के सहनी
0: तो सुनी हम सब अहाँ के कुमकुम झा का गाओल ई भगवती गीत
1: सुनल जाए।

0: दया करू हे काली कथी ला देर केने छी। वास्तव में जब हम सब माँ के शरण में जाय छी तो एकदम आश्वस्त भ जाय छी कि माँ के शरण में आयल छी तो आप सुरक्षा भेटबे करब आ संपूर्ण योग छे मो वहन करती। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहे छे कि हमर शरण में जे आबैया जे लोग तो ओम अनन्य सिंत्यात माये जन प्रिपास्ते तेषांग नित्य भुक्तान योग क्षेम बहम। जे अनन्य भाव से हमर शरण में आबैया ओकर संपूर्ण योग क्षेम हम वहन करी छी। ओकरा चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं छी, बस वो निश्चिंत भ के कर्म करे। तो माता के जे शरण में छी तो बस अपन कर्म करू, बाकी माँ का आशीर्वाद भेटबे करत आ जीवन में सर्वांगीण विकास के जे बात है वो खुजबे करत। आ देखियो अपने सब चर्चा करे छलो हम कि काल करे सो आज कर, एक मतलब कि जे काज कैल करबा किया ओकरा अहां आय करू बोलौ, आ जे काज आय करे किया ओकरा एखन और तुरंत करू। कहल गेले कि शुभ से कार्य शीघ्रम, जे शुभ काज या ओकरा तुरंत कर देबा के चाही, आ जे अदला काज या ओकरा टालू कि ओकरा एखन नहीं करब बाद में करब या जे करब या नहीं करब। आ देखियो अपर से कबीरदास जी कहे छथि कि पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब, तो उनका कहना छन कि जीवन बड़ छोट है बुझलौ और अनिश्चित है कि कखन दुनिया से विदा क्यों भ जाए एकर कोनो गारंटी नहीं है। तो पल भर में प्रलय नाश या मृत्यु आबि सकैया, तो फिर अहाँ का जो अपन बचल काज है वो कखन पूरा करो।
1: ठीक है कोनो गोपी भाई, वास्तव में समय जे है से अमूल्य होत है।
0: हाँ,
1: नीक जना हमरा लोकन काज क के शीघ्रता से यदि पूरा कर ले छी त अहाँ के ओ काज भ जात है। वह के हमरा लोकन टाइल दे छी काल करब परसू करब तो वो काज में आर विलंब भ जात है।
0: हाँ,
1: आ कम समय में करबा से
0: आलस जे या वो इंसान मनुष्य का सबसे पैघ दुश्मन या,
1: एहि
0: लेल काज के समय पर पूरा करी। आ देखियो अही के संगे अपना सब का जे प्राजित कार्यक्रम ओकरो समय पर हम सब शुरू करी। तो प्राजित कार्यक्रम ममता का आंचल तो ई हम सब सुनी
1: सुनल जा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
3: नमस्कार, राजेश बोल रहा हूँ। ममता का आंचल ये कार्यक्रम का नाम है। अब तो आपको याद हो गया होगा कि शनिवार नहीं रविवार को आते हैं। हालांकि अगर बहुत सारे फोन कॉल्स ऐसे आ रहे हैं कि शनिवार के दिन अगर ये कार्यक्रम वापस हो जाता तो शायद ज्यादा अच्छा होता। श्रद्धा IVF एंड मेटर्निटी जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, आपकी बातों पर विचार कर रहे हैं, डॉक्टर श्रद्धा भी विचार कर रही हैं। जैसा होगा आपको सूचित किया जाएगा एक दो सप्ताह के अंदर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ममता का आंचल वैसे लोगों के लिए है जिनके शादी के 2-3-4 साल में हो गए लेकिन किसी कारण से भी अभी बच्चा नहीं हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में बच्चों का क्या महत्व है ना। इसीलिए ये कार्यक्रम ममता का आंचल हम लेकर आते हैं कि मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, उसके सहारे IVF के सहारे आप बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं कि डॉक्टर से डॉक्टर हम जा रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ हो पा नहीं रहा है। बहुत सारे हैं प्रश्न जिसका आज समाधान हम डॉक्टर श्रद्धा चकहियार से करवाएंगे आप सबों के लिए जो अपने अपने रेडियो सेट के सामने बैठे हैं सवाल भेजकर। लेकिन उससे पहले हम नंबर बताते हैं डॉक्टर श्रद्धा का। डॉक्टर श्रद्धा का नंबर है 9162562266, 9162562266 ये नंबर है। और श्रद्धा IVF एंड मेटर्निटी पटना में है, पटना में भिखना पहाड़ी बहुत एक इम्पोर्टेंट जगह है, वहीं है श्रद्धा IVF एंड मेटर्निटी जहां आप डॉक्टर श्रद्धा से मिल सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं। बड़े बुजुर्गों से भी हम बात करते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है बच्चों को प्रेरित करना, समझाना, IVF की तरफ मोड़ना और विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाना, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वाह करें। एक जानकारी और दे दें, पैसे की अब कोई समस्या नहीं, पैसा हमेशा बीच में आता है मिडिल क्लास में तो खास करके और लोअर मिडिल क्लास में। अब आप 24 इंस्टॉलमेंट पर EMI पर अपना

0: इलाज करवा सकते हैं। ये श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी ने आपके लिए विशेष रूप से किया है। ढेर सारी बातें हैं, बीच बीच में हम बताते चलेंगे। बहरहाल डॉक्टर श्रद्धा हमारे साथ बैठी हैं, उनको इंतजार ज्यादा नहीं करवाते हैं। डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के ममता का आंचल कार्यक्रम में।
1: नमस्कार प्यारे श्रोताओं, नमस्कार राजेश जी।
0: डॉक्टर श्रद्धा, एक सीधा सवाल जो हमेशा कहते हैं, क्योंकि जानकारियां पहुंचनी चाहिए लोगों तक सही और सटीक, कि निसंतानता क्या है, इसके बारे में हमारा इम्फेसिस होता है, आप बताइए।
1: निसंतानता एक बीमारी है, ये वैसे दंपति में होता है जो पिछले एक साल से कोशिश कर रहे हैं बच्चे के लिए बिना किसी गर्भ निरोधक चीज के, और उन्हें बच्चा नहीं ठहर पा रहा है
0: जी।
1: ऐसे दंपति को कहा जाता है कि वो निसंतानता से जूझ रहे हैं
0: जी, जी।
1: और ये जरूरी है कि अब ऐसे दंपति अपना इलाज कराना शुरू करें।
0: हाँ।
1: इलाज में आप कुछ बेसिक जांच कराएं और दवाई करें, और ये देखा गया है कि 70% लोग अगले एक साल में सिर्फ दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं। आप अभी किसी भी सामान्य डॉक्टर से मिलके अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन अगर 2 साल हो गया इलाज कराते हुए और 2 साल हो गया बच्चे के लिए कोशिश करते हुए और अभी तक बच्चा नहीं हो पाया है, तो जरूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से ही मिले, ताकि वो आपकी बीमारी बेहतर पकड़े
0: जी।
1: और अभी जो कि आपका गोल्डन पीरियड है,
0: हाँ।
1: जिसमें आपको सबसे ज्यादा बच्चा ठहर सकता है,
0: हाँ, हाँ।
1: वो उस समय का इस्तेमाल करें, ताकि आपको सही इलाज मिले और जल्दी बच्चा ठहर जाए।
0: सही इलाज मिलना बहुत जरूरी है मित्रों, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहिबा ने, और इतना बड़ा एक्सपीरियंस है इनका ना, कि जो बातें कहती है उसमें ज्यादातर बातें सही होती हैं। बहरहाल ढेर सारे फोन कॉल एक मुद्दे को लेकर आ रहे हैं कि हम इलाज करवा रहे हैं, जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, लेकिन अभी पिछले दिनों एक फोन आया था जिसमें कहा गया कि 5 साल हो गए इलाज कराते हुए, हर महीने दवा भी खा रहे हैं पर फायदा नहीं हो रहा। डॉक्टर श्रद्धा, कहाँ गड़बड़ है?
1: मेरे पास बहुत से दंपति आते हैं इस तरह से, जिनका मैं जब कागज देखती हूँ कि वो पिछले 5-10 साल से निसंतानता से जूझ रहे हैं और लगातार इलाज करा रहे हैं, हर महीने दवाई खा रहे हैं, काफी महंगी दवाई भी खाते हैं कोई कोई, लेकिन उनको बच्चा नहीं ठहर रहा है। तो ऐसे दंपति को मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ दवाई खाने से बच्चा नहीं ठहरता है, सबसे पहले जरूरी होता है जांच कराना। जांच करा के ये पता लगाना कहाँ दिक्कत है
0: जी।
1: पुरुष में दिक्कत है या औरत पे दिक्कत है
0: जी।
1: और जो दिक्कत है पहले उस चीज को ठीक करना होता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और जब ठीक हो जाता है और उस दवाई से या जिस भी माध्यम से, तो फिर उनको बच्चा ठहर सकता है।
0: बच्चा ठहर सकता है। एक सवाल और हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने रेडियो सेट देर से खोला है उनको बता दें कि ममता का आंचल कार्यक्रम चल रहा है। हम वैसे दंपत्ति के लिए कार्यक्रम लाते हैं जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए, बच्चा नहीं है, ये एक महज बीमारी भी हो सकती है, परेशान ना हो। हाँ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर श्रद्धा का नंबर हम बता रहे हैं, इस पर फोन करके जानकारियां ले लें, और जब भी समय मिले अगर मिलना चाहे तो मिल भी लें। नंबर है 9162562266, 9162562266। बड़े बुजुर्गों, अगर जो छूट जाए ना तो एकदम अटेंशन में रहिए, कागज कलम लेकर या मोबाइल पर ही नंबर नोट करके अपने लोगों तक ये नंबर पहुंचाइए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक जानकारी और दे देते हैं, अगर ये रेडियो कार्यक्रम सुनकर जा रहे हैं ना, तो पहला कंसल्टेशन फ्री होता है, इसके अलावा पहला अल्ट्रासाउंड और अटेंडेंट के रहने की सुविधा बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। बहरहाल डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, अगर कोई कपल आपके पास आया, सालों से दौड़ रहा है ना, बेचारा निराश है, तो क्या आप आते ही उसका इलाज शुरू कर देती हैं या क्या करती हैं?
1: पहले जो दंपति आते हैं जो काफी साल से निसंतानता से जूझ रहे हैं,
0: हाँ।
1: तो हमारा सबसे पहला काम तो उनको उनकी बात सुनना होता है, क्योंकि वो इतने दिन से जूझ रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कितने वो लोग
0: माने बहुत ज्यादा परेशान होते होंगे।
1: बिल्कुल, हाँ। कितने परेशान होते होंगे
0: जी, जी।
1: तो इस चीज को सबसे पहले हम लोग एड्रेस करते हैं, हम समझते हैं, हम सुनते हैं उनकी दुख भरी कहानी
0: जी।
1: लेकिन उसके बाद जो सबसे जरूरी होता है वो पहले जांच करना होता है,
0: हाँ, हाँ।
1: जांच करके देखते हैं कहाँ दिक्कत है,
0: हाँ।
1: क्या औरत में अंडा पर्याप्त है कि नहीं, क्या उसके अंडेदानी में अंडा है, और पर्याप्त है

0: तो क्या हर महीने अंडा बनके फूटता है कि नहीं?
1: जी जी जी।
0: ये अल्ट्रासाउंड और कुछ बेसिक खून जांच से पता चलता है।
1: जी।
0: उसके बाद ये देखते हैं कि क्या औरत के बच्चेदानी का दोनों नली ठीक है कि नहीं।
1: जी जी।
0: ये HSG जैसे टेस्ट से पता चलता है।
1: हाँ हाँ।
0: उसके बाद ये भी जांच करना होता है कि पुरुष का शुक्राणु में कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि शुक्राणु की संख्या पर्याप्त है कि नहीं, शुक्राणु का जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है उसका चाल ठीक है कि नहीं और बनावट ठीक है कि नहीं। ये बेसिक जांच होते हैं जो करते हैं, इससे पता चलता है कहाँ दिक्कत है। अंडा बनने में दिक्कत है, बच्चेदानी में दिक्कत है, बच्चेदानी के नली में दिक्कत है या शुक्राणु में दिक्कत है। कभी कभी ऐसा भी होता है सब कुछ ठीक होता है फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा होता, इसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। कारण जो भी हो सबसे पहले कारण पकड़ते हैं और उसके बाद इलाज करते हैं। बहुत से लोग को देखा गया है कि दवाई से ही बच्चा ठहर जाता है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कौन ऐसे मरीज हैं जिनको दवाई से बच्चा ठहर जाएगा, कौन ऐसे मरीज हैं जिनको कुछ छोटे छोटे प्रोसीजर से जैसे कि दूरबीन जांच की जरूरत पड़ेगी, जैसे अगर बच्चेदानी में कोई रसौली है
1: जी,
0: या
1: जी।
0: अंडादानी में कोई सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस, चॉकलेट सिस्ट है, अगर ये सब है तो कौन ऐसे मरीज हैं जिनको जरूरत है ताकि उनको सही इलाज मिल सके, कौन ऐसे मरीज हैं जिनको IUI जैसी प्रक्रिया जिससे कि प्रेगनेंसी ठहरने का चांस करीब 5-10% बढ़ जाता है, कौन ऐसे मरीज हैं और कौन ऐसे मरीज हैं जिनको सीधा IVF की ही जरूरत है।
1: IVF की जरूरत है, लेकिन एक बात आपने इतना विस्तार से बताया, डॉक्टर श्रद्धा ने इतने विस्तार से बताया कि कोई अगर कपल आता है जिनके पास बच्चा नहीं है तो ये प्रोसेस होता है तब इलाज शुरू होता है। तो जो लोग डॉक्टर से डॉक्टर घूम रहे हैं ना उनके लिए था खास करके कि सोचिए समझिए कि क्या आपके साथ इतना प्रोसेस हुआ, इतना जांच हुआ, या जाते ही पर्चे पर दवा लिख दिया गया और कहा गया कि आप खाइए और आपको बच्चा ठहर जाएगा। ये सोचिए समझिए, और इसीलिए बार बार हम कहते हैं इस कार्यक्रम के अंदर कि विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलिए, और अगर नहीं समझ में आए तो ये नंबर देते हैं ना डॉक्टर श्रद्धा चकहियार का, सीधे सीधे बात कीजिए ना, क्योंकि बातचीत करने से ही जानकारियां मिलती हैं। 9162562266 ये नंबर है, 9162562266। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवा भी खा रहे हैं और रिजल्ट कुछ है नहीं, तो सोचने की जरूरत है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम विशेषज्ञ डॉक्टर को चूक जा रहे हैं, वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो इस नंबर का इस्तेमाल कीजिए और बात कीजिए। हम वैसे दंपत्ति के लिए पूरी तरीके से एकदम समर्पित हैं जिनको बच्चा नहीं हुआ, और हम बार बार कहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चा नहीं होना महज एक बीमारी है, ये डॉक्टर श्रद्धा चकहियार भी कहती हैं। विज्ञान आगे बढ़ गया, मेडिकल साइंस आगे बढ़ गया, और आपके लिए सब कुछ सुलभ हो सकता है, सिर्फ आपको सचेत रहने की जरूरत है। बहरहाल IVF एक बहुत ही सक्सेसफुल पद्धति भी है, और करीब करीब 50 साल हो गए IVF आए हुए, अब कोई ये नया नहीं रहा। डॉक्टर साहिबा, एक सवाल कम एक दिमाग में आ रहा है, और वो ये है कि IVF किसी दंपत्ति को कब कराना चाहिए और क्या वो जो है अल्टीमेट इलाज है?
0: IVF वैसे दंपत्ति को कराना चाहिए जहाँ औरत का दोनों नली बंद है,
1: हाँ,
0: या फिर उसको अंडा नहीं बन पा रहा है,
1: हाँ,
0: चाहे उसको अत्यधिक अंडा है या अंडे बहुत कम है,
1: जी,
0: बच्चेदानी में कोई दिक्कत है,
1: जी, जी,
0: या पुरुष में दिक्कत है यानी कि पुरुष के शुक्राणु में ये कमी है,
1: हाँ, हाँ,
0: या फिर IUI काफी बार यानी 3-5 बार करा चुके हैं अभी तक बच्चा नहीं ठहर रहा है,
1: जी,
0: या फिर शादी के बहुत साल हो चुके हैं यानी कि 4-5 साल से ज्यादा हो गया है इलाज कराते हुए और अभी तक बच्चा नहीं ठहरा, तो ऐसे दंपति को IUI से बच्चे ठहरने की चांस बहुत ज्यादा है। मैं ये भी बताना चाहूंगी ऐसा क्या करते हैं हम लोग IUI में।
1: बिल्कुल,
0: ये देखा जाता है कि जो दंपति निसंतानता से जूझ रहे हैं उनमें वैसी औरतों में खासकर भ्रूण नहीं बन पाता है,
1: अच्छा,
0: चाहे दिक्कत किसी में
1: माने छोटा बच्चा,
0: हाँ,
1: हाँ,
0: छोटा बच्चा यानी कि भ्रूण,
1: हाँ,
0: चाहे दिक्कत औरत में हो चाहे दिक्कत पुरुष में हो,
1: हाँ,
0: लेकिन जो भी हो अल्टीमेटली उस औरत के बच्चेदानी में उस औरत के अंदर भ्रूण नहीं बन पाता है। तो IVF वो तरीका है जो इन चीजों को बाईपास करता है, यानी कि एक छोटा बच्चा या भ्रूण जो होता है वो हम लोग अपने IVF लैब में बनाते हैं, इसलिए कुछ लोग इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी, अच्छा, कहते हैं कि ट्यूब में बच्चा बन रहा है।

0: वो जो भ्रूण है वो हम लोग IVF लैब में बनाते हैं और 5 दिन का बच्चा बना करके माँ के गर्भ में डाल देते हैं। और ये गर्भ और ये बच्चा सामान्य बच्चों की तरह 9 महीना अपनी माँ के ही गर्भ में रहता है, और जैसे बाकी लोगों का डिलीवरी होता है वैसे ही इस बच्चे का डिलीवरी होता है,
1: जो आम बच्चे हैं नेचुरल वे में
0: वैसे। तो हम सिर्फ निसंतानता में जो दिक्कत है उस बाधा को ओवरकम करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF के द्वारा, और बाकी जो नॉर्मल प्रोसेस होता है एक बच्चा जिस तरह से माँ के गर्भ में रहता है वैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है।
1: वैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है, कितना सहज है डॉक्टर श्रद्धा जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि एकदम नॉर्मल है। आप बिला वजह इसको बहुत बड़ी चीज बना रहे हैं, बच्चा नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चा आपको भी हो सकता है बशर्ते कि आप विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें। देखते देखते आज के कार्यक्रम का समय बहुत नजदीक आ गया चलने का कि खत्म करें इस कार्यक्रम को, उससे पहले एक दो जानकारियां हम दे दें। पैसे की जहां तक बात है हमें पता है बहुत बड़ी बात होती है पैसे का जुगाड़ करना, तो ऐसे में श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी ने आपके लिए जुगाड़ किया है कि इलाज कराने के बाद 24 इंस्टॉलमेंट तक आप पैसा दे सकते हैं यहाँ श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी में, इसलिए पैसे की चिंता नहीं। और हम बार बार कहते हैं डॉक्टर श्रद्धा बैठी हैं सामने कि विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलिए। हाँ, इसीलिए हम एक नंबर भी देते हैं डॉक्टर श्रद्धा चखियार का कि आप बात कर लीजिए हाँ, जिससे कि आपका भला हो सके। नंबर है 9162562266 9162562266। भला ये कि सही और सटीक जानकारी मिल सके। फिलहाल चलते हैं, अगले सप्ताह आपसे फिर से मुलाकात होगी। डॉक्टर श्रद्धा चलें क्या?
0: बिल्कुल, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
3: हाँ, एखन हम सब प्रायोजित कार्यक्रम ममता का चल सुने चलो। हम आई प्रायोजित कार्यक्रमक संग गाम घर के समय संपन्न भ रहल अछि। अब हम सब खेती पथारी के कार्यक्रम खेती गृहस्थी में प्रवेश कर चुकल छी, तो खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई लोकन का हार्दिक स्वागत है।
4: बहुत बहुत हमरो दिस से स्वागत छन। आ देखो गोपी भाई, जे हमरा लोकन कोनो प्रकार का खेती करे छी तो ओई में रासायनिक खाद के बेसी से बेसी उपयोग करे छी, जाय कारण की होत अछि तो 5 बरस 10 बरस तक फसल बेसी दैत अछि, लेकिन धीरे धीरे माटि के उर्वरा शक्ति के ओ ह्रास करैत अछि, जाहि कारण अहाँ के हमरा लोकन के बाद में जाकर फसल के पैदावार कम हुए लागत अछि।
3: देखियो, मात्र उपजे छै से अहाँ को
4: प्रभावित
3: नहि प्रभावित होइया, परन छै से अहाँ के पर्यावरण प्रदूषित सेहो होइया, ओहो प्रभावित। अब देखियो भूगर्भ के जल ओहो प्रदूषित होइया, वायु प्रदूषित होइया, आ ओ जे रासायनिक खाद से जे उपजल अहाँ के अनाज अछि ओ शरीर में मानव शरीर में बहुत रास दुष्प्रभाव अहाँ के छोड़ैया।
4: तो एकरा धीरे धीरे हमरा लोकन के रासायनिक खाद के छोड़ कर जैविक और जीवाणु जे खाद होत अछि ओकर व्यवहार बेसी से बेसी करबा के चाहिए। ऐसा की होत अछि जे रासायनिक खाद के आवश्यकता के 15-30% धरि कम कैल जा सके।
3: अहाँ का प्राकृतिक अथी है खेती बाड़ी है प्राकृतिक तरीका से, जीवाणु खाद भेल जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर, एहन सूक्ष्म जीव या जीवाणु का मिश्रण है जे माटि और गाछ का जड़ के संग मिलकर फसल के वृद्धि के बढ़ावे, जेना राइजोबियम एजेटोबैक्टर PSV ई खाद वायुमंडल से नाइट्रोजन लऽ कऽ माटि में अघुलनशील फास्फोरस के घोरि कऽ गाछ के आसानी से पोषण प्रदान करैए, जैसे रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होइए और माटि के जे प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति अछि वहाँ के बहुत दिन तक सुरक्षित रहैए।
4: हाँ। संगे माटि के स्वास्थ्य सेहो सुधरैत अछि, माटि के भौतिक संरचना आ जैविक गुण में सेहो सुधार होइत अछि, जाहि कारण अहाँ के फसल के जे उत्पादन अछि वो 10-25% वृद्धि भ जाए।
3: आ जीवाणु खाद का जो मुख्य उपयोगिता है कि पोषण का पूर्ति, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क के आ गाछ को मुफ्त में नाइट्रोजन उपलब्ध कराबी है, फास्फोरस को उपलब्धता, माटि में मौजूद जो अघुलनशील फास्फेट है ओकरा घुलनशील रूप में बदल कर ओकरा जड़ तक पहुंचाबी है, आ माटि के भीतर छिपल जो मित्र जीवाणु या सूक्ष्म जीवी के संख्या बढ़ा कर जमीन को उपजाऊ और भुरभुरा बनाबी है, और उपजा में वृद्धि सेहो होइए फसल।

0: विकास अंकुरण और जड़ के पसार के संग संग ओका तेज क के कुल पैदावार में 20-30% तक के बढ़ोतरी करे आ पर्यावरण के अनुकूल है। रासायनिक खाद का बेसी इस्तेमाल उपयोग भेला से बुझबे करे छे कि माटि और पर्यावरण के वहां का नुकसान पहुंचे है।
1: आ ई अहाँ के कम लागत में अहाँ के भेटत है, रासायनिक उर्वरक पर खर्चा कम भ जात है आ खेती सस्ता भ जात है। पर्यावरण संरक्षण अहाँ कहबे के लिए जे पूरा तरह से पर्यावरण सुरक्षित रहत है आ एकरा राइजोबियम कल्चर एहन जे जीवाणु खाद है वो अहाँ के दलहनी फसल जना है चना भ गेल मटर भ गेल मूंग भ गेल आदि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ई महत्वपूर्ण होत है। एजेटो बैक्टर है ओना ही ई गैर दलहनी अनाज वाला जे फसल है ओहि में एकर उपयोग कैल जाए संगे फास्फोरस विलायक ई अहाँ के पी एस बी और घुलनशील फास्फोरस के घुलनशील बनाकर पौध के आपूर्ति करते
0: आ वेजिटो बैक्टर में माटि में स्वतंत्र रूप से रहे वाला जीवाणु है। गैर दलहनी फसल जना गेहूँ मकई कपास आदि के लिए लाभदायक उन्हें अहाँ ये जो स्प्रिलिम गाछक जड़ के लग रह का काज करते धान मकई और कुसियारक फसलक लेल उपयोगी है। फास्फेट घुलनशील जीवाणु ई माटि में उपलब्ध अघुलनशील फास्फोरस के घोर के गाछ के लिए उपयोगी बनाबत है। एकर उपयोग लगभग सब प्रकार के फसल में कैल जात है। तो जो हम सब जीवाणु खाद के उपयोग करे छी तो देखियो माटि के उपजा से हो बनल रहत फसल के स्वाद से हो बनल रहत पर्यावरण प्रदूषित नहीं है जल छै से अहाँ के संरक्षित रहत तो चारू दिस छै से लाभे लाभ है। आ ओना ही लाभ है जो हम सब गीत नाद सुनै छी तो तन और मन के जैसे अहाँ को नव ऊर्जा भेटैया किछ छै से नव काज करे लेल तो किया ना हम सब छै से एकटा गीत सुनी

0: बाबा सुनियो दो पांती हमरो प्रणाम। भक्त कह रहल छथि कि हम जे अहाँके पांती लिखने छी, जे पत्र लिखने छी, ओ हमर अहाँके अनुग्रह, हमर जे से अहाँके जे विनम्रतापूर्वक जे प्रार्थना अछि ओकर स्वीकार करू। किया तऽ भक्त जे होइए ओ बड़ विश्वासके सङ्ग भगवानक जे शरणमे आबैए आ भगवानो भक्तक विश्वासके रक्षा करै छथिन। तऽ ई अरविन्द कुमार झाके स्वरमे हमसभ सुनै छलहुँ, बड़ नीक गीत छल। आ देखियौ सतो भाइ, अपना सभ जे खेतीबाड़ी करै छी ताहिमे मौसम पूर्वानुमानक बड़ पैघ भूमिका होइए। जँ मौसमके बारेमे पहिनेसँ बुझि जाइ छी, पता चलि जाइए, तऽ खेतीबाड़ीके काज एकदम आसान भऽ जाइए। हँ, ओहिके अनुरूप अहाँके खेतीबाड़ी करै छी। तऽ पहिने हमसभ छै से मौसम पूर्वानुमान अहाँके किसान भाइ लोकनिके सुना दिए। तऽ ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पूसा समस्तीपुर भारत मौसम विज्ञान विभाग दिससँ जारी 1 सँ 5 अगस्त 2026 धरि मौसम पूर्वानुमानक अनुसार अगिला किछु दिनमे उत्तर बिहारके अधिकांश स्थान पर नीक वर्षा होइके सम्भावना नहि अछि, परंच 2 सँ 4 अगस्त के बीच किछु स्थान पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलैके संभावना यऽ। वैशाली, मधुबनी, गोपालगंज, दरभंगा, सिवान, पूर्वी आ पश्चिमी चंपारण जिला के किछु स्थान पर मध्यम सँ भारी वर्षा होइके संभावना अछि। शेष स्थान पर पूर्वानुमान अवधि में हलुक सँ मध्यम वर्षा होइके संभावना अछि। वर्षा के समय आकाश में मध्यम सँ घनगर मेघ लागल रहत आ आन समय आकाश में हलुक मेघ देखल जा सकैए।
1: आब समसामयिक कृषि कार्य में किसान भाई के सुझाव ई अछि जे मकई 30 सँ 35 दिन के खरीफ फसल मकई के तैयार भऽ गेल हुए तो ओहिमे निकाई गोड़ाई कऽ देबाक चाही, संगे माटि चढ़ेबा के काज करबाक चाही। फसल के बेहतर वृद्धि के लेल अहाँ के 40 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के दर सँ टॉप डेसिंग करबाक चाही किसान भाई के।
0: धान के खेती में कम वर्षा के स्थिति में धान के खेत में खर पात के बेसी बढ़े के संभावना भऽ जाइए। तब फसिल के संतोषजनक वृद्धि विकासक लेल समय पर खर पात के अहाँ के कमौनी करैत रही, नियंत्रण करैत रही। एक हेक्टेयर क्षेत्र में 500 सँ 600 लीटर जल में ब्यूटाक्लोर 3 लीटर अथवा प्रिटाक्लोर 1.5 लीटर अथवा पेडीमेथालिन 3 लीटर मिलाकर असमान रूप से छिड़काव करें।
1: संगे परवल के खेती में वर्तमान समय में परवल के बुआई के लेल अखन उपयुक्त समय है। उत्तर बिहार के लेल अहाँ के किस्म जे से राजेंद्र परवल 1, राजेंद्र परवल 2 आ राजेंद्र परवल 3, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण ओलंकिक एवं स्वर्ण सुरुचि किस्म अनुशंसित कयल गेल अछि। आ पौध के रोपाई अहाँ के 150 × 100 सेंटीमीटर के दूरी पर किसान भाई के करबाक चाही। खेत के तैयारी के समय में 20 सँ 25 टन प्रति हेक्टेयर सरल गोबर के खाद देबाक चाही, संगे अहाँ के 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस आ 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करबाक चाही किसान।
0: अब मिर्चाय के नर्सरी के भाव उचगर क्यारी पर करी। उत्तर बिहार के लेल अहाँ के ओपन पॉलिनेटेड किस्म में अर्का लोहित, शिमला मिर्च, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 आ पंजाब लाल असंकर किस्म में अर्का श्वेता, कोंकण कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुख, काशी अगति आ काशी तेज उपयुक्त अछि। एक हेक्टेयर के लेल 800 सँ 1000 ग्राम ओपन पॉलिनेटेड अथवा 250 सँ 300 ग्राम संकर बिया के प्रयोग करी। आ बाव से पहिने बिया के थायरम 75% डस्ट सँ ओकरा उपचारित करी। आ पौधा रोपण के समय 60 सँ 75 × 45 50 सेंटीमीटर के दूरी पर करी। आ खेत में 25 सँ 30 टन सरल गोबरक खाद, 100 सँ 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 सँ 50 किलोग्राम फास्फोरस आ 40 सँ 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करी।
1: संगे फूल गोभी जे ओकर मध्यकालीन किस्म जनाकि पूसा हिम

0: छियानवे एवं पंत शुभ्रा के बुआई किसान भाई चयन कह सकते हैं। बिया अहाँ के मात्रा रखबाक चाहिए 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से बिया लागत है। खेत के तैयारी के समय में 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर सरल गोबर के खाद से व्यवहार करें। संगे अहाँ के 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 50 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटास, 10 से 12 किलोग्राम बोरेक्स आ 1 से 2 किग्रा अमोनियम
1: किलोग्राम अमोनियम
0: मेलिडेट प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करें।
1: तो जो ई सब काज करब तो निश्चित रूप से अहाँ का फसिल मिर्चाई के आ फूलकोबी के अहाँ के उत्पादन निक हैत आ जँ उत्पादन निक हैत तो बाजार में बेच के निक कैचा कमायब आ जँ लोग में कैचा रहत टका रहत तो मन एकदम जैसे गदगद रहत खड़गर रहत आ तखन तो गीतनाथ सुने के मन निश्चित रूप से करो। हाँ तो किया ना हम सब जैसे एक गीत सुनी।

0: महल पर कागा ई झूमर शारदा सिन्हा के स्वर में सुने छलो हम बड़ निक झूमर छल जतबे स्वर मधुर छल ओतबे शब्द मधुर छल
1: आ देखू गोपी भाई जखन बरसात के समय चल रहा है
0: तो
1: ओहन समय में अहाँ के गाय भेल महीस भेल ऐ सब के फंगस एवं सरल चारा से बचेबा के चाहिए। हमेशा सुखल संतुलित आहार साफ दाना मिनरल मिक्सचर ताजा पानी देवा के चाहिए आ नमी के कारण चारा में फंगस लग जाते जे चारा खेला से पशु बीमार भ सकते पर विशेष ध्यान देवा के चाहिए।
0: देखियो जैसे मौसम आका फफूंद रहित दाना स्वच्छ जल खनिज लवण और ताजा जो टटका अहाँ हरियर घास या से देवा के चाहिए आ नमी से बचाबे के लिए चारा के सुखल स्थान पर रख। अच्छा माल जाल के अहाँ खुरपका मुँहपक्का आ गला घोटू रोग से बचाबे के लिए समय पर टीका लगवाबी और बथान में कीचड़ नहीं होबे दी जल जमाव नहीं होबे दी सूखा चारा में फफूंद लगल तुरल या भूसा के प्रयोग बिल्कुल नहीं करी हरियर चारा धोला के बाद आ कनी रोद में सुखा दी उकर बाद खुआबी आ दाना और चारा बराबर सूखल और उचगर जगह पर राखी। अच्छा जल जे पियाबे छी एकदम टटका जल हेबा के चाही या नल का या ढकल जल हेबा के चाही आ अहाँ गंदा ठहरल जल पियाबे से की होइए कि माल जाल के दस्त पेट के बीमारी भ सकैए आ स्वास्थ्य साफ सफाई में टीकाकरण करियो वर्षा से पहिने पशु चिकित्सक से सलाह लक टीका जरूर लगवाबी बथान के सफाई करी बारा के फर्श के एकदम सूखल राखी कीचड़ और मक्खी मच्छर से माल जाल के बचाबी आ आहार में सादा नमक और मिनरल मिक्सचर दिया खनिज मिश्र रोज दी।
1: मिनरल मिक्सचर में अहाँ के आहार में 2% मिनरल मिक्सचर 1% साधारण नमक रोजाना शामिल करवा के चाहिए। ऐसे की होते है जो माल जाल के पाचन शक्ति बन रहते आ वो अहाँ के रुचिकर से खाते पशु के हमेशा स्वच्छ आ ताजा पानी देवा के चाहिए गंदा आ जमा वाला जो बारिश वाला जो पानी है वो घर के आसपास नहीं रह देवा के चाहिए। साँझुक समय में अहाँ के घूर कऽ देबा के चाही जैसे मच्छर कम लागे संगे सुबह में से गोबर और पेशाब जो होते वो साफ केला के बाद में सूखा अहाँ के छाउर जो होते छिड़काव कर देवा
0: सूखल छाउर का थन का साफ सफाई पर विशेष ध्यान दी दूध निकाले से पहिने और बाद में अहाँ के गाय के महीस का थन का साफ सफाई केने बेहद जरूरी है। गीला और गंदा वातावरण में थन में संक्रमण भ जाइए बोलूँ ऐसे मेस्टेटिस होय के खतरा बढ़ जाइए एहि लेल साफ कपड़ा या गुनगुना जल से थन के सफाई करी और दूध निकाले समय स्वच्छता का पूरा ध्यान रखी ऐसे दूध का अहाँ के गुणवत्ता ओहो बेहतर होइए और पशु स्वस्थ रहिए और जँ अहाँ के बरखा के मौसम में पशु चारा कम खाए लगे बुखार आब जाए सुस्ती दिखाई दे दस्त हुआ या दूध अचानक कम होबा लगे तो एक नजरअंदाज नहीं करवा के चाहिए। एहन लक्षण दिखाई देला पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करी आ समय पर उपचार मिलला से गंभीर बीमारी पहिने नियंत्रित भ सकैए।
1: संगे बारिश के समय में बहुत रास रोग व्याधि से माल जाल के लगवा के संभावना रहते जना कि खुरपका मुँहपका भ गेल लंगड़ी बुखार भ गेल थनैला भ गेल इस सब बीमारी के लिए पहिने टीकाकरण करा देवा के चाहिए पशु चिकित्सक से सलाह।
0: और कृमिनाशक जो है दवाई वह देने जरूरी है पेट में जो कीड़ा भ गेल तैसे पशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होइए और दूध उत्पादन पर सेहो नकारात्मक असर नहीं पड़े। तो देखियो अही के संगे खेती गृहस्थी कार्यक्रम के समय संपन्न भ रहल अछि तऽ खेती गृहस्थी कार्यक्रम से किसान भाई सब हम सब आज्ञा ली। नमस्कार सत्तो भाई।
1: नमस्कार गोपी भाई।

अभी आप किसान श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अगला प्रसारण पटना केंद्र से मैथिली संवाद।

आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: AIR at 90.
1: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
3: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
3: उद्गम से,
1: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
3: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: बरसात के मौसम में कई प्रकार के रोगों से पशु का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
8: इसलिए वर्षा ऋतु के दौरान कुछ अपनाने योग्य बातों का ध्यान रखें। बारिश से पहले पशुओं की पशुशाला के छत की मरम्मत कर दें ताकि पानी न टपके। पशुशाला की खिड़कियों को खुली रखें तथा गर्मी और उमस से बचने के लिए पंखों का प्रयोग करें। साफ सफाई का ध्यान रखें और पानी एकत्र न होने दें।
7: नियमित अंतराल पर कीटनाशक का भी छिड़काव करें। जानवरों को ज्यादा शारीरिक थकावट न होने दें और बार बार धूप में न लाएं।
8: कोशिश करें कि पशु को बाल्टी से साफ एवं ताजा पानी पिलाएं। दाने का भंडारण नमी रहित जगह पे करें। संक्रामक रोगों के विरुद्ध अपने पशुओं का टीकाकरण करवा लें।
9: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
10: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत की। पटना सहित राज्य के सभी जिलों में जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल। भाजपा राजद और जनसुराज में मुख्य मुकाबला। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन। विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और खेल मंत्री समेत अन्य गणमान्य लोगों ने खिलाड़ियों को दी बधाई। और मौसम विभाग का अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज और सीवान जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले छिपाए नहीं।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाएं नहीं। जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
0: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। इधर पटना में आयोजित

0: इस कार्यक्रम में राज्यपाल सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भाग लिया। वहीं प्रदेश के जिलों में भी इस अभियान के तहत युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इधर देशव्यापी नशा मुक्ति अभियान के तहत ब्रह्म कुमारीज की ओर से 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य नशा मुक्त, स्वस्थ और जागरूक समाज का निर्माण करना है। पटना सब जोन मुख्यालय की राजयोगिनी संगीता दीदी ने बताया कि अभियान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और ब्रह्म कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में चलाया जाएगा।
1: सारा समाज नशे के गिरफ्त में आता जा रहा है, बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध हो। इसलिए हम लोगों ने इस बार ये संकल्प लिया है कि 6 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में 10 करोड़ लोगों से नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा हमें कराना है।
0: प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक रिपोर्ट।
2: सुपौल जिले के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। अरवल जिले के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय कलेट सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें युवाओं ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और नशा मुक्ति की शपथ ली। मुंगेर जिले में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त अजीत कुमार सिंह, जिला युवा पदाधिकारी मयंक कुमार और ट्रैफिक डीएसपी प्रभात रंजन ने किया। अररिया जिले के फारबिसगंज कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, जनप्रतिनिधियों तथा जिला प्रशासन की मौजूदगी में युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गयी। कैमूर जिले के भभुआ में आयोजित कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान, एनसीसी और एनएसएस के स्वयं सेवकों ने नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। इसके साथ ही अन्य सभी जिलों में भी इस अभियान के तहत व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। समाचार कक्ष से प्रियंका कुमारी।
0: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल होगी। पटना के एन कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। मतगणना केंद्र और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी राजनीतिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। वहीं इस दौरान बोरिंग रोड चौराहे से एन कॉलेज की ओर वाहनों के परिचालन पर भी रोक रहेगी। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन सुराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने मुक्केबाजी में सबसे अधिक 10 पदक जीते हैं। इधर खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के प्रदर्शन पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार पदक जीत रहा है, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार भारत की जो मेडल टैली है वो आगे बढ़ते जा रही है, हम लोगों के लिए एक गर्व का क्षण। लेकिन अफसोसजनक बात इसका लगता है कि अधिकांश कॉमनवेल्थ गेम्स जिसमें भारत के पदक आते उनको धीरे धीरे धीरे करते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स से हटाया जा रहा है। जैसे कि शूटिंग भी एक खेल है जिसको आप कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल नहीं किया जाता है।

0: बहुत से केरियर, तो इस विषय पे हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल करने की आवश्यकता है।
1: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सभी देशवासियों को बधाई दी है। इधर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी बधाई देते हुए कहा कि उपलब्धि खिलाड़ियों के कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय का नतीजा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कार्यकाल की 100 दिन पूरे होने पर पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में अखिल भारतीय कानू हलवाई मंच की ओर से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में जनता की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
2: ये जनता के भरोसा वाली सरकार है, जनता के सीधा संवाद चाहते। और आपने देखा 5,83,000 लोगों ने आवेदन किया, 5,33,000 निष्पादित हो चुके और आगे जो बचा है साथियों 50,000, उसको भी 30 दिनों के अंदर कंप्लीट करने का काम हमारी सरकार करेगा।
1: पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए सरकार विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। श्री प्रकाश ने शिवहर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में सोलर लाइट योजना में 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि जिले में चल रही विभिन्न विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों को जोड़ा जा रहा है।
3: अलग अलग पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है, मिनी सचिवालय के रूप में इसको स्थापित करना है ताकि पंचायत स्तर पर जो भी समस्याएं लोगों की रहती हैं, जो भी सर्विसेज लोगों को मिलनी है, तमाम सर्विसेज पंचायत स्तर पर ही मिले, तमाम समस्याओं का निपटारा पंचायत स्तर पर हो, इसके लिए एक मिनी सचिवालय के रूप में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है। शिवहर जिला की जो स्थिति है, कुल 53 पंचायतें हैं, यहाँ उनमें से 50 जगहों पर पंचायत सरकार भवन के लिए स्थल की स्वीकृति दे दी गई है।
1: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि राज्य में चौथे चरण के तहत शिक्षकों की नियुक्ति जल्द ही शुरू की जाएगी। श्री तिवारी ने गोपालगंज में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग को परीक्षा का कार्यक्रम जल्द जारी करने को कहा गया है।
4: सरकार के द्वारा बीपीएससी को बताया गया है कि आप जल्दी से जल्दी तैयारी 4 की परीक्षा का शेड्यूल जारी करें और बीपीएससी उसकी तैयारी में जुटा हुआ है।
1: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने आज पटना के मेदांता अस्पताल में बाल हृदय जांच शिविर का निरीक्षण किया। श्री कुमार ने कहा कि बाल हृदय योजना के तहत अब तक 500 से अधिक बच्चों का इलाज किया जा चुका है।
5: बाल हृदय योजना के अंतर्गत ये मेदांता के प्रबंधन ने जो ये जांच शिविर का आयोजन किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि जिसके माध्यम से छोटे बच्चों का जो भी हृदय में प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट हो और उसका उपचार हो, और इसकी शुरुआत 7 निश्चय 2 के तहत की गई थी।
1: डिहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या का खुलासा हो गया है। मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने बताया कि वाद विवाद के कारण कार्यपालक पदाधिकारी के चालक ने ही हमला कर हत्या की बात स्वीकार की है।
6: पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है। उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था और समय समय पर बहस होती थी, जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है। पुलिस सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, फोरेंसिक टीम भी आई है, उन्होंने घटनास्थल को इंस्पेक्ट किया है, उनसे भी हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं। जो बातें अभी प्रकाश में आई है, इन सभी बातों का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले हर बिंदु पर अनुसंधान करके ही इसमें हम कुछ फाइनली कह सकते हैं।
1: प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई है। आज सुबह राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। जिले में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज और सिवान जिले में बहुत भारी बारिश हो सकती है।
7: दिनांक 3 अगस्त को राज्य के गोपालगंज एवं सिवान जिलों में अति भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों, पूर्वी चंपारण, सारण एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के किशनगंज, सुपौल एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: इधर बांका में बारिश के दौरान बिजली गिरने से अलग अलग स्थानों पर 6 लोगों की मौत हो गई।

0: वहीं 7 अन्य घायल हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत की। पटना सहित राज्य के सभी जिलों में जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल। भाजपा राजद और जनसुराज में मुख्य मुकाबला। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन। विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और खेल मंत्री समेत अन्य गणमान्य लोगों ने खिलाड़ियों को दी बधाई। और मौसम विभाग का अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज और सिवान जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
1: Hey girls,
2: hey, congratulations.
1: आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन। रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
7: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशनधारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अपनी पेंशन बिना रुकावट के पाने हेतु यथाशीघ्र जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं। पंचायत या प्रखंड स्तर पर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या या लाभार्थी संख्या लेकर जाएं एवं निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अतिवृद्ध एवं दिव्यांग पेंशनधारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
8: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-800-345-6262 पर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
9: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है दरभंगा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मणिकांत झा।
10: दरभंगा जिले में कई सालों से बंद पड़े रैयाम चीनी मिल को पुनः चालू करने की दिशा में गतिविधियां तेज हो गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि रैयाम चीनी मिल सहकारी समिति की सदस्यता तथा गन्ना विकास पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। रैयाम और मधुबनी के सकरी चीनी मिल क्षेत्र के 9,000 से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है। गन्ना उद्योग विभाग ने किसानों से कृषि विभाग की DBT ID के आधार पर CCS पोर्टल पर गन्ना ID के लिए आवेदन करने की अपील की है, ताकि वे विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। इधर जिले में इस बार कम वर्षा के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। धान की रोपाई वैकल्पिक सिंचाई के सहारे की जा रही है, जिससे किसान चिंतित हैं। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिलों के जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में बाढ़ और सुखाड़ समेत आपदा प्रबंधन तैयारियों पर विस्तृत समीक्षा की गई। जिले के 8 प्रखंडों में सरकारी डिग्री कॉलेजों का शुभारंभ हुआ। इनमें कुशेश्वर स्थान पूर्वी, कुशेश्वर स्थान, गौरा बोराम, किरतपुर, तारडी, अलीनगर, हनुमान नगर और सिंहवारा प्रखंड शामिल हैं। कॉलेजों के खुलने से जिले के विद्यार्थियों, विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को अपने क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। पिछले दिनों राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में PPP मॉडल अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत पैथोलॉजी सेवाओं का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सदर दरभंगा परिसर स्थित जिला पैथोलॉजी लैब का भी शुभारंभ किया गया। निःशुल्क पैथोलॉजी सेवा की शुरुआत यहां हुई। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने लैब का निरीक्षण कर उपलब्ध मशीनों और जांच सुविधाओं तथा कार्य प्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस लैब के संचालन से जिले में मरीजों को बेहतर जांच सुविधा मिलेगी तथा गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान और इलाज में सहायता मिलेगी। टीबी भारत मुक्ति अभियान के अंतर्गत दरभंगा में जिला स्तरीय पोषण किट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान चिन्हित टीबी मरीजों के बीच पोषण किट वितरित किया गया। जिलाधिकारी कौशल कुमार

0: बताया कि जिले में लगभग 2,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, जिसके आधार पर 13,000 टीबी मरीजों की पहचान कर उन्हें नियमित उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले की 54 पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है तथा 15 अगस्त तक इन्हें टीबी मुक्त घोषित करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभाग समन्वित रूप से कार्य कर रहे हैं। बिहार सरकार ने मिथिला संस्कृत शोध संस्थान दरभंगा और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्थित ऑक्सफोर्ड संस्कृत टेक्स्ट सोसाइटी के बीच संस्थागत सहयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि इससे मिथिला की बौद्धिक विरासत को वैश्विक पहचान मिलेगी तथा शोध पांडुलिपियों के संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। जिले में 12 करोड़ रुपए की लागत से 6 फुट ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर यात्रियों की सुविधा के लिए 6 फुट ओवरब्रिज के निर्माण की मांग की गई थी, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स IAP की दरभंगा शाखा द्वारा IAP CPR दिवस 2026 एवं CPR मास अवेयरनेस कार्यक्रम संजीवनी के तहत जिले के 6 प्रमुख शिक्षण एवं स्वास्थ्य संस्थानों में जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य प्रशिक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि अभियान का उद्देश्य आम लोगों को हृदय गति रुकने की स्थिति में जीवन रक्षक CPR प्रक्रिया का प्रशिक्षण देना है। जिले के हराही, दिग्घी और गंगा सागर तालाबों के सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। इस बीच तालाब बचाओ अभियान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने तालाबों में मिट्टी भरने के कार्य पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। दरभंगा मंडल कारा के सहायक अधीक्षक नंदू चौधरी को गृह विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके विरुद्ध समस्तीपुर में दहेज के लिए पत्नी की हत्या का मामला दर्ज है।
1: अभी आप सुन रहे थे दरभंगा जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मणिकांत झा।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अगला गीत फिल्म आई मिलन की रात से आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की है। गीत रचना समीर की और धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

आई मिलन की रात फिल्म के इस गीत को भी आप सुन रहे थे। अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद रफ़ी, क्षमा करेंगे, मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में। अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म जुर्माना से, गीत रचना समीर की है और धुन आर डी बर्मन की।

मुकेश के गाए फिल्म सबक के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। वाचन एवं निर्माण दीपक कुमार झा का है और प्रस्तुत करता है मितेश कुमार मिश्रा।

0: कार्यक्रम क्रीड़ा जगत में आप सभी खेल प्रेमियों का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं दीपक कुमार झा। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने बहुत कुछ लाया है। हम सुनेंगे चहल पहल, सुनेंगे ज्ञान की बातें खेल जगत से, और इसके अलावे आज हम एक भेंट वार्ता सुनेंगे जिसमें विशेषज्ञ होंगे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अमृत कुमार झा, और इसके अलावे सुनेंगे खेलों की साप्ताहिक गतिविधियों को। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं ये भेंट वार्ता जिसमें हमने बातचीत की है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल विशेषज्ञ प्रोफेसर अमृत कुमार झा से। श्रोताओं नमस्कार। दरभंगा जिले के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो खेल विभाग हैं उसमें कई तरह के खेलों को यहाँ के विद्यार्थियों ने उस मुकाम तक पहुँचाया है जहाँ वो अपने समाज, वो अपने परिवार और अपने देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। और उस खेल विभाग के जो खेल पदाधिकारी हैं प्रोफेसर अमृत कुमार झा जी आज हमारे बीच आए हैं, और जो राष्ट्रीय खेल नीति 2025 इसके संदर्भ में भी हम इनसे बातचीत करेंगे, और इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो खेल की जो गतिविधियां हैं इनसे संदर्भित बातचीत भी और जानकारी भी हम इनसे लेंगे। तो हम सबसे पहले आपको अपने आकाशवाणी के इस स्टूडियो में स्वागत करते हैं। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो राष्ट्रीय खेल नीति 2025 जो बनाई गई है इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी है?
1: बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर हमारे युवाओं के लिए। मैं शुरुआत में ही कह दूं कि ये सभी को अमूमन पता ही है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व पटल पे सबसे युवा देश जो है वो हमारा भारत है, और उस युवा देश का सबसे युवा जो प्रदेश है, जो राज्य है, वो हमारा बिहार है। खेल ऐसा माना जाता है कि वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, धर्म को नहीं देखता है। और क्योंकि मैं मनोविज्ञान का भी छात्र हूँ, खेल सभी के लिए है। वो आपके नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आपके फिटनेस के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए, आपके इंथुजियाज़म के लिए, जीवन में एक पर्पस के लिए, जीवन जीने का एक माध्यम, आप जिस तरीके से इसको लें। जैसे हम संगीत सुनना पसंद करते हैं, लोग का अमूमन एक हॉबी होता है, उसी तरह की खेल हमेशा एक आउटसाइड एक्टिविटी के तौर पर लिया गया हमेशा से ही। चाहे वो बात 1984 की खेल नीति की हो, फिर 2001 की हो, फिर 2011 की हो, जहाँ पे पहली बार ऐसा लगा कि नहीं, खेल को अब स्ट्रीमलाइन किया जाए, जो कि मुख्य धाराएं हैं युवाओं की उसमें लाया जाए। उसमें और आज के परिवेश में आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में हमारे प्लेयर्स दिन पे दिन, खासकर इधर अगर कोरोना के बाद देखिए, अगर आप अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिव्या देशमुख जी जो वर्ल्ड चैंपियन हुई हैं चेस में, उसके पहले प्रसिद्धा कृष्णा हैं, और जो भी हैं गुकेश दी हैं, और बहुत सारी, क्योंकि पहले का जमाना रहा, खासकर मिथिलांचल की बात करें तो क्रिकेट एक प्रमुख खेल के तौर पे उभरा, अभी भी है। हम हर जगह देख सकते हैं कि बच्चे वो खेल, एक ही गेम ऐसा माना जाता है, क्रिकेट ही गेम है अब पहले। हाँ,
0: और मिथिला के भी जो कुछ खिलाड़ी है उन्होंने इस बार IPL में खेला है,
1: वैभव सूर्यवंशी जी जो उन्होंने धूम मचाया और धमाल हमने देखा। ऐसा नहीं है, प्रतिभाएं तो हमारे हर कहा भी जाता है कि यहाँ गली गली मैच थी मिथिला में, तो ऐसा देखा भी गया है। और जो एक माइंडसेट बन गया था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब,
0: वो मानसिकता अभी टूटी है।
1: और मैं ऐसा देखा, अब मैं तो उसको मैं खुद देख रहा हूँ कि खेलोगे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ठीक है, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। ये अब नया

0: नया इंडिया, एक न्यू इंडिया साफ दिख रहा है। युवाएं आप देख रहे होंगे, बहुत सारे प्राइवेट कंपटीशन भी कंपटीटर्स भी आ गए हैं। इस परिवेश में नई राष्ट्रीय खेल नीति आने का कारण सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी भी आपने देखा होगा कि ओलंपिक में हम बहुत पीछे हैं। तो सरकार ने यह चाहा है कि जो प्रतिभा हमारे गाँवों में, उन्होंने गाँव को फोकस किया है, उन्होंने यूनिवर्सिटी को फोकस किया। ये बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रासरूट लेवल के जो हमारे प्रतिभावान प्लेयर्स हैं हर एक विभिन्न विधाओं में, विभिन्न खेलों में, वो इस चीज़ को समझें। और यूनिवर्सिटी को उन्होंने रीजनल स्पोर्ट्स क्लब को एक उपाधि के तौर पर रखा है, जहाँ के बच्चे जो रूरल एरिया के बच्चे हैं वो आएँ, खासकर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। और मिथिला यूनिवर्सिटी क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है, हम लोग ये हमेशा से इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखे हैं हमारे बच्चे। और मैं बता दूं, जब इसकी बात होगी तो हम लोग ने नित नए परचम लड़ाया है खेलों में।
1: ये जो खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल नीति 2025, ये दोनों में क्या अंतर है?
0: अंतर यही आप समझिए कि खेलो इंडिया का शुभारंभ होता है, वो एक कंसेप्ट आता है जो हमारे युवाएं हैं, खासकर जो मैंने शुरू में कहा कि युवा देश है और खेल में फिटनेस और युवा शक्ति की बहुत ज़रूरत है, उन्होंने इस चीज़ को उभारा और ओलंपिक उनका नाम ही दिया गया फ्रॉम स्कूल टू पोडियम, और इस चीज़ को लाया। इसके तहत आपने देखा होगा कि बहुत सारे विभिन्न स्टेडियम बने, और इस नई राष्ट्रीय खेल नीति में उन्होंने इस बात का, पूरे सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि सभी को इंक्लूसिविटी हो। इंक्लूसिविटी का मतलब ऐसा ना हो कि सभी कि बस एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो पहले से रहा कि जो बहुत धनवान है या जो जिनको जिनके पास खेल के रिसोर्सेज हैं उन्हीं को वो प्लेटफॉर्म मिले, उन्हीं को रिसोर्सेज मिले, ऐसा ना हो। सभी के लिए एक अधिकार समान हो, सभी खेलें, सभी फिट रहें। और एक इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है जो पहले से उन्होंने चेंज किया, जिसको हम लोग कहते हैं भी है पैराडाइम शिफ्ट, कि टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है इसमें नई राष्ट्रीय खेल नीति में। टैलेंट आइडेंटिफाई का मतलब है प्रतिभा का पहचान करना, चिन्हित करना और उसको वो सम्मान दिलाना जिसका वो हकदार।
1: तो ये प्रतिभा पहचान कौन करेंगे?
0: प्रतिभा पहचान यही करेंगे, जैसा आपने हमारे बिहार प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे मेजर लाओ नौकरी पाओ, हर आपने देखा होगा कि हर प्रखंड में या मैदान का एक उन्होंने शुरुआत हुआ है। ये जरूर है कि मसाल जली है, पहचान करेंगे हमारे आपके जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं। आपने कहा कि मिथिला के बहुत सारे ऐसे कीर्तिमान रहे हैं जो लोकल हैं, यहाँ कोचेज हैं, वो करेंगे, यूनिवर्सिटीज करेगी, स्कूल करेगी, और एक हायरार्की बनेगा, एक सिस्टम बनेगा कि जो स्कूल में अच्छे कर रहे हैं वो फिर फॉलोअप करेंगे, यूनिवर्सिटीज उसको फॉलोअप करेंगी।
1: देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं जो स्कूल की शिक्षा जब तक उन्होंने ली, स्कूल की ओर से उन्होंने नहीं खेला, और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और खेल में आगे बढ़ गए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होगा, उनकी प्रतिभा कैसे, किस तरह से पहचानी जाएगी?
0: ये इस बात का भी ध्यान रखा गया है नई खेल नीति में कि ऐसे जो प्रतिभावान प्लेयर्स हैं जो खेल, जो पढ़ाई छोड़ दी है और खेल को अपना कैरियर बना लिए, उनके लिए जैसे मैंने जस्ट कहा भी, जैसे बिहार प्रदेश में ही, हमारे राज्य में ही है मेडल लाओ नौकरी पाओ, ऐसे जो मेरिटोरियस प्लेयर्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट रहेगा जॉब्स में, ये प्रावधान है इसमें। और ऐसा हो सकता है कि उनको पेंशन का भी मिलेगा आगे जाके, ये अभी मैं जस्ट एक विजनरी आइडिया बता रहा हूँ जो उसमें मैं देखा है, मैंने पढ़ा है उसके मसौदे को। और ऐसे प्लेयर्स को टॉप प्रायोरिटी मिलेगी हर एक सेक्टर्स में, ताकि एक मोटिवेशन हो, जो आपने कहा शुरू से मैंने बात भी की कि कभी भी खेल को प्राथमिकता नहीं दे गई, हमेशा उसको एक रखा गया आउटसाइड एक्टिविटी में, मतलब फ्री हो। जैसे हमने स्कूल में पढ़ाते थे, हमारे जो सहभागी होंगे वो जानते होंगे श्रोतागण कि एक कंसेप्ट होता है ईसी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो करिकुलम के अलावा हो, नाम ही है एक्स्ट्रा, वो आ जाता था स्पोर्ट्स में, म्यूजिक आता था। अब एक नया जो एक माइंडसेट, फिर क्योंकि माइंडसेट बहुत ज़्यादा था, बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब में, प्राथमिक आप जो सोचते हैं वही करते हैं, अब वो कम्प्लीटली हटा दिया गया है शब्द को। नई शिक्षा नीति में शब्द आया है को करिकुलर एक्टिविटी, मतलब जो शिक्षा के साथ चले। तो क्योंकि सही शिक्षा नीति हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट माने सभी को पता है, ऐसा नहीं कि बच्चा बस पढ़ रहा है, उसको जीवन की कौशल भी पता हो, तो जीवन में खेलों के बारे में पता हो, संगीत के बारे में पता हो। हमारे नाथ शास्त्र में, हमारे पुराने शास्त्रों में करीब 64 कलाओं की बात की गई है, और इधर क्योंकि हम लोग एक कॉरपोरेट स्लेव्स की ओर बनते जाते हैं, इस सब को देखते हुए नई शिक्षा नीति और नई खेल नीति एक नया भारत जन्माएगा। और जो युवाएं हैं, जो खासकर आपने कहा भी वैभव सूर्यवंशी जी हैं, और भी जो नई नई जो प्रतिभा आप देख रहे हैं, जो उम्मीद भी नहीं कर सकते थे हम लोग जमाने में, याद है चेस में बस विश्वनाथन आनंद जी का नाम आता था
1: जी।
0: अभी आप देखें तो, या आप हर गेम में देखेंगे, चाहे नीरज चोपड़ा जी हों, हर एक गेमों में ऐसे ऐसे नाम उभर के आ रहे हैं, और ये ये सभी माने या ना माने, 10 साल बाद या 15 साल बाद इसका

0: टेंजिबल इफेक्ट है वो पूरे जनमानस सोसाइटी पे समाज में दिखेगा, जहां खेलों को प्राथमिकता दी जा रही है। हर एक नए विभाग भी खुलेंगे हर डिपार्टमेंट में, हो सकता है स्कूल में भी, हो सकता है स्पोर्ट्स साइंस स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डिपार्टमेंट खुलो, स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट खुलो।
1: जी जी जी। अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार की बात करें तो यहाँ जो खेल की जो गतिविधियाँ हैं उनकी अपेक्षा बिहार की स्थिति के बारे में क्या कहिएगा?
0: पहले सभी को पता है पहले हम लोग बहुत पीछे रहे, क्रिकेट ही हम लोग का एक रहा जहाँ पे कुछ नाम आते थे, चाहे वो सबा करीम जी हो। इधर आपने देखा होगा खासकर विगत 2-3 सालों में आफ्टर कोरोना, जिसे हम कह सकते हैं सबसे पहला जो मेजर डेवलपमेंट हुआ, जो बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उदय होता है, हमारे ऑनरेबल सीएम उसके चांसलर होते हैं। राजगीर में आपने देखा होगा अभी
1: खेल विश्वविद्यालय
0: बना है, वहाँ गेम शुरू हुए, अभी विगत गेम हुआ, अभी एक एशिया कप का हॉकी होने वाला है। तो धीरे धीरे हम लोग जो एक मैंने कहा आपको कि 0.1 अगर चेंज होता है तो वो बड़ा चेंजें हुआ, 0.1 0.2, ये सब चेंजेस क्या हो रहे हैं, ये 0 से 1 पे ले जाएगा, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज कहते हैं। और ये सब चीज़ें होना, हमारे प्रतिभागियों को जॉब सिक्योर होना, हमारे प्रतिभागियों को ये होना कि अगर हम मेडल लाते हैं नौकरी पाएंगे, जीवन हमारा सेट होगा, ये सिक्योरिटी बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी जब हम देखते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी क्योंकि धरातल पे हैं, देखिए कि जितना हम लोग कर सकें इसके प्रति हम लोग इसको आगे करेंगे।
1: बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ आपने दी है। यदि हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की बात करें तो इस विश्वविद्यालय के आप खेल पदाधिकारी भी हैं, इस नाते हम ये पूछना चाहेंगे कि अभी तक जो विगत वर्षों में जो इस विश्वविद्यालय के जो खेल के प्रति जो इनका एक समर्पण रहा, तो क्या इसका अचीवमेंट रहा है?
0: ऐसे तो कोई फैक्चुअल कोई आंकड़ा नहीं, मतलब कोई स्केल नहीं है, मतलब कोई ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है पूरे बिहार पे, लेकिन अगर हम लोग का हम लोग खुद मानते हैं, मैं क्या मतलब विभाग है खेल नामी है खेल, मतलब एक टीम स्पिरिट सब लोग काम करते हैं, तो हम लोग संभवतः हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग बिहार में सबसे अभी अव्वल पे चल रहे हैं। कारण क्यों बता रहा हूँ मैं ऐसा, क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि अभी 3-4 वर्षों में हम लोगों ने नए अचीवमेंट हर साल किए हैं। फॉर एग्जांपल मैं बस आपको कुछ एग्जांपल दे दूँ, जैसे पिछले ही साल चांसलर कप कबड्डी हुआ था पटना में, पाटलिपुत्रा इंदौर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ हमारे जो प्रतिभावान बच्चे हैं उन्होंने दो प्रतिस्पर्धा था, एक मेल का था एक फीमेल का था, तो मेल में हम लोगों ने सेकेंड पूरे बिहार में किया और महिलाओं में हम लोगों ने फर्स्ट किया। ये तो हुआ बिहार की बात। अभी जर्मनी रायन रू वहाँ पे एक सिटी है, वहाँ पे फीसू बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स, वहाँ पे पूरे यूनिवर्सिटी के जो टॉप प्लेयर्स होते हैं हर विधाओं में उनको बुलाया जाता है। तो आपको जान के खुशी होगी, पूरी मिथिलावासी को जान खुशी होना चाहिए कि हमारे यहाँ से त्रिलोक कुमार चयनित होते हैं और वो भारतीय एथलेटिक टीम को रिप्रेजेंट करते हैं और वो अभी जर्मनी में ही हैं। ये रिसेंट आपका डेवलपमेंट मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा हमारे बच्चे यहाँ के जोनल कम्पीट करते हैं, नेशनल तक जाते हैं, करीब 5-6 विधाओं में, ये एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो हैंडबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, हमारे बच्चे इस सभी विधाओं में हमेशा से ही एक मुकाम हासिल किया है। और इसका प्रारूप आप देख सकते हैं कि कबड्डी का भी कोचिंग होता है, क्रिकेट का भी कोचिंग होता है। प्रॉब्लम एक ये है जो कि आपने देखा कि बच्चे जो ग्रामीण परिवेश में हैं उनको हम लोग चाह रहे हैं, जो राष्ट्रीय खेल पॉलिसी में भी है कि उनको टैलेंट को आइडेंटिफाई करें, हम लोग उस ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं कि जो जब हम लोग इंटर कॉलेज करवाते हैं, करीब 43 कॉलेज हैं प्लस जो हमारे स्टेट कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज गेम्स में जो चुन के आते हैं बच्चे, वो फिर उनको हम ट्रेनिंग दे के जोनल और नेशनल के लिए कम्पीट करवाते हैं।
1: ये आपने उपलब्धि जो इस विश्वविद्यालय की रही है इसके बारे में आपने कहा, आगामी कुछ ऐसी खेल के जो कुछ गेम्स और होने वाले हों या कुछ इस तरह की बातें वो हमारे श्रोताओं को आप
0: देखिए। एक तो सौभाग्य है कि अभी जो हमारे वर्तमान माननीय कुलपति हैं वो खुद स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं और खेल में बहुत रुचि रखते हैं, तो हमेशा अपडेट लेते रहते हैं कि कहाँ बच्चा कैसा है, जो भी इनको दिक्कत ना होना चाहिए। अभी क्योंकि नया फिर अब एक स्पोर्ट्स आएगा, ये स्पोर्ट्स कैलेंडर शुरू होने वाला है, जिसमें फिर करीब 20 गेम हम लोग करवाते हैं, 20 से 22 गेम जिसमें योगा भी शामिल है। और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से मैं हर बच्चे जो अगर सुन रहे होंगे कि वो योगा में भी, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा बच्चे कम कम्पीट किए थे, तो देख के थोड़ा लगता है कि योगा पूरे देश को हम लोग पूरे विश्व को हम लोग सिखाए हैं, तो युवाओं से अपील रहेगा कि वो योगा भी करें और योगा कॉम्पिटिशन में भी आएँ, जिससे वो आगे भी अपना जीवन सिक्योर कर सकते हैं। विभिन्न विधाओं में गेम होता है और दोनों प्रतिस्पर्धाओं में होता है, कैटेगरी में मेल में भी फीमेल में भी, करीब हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में

0: आपको ये गेम मैक्सिमम, हम लोग का ये ऑनरेबल वीसी साहब का भी सपना है कि हर एक कॉलेज को मैक्सिमम ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए, जो काबिल है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज करे और तुम्हारे बच्चे यहाँ से निकल सके।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना के जो राष्ट्रीय खेल नीति है वो किस तरह से हमारे लिए लाभदायी है, किस तरह से हम इसका लाभ ले सकते हैं, और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत यहाँ की जो खेल की गतिविधियाँ हैं, जो उपलब्धियाँ हैं, और जो आगामी कुछ जो खेल से संदर्भित कुछ गेम्स होने वाले हैं, इन सभी बातों को लेकर के हमने अभी बातचीत की। हमारे साथ थे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अमृत कुमार झा जी। झा जी, आपका हमारे आकाशवाणी स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर अमृत कुमार झा से ये भेंटवार्ता। विषय था राष्ट्रीय खेल नीति 2025, और अब चलते हैं चहल पहल की ओर। हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। भारत के जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने 85.83 मीटर का थ्रो किया। भारत के ही यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर का पर्सनल बेस्ट प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। ग्लासगो में चल रहे गेम्स के आठवें दिन भारत ने कुल 6 मेडल जीते। इनमें 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज शामिल रहे। जूडो में अस्मिता डे ने गेम्स के इतिहास में भारत को पहला गोल्ड दिलाया। इसके 15 मिनट बाद हर्ष सिंह ने दूसरा गोल्ड जीता। यामिनी मौर्य ने सिल्वर मेडल हासिल किया। एथलेटिक्स में तेजस्विनी शंकर ने डेकाथलॉन इवेंट में ब्रॉन्ज जीतकर इतिहास रचा। वह कॉमनवेल्थ गेम्स के इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत मेडल टैली में 10वें नंबर पर है। टीम ने 5 गोल्ड, 12 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज सहित 23 मेडल जीते हैं। तेजस्विनी शंकर 7,976 अंकों के साथ डेकाथलॉन में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। 2 दिन तक चले इस इवेंट में उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया। ग्रेंडारा के लिंडन विक्टर ने गोल्ड और डेमियन वार्नर ने सिल्वर जीते। त्रिपुरा की 23 साल की अस्मिता डे ने फाइनल में शानदार वापसी करते हुए कनाडा की हेडी क्वाच को हराया। मुकाबले की शुरुआत में उन्होंने 1 अंक गवाया और पेनल्टी भी मिली, लेकिन आक्रामक खेल जारी रखते हुए स्कोर 1-1 से बराबरी कर दिया। गोल्डन स्कोर में अस्मिता ने निर्णायक अंक हासिल कर इतिहास रच दिया। वहीं 23 साल के हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कार्ट्स को 10-0 से हराया। 4 मिनट तक चले मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों को अंक नहीं मिले, लेकिन अंतिम मिनट में हर्ष ने निर्णायक दांव खेलकर बढ़त बनाई और गोल्ड अपने नाम कर लिया। महिला 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में यामिनी मौर्य को इंग्लैंड की यसेलिया टोपराक के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। करीब 7 मिनट तक चले मुकाबले में कोई भी खिलाड़ी अंक नहीं बना सके। गोल्डन स्कोर में दोनों खिलाड़ियों पर 2-2 शीडो थे, लेकिन तीसरी वार्निंग मिलने के बाद यामिनी को हार झेलनी पड़ी और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। बॉक्सिंग में भारत के सभी 10 बॉक्सर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, प्रिया घंघास और लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में जगह बनाई है। वहीं पुरुष वर्ग में अंकुश पंघाल, जादूमणि सिंह, सचिन सिवाच और नरेंद्र बेड़वाल गोल्ड मेडल मुकाबला करेंगे। श्रोताओं, हॉकी इंडिया ने पिछले बुधवार को जापान के आइची नागोया में होने वाले 20वें एशियन गेम्स के लिए 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खेला जाएगा। स्टार डिफेंडर और ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह भी स्क्वाड में शामिल हैं। भारतीय टीम डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगी। भारत ने 2023 हांगझोउ एशियन गेम्स में हरमनप्रीत की कप्तानी में गोल्ड मेडल जीता था। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 6-6 टीमों के 2 पूल में बांटा गया है। भारत को पूल ए में रखा गया है। इस पूल में भारत के साथ मेजबान जापान, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया हैं। सभी मुकाबले काकामिगाहरा के गिफू प्रीफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में खेले जाएंगे। टीम चयन पर मुख्य कोच क्रेग फुल्टन के हिसाब से चुनी गई टीम काफी अनुभवी है। इस टूर्नामेंट का विजेता सीधे LA 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगा। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने टीम के प्रदर्शन पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि चाहे युवा खिलाड़ी हों या सीनियर, मुझे सभी पर पूरा भरोसा है कि वे मिले मौकों का सही इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य बिना दबाव के लिए

का आनंद लेना और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से समझना और निभाना है। श्रोताओं, कनाडा के ओंटारियो में चल रही वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश टीम चैंपियनशिप में भारत के लिए मिला जुला दिन रहा है। भारतीय मेंस टीम ने क्वार्टर फाइनल में तीसरी वर्षीय इंग्लैंड को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब उसका मुकाबला यूएस से होना है। वहीं विमेंस टीम क्वार्टर में यूएसए से 1-2 से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। पिछले साल भारत ने इस प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इस बार टीम अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की कोशिश में है। मैच की शुरुआत में आर्यवीर दीवान ने रोनी हिकलिंग को 11-9, 12-10, 11-5 से हराकर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद इंग्लैंड के इस्माइल खलील ने युशा नफीस को 11-7, 8-11, 11-4, 13-11, 11-7 से हराकर स्कोर 1-1 से बराबरी कर दिया। अंत में गुरुवीर सिंह ने जॉर्ज ग्रिफिथ्स को 11-3, 11-8, 11-6 से सीधे गेम में हराकर भारत को जीत दिलाई। महिला टीम के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत को अमेरिका से 1-2 से हार झेलनी पड़ी और इसी के साथ महिला टीम का सफर खत्म हुआ। और अब चलते हैं खेलों की साप्ताहिक गतिविधियों की ओर। कॉमनवेल्थ गेम्स में पिछले शुक्रवार को भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अस्मिता डे ने गेम्स के इतिहास में जूडो में देश को पहला गोल्ड दिलाया। इसके 15 मिनट बाद हर्ष सिंह ने दूसरा गोल्ड जीता। यामिनी मौर्य ने सिल्वर मेडल हासिल किया। जूडो में 3 मेडल आए। देश के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने 85.83 मीटर थ्रो किया। भारत के ही यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर का पर्सनल बेस्ट प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन इवेंट में ब्रॉन्ज जीतकर इतिहास रचा। भारत ने गेम्स में अब तक 5 गोल्ड, 12 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत 23 मेडल जीते हैं और मेडल टैली में 10वें स्थान पर है। ये हम शुक्रवार तक की बात कर रहे हैं। भारतीय शटलर तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। पिछले शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में 17 साल की तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसुन को सीधे गेम में मात दी। पंजाब की रहने वाली तन्वी ने यह मुकाबला 21-17, 21-11 से अपने नाम किया। यह एक तरफा सेमीफाइनल मैच महज 33 मिनट तक चला। तन्वी पिछले साल यूएस ओपन सुपर 300 में रनर अप रही थी। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट तन्वी शर्मा आज होने वाले फाइनल में खिताबी जीत के लिए उतरी। फाइनल में उनका मुकाबला हमवतन उन्नति हुड्डा या वियतनाम की 6वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ग्वेन थ्यू लिन से में से किसी एक से होना है। आईसीसी ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए 12 मेजबान शहरों का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट 4 अक्टूबर से 21 नवंबर तक साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका के 8 वेन्यू पर मुकाबले होंगे। इनमें जोहान्सबर्ग, सेंचुरियन, डरबन, केप बेरहा, कुगोमपो सिटी, केपटाउन, पार्ल और ब्लोमफोंटेन शहर होंगे। वहीं जिम्बाब्वे के हरारे, बुलावायो और विक्टोरिया फॉल्स और नामीबिया की राजधानी विंडहोक में भी मुकाबले खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला जोहान्सबर्ग के वांडरर्स या केपटाउन के न्यूजीलैंड स्टेडियम में हो सकते हैं। वनडे वर्ल्ड कप 24 साल बाद अफ्रीका में लौट रहा है। इससे पहले 2003 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या ने टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। इसके बाद साउथ अफ्रीका 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2009 चैंपियंस ट्रॉफी और 2023 महिला टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है। नामीबिया पहली बार किसी सीनियर आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। हालांकि इसी साल उसने जिम्बाब्वे के साथ मिलकर अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन किया था। वर्ल्ड कप के कुल 54 मुकाबलों में से कम 41 मैच साउथ अफ्रीका में खेले जाने की संभावना है। जिम्बाब्वे को 7-10 मुकाबले की मेजबानी मिलेगी, जबकि नामीबिया में कम से कम 3 मैच होंगे। बिनोनी और पोर्ट जेफरस्ट्रूम को वार्म अप वेन्यू बनाया गया है। ये दोनों शहर अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर की मेजबानी भी नामीबिया के साथ मिलकर कर सकते हैं। 12 शहरों में विक्टोरिया फॉल्स नया वेन्यू है। यहां 10,000 दर्शकों की क्षमता वाला नया स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसके इस साल के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है। 2027 वनडे वर्ल्ड कप में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी। आईसीसी ने हाल ही में इसके लिए नया 3-स्टेज फॉर्मेट मंजूर किया है। टूर्नामेंट की शुरुआत सुपर सीरीज से होगी, जिसमें रैंकिंग की 12वीं, 13वीं और 14वीं टीम आमने सामने होंगी। इनमें से एक टीम अगले स्टेज में पहुंचेगी। इसके बाद 12 टीमों को 6-6 टीमों के 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। दोनों ग्रुप की टॉप 3 टीमें और चौथे स्थान पर रहने वाली दोनों टीमों में से बेहतर एक टीम सुपर 7 राउंड में पहुंचेगी। सुपर 7

में सातों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी, जिसके बाद टॉप चार टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। सेमीफाइनल जीतने वाली दो टीमें फाइनल खेलेगी। इसी के साथ क्रीड़ा जगत का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम संबंधी सलाह और शिकायत के लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम क्रीड़ा जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा। इस कार्यक्रम के लिए वाचन और निर्माण दीपक कुमार झा का था और प्रस्तुतकर्ता थे मितेश कुमार मिश्रा। नमस्कार।

0: क्रीड़ा जगत अभी आप खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
1: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
3: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
0: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर हम के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब समाचार संध्या।
4: से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1446 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार। केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित

0: भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जनभागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: आवाम की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
0: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जनभागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
0: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या

0: मेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई यह योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
2: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
1: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
3: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत की जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज

0: बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षक क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
1: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो अरीना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी बांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation for families of prisoners dying unnaturally in jail. Flood situation in Odisha improves as Mahanadi river recedes. Rainfall intensity decreases in Keralam, bringing relief to people. In Indonesia, 5 persons killed and 41 missing after ferry catches fire off Madura Island. Curtains to come down on Commonwealth Games 2026 tonight. Ahmedabad to receive baton at closing ceremony, marking India's formal transition as host of the centenary 2030 edition. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace

0: Director General, Narcotics Control Bureau, and Nishit Kumar, Anchor.
1: Today, Prime Minister Narendra Modi launched the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan. The nationwide campaign aims to reduce substance abuse among young people and encourage a drug-free India as part of the broader Viksit Bharat 2047 vision. And to discuss more about it, we are joined in by Mr. Anand Prakash Tiwari, Deputy Director General at the Narcotics Control Bureau. Welcome, sir.
2: Thank you very much.
1: Mr. Tiwari, the launch of this campaign, Prime Minister Modi has put across a big message to the youth of the country, especially the Gen Zs. How do you see this?
2: We are really very thankful to our Honorable Prime Minister, sir, because this is one of the very relevant issue of country and young people, especially Gen Zs, because we know the dream of developed India can be achieved only if our youth, Gen Zs, they will be healthy and they will be free from drugs, all sort of nasha, then only the dream of the healthy India can be achieved. And healthy India can give only the possibility of the developed India. So therefore, I think this is one of the most important program which Honorable Prime Minister has given. And we are very much committed to achieve the given task by the Honorable Prime Minister.
1: Before we proceed any further, let's listen to the Prime Minister, what he said on the occasion.
3: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा. हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी. नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा. आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे. 100 मजबूत स्टेप्स.
1: Mr. Tiwari, the 100-week model, this is moving away from the short-term.
4: वजीराजम ने कहा कि नशे की लत न सिर्फ कुंभों को तबाह कर देती है बल्कि मुल्क की ताकत को भी कम करती है. वजीराजम ने कुंभों से जोर देकर कहा कि वो बदनामी के सबब नशीले मादों के गलत इस्तेमाल के केसेस को छुपा कर न रखें.
3: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें.
4: मुल्क भर के 28,000 मकामात के 1 करोड़ से ज्यादा नौजवानों ने इस तकरीब में शिरकत की, जिनमें माय भारत और नेशनल सर्विस स्कीम के रजाकारों, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, यूथ क्लब्स, गैर सरकारी तंजीमों और रूहानियत से मुतालिक तंजीमों से वाबस्ता शख्सियतें शामिल हैं. उम्मीद है कि भारतीय मईशत में रवां माली बरस की पहली सहमाही में तकरीबन 7% का इजाफा होगा, जो पहले के अंदाजे से ज्यादा है. ये अंदाजा मजबूत तरीन इकतसादी इंदियों, बेहतर सनअती सरगर्मियों और बरामदात में बहाली से होता है. SBI की एक रिसर्च के मुताबिक माली पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट से पहले कल जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि शरह तरक्की से मुतालिक इस तखमीने से भारतीय रिजर्व बैंक के इससे पहले के तखमीनों में बेहतरी जाहिर होती है, जो जोग्राफियाई व सियासी गैर यकीनी की वजह से कम सतह पर थे. दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी खित्ते की जेलों में बंद कैदियों की गैर तबई मौत की सूरत में उन कैदियों के कानूनी वारिसों को मुआवजा अदा करने की स्कीम को नोटिफाई कर दिया है. इस बारे में दिल्ली हुकूमत के दाखिली उमूर के महकमे ने आज नोटिफिकेशन जारी किया है. मजीद तफसील हमारे नामानिगार से.
5: इस स्कीम के तहत खसूसी हालात में 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा अदा किया जा सकता है. जेल अफसरान या अमले की जानिब से फराइज की अदायगी में कोताही, तिब्बी या नीम तिब्बी अमले की लापरवाही और कैदी की खुदकुशी के मामलों के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा तय किया गया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक ये स्कीम उन्हीं मामलों पर नाफिज होगी जहां दिल्ली की किसी भी जेल में नोटिफिकेशन के इजरा की तारीख के बाद किसी कैदी की गैर फितरी मौत होगी. दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि इंसानी हकूक के कौमी कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक नोटिफाई की गई इस स्कीम के न सिर्फ मखसूस हालात में मुतासरा कुंभों को बरवक्त राहत पहुंचाएगी बल्कि इंतजामिया की जवाबदही में इजाफा होगा. दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब.
4: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती कल किए जाने के लिए सभी तैयारी

0: प्रोग्राम से खिताब करते हुए डॉक्टर सावंत ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के नजरिए को हकीकत में बदलने के लिए मनुष्यात से पाक नौजवान जरूरी हैं। जनाब सावंत ने नौजवानों से नशीले मादों से दूर रहने, सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने और मुल्क की तामीर में सरगर्मी से ताउन करने की अपील की। इंडोनेशिया में आज मदुरा जजीरे के करीब समंदर में एक छोटे जहाज में आग लगने से 5 अफराद हलाक हो गए और 41 अफराद अब तक लापता हैं। इस जहाज में 271 मुसाफिर और अमले के लोग सवार थे। तलाश और बचाव के महकमे ने बताया कि इन मुसाफिरों में से अब तक 225 को बचाया जा चुका है। लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव कार्रवाई अब भी जारी है। अमेरिका में वाशिंगटन के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने रियासतगीर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने तेज हवाओं की वजह से तेजी से फैलने वाली जंगल की आग की वजह से आग जलाने पर पाबंदी आयद कर दी है। जंगल की आग की वजह से 3000 एकड़ का रकबा जलकर खाक हो गया है और हजारों लोगों को इनखला पर मजबूर होना पड़ा। साल 2026 के दौलत मुश्तरक खेल मुकाबले आज रात ग्लासगो में मशहूर हाइड्रो एरिना में शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ मुकम्मल हो जाएंगे। ये तकरीब भारतीय वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे शुरू होगी, जिसमें 11 दिन तक जारी खेलकूद की महारत, दोस्ती और सकाफती तनवो का जश्न मनाया जाएगा। इस मौके पर अहमदाबाद को दौलत मुश्तरक खेलों का परचम और मेजबान की छड़ी होस्ट बैटन सौंपी जाएगी, जो साल 2030 के खेल मुकाबलों की भारत की मेजबानी की अलामत होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ग्लासगो में मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में 13,000 से ज्यादा खेल शायकीन शिरकत करेंगे। ये तकरीब एथलीट्स की कारकर्दगी का एक जश्न है और बहुत से रजाकारों को शुक्रिया करने का एक मौका। इस तकरीब के दौरान 2030 में अहमदाबाद में कराए जाने वाले 24वें दौलत मुश्तरक खेलों की मुंतकली की रस्म भी अंजाम दी जाएगी, जिसमें स्कॉटलैंड का रॉक बैंड सिंपल माइंड्स, BEMZ, कैमी बार्नेस और सैंडी थॉम अपने फन का मुजाहरा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के गुलूकार डेल्टा गुडरम दौलत मुश्तरक खेल मुकाबलों की किसी तकरीब में तीसरी बार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन अपनी गुलूकारी से लोगों को मसहूर करेंगे। दूरदर्शन से इस तकरीब को रवाना नशर किया जाएगा। चिराग झा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: इन खेल मुकाबलों में भारत की कारकर्दगी शानदार रही। मुक्केबाजी में रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिली, जूडो में भी तारीखी कामयाबी रही और माजूर अफराद के खेलकूद मुकाबलों में भी संगी मील की हैसियत रखने वाली हुसूलियाबियां हुईं। एथलेटिक्स में बहुत से तमगे जीते गए, जिसकी वजह से मजमू तौर पर तमगों की तादाद के एतबार से भारत चौथे नंबर पर रहा। भारत ने सोने के 13, चांदी के 17 और कांसे के 9 तमगे जीते हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका में भारत के 2 टेस्ट मुकाबलों के दौरे में शामिल नहीं हो सकेंगे। वो अपने घुटने की चोट से असबर नहीं हो पाए हैं। श्रीलंका की ये सीरीज गाले में इस महीने की 15 तारीख से शुरू हो रही है। बुमराह के घुटने की चोट काफी शदीद है, जिसका अंदाजा शुरू में नहीं हो पाया था। बेंगलुरु के महारत के मरकज में खेलकूद से मुतालिक साइंस की टीम के मुताबिक उन्हें अगले मैचों के पेश नजर फिलहाल इस मैच में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नशीले मादों की रोकथाम की 100 हफ्ते की मुलगीर मुहिम का आगाज किया। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के लिए नशीले मादों से पाक नौजवान जरूरी हैं। SBI की तहकीक में रवा माली बरस की पहली सहमाही के दौरान भारत की GDP की शरह तरक्की से मुतालिक अंदाजे में इजाफा करके इसे 7% कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने जेल में गैर फितरी तरीके से मौत हो जाने पर कैदियों के कुंभों के लिए 7.5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है, क्योंकि महानदी दरिया के पानी की सतह में कमी आ गई है। केरलम में बारिश की शिद्दत कम हुई है, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली है। इंडोनेशिया के मदुरा जजीरे से कुछ दूर एक छोटे जहाज में आग लग जाने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए और 41 लापता हो गए हैं। और 2026 के दौलत मुश्तरक खेल मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब आज रात मुनक़िद होगी, जिसमें 2030 के इस सदी के खेल मुकाबलों के मेजबान के तौर पर भारत को बाकायदा मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आजाद हिंद फौज के गीतों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्ता पर केंद्रित रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर। शोध और आलेख वसुधा बैनर्जी। प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर।

1942 दूसरे विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी थी। भारत अब भी गुलाम था, लेकिन अपने वतन से हजारों मील दूर जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के अटलांटिक होटल में इतिहास एक नई करवट लेने वाला था। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद भारत के ख्वाब को पहली बार एक धुन मिली।

0: 11 सितंबर 1942। पहली बार जनगण मन के बुलंद स्वर यूरोप के ब्रास बैंड और स्ट्रिंग्स के साथ गूंजे। ये सिर्फ एक संगीत प्रस्तुति नहीं थी, ये उस मुल्क की आवाज थी जिसका जन्म अभी होना बाकी था। जलावतन भारतीयों के बीच यूरोप की धरती पर आजादी पहली बार सुरों में ढल रही थी। ये निर्वासन में जन्मी आजादी की एक ऐसी सिम्फनी थी जिसने आगे चलकर करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ और तेज कर दी।
1: There was an orchestration done of the tune of Jana Gana Mana by the Hamburg Radio Orchestra.
0: Dr. Sugato Bose, अध्यक्ष, Netaji Research Bureau.
1: It was played as India's national anthem for the first time at the inauguration of the Deutsche Indische Gesellschaft, which is the German Indian Society, on the 11th of September 1942. And it was a beautiful orchestration. It was beautifully played. And Netaji himself clearly interacted with the musicians and the conductor. We have a beautiful photograph in the Netaji Museum at Netaji Bhavan in Kolkata, which shows Netaji addressing the gathering in Hamburg, and behind him, we see the orchestra and the musicians with their musical instruments.
0: इसके कुछ ही महीनों बाद इतिहास ने एक और असाधारण अध्याय लिखा। जर्मनी से दक्षिण पूर्व एशिया तक करीब 90 दिनों की एक बेहद खुफिया और जोखिम भरी पनडुब्बी यात्रा, और फिर 1943 की शुरुआत में नेताजी का सिंगापुर पहुंचना। यहीं उन्होंने राज बिहारी बोस से आजाद हिंद फौज की कमान संभाली।

0: उस समय सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर।
1: 3 जुलाई 1943 को जब नेताजी सिंगापुर पधारे, उस समय पूर्वी एशिया में इतनी खुशी हुई कि तमाम पूर्वी एशिया के रहने वाले 35 लाख हिंदुस्तानियों ने और आजाद हिंद फौज के जवान और तरानों ने गीत गा के उनका स्वागत किया। वो गीत क्या था,

करती है और वहां तक पहुंचने का सबसे असरदार रास्ता था संगीत। वो हौसला था और संघर्ष का एक सशक्त हथियार भी। 21 अक्टूबर 1943, आजाद हिंद की आरजी हुकूमत के ऐलान से ठीक पहले नेताजी ने आबिद हसन से कहा कि जनगण मन का एक हिंदुस्तानी रूप तैयार किया जाए। वो अपने सैनिकों से हिंदुस्तानी में बात करते थे, साथ ही तमिल में उसका समानांतर अनुवाद भी सुनाया जाता था। आबिद हसन ने मुमताज हुसैन से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के जनगण मन के 5 में से 3 पदों का हिंदुस्तानी रूप लिखवाया और कैप्टन राम सिंह ने उसकी धुन को सवारा और इस तरह जन्म हुआ आरजी हुकूमत आजाद हिंद के कौमी तराने का।

0: प्रख्यात कवि और प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी बताते हैं कि ये गीत किस तरह विविधता में एकता के उस भाव को स्वर देता है जिसकी बुनियाद पर नेताजी अपना भारत गढ़ना चाहते थे।
1: जो एक एकता की भावना है, आपसी मेलजोल है, वो बहुत मूल्यवान है। और हम देखते हैं ना, आजाद हिंद फौज के जो तीन नायकों पर जो मुकदमा चला, तो उसमें एक कर्नल सहगल, एक कर्नल ढिल्लन और एक जनरल शाहनवाज, तो एक हिंदू, एक सिख, एक मुसलमान, तो ये भी एक अनूठी चीज है। तो उसमें जो एक पंक्तियां आती हैं, वो भी मैं सुनाना चाहूंगा कि सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी वाणी, और हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के, सब गोद में तेरी आके गूंथे प्रेम की माला।
0: इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इतिहासकार और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर सुगतो बोस।
2: नेताजी जब आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर बने, उन्होंने बताया कि जो सब प्रोफेशनल सोल्जर थे आजाद हिंद फौज के, वो ज्यादा आए थे पंजाब से, लेकिन बहुत सिविलियन रिक्रूट आए थे तमिलनाडु से। सबको तो एक करके आजादी का जंग लड़ना है, इसीलिए उन्होंने बताया कि जो आईएनए ऑर्केस्ट्रा था, वहाँ बहुत अच्छा एक लिरिसिस्ट था मुमताज हुसैन, और कैप्टन राम सिंह आईएनए ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर बना। वो एक साथ बहुत गाने बनाया। सबसे जो इंस्पायरिंग गीत था वो है कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा, वो जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाया जा। तो एक साथ सब ये गाते गाते वो इंडो बर्मा फ्रंटियर पार होके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया, इम्फाल और कोहिमा में आजादी का जंग लड़ा।
0: सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार या प्रोविजनल सरकार की स्थापना की घोषणा की और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध का उद्घोष किया। इसी ऐतिहासिक अवसर पर आजाद हिंद फौज का मार्चिंग गीत बना कदम कदम बढ़ाए।

0: आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों के बलिदान का ये संगीतमय स्मारक ब्रिटिश शासन द्वारा राजद्रोही घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया गया था। लगभग 8 दशकों के बाद आज भी इसकी लोकप्रियता का रहस्य क्या है?
1: Simple lyrics tapping into core emotions of courage, unity and collective identity and foot tapping beats.
0: गौरा धवन लाल देश के वरिष्ठ कमेंटेटरों में से हैं।
1: मुझे मिलिट्री सेरेमनीज और सेलिब्रेशंस की लाइव कमेंट्री करते हुए 4 दशक से अधिक हो गए हैं, पर आज भी कमेंट्री के समय जब ये गाने प्ले होती हैं, ये धुनें प्ले होती हैं, तो उनके बजते हुए कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं होता। बस मुख बंद होते हैं, अपने हाथ और पांव उसी बीट के साथ टैप करते हैं और हम उनको एंजॉय करते हैं। जो सेंटिमेंट्स ये धुनें और गाने कन्वे करते हैं, शब्द उनके सामने बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं।

0: आज कदम कदम बढ़ाए जा भारतीय सेना का रेजिमेंटल मार्चिंग सॉन्ग है।
1: 1996 में जनरल शंकर राय चौधरी ने इस बात को उठाया, ये सुभाष चंद्र बोस के जमाने में हुआ था 1942 में, क्यों ना हम अभी इस वक्त इंडियन आर्मी के लिए इसको शुरू करें।
0: मेजर नजीर हुसैन, भारतीय सैन्य संगीत की दुनिया का एक प्रतिष्ठित नाम।
1: उस वक्त जब 1942 के अंदर ये बनाया गया था, ये सिंपल एंड कॉमन म्यूजिक के हिसाब से बनाया गया। इसको शंकर राय चौधरी ने ही जब सवाल उठाया 1996 में जब हुआ, तो इसको अरेंजमेंट जो एक्चुअल अरेंजमेंट है मिलिट्री म्यूजिक का, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो इंडियन कंपोजर हो, इसको तीन टुकड़ों में बनाया जाता है। एक तो इंट्रोडक्शन, देन मेलोडी, देन टूटी, जस्ट दैट वाज द फोर्स, जवान के कदमों के लिए फोर्स लाना, फिर अगेन मेलोडी, देन प्लियो। तो इसको मिलिट्री बैंड के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक कैप्टन HB बराल, हिम महादेव बराल को दिया गया, और उसने इसको मिलिट्री बैंड के लिए अरेंजमेंट किया। मिलिट्री बैंड अरेंजमेंट, नॉट कंपोज।
0: सेना मुख्यालय में सैन्य संगीत सलाहकार रह चुके विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित मेजर नजीर हुसैन।
1: दिस इज द फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन। Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom kadam kadam badhaye, this is melody, pehle jo tha introduction tha, no melody, kadam kadam badhaye ja khushi ke geet gaaye ja la la la la la la la la la la la la la la la la, this is melody, now is the brass beat, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: This is the brass duty. This is the josh. This is the josh jawan ke hirday mein lane ke liye, dimag mein lane ke. Then again is the melody. La ra la ra ra ra ra ra. This is also melody. Now with the trio. Kadam kadam badhaye ja, khushi ke geet gaaye ja. Ye zindagi hai kaum ki, kaum pe lutaye ja.
1: अब इस गीत के शब्दों और उसकी भावना पर रोशनी डाल रहे हैं कवि और वरिष्ठ प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी।
2: ये गीत लिखा कैप्टन राम सिंह जी ने और धुन भी उन्होंने ही बनाई है। हालांकि इसी मुखड़े का एक गीत बंशीधर शुक्ल जी का भी है। बंशीधर शुक्ल जी का जो गीत है उसके अंतरे बिल्कुल अलग है, उसकी भाषा बिल्कुल अलग है। क्राफ्ट के हिसाब से, शिल्प के हिसाब से वो बेहतर गीत है। लेकिन ये जो कदम कदम बढ़ाया जा कैप्टन राम सिंह जी ने जो लिखा है, जहां तक एक मार्चिंग सॉन्ग की जो जरूरत होती है, जो जोश जो जज्बा चाहिए वो उसमें आपको मिलेगा। पहली ही पंक्ति में कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा। अब जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं, बीहड़ जंगलों से, और तमाम सारी मुसीबतें हैं, उलझने हैं, और जा कहां रहे हैं, जंग करने के लिए। मारे भी जा सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हैं, लेकिन खुशी से जाना है, एक जज्बे के साथ जाना है, साहस के साथ जाना है, और दुश्मन को जो है किसी तरह उसको खत्म करना है। फिर एक जज्बा है कि दिल्ली जाएंगे और लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, गुलामी को हटा देंगे, मिटा देंगे। तो एक एक पंक्ति में जो साहस है, जो हिम्मत है, जो जोश है, वो बिल्कुल अलग तरह का है, और जो एक मार्चिंग सॉन्ग के लिए जरूरी है वो सब कुछ इस गीत में है।

ये गीत हैं शिल्प के हिसाब से, क्राफ्ट के हिसाब से बेशक उनमें कच्चापन है, लेकिन जज्बात का सच्चापन है, बहुत जोश भरते हैं,

0: ये कविताएं देश प्रेम से ओतप्रोत है, एक एक पंक्ति है और बहुत मूल्यवान है उन फौजियों के लिए जो लड़ रहे थे एक जोश के साथ, एक जज्बे के साथ, कम साधनों के साथ। जैसे एक गीत में आता है कि हम गोली खाकर झूमेंगे। अब ये गोली वही है जो जान ले सकती है, लेकिन ये ऐसे बता रहे हैं गोली खाकर झूमेंगे, हम मौत को बढ़कर चूमेंगे। अब ये जो जज्बा है ये एक फौजी में है और जो जन करने जा रहा है, वो इस तरह की पंक्तियां आती हैं जो जोश भरती हैं, किसी में भी जोश भरती हैं।
1: युद्ध समाप्त हुआ लेकिन आजाद हिंद फौज की कहानी नहीं। जब लाल किले में आजाद हिंद फौज के मुकदमे शुरू हुए तो उसके गीतों पर भी पाबंदी लगा दी गई। डॉक्टर सुगतो बोस।
2: The trial began on the 5th of November and ended on the 31st of December of 1945. And there was a huge popular upsurge across the whole country in support of Netaji's soldiers. And even if the British tried to, you know, ban INA songs, that was not very effective because in the public gatherings that were held, INA songs began to be performed. And then once Claude Auchinleck was forced to release the three INA officers, there was a slogan in those days, Lal Kile Se Aaye Awaaz, Saigal Dhilan Shanawaz. At that stage, you know, everywhere as part of the celebrations, and for example, on Netaji's birthday, on the 23rd of January of 1946, these INA songs were being performed everywhere.
1: कैप्टन राम सिंह की कंडक्टिंग बेटॉन ने हजारों दिलों की धड़कनों को एक ही लय में बांध दिया था। हिमाचल प्रदेश में जन्मे इस गोरखा सैनिक ने अपनी संगीत प्रतिभा से आजाद हिंद फौज के सांगीतिक संसार में नई जान फूंक दी।
3: ये वायलिन मुझको नेताजी ने अपने करकमलों से मुझे भेंट की और भेंट करते समय कहा था कि राम सिंह ये वायलिन भारतवर्ष में भी बजेगा।

0: हंसते हंसते जीना हो नेताजी।
1: मुमताज हुसैन के अलावा आजाद हिंद फौज के गीतों में कई ऐसे गीतकारों का जिक्र मिलता है जिन्हें आज बहुत कम लोग जानते हैं। इनमें सूबेदार बलदेव सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रकाश सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट मुश्ताक और यहाँ तक कि गुरबख्श सिंह ढिल्लों भी शामिल थे। आइए कैप्टन राम सिंह की जुबानी सुनते हैं उनके कुछ साथियों और उनके गीतों के बारे में।
2: ये गीत सेकंड लेफ्टिनेंट कल्याणचंद हसर जी का लिखा हुआ है, इसकी धुन मैंने बनाई थी।

हमारे आजाद हिंद फौज के जवान जब दिन भर बहुत परिश्रम करते थे, शाम को जब भोजन करने अपने मेस में जाते थे तो खाना उना खाने के बाद फिर सारी कंपनियां इकट्ठे होकर कहते थे चलो भाई जरा मनोरंजन हो जाए, तो वो कहते थे कवाली गाया जाए।

0: काम लिया। जय हिंद भाइयों, कहो जय हिंद।
1: नेहरू ब्रिगेड के कमांडर कर्नल ढिल्लन साहब ने नेताजी का फरमान कहकर एक गीत लिखा है, वो है नेताजी का फरमान, उठो सोए भारत के नसीबों को जगा दो।

रानी झांसी रेजिमेंट के लिए भी एक विशेष गीत तैयार किया गया था। ये रेजिमेंट नेताजी के बेहद निकट थी, क्योंकि नेताजी के लिए रानी झांसी रेजिमेंट सिर्फ महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी नहीं थी, वो उनके उस भारत का ख्वाब थी जहां औरत और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़े, जहां इज्जत, बराबरी और जिम्मेदारी तीनों में कोई फर्क न हो। और इसी सोच को इस गीत ने आवाज दी।

0: गीतों का संग्रह आज भी नेताजी रिसर्च ब्यूरो में सुरक्षित है और netaji.org पर निशुल्क उपलब्ध है। जनगण मन की धुन के संगीतकार को लेकर लोगों के मन में कुछ सवाल भी उठते रहे हैं। प्रोफेसर सुगतो बोस हमें 1918 में दिनेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा तैयार की गई संगीत रचना की याद दिलाते हैं। वो ये भी समझाते हैं कि शुभ सुख चैन और जनगण मन की धुनों में कहां बारीक अंतर है।
1: The tune of Shubha Sukha Chainaki is slightly different. There are nuances which are different from the tune of Dinendranath Tagore's Janagana Mana. There are more komal notes that have been added. The second verse of the Janagana Mana song is very beautiful. It's not part of our national anthem, only the first verse is. But the second verse says, अहरह तब आह्वान प्रचारित शुनि तब उदार बानी हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान ख्रिस्तानी पूरब पश्चिम आशे तब सिंहासन पाशे And Mumtaz Hussain, with the support of Netaji and Abid Hassan, rendered it in these words.

0: Jaya Jaya Jaya Jaya Ho. You see, the Jaya He becomes Jaya Ho. That's the nuance, that's the slight variation that was made in the Azad Hind score of the Hindustani version of our national anthem.
1: आकाशवाणी आर्काइव्स में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 1942 को हैम्बर्ग में प्रस्तुत जनगण मन का वाद्य रूप पहली बार दुनिया के सामने आजाद भारत के राष्ट्रगान के रूप में पेश किया गया। इसकी प्रस्तुति रेडियो हैम्बर्ग चेंबर

0: ऑर्केस्ट्रा ने की थी और उसके बैंड लीडर थे एगिल क्रुटके। हैम्बर्ग स्टेट आर्काइव्स में इस प्रस्तुति का उल्लेख कुछ इस तरह मिलता है। जनगण मन, टेक्स्ट रविंद्रनाथ ठाकुर, कोडिफिकेशन ऑफ म्यूजिक अंबिक मजुमदार। लेकिन अंबिक मजुमदार कौन थे? इस सवाल का जवाब हमें जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन के एक महत्वपूर्ण सदस्य बीएल मुखर्जी की इस दुर्लभ आर्काइवल रिकॉर्डिंग में मिलता है।
1: एक शाम नेताजी ने हम सबको अपने निवास पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। वहां उन्होंने मुझसे गाने का आग्रह किया क्योंकि मैं बर्लिन रेडियो पर नियमित रूप से गाया करता था। हमारे कार्यक्रम का नाम था नमस्ते हिंद। हमारे साथ एक और सज्जन थे, हालांकि वो पूरी तरह हमारे संगठन से जुड़े नहीं थे, लेकिन वे पूर्वी प्रशिया के कॉनिसबर्ग विश्वविद्यालय से संगीत के विद्वान थे। उनका नाम था अंबिक मजुमदार। वास्तव में जनगण मन की वर्तमान संगीत लिपि तैयार करने का कार्य उन्होंने ही किया था। मेरे गायन और अंबिक मजुमदार के पियानो वादन को सुनने के बाद नेताजी ने निर्णय लिया कि यही हमारी राष्ट्रीय धुन होगी।
0: बर्मा के घने जंगलों में इतिहास न केवल कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहा था, वो गुनगुना भी रहा था उन सैनिकों के कंठों में जिन्होंने अपनी युवावस्था एक स्वप्न के लिए समर्पित कर दी। इम्फाल की मिट्टी और सिंगापुर की तपती धरती पर जन्मी वो धुनें आज भी इतिहास की सांसों में जीवित हैं।

0: साम्राज्य की तोपें अब कब की खामोश हो चुकी हैं। कूच करते कदमों की आहटें इतिहास में विलीन हो चुकी हैं। जो कुछ बचा है, कारावास और निर्वासन, मुकदमों और यातनाओं, विस्मृति और विघटन के पार, वो है एक प्लेलिस्ट, प्रतिरोध का साउंडट्रैक। जब आज तिरंगा हवा में लहराए तो ध्यान से सुनिए, शायद आपको मातृभूमि के नाम खून से लिखे हुए उस पुराने चिरंतन वचन की गूंज सुनाई दे।
1: फ्रेंड्स, आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ अस हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कमिंग बैटल विल सर्वाइव टू सी इंडिया फ्री, बट वेदर वी सर्वाइव और नॉट, वेदर वी इंडिविजुअली लिव टू सी इंडिया फ्री और नॉट, we are confident that India shall be free.

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, आजाद हिंद और समर के स्वर, शोध और आलेख बसुधा बैनर्जी, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा, स्वरांश सहयोग आनंद श्रीवास्तव, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह और प्रांजल, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। इस कार्यक्रम में जर्मनी के हैम्बर्ग में प्रस्तुत जन गण मन के वाद्य संस्करण को छोड़कर आजाद हिंद फौज INA के सभी गीत नेताजी रिसर्च ब्यूरो कोलकाता के सौजन्य से प्राप्त हुए। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास

0: स्वास्थ्य से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्तों का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। भारत की
2: कालिदास, सवाई गंधर्व जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समारोह के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और खाड़ी देशों में अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देवले जी आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार हैं। साथ ही आप संगीत शिरोमणि और विक्रमादित्य जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत है।
3: एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन, श्री देवले हैज डिलीवर्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज एट प्रेस्टिजियस नेशनल फेस्टिवल्स सच एज द तानसेन, कालिदास एंड सवाई गंधर्व फेस्टिवल, as well as in the USA, UK and the Gulf countries. He has also been honored with several prestigious awards, including the Sangeet Shiromani and Vikramaditya awards.
2: Sudhakar Devle ji apne karyakram ki shuruaat raag Puriya se kar rahe hain. Vilambit khayal ke bol hain, pyare degar lagi, jo ek taal mein nibadh hai. Drut khayal ke bol hain, chalo hato ji chhel, kahi roke gail, jo tritaal mein hai. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
3: श्री सुधाकर देवले इज कमेंसिंग हिज परफॉर्मेंस विद राग पुरिया। द कंपोजिशन इज सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स प्यारे देगर लागी। द कंपोजिशन इज सेट टू थ्री ताल विद द लिरिक्स चलो हटो जी छैल काहे रोके गैल। Accompanying him on the harmonium is Pramod Borgaonkar and on the tabla is Ulhas Rajhans.

0: देवलीजी का शास्त्रीय गायन। देवलीजी प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बसंती केदार। इस रचना की बोल हैं बरनीन जाए सखी, जो झपताल में निबद्ध है। द्रुत रचना की बोल हैं बेरी बसंत अब आयोरी, जो त्रिताल में है।
1: That was a classical vocal performance by Shri Sudhakar Devle in Raag Puriya. Shri Devle will now present Raag Basanti Kedar, set to Jhaptal with the lyrics Barnin Jai Sakhi, set to Trital with the lyrics Meri Basant Ab Ayori.

0: आपने सुना सुधाकर देवले जी का गायन राग बसंती केदार। सुधाकर देवले जी कार्यक्रम का समापन राग हंस ध्वनि में तराना से कर रहे हैं। त्रिताल में निबद्ध रचना की बोल है दारा दीम तदारी दानी दीम।
1: You are just listening to the vocal performance of Shri Sudhakar Devle ji in Raag Basanti Kedar. Shri Sudhakar Devle is concluding his program with Tarana in Raag Hans Dhwani, set to Tritaal with the lyrics Dara Dim Tadare Dani Dim.

0: आपने सुना सुधाकर देवले जी का गाया राग हंस ध्वनि में तराना। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू अ तराना इन राग हंस ध्वनि रेंडर्ड बाय श्री सुधाकर देवले। Accompanying him were Pramod Borgaonkar on the harmonium and Ulhas Rajhans on the tabla. This program was a presentation of Akashwani Indore. With this, today's Akhil Bharatiya Ravivasariya Sangeet Sabha comes to an end.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब प्रस्तुत है समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम

0: कम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिसमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं बीएमजेड, कैमी बांस और सैंडी थाम के साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत में रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हम

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। आज की दूसरी सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:48 पर हमारी पहली सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।